ओम शांति। हमारा जीवन संपूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है और ये समय है जबकि हमें सब कुछ छोड़कर अपने को संपूर्ण बनाकर घर वापिस चलना है। ये समय है जब हमें कहीं भी अटकना नहीं है। अगर हम कहीं भी अटक जाते हैं तो हमारा बुद्धि योग नीचे रहेगा और हम योग का परम आनंद नहीं ले पाएंगे। संगम युग पर विशेष रूप से न्यारापन और प्यारापन ये परम आवश्यक है और ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी के प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। भगवान वाच है, जो दूसरों के प्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो प्यारे बनने की बजाय और ही दूर हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। वास्तव में जो जितने देह से न्यारे बनेंगे वो उतने ही सबके प्यारे बनेंगे। तो हमें पुरुषार्थ देह से न्यारे होने का करना है, न कि किसी के प्यारे होने का, क्योंकि प्यारे होने से अटैचमेंट हो सकता है, लगाव हो सकता है, झुकाव हो सकता है और हमारा बुद्धि योग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, जो हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है। मनुष्य उसमें कई गलतियां कर लेता है और फिर उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। तो हम लक्ष्य बनाएं, जब हम संगठन में रहते हैं, जब हम सेवाओं में रहते हैं, जब हम दूसरों के संपर्क संबंध में रहते हैं तो न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें। प्यार दें और न्यारे हो जाएं, प्यार देकर कुछ कामना न करने लगे। प्यार देकर मनुष्य रिटर्न में प्यार चाहता है, वहां समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारा काम बाबा की तरह है, जैसे बाबा प्यार का सागर है, हमारे पास आता है, सबको बहुत प्यार देता है और फिर सेकंड में न्यारा हो जाता है। तो प्यार का सागर भी है और निर्मोही भी है, कितनी बड़ी स्थिति है। वैसी स्थिति लविंग एंड डिटेच्ड, दोनों न्यारे और प्यारे, ये हमें बनानी है। सेवाओं के फील्ड में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से हमें रहना है और फिर कार्य पूरा हुआ एकदम देह से न्यारे होकर बाबा के पास उठ जाना है, ये होगी प्यारी स्थिति और सबसे न्यारी स्थिति। डिटैचमेंट बहुत सुंदर चीज है। हमें वस्तुओं में भी न्यारे और प्यारे होना है। मान लो हमारे पास एक बहुत ही सुंदर कार है, हम उसको यूज करते हैं, हमारा उससे बहुत प्यार भी है, लेकिन अवस्था ऐसी बनानी है, यूज किया बहुत अच्छा, पूरा हो गया डिटैच, जैसे हमारा उससे कोई नाता नहीं, हम संभाल भी करेंगे लेकिन विद डिटैचमेंट। माँ अपने बच्चों के साथ रहती है, उन्हें प्यार बहुत देना है लेकिन एक सेकंड में स्वयं को देह से न्यारा डिटैच भी कर लेना है। ये न्यारी और प्यारी स्थिति जो सभी को बहुत प्रिय लगेगी हमें बनानी है और हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, चमकती हुई मणि हूँ, मुझसे निकली हुई रंग बिरंगी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, मैं बहुत तेजस्वी हूँ। साधारण आत्मा नहीं, ऐसी आत्मा नहीं जो केवल प्रकाशमान है, बट मैं बहुत प्रकाशमान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, मेरा प्रकाश भी चारों ओर फैल रहा है और सामने है ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उन्हें आंखों के सामने देखेंगे।
सामने उनकी रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये बहुत पावरफुल योग है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, आंखों के सामने ज्ञान सूर्य। आज बार बार ये अभ्यास करेंगे और इससे संसार को सकास भी देंगे। ओम शांति।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। फिक्र, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, यह सब भय से ही उत्पन्न है, उसी की संतान है। भय के थोड़े से बीज बोकर भी आप अपने मन में अनेक घातक और विषैले जंगली पौधों को स्थान देते हैं। भयग्रस्त लोगों के मस्तिष्क के सेल्स में निश्चित रूप से ऐसा होने लगता है। भय और चिंता हमारे रक्त और नाड़ी संस्थान में विष पहुंचाते हैं। कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रूप में कार्य नहीं कर पाता, हमारा मन संभावित संकटों की घटनाओं से घिर जाता है, धुंधला जाता है और उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। मस्तिष्क को शुद्ध रक्त अवश्य मिलना चाहिए, अशुद्ध रक्त स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ देते हैं। उनके भय और चिंता के भाव रोग को हटने नहीं देते और अनेक रोग हो जाते हैं। इस प्रकार एक तरफ तो रोग उस व्यक्ति को पीड़ित करता है, दूसरी ओर भय और चिंता उसे मसल डालते हैं। परिणाम यह होता है कि इन दो पाटन के बीच में आकर व्यक्ति का उठना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत कैसा भी भयंकर रोग होने पर धीरज रखो, होश हवास रखो, मन को स्थिर रखो, उचित उपचार के लिए उद्योग और परिश्रम करो, इच्छा शक्ति को दृढ़ कर रोग दूर करने में लगो तो रोग दूर होने लगता है। हमारी चिंताओं का बहुत बार यही एक कारण होता है कि हम धन को अपने जीवन की अन्य सभी चीजों की तुलना में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर हम जीवन की अन्य अनिवार्य बातों की उपेक्षा करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि धन तो चाहे मिले न मिले, हम स्वास्थ्य, सौजन्य, मित्रता, आशा, आकांक्षा आदि वस्तुओं में से किसी न किसी को अवश्य खो बैठते हैं। झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए भी हम प्रायः बहुत सी चिंताएं लगा बैठते हैं। हमारा झूठा अभिमान, मिथ्या अहंकार चिंता से गहरा संबंध रखता है। वास्तविक कष्ट या कठिनाई के कारण हम इतनी चिंता नहीं करते जितनी इस बात की कि हम जिन अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सर्वशक्तिमान तो हैं नहीं कि हमारी सभी बातें, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, हमारे अभिमान पर गहरी करारी चोट पहुंचती है।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

उन्होंने चारों ओर सांसारिक पदार्थों का इतना ढेर लगा देना चाहते हैं कि हम उन्हीं की चिंता से मरे जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक अनावश्यक सभी पदार्थों की इच्छा करते हुए हम सुख शांति खो बैठते हैं। हम अपने प्रयोग अथवा अपनी आवश्यकता के उतने पदार्थों की इच्छा नहीं करते जितने दूसरों के आगे बड़े बनने के लिए, दूसरों को दिखावे के लिए करते हैं। फिर उन पदार्थों के न मिलने से हम अपने ही मन में छोटे हो जाते हैं और चिंता गले लगा बैठते हैं। चेष्टाओं में धनियों के जैसा व्यवहार कीजिए, संकीर्णता छोड़ी, दीन दरिद्री जैसी बातें करना छोड़ दीजिए। मन में निश्चय कर लीजिए कि आप धन संपत्ति के स्वामी बनकर रहेंगे और अपनी कल्पना को साकार करने के लिए जो भी प्रयत्न आवश्यक होगा उसे तन मन धन से आप करेंगे। यदि आप इतने होशियार नहीं हैं, झिझकने की आदत वाले लज्जालु हैं, तो अपने मन से इन विचारों को निकाल दीजिए। इनके स्थान पर तेजस्विता, अगवापन और पहल को अपनाइए। सिर को ऊंचा रखिए, सीना तान कर चलिए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाइए, दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव प्रकट कीजिए। अपने काम की उपेक्षा न कीजिए, किसी विवरण को अनिश्चित न रहने दीजिए। यदि किसी में झिझकने, पीछे हटने, लजाने की आदत है तो उसे यह उपाय करना चाहिए। उसे मन में इस प्रकार सोचना चाहिए, मैं इस काम को पूर्ण करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं इस कार्य को करने में पूर्णतया सफल होने का विश्वास रखता हूँ, मेरी विजय अवश्य होगी। स्वयं अपने मन को उन्नति के सुझाव दीजिए, स्वयं अपने मन को प्रोत्साहन दीजिए, तरक्की करने के लिए प्रेरणा दीजिए, अपने काम में सुधार करने के सुझाव स्वयं अपने मन को दीजिए। जितनी बार भी आप किसी व्यक्ति से भेंट करते हैं उतनी ही बार आप अनजाने ही उसकी तुला पर अपने को कसते हैं। वह आपकी ऊंचाई नापता है, आपके गुण अवगुण को तोलता है। वह देखता है कि इससे पहले की भेंट की अपेक्षा इस बार आपने कुछ उन्नति की है या अवनति की है। जितनी बार आप किसी को मिलते हैं उतनी बार ही वह आपकी गहराई और ऊंचाई नापता है। वह आपके मूल्य का अनुमान करने का प्रयत्न करता है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो वे यह देखते हैं कि क्या आपकी नजर ऊंची है, क्या आपका सिर ऊंचा है, क्या आपके कंधे सीधे हैं, क्या आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, क्या आप पहले से उन्नत हुए हैं। अतः अपने मन में अपने प्रति कभी भी दीनता, हीनता, क्षुद्रता, तुच्छता और गिरावट के विचार न आने दीजिए। भाग्य या दुर्भाग्य कुछ नहीं, यह मन की मिथ्या कल्पना है। किस्मत नाम की कोई ताकत नहीं है जो एक व्यक्ति को उन्नत कर दे और दूसरे को अवनत कर दे। पीटता वह है जो भाग्य

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रचनात्मक मनुष्य जहाँ जाता है अपनी क्रियात्मक शक्ति के वातावरण को साथ ले जाता है। दृढ़ता से बार बार मन ही मन इस निश्चय और विश्वास को दोहराइए कि आपका स्थान बहुत ऊंचा है और वहां तक आपको अवश्य ही पहुंचना है कि आपको अपनी आदर्श महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य ही करनी है। यह मानने से इनकार कीजिए कि आप किसी काम में असफल हो सकते हैं। दूसरा कहे तो मत मानिए कि आपकी पराजय हो सकती है। यदि आप निरंतर रचनात्मक विचारों को दोहराते रहते हैं, लगातार निर्णयात्मक भावनाओं से परिपूर्ण रहते हैं, धन संपन्नता की भावनाओं में विहार करते हैं, अपने उद्दिष्ट पद को प्राप्त करने के लिए उस पर दृष्टि गड़ाए रहते हैं, अपनी तमाम शक्तियों को उसी के लिए केंद्रित किए रहते हैं, तो आप उस रचना को पूर्ण सफलता, पूर्ण विजय की कामना कीजिए। अधूरी सफलता से संतुष्ट होकर न बैठ जाइए। विचारों की धारा प्रवाह शक्ति से ही हम अपने वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, स्नेह, प्रेम, दयालुता और कर्तव्य परायणता की भावनाओं को पूरी तरह अपनाकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जितनी बार भय की भावना आपके मन में आएगी, उतनी ही बार उसे बाहर रोक दीजिए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप हाथ में लिए कार्य को भली भांति संपूर्ण कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाते और पुष्ट करते जाइए। जिस अनुपात में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसी अनुपात में आपकी सफलता का अवसर बढ़ेगा। मन में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कीजिए तो आप सबके सरताज बन जाएंगे। बहुत से व्यक्ति अपेक्षित योग्यता रखते हुए भी जीवन भर दीनहीन और तुच्छ बने रहते हैं, अपने ही विचारों की गिरावट के शिकार होते हैं, अपने ही सुझावों द्वारा अपने को निरुत्साह करते रहते हैं। जब भी किसी महान कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तभी उसका मन इस विचार से कांप उठता है, कहीं हम असफल हो गए तो क्या होगा। बस इस शंका से उनका तन मन शिथिल हो जाता है, हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, काम करने का उत्साह ही नहीं रहता। संभावित असफलता के विचार का लेश मात्र भी व्यक्ति को शिथिल करने के लिए काफी है। मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति और कर्म सामर्थ्य में यह आत्म सुझाव अत्यधिक बाधक होता है। यह हीन विचार मनुष्य की कार्य शक्ति को पंगु बना देता है। मनुष्य के मन में यदि यह बात बैठ जाए कि वह अभागा है, तो उसमें साहस का चिन्ह मात्र भी शेष नहीं रह जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य यह समझता है, मैं करता हूँ, अपना भाग्य विधाता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, वह अपने भाग्य को वशवर्ती बनाने में समर्थ होता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक घटना को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने लगता है और इस प्रकार वह अपनी सफलता निश्चित करता जाता है।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

प्रत्येक शहर और कस्बे में हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो वातावरण की शिकायत करते रहते हैं। वे उस वातावरण को बदलने की भी कभी कोशिश नहीं करते, और कुछ लोग उसी वातावरण में चमत्कार पूर्ण सफलता प्राप्त करके दिखला देते हैं। जो मनुष्य मन में यह मान बैठा है कि उसका जन्म असफल होने के लिए हुआ है, आप उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? जो व्यक्ति चिंताग्रस्त असफलताग्रस्त है, गरीबी के विचार से चिपटा है, उसकी आप क्या मदद कर सकते हैं? जिसके अवचेतन मन में असफलता का विचार गहराई से उतर चुका है, जो हर समय बुरी स्थिति के विचार से ग्रस्त है, वातावरण और परिस्थितियों का ही रोना रोता रहता है, उसकी सहायता कैसे की जाए? जो हर काम को कठिन या असंभव मानकर चलता है, उसकी मदद कोई कैसे कर सकते हैं? हम अपने दुर्भाग्य को अक्सर कोसा करते हैं। हम परिस्थितियों को प्रायः अपने दीनता का कारण बताया करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमारे जैसे ही योग्यता तथा कार्य शक्ति होते हुए भी बड़े बड़े कामों में सफल हो जाते हैं, आश्चर्यजनक रूप में धनी बन जाते हैं। आखिर क्यों? प्रायः हम अपनी दीन अवस्था का कारण अपने बाहर खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर होता है। हीन मनोवृत्ति ही वह कारण है जो हमारी उन्नति में बाधक है। हम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि उन्नति कैसे की जा सकती है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम उन्नति भी कर सकते हैं। हम हर काम में पिछड़े रहते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों को ऊंचा उठाना चाहिए, अपनी आशा आकांक्षा को महान बनाना चाहिए। बड़ा काम करने, ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा मन में जगानी चाहिए। अपनी दिव्य शक्तियों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आप ईश्वरीय शक्तियों का पुंज हैं, दिव्य शक्तियों का भंडार हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, उस ईश्वर के जो सर्वशक्तिमान है। फिर आपके लिए ऊंचे से ऊंचा पद भी छोटा है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? ऊंची महत्वाकांक्षा आपके मन में जागनी चाहिए। इसमें जादू भरी शक्ति है। छोटी इच्छा मत कीजिए, बड़ी इच्छा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका चरित्र भी उसी के अनुसार ऊंचा उठता जाएगा। यदि आप स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो अपने मन में रोग का विचार ही न घुसने दीजिए। मन को प्रसन्न रखिए। इसी प्रकार यदि आप धन संपदा के स्वामी बनना चाहते हैं तो मन में धन संपदा के सिवाय अन्य विचार न घुसने दीजिए। जब भी कोई संशय आपको घेर कर निरुत्साहित या आक्रांत करे, अपने विचार की विद्युत तरंगों को अंतःकरण में प्रवाहित कीजिए और उनको प्रभाव रहित कर अंतःकरण को पुनः स्वस्थ एवं प्रबल बनाइए। भावना तरंगों में बड़ी शक्ति होती है, उत्साह तरंगों में बड़ा बल होता है, आत्मविश्वास की तरंगों में असीम सामर्थ्य है, आनंद की तरंगों में बड़ी शक्ति है। दूसरे की प्रशंसा कीजिए, हास परिहास कीजिए, मनोरंजन कीजिए, आशापूर्ण विचार लाइए, उत्साहवर्धक बातें कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर।

मधुबन बाबा मम्मा के प्यार का साक्षी रहा है। मधुबन ने भाग्य विधाता के हर चरित्र को बखूबी देखा है और जिया है। मधुबन ये भी जानता है कि इसी आत्मीय प्रेम के कारण ही यज्ञवत्सों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। दुनिया में भी कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो उस प्यार के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है। यही है अपने प्यारे बाबा मम्मा और दादियों का प्यार, जो किसी भी आत्मा को पल में देह और दुनिया से न्यारा बना देता है। यही तो ताकत है, रूहानी प्यार और रूहानी शक्ति है, जो किसी भी आत्मा को ज्ञान और योग के मार्ग पर अग्रसर करती है। मधुबन इस बात को जानता है कि सृष्टि चक्र के इतिहास में यह मौका एक बार संगम पर ही आता है, जब आत्मा

0: की श्रृंखला में हम सुमन दीदी से दादी जी के जीवन के कुछ और अनछुए पहलुओं को जानेंगे।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: हम शांति, शरीर का नाम सुमन बेन है। मुझे 2002 में ज्ञान मिला था कर्नाटक में हुबली जोन से, तो जहां मैं हॉस्पिटल में जो सेवा के लिए गई वहां मुझे ज्ञान मिला, तो भी लगभग 21 साल हो गया। तो वहां से हम 2007 में यानी अभी 15-16 साल से मधुबन में सेवा दे रहे हैं नर्स के हिसाब से। तो वहां जब हमें बुलाया गया तभी हमें यही बोल के बुलाया था कि दादियों की सेवा के लिए नर्सेस की ज़रूरत है। तो यहाँ आने के बाद हमें एवर हेल्दी में सेवा देने लगे, फिर वहाँ से हमें जहाँ दादियों के पास भेजते थे, तो जैसे शांतमणि दादी है, पर दादी है, और भी कोई दादियों के पास शॉर्ट टर्म के लिए भेजते थे तो हम वहाँ जाते थे। तो फिर मोहिनी दीदी के पास 3-4 साल सेवा किया। वहाँ से 2016 में फिर मैं एवर हेल्दी वापस आ गई। तो 2016 में फिर दादी से और रतनमोहन दादी के पास हमें सेवा के लिए भेजा। रतनमोहन दादी के पास सेवा जाने के पहले मैंने कभी दादी कॉटेज नहीं गई थी, ना उनको कभी पर्सनली मिली थी। जो क्लास में मिलते हैं उनके प्रति एक इमेज था कि ये बहुत लॉफुल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लॉफुल है, ऐसे सुना था। और ऐसे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी वहाँ कोई मेडिकल सेवा के लिए जाने का, तो कभी वहाँ गए ही नहीं। फिर 16 में जैसे उनको तबीयत बहुत ही हो गई तो बॉम्बे लेके जाना था, तभी कोई नर्स चाहिए तो हमें निमित भाई जो है उन्होंने वहाँ भेजा। फिर वहाँ से मैं अभी 7 साल से वहाँ ही सेवा कर रही।
3: आप जब दादी से व्यक्तिगत मिले एज ए नर्स, दादी उस समय आपके साथ कैसे बात किया? उस समय दादी को पर्सनली मिल करके क्या महसूस हुआ आपको?
2: दादी मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इन मुझे यज्ञ से नर्स दिया हुआ है मेडिकल केयर के लिए, तो मुझे इसकी बात सुननी है, और कुछ भी है तो उसको बताना है, ये उनको बहुत था। तो कभी भी कोई ऐसे डॉक्टर्स आते थे तो आपस में बात करते और ये देना है, तो दादी मुझे बुलाती थी, आप इनका सुनो और आपको जो ठीक लगे, मेरे योग्य लगे, वो मुझे देना, ऐसा इतना बिलीव। एंड डॉक्टर कहने के बाद भी दादी फिर मुझे कहती थी और कहती थी कि यज्ञ ने मुझे दिया है इसे, यानी ये मेडिकल केयर मेरा करेगी। तो उस हिसाब से बहुत रिस्पेक्ट से दादी मुझे देखती थी। और दादी इतनी रमणीक है वो वहाँ नज़दीक जाने के बाद पता चला, नहीं तो पहले एक इमेज था कि दादी बहुत लॉफुल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे स्ट्रिक्ट तो है दादी, यानी अपने रूटीन में बहुत, तो अपने रेगुलरिटी में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन बहुत रमणीक है, बहुत प्यार देते हैं, वहाँ जाके मुझे फील हुआ ऐसे। और दादी की ऐसी वो कैचिंग पावर बहुत देखा, सामने कोई भी सैकड़ों लोग भी आ रहे लाइन से, तो उनको उस आत्मा को पहचान लेती थी जो बहुत दुखी है, जो कुछ चाहत से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता रहता है कि हम चलो चलो चलो बोलते रहते, लेकिन दादी की वो होती तो दादी ऐसे इशारे से उनको बुला के फिर प्यार देते, कुछ पूछते, यानी एक्स्ट्रा ये करते, तो उनकी वो कैचिंग पावर बहुत थी। मेरा एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ सेवा साथियों से कुछ कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा, और सेवा का टाइम भी पूरा हुआ था तो मैं आ गई कमरे में जा रही हूँ करके, मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम में, मैं वहाँ से कमरे तक रोते हुए आई, आके फिर बहुत रो लिया। आज जो सोचती हूँ तो वो बात बहुत सिली थी, लेकिन उस दिन बहुत लगा, तो मैं कमरे में आके रोने लग गई। थोड़े टाइम के बाद दादी ने फ़ोन किया, यानी बहनों ने फ़ोन किया कि दादी आपको याद कर रही है और बुला रही है। मैंने बोला कि मेरी सेवा तो पूरी हो गई है, मैं शाम को आऊँगी, ऐसी कोई ज़रूरत है तो आऊँगी, नहीं तो शाम को आऊँगी। ऐसा नहीं, नहीं दादी आपको बुला रहे हैं। तो

0: दादी को फोन दिया। दादी बोलती कि आप आ जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे, ऐसा बोला। तो फिर मैं वहाँ गई तो दादी को फील यानी टच हुआ था कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ। मुझे बहुत वंडर लगा कि मैंने किसी को बताया नहीं है कमरे में आके रो रही हूँ, लेकिन दादी ने कैच किया था। फिर बहुत प्यार दिया, गले मिले, तो उसके बाद मैंने मेरा रोना ही बंद हो गया, कभी इससे रोई नहीं। तो उनकी कैचिंग पावर बहुत थी। एक बार ऐसा हुआ था कि कोई सेंटर में गए थे, छोटी बहनें जो ना दादी की सेवा में आते हैं, तो कुछ मालिश वगैरह कर रहे थे, तो दादी उनको कहती है आपको कोई भाई तंग करता है, ऐसा बोला। तो बहन ने कुछ किसी को बोला नहीं था, लेकिन दादी ने उनको डायरेक्ट पूछा कोई भाई तंग करते हैं, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दादी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुश भी रहती थी वो। फिर वो एक दिन के बाद मुझे बताया, हाँ मुझे एक भाई ने बहुत तंग किया था, मैं बहुत दुखी थी, तो डायरेक्ट दादी ने मुझे पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे देखा है, दादी कैच कर लेती है। और जो गुण जो कहते हैं सहयोग का गुण है, प्यार देने का, ये सभी यानी दादी में से पूरे भरे हुए हैं, वो समय समय पे वो हम देखते हैं उसको।
1: जैसे आप 2000 के बाद ईश्वरी परिवार से जुड़े, अब दादियों को देखते हैं तो वो 70-80 साल पुराने संस्था के शुरू से जुड़े हुए हैं। कभी आपको महसूस हुआ कि हम इतने लेट आए हैं दादियों को समझ पाएंगे, या दादी हमें समझ पाएगी, हम दादियों के साथ कैसे रहेंगे, वो इतने बड़े हैं?
0: नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, वो बड़े हैं और हम बहुत एक छोटे गांव से आए थे, और भाषा का भी बहुत प्रॉब्लम होता था हिंदी बात करने में, और तो हमें लगता था कि दादियाँ बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, ये पहले था। लेकिन जैसे ही दादियों के पास जाना शुरू हुआ तो कभी ये नहीं हुआ कि वो बहुत बड़े और हम बहुत छोटे, बहुत गैप, ऐसा नहीं लगा कि बहुत सालों से हम इनके साथ रहते हैं, ऐसा अनुभव हुआ। फिर तो मैं तो बहुत बहुत मिक्स होकर रहती हूँ दादी के साथ। जैसे वो बाबा कहते हैं कि न चांद होगा न तारे होंगे, हमेशा हम तुम्हारे रहे, ऐसे जो गाना है, हम दादी को कहते हैं कि भाई हम तो ना सनसेट देखते हैं ना सनराइज देखते हैं, और रात को तो उधर ही रहते हैं, तो हम कहते हैं कि ना चांद देखेंगे ना तारे देखेंगे, सारा आप ही हो। तो उस तरह हम उन वही दादी ही एक दुनिया हो गई है।
1: सो आप अपने आप में क्या परिवर्तन देखते हैं, इतनी हाई एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी दादियों के साथ रहते हुए, आप जब दादी से अलग होकर के बाहर आते हैं, अपने रूम पे रहते हैं, या फिर दादियों के संग में जाने से पहले आप कैसे थे, और अभी अपने अंदर क्या फर्क महसूस करते हैं?
0: एक बेहद का भाव आता है, दादियाँ जो सभी को अपनापन से, सभी अपने हैं, ये भाव से जो दादी देखती है वो मेरे में भी आ जाता है कि सभी अपने हैं। तो उनके पास जब हम बैठते हैं, उनका हाथ ऐसे पकड़ते हैं, तो हमें वो एनर्जी फील होती है। और कभी उनके शारीरिक कुछ होता है तो वो शरीर से बहुत डिटैच हो जाते हैं। जैसे आम लोगों का क्या होता है कि जब बीमार होते हैं तो हम ज़्यादा शरीर में ये रहते हैं, मन बुद्धि उसी में रहती है कि मुझे ये हुआ है हुआ, कई दर्द भी होता है तो पूरा बुद्धि हमारा उसी में लगा रहता है कि पैर में दर्द है। तो दादी का या और भी दादियों का देखा है, वो लोग शरीर से उस टाइम डिटैच हो जाते, फिर पूरा उपराम हो जाते, आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है, जो भी उसको करना है वो करने का। तो वो हमने दादी में बहुत देखा कि जब भी कोई कुछ भी होता है, जैसे कोरोना हुआ और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, वो दादी शरीर से बहुत डिटैच हो जाती, फिर और उनका हीलिंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम शरीर में जितना हम रहेंगे उसके बारे में सोचेंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड को पक्का होता जाएगा। लेकिन दादियों का रहता है वो तन की बीमारी मन में आने नहीं देते। हम कभी कहेंगे कि दादी आप बाबा को बोलो ना कि मुझे ठीक करे, आपकी बात बाबा सुन लेगा, ऐसा तो दादी बिल्कुल आंख दिखाती है कि बाबा से कुछ मांगना नहीं है, ना किसी का कंप्लेंट करना है। दादी कहती है कि भाई आप हो ना, आप लोग जो मेडिकल पढ़े हो, अपनी कलाकारी दिखाओ, बाबा तो अपना दिखाता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो कभी भी शरीर को ये हो रहा है वो हो रहा है मुझे ठीक करो उस तरह नहीं करते हैं। जो उनके लंबे समय का जो पुरुषार्थ है वो तब यूज़ होता है, वो शरीर से डिटैच हो जाते हैं। अगर रात को भी कोई ज़्यादा तकलीफ हुई है वो अमृत वेले के बाद चेंजेस होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो अमृत वेले के बाद शुरू हो जाता है। तो मैं नर्स
1: मतलब रिकवरी शुरू
0: हाँ रिकवरी हीलिंग जो होता है वो अमृत वेले से शुरू होता है। तो उनका अमृत वेला भी बहुत पावरफुल रहता है, अभी भी वो 2-3 बजे उनका नींद खुल जाती है। और अमृत वेले में योग करने का जैसे पेट गए वो इतना उसमें लवलीन स्थिति में चले जाते हैं कि आसपास का उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। तो हम बाजू में बैठते हैं भले हमारा कोई योग नहीं लग रहा है, मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई नींद का है या कुछ हो रहा है, लेकिन दादी की वजह से हम लाइट फील करते हैं तो हमारा भी योग ऑटोमेटिक लग जाता है। और दादी के चेहरे पे ऐसा लगता है कि वो कुछ कमा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, वो फील होता है आसपास बैठते ही,
1: प्राप्ति की अनुभूति।
0: हाँ बहुत बहुत भरपूर फील होते हो। और उनका है कि भाई भगवान को प्यार करना, रिगार्ड करना, रिगार्ड देना, उनको याद करना, माना, उनके कहे हुए रास्ते पे चलना। हम कहेंगे हम बहुत मानते हैं भगवान को या बहुत, लेकिन उनके रास्ते पे चलो तभी तो कहेंगे ना कि हम मानते हैं या रिगार्ड देते हैं। तो उनका मेन जो होता है बाबा के प्रति यानी भगवान के प्रति उनका जो रिगार्ड या प्यार है उनका मुरली से जो उनकी महावाक्य है वो बहुत रिपीट करते हैं और उसके अनुसार अपने में चेंजेस कर लेते हैं। तो वही बाबा को देने का रिगार्ड है। जब भी वो रात को सो अगर नींद ना आवे तो कभी फीलिंग में नहीं आती कि मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नहीं, वो मुरली लेके पढ़ना शुरू कर देते। मैं तो समय पे नींद को टाइम दिया है, अगर वो नहीं आई तो मैं क्या करूँ। जैसे हम बुलाते हैं ना नींद आवे, ये करे, टेंशन में आएंगे, ये करें, उनका ऐसा नहीं है। मैं समय पे जाके बिस्तर पे मैं लेट गई, नींद को टाइम दिया है, अगर वो नहीं आई तो मैं अपनी कमाई करूँ। तो इतना वो ये चेंज कर लेते, फिर टाइम पे अपने आप उठ जाते हैं। सोने का भी इतना है कि जैसे सो गए, लेट गए तो डीप स्लीप, और एक हाथ भी रखो आप तुरंत जग जाएंगे। तो उस तरह सोना भी तुरंत और उठना भी अलर्ट। और एक है उनका, देखा होगा सभी ने कि वो स्माइलिंग फेस, वो रात को भी रहता है, नींद में भी रहता है, उठते समय भी रहता है। अभी हम जाके रात को अगर कुछ चेंज करना है, उनको करवट दिलाना है, हम दो लोग जाके खड़े होते हैं, हमारे नींद के चेहरे रहते, लेकिन दादी हमें देख के इतना मीठा मुस्कुराते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा रहता है उनका, कोई सिर्फ सभा में ऐसा नहीं है, उनका वो नेचर बन गया है स्माइल देने का, एकदम मिठास वाली है।
1: आप जब अलग अलग दादियों के साथ रहे हैं, हर एक दादी की विशेषता अलग है, कार्य करने की तरीका अलग है, बेस तो सभी का सेम है, भगवान से प्यार है, आध्यात्मिक जीवन से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, लेकिन हर एक की विशेषता अलग है। सो दादी की यूनिकनेस क्या देखते हैं आप?
0: दादी कभी किसी बात में आर्ग्यूमेंट नहीं करते और अपने आप को छोटा मानते हैं, साथी को समझेंगे, कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है तो उनको कहते कि हार मानी तो झगड़ा छूटे, हार मानी यानी हारमोनी हो गई। तो वो ज़्यादा दादी में देखते हैं कि किसी भी बात में खींचेंगे नहीं, अगर उनको ये वहाँ जाना है या कुछ पसंद है वो एक बार अपना विचार बताएंगे, उसके बाद आप कहोगे कि भाई वहाँ नहीं जाना है या ये नहीं करना है, वो तुरंत मान लेंगे, तुरंत विद इन सेकेंड में, कभी उसके बारे में मैं जो कह रही हूँ वही होना चाहिए। वो इतना बड़ा यानी हस्ती होते हुए भी मेरी ही सुनना है, मेरी ही मानना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे से कोई बात होती है वो सहज होने में काफ़ी टाइम लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुना, वो सहज होने में विद इन सेकेंड में हो जाते हैं। तो वो विशेषता उनकी बहुत है।
1: आप मेडिकल के हिसाब से दादी की ट्रीटमेंट करते हैं, दादी की शरीर की ट्रीटमेंट आप करते, दादी आपकी आत्मा की ट्रीटमेंट करती है।
0: हाँ ये सही बात है, जब भी हम हॉस्पिटलों में भी जाते हैं या मैं भी बहुत जैसे टेंशन में आ जाती हूँ तो दादी ऐसे सिर पे हाथ रख के बोलेगी चिंता नहीं करो ठीक हो जाएगा। हाँ इतना सारा साइंस है, वो अपने लिए ही तो है, हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तभी वो डॉक्टर ही बोलते हैं कि हम एनर्जी लेने के लिए आए हैं। तो काफ़ी उनके जो खास डॉक्टर्स है वो तो भले इनके पास सेवा भी न रहे फिर भी आके मिल के फिर बाद में दूसरे पेशेंटों को देखने जाते हैं। तो बहुत वो कहते हैं कि हमें एनर्जी फील होती है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम आईसीयू में एडमिट हुए थे तो दादी जैसे यहाँ से जा रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ था, थोड़ा सेमी कोमा जैसा था, होश नहीं था उनको। फिर वहाँ जाने के बाद कुछ घंटे के बाद उनको ठीक होने लग गया, कुछ कुछ बहुत सारे मशीनें लगी। वो तुरंत आंखें खोलते ही उनकी डिमांड थी मेरी मुरली कहाँ है मेरी मुरली कहाँ है। हम तो कहीं भी जा रहे तो क्या क्या लेते रहते कि ये लगेज ले लिया, खाने पीने का ले लिया, वो ले लिया, वो पहले मुरली, वो आंखें खोलते ही मुरली, फिर बाद में उनका मुस्कुराने
1: स्पिरिचुअल स्टडी।
0: हाँ, स्पिरिचुअल स्टडी, उसी से ही वो पूरा जैसे
1: ठीक
0: होते। हाँ, ठीक होते। तो 3 बजे उठ के वो मुरली पड़ेंगे कहाँ, आईसीयू में। तो सभी जो पेशेंट है वो हाय हाय करते रहते, कुछ अलग अलग आवाज़ें दुख वाली निकालते रहते और दादी मुरली पढ़ती रहती। तो सारे स्टाफ ऐसे आके देखते हैं कि ये कोई स्पिरिचुअल लीडर आए हैं, और इनका चेहरा तो बिल्कुल हॉस्पिटल के पेशेंटों की तरह है ही नहीं, वो बहुत रौनक, बहुत ही। तो उनका यही है कि भाई शरीर को कुछ हुआ है तो आप लोगों को है जो सीखा है पढ़ा है उसका आप करो, मेरा जो है वो मैं करूँगी, मेरा एक ही है जो स्पिरिचुअल स्टडी में आगे थे आगे जाने का। तो सब डॉक्टर्स बहुत वंडर खाते हैं। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है तो वो अपने जो नियम है उसमें बहुत हीरे हुए है, उससे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि दादी को हम यहाँ से रात को लेके गए थे एम्बुलेंस से, और सुबह उठ के 7 बजे उनको ऑपरेशन लिखा था डॉक्टर ने कि इनके आंतों में कोई प्रॉब्लम है, सुबह हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि होगा, लेकिन डॉक्टर कह रहे तो हाँ हाँ कहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही अमृत वेला शुरू हो गया, 3 बज गए, 4 बज गए, तो उनमें वो हीलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे उनके चेहरे पे सब पता चल जाता है कि वो ठीक हो रहे हैं। फिर दूसरे दिन उठ के दादी 5 बजे मुझे योग करना है, स्नान करना है। उन्हें कहा कि हॉस्पिटल में कहाँ स्नान करेंगे अभी, क्यों, वहाँ तो स्पंज बात होता है, ये होता है। तो दादी कहती है कि हमने कहा कि भाई डॉक्टर ने मना किया है स्नान करने का सभी। तो दादी कहती है नहीं, जो डॉक्टर स्नान करने को अलाउ करेगा उस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे इतना। तो फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करके फिर वो व्यवस्था कर लिया। 6 बजे तक दादी स्नान वगैरह करके रेडी होके बाहर, यानी सूट रूम होते तो 2 रूम होते, तो वहाँ बैठ के मुरली पढ़ रहे, और वो लोग आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर आएगा, कोई वार्ड आएंगे, वार्डन वगैरह आएंगे, सब आए। तो ये पेशेंट कहाँ है, क्योंकि बेड तो खाली है, पेशेंट कहीं। फिर वहाँ दादी बैठ के उनको बोलते कि आपको पता है बाबा कौन है, आपको पता है कि आप आत्मा हो, आपको ऐसा वो ज्ञान सुनाना शुरू। फिर कुछ प्रसाद टोली रखा था तो वो दे रहे थे। हॉस्पिटल में इतना जैसे पूरा फैल गया है कि ब्रह्मा कुमारियों का कोई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर आए हैं, और मिरेकल हो गया है कि ऑपरेशन करने का था और वो तो उठ के बैठ के कोई स्टडी कर रहे हैं। तो सब लोग बहुत आगे, फिर मैगजीन में वगैरह उनका सब एक्सपीरियंस लिख लिया, बहुत लोग मिलने आए थे। तो ऐसे बहुत बार हुआ है।
1: किस चीज़ का ऑपरेशन था दादी का?
0: आंतों में कुछ प्रॉब्लम था करके, यहाँ ट्रोमा में एडमिट किया था, फिर आगे के लिए वहाँ भेजा था। रात को हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए, फिर डॉक्टर वगैरह सब आके चेक करके बताया 3 बजे तक कि सुबह 7 बजे हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन तब तक तो परमात्मा का टाइमिंग शुरू हो गया था अमृत वेले का, वो हीलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा कोई ऑपरेशन होने वाला नहीं है, लेकिन हम एक नर्स रहते डॉक्टरों से कम इसमें, तो हम उनको नहीं बता सकते। तो फिर 6 बजे तक दादी पूरा होश में आ गए अपने आप में। फिर डॉक्टर भी बहुत वंडर खाए कि भी कल ऐसी स्थिति थी और सुबह ऐसा है। तो वो लोग सब ऑपरेशन का रेडी करके आए थे, स्ट्रेचर वगैरह लेके। तो इस तरह दादी
1: फिर दादी का ऑपरेशन
0: नहीं हुआ। नहीं,
2: दादी जी पुण्यों की खान रही है, जहां हर आत्मा अपने पापों को भस्म कर सकता है। दादी जी ने कभी किसी आत्मा को ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो या बाबा ने तुम्हें इस कार्य के योग्य नहीं बनाया। यदि किसी आत्मा के अंदर कोई कमी रह भी गई है तो दादी जी ने उमंग और उत्साह देकर उस आत्मा के विश्वास को भी बढ़ाने का कार्य किया है। युवाओं की सबसे युवा दादी जी कभी खुद ना पीछे हटें और ना ही किसी को हटने दिया। दादी जी ये बात जानती हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें बाबा की शक्ति समाई हुई है और जो कमी रह गई है उसको बाबा अपनी शक्ति देकर जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों की कोई गलती देख नहीं सकता है। यही तो प्यार है, जहां किसी प्यारे की गलती नहीं देखी जाती बल्कि उसको भी ठीक कर दिया जाता है। मैं मधुबन इन महान चरित्रों को देख बहुत हर्षित होता।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकीगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब अपनी खुशी को देखते हैं तो बहुत कुछ अब समझ में आ चुका है कि किस तरह से जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो मैंने ऐसी हैबिट्स बनाई हुई हैं जिस पर अभी तक मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, वो अब चेंज करने की जरूरत है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो, हमने बात की थी वो चेंज हो सकता है मेडिटेशन के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं और बात ये करते हैं मेडिटेशन करें कैसे। बहुत से तरीकों के बारे में भी देखा था, लेकिन अगर अपने थॉट्स को हम एक चैनलाइज करके, एक चैनल में डालकर अगर हम मेडिटेट करना सीखते हैं तो फिर किस तरह से वो मेरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करता जाएगा, और जो मैं बिलीफ सिस्टम नया बनाता जाऊं या जो मैं बनाती जाऊं वो रीइंफोर्स होता जाएगा। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल होता है, कौन सी वो टेक्निक है और क्या मैकेनिज्म है, इस पर बातचीत कर साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर हम देखें, हमने बात की थी मेडिटेशन की, कि अभी तक बहुत सी और बातें हो गई थी और ये क्लियरली आ चुका है कि मेरे अपने ही हाथ में है किसी भी बिलीफ सिस्टम को बदलना और उस पर एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके फिर पूरी सीरीज को जैसे जैसे चलना है वैसे चलते जाना। उसमें राजयोग कैसे मदद करता है, कैसे हम करें?
1: एक्चुअली राजयोग जो शब्द ही है ना, योग मीन्स कनेक्शन, कम्युनियन। सपोज आई एम रिमेम्बरिंग यू, तो आई विल से मेरा योग आपके साथ लगा हुआ है। तो अगर हम किसी की भी याद में होते हैं तो हम कहते हैं इनका योग उनके साथ है। अब राजयोग, राज मीन्स हाईएस्ट, सुप्रीम। सो राजयोग मीन्स मेरा कनेक्शन जब उस हाईएस्ट पावर के साथ जुटा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड राजयोग। लेकिन वो कनेक्शन जुटने से पहले दोनों का परिचय होना चाहिए। यू नो, सपोज मी एंड यू आर टू बिकम फ्रेंड्स, बट फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं हो सकती, रिश्ता ऐसे ही नहीं जुड़ सकता। तो उसके लिए पहले मुझे आपका परिचय चाहिए, आपको मेरा परिचय चाहिए, फिर वो परिचय के आधार पर धीरे धीरे धीरे वो रिश्ता जुड़ेगा। आज हम सब उस परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव दिस कॉमन कंप्लेन कि बैठते हैं, समय निकालते हैं, तस्वीर, मंदिर, मस्जिद, वो भी बड़े बड़े सब बनाते हैं, 10 मिनट के लिए बैठते, लेकिन वो 10 मिनट में कितनी देर उनकी याद और कितनी देर मन इधर उधर भटकता, तो ये क्वेश्चन मार्क है। कि जबकि हम सारा दिन औरों को याद कर सकते, तो भगवान को याद करना इतना मुश्किल क्यों है?
0: अच्छा, फिर हम अपने आप से, हम बाकियों से तो फिर भी बोल देते हैं कि हाँ मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, मैं तो रोज सुबह बैठ के पूजा करती हूँ, लेकिन अपने अंदर हमें पता होता है कि उस पूजा के दौरान मेरा मन कहाँ कहाँ था।
1: करते तो हम हैं, वे वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम करना चाहते हैं। सो हमारा रोज का जो समय बंधा हुआ है वो करने के लिए, लेकिन वो या तो मुख से है या कोई रिचुअल के फॉर्म में है। मन से भी याद करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन यही आता कि मन भटकता क्यों, और तब फिर कह देते कि मन तो बहुत चंचल है, मन तो कंसंट्रेट नहीं करता, भटक जाता। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों याद करना, फिर कहते सीखना पड़ेगा। एक्चुअली याद करना सीखना नहीं है। हम सारा दिन में आप कितने लोगों को याद करते हैं? करते ना, बच्चों को याद करते, दोस्तों को याद करते, जो लोग पसंद नहीं है उनको भी याद करते। अब जितने लोगों को याद करते, डू यू हैव देयर फोटो इन फ्रंट ऑफ देम? नो। डू यू टेक आउट टाइम फॉर देम? नो। चलते फिरते काम करते याद नहीं भी करना चाहिए तो भी याद आती है। तो उनको याद करने के लिए तैयारी भी करते, स्थान भी बनाते, समय अलग से निकालते, दिस 10 मिनट्स ओनली फॉर हिम, फिर याद क्यों नहीं आते? व्हाई इज इट कि सबको याद कर सकते, सिर्फ याद ही तो करना ना, बाकियों को याद करने के टाइम मन क्यों नहीं भटकता? उनको याद करने के टाइम मन क्यों भटकता है? There should be no reason. In fact, एक बच्चे को याद करना सिखाया नहीं जाता। You don't teach a child कि अपने parents को कैसे याद करना है। याद करना इतना natural है। एक श्वास लेना नहीं सिखाया जाता, वो natural है। याद करना नहीं सिखाया जाता, वो natural है। लेकिन उसको, जिसको हम कहते तुम माता पिता, सखा बंधु, you are my everything, लेकिन याद नहीं आते, क्योंकि शायद हम जानते नहीं हैं
0: कि वो है कौन।
1: सो इफ आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर समवन हु आई एम नॉट टू श्योर कि वो कौन है, तब वो याद जुड़ती नहीं है। तब वो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मन उनकी तरफ चला जाता है जिनको मैं अच्छी तरह
0: जानती
1: से
0: हूं, हाँ, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स।
1: इसीलिए याद करने से पहले जानना पहचानना, परिचय होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम राजयोग सीखते हैं, और हमने कई बार सभी भाई बहनों से कहा कि आप सेंटर पर आ सकते हैं, राजयोग का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, तो उसमें हमें ये विधि पूर्वक लेके जाया जाता है कि सबसे पहले अपने को पहचानना, हु एम आई हु सिटिंग टू मेडिटेट, हु इज ही हु आई एम सिटिंग टू रिमेम्बर, एंड थर्ड इज देन What is my relationship and how to establish that connection? तो मैं कौन हूँ, वो कौन है, और फिर हम दोनों का आपस में संबंध क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आपका परिचय क्या है, तो आप अपने परिचय में क्या बताते हैं जनरली? क्या
0: बताएं? मैं कानुप्रिया।
1: हाँ, आप तो कानुप्रिया, आप तो सब जानते हैं आपको।
0: In the sense कि yes, what is my profession? और हम कई बार इस पे बार बात कर चुके हैं।
1: All these things, our name. आर क्वालिफिकेशन, हमारा प्रोफेशन, मैं किस फैमिली की बिलोंग करती हूँ, कई बार मैं किस शहर की, किस देश की बिलोंग करती हूँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अक्वायर की हैं। यहाँ तक कि आपका नाम भी आपको किसी ने दिया होगा। लेकिन एक बच्चे को देखें, बच्चा आया, हम उसको 8-10 दिन बाद कभी भी नाम देते, लेकिन वो एंटिटी तो है ना। एंड वॉट इज़ द नेम एक्चुअली, इट्स जस्ट फॉर रेफरिंग टू ईच अदर। फिर क्वालिफिकेशन टू बी गेट एट सच अ लेट एज, लेकिन जिस दिन वो डिग्री बनी नहीं एंड वो मार्क्स आए नहीं, तो आज से मेरा परिचय चेंज हो गया। नाउ हु एम आई? आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम, तो इंट्रोडक्शन चेंज्ड, आइडेंटिटी चेंज्ड, फिर प्रोफेशन का टैग जुड़ता जाता,
0: आई एम ए CMD, आई एम दिस एंड दिस, यस।
1: तो वो भी एक जर्नी चलती, राइट फ्रॉम ट्रेनी से लेके चेयरमैन तक जाते,
0: एंड देन लॉट ऑफ पीपल से आई एम अ मदर,
1: यस ऑफ कोर्स,
0: अपनी आइडेंटिटी जो है वो ये है कि आई एम अ मदर।
1: तो हमारी पोजीशंस हमारी आइडेंटिटी बनती, हमारे रोल्स, हमारे रिलेशनशिप्स हमारी आइडेंटिटी बनती। लेकिन अब इस यात्रा को अगर देखें, तो इस जर्नी ऑफ लाइफ में ये सारी चीजें हमें मिलती जाती, मिलती जाती। रिलेशनशिप्स भी जो आपने कहा, इट्स चेंजिंग ना, कुछ कुछ मिलते जाते, कुछ कुछ छूटते भी जाते। टिल सम टाइम बैक द आइडेंटिटी कुड बी कि मैं किसी की बेटी हूँ, देन द आइडेंटिटी सडनली बिकम्स कि मैं किसी की मदर हूँ, फिर और 20 साल के बाद मैं किसी की ग्रैंड मदर हूँ, हाँ मैं मदर इन लॉ भी हूँ, यस। सो यू सी, अकॉर्डिंग टू हाउ आई एम अक्वायरिंग न्यू रिलेशनशिप्स, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी आइडेंटिटी चेंज होती जाती। ये तो हुआ वो चीज़ें जो हमें मिलती जाती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिर हमारे से छूटती भी जाती, पोजिशन जाएगी, हम रिटायर होंगे। जैसे जैसे ये इतनी सारी चीज़ें मिलती जाती, कुछ कुछ चीज़ें छूटती भी जाती, लेकिन जब ये मिलती हैं, वी गेट वेरी वेरी अटैच्ड टू इट। एंड जैसे जैसे फैमिली से अटैचमेंट, पोजीशन से अटैचमेंट, अपनी प्रॉपर्टी से, पोजेशन से अटैचमेंट, तो जो चीज़ें मिलती हैं, तो एक डर बना रहता है कि कहीं ये छूट ना जाए, इनको कुछ हो ना जाए, नोइंग वेरी वेल कि एक ना एक दिन तो
0: छूट नहीं है।
1: सो वॉट हैपन्स, द आयरनी ऑफ आर लाइफ इज टूडे कि इंस्टेड ऑफ इन्जॉइंग देम वाइल दे आर, वी आर लिविंग इन फियर कि हाय इनको कुछ ना हो जाए, एंड दैट इज द फंडामेंटल रीजन कि हैप्पीनेस नहीं है। एंड देन द डीपेस्ट फियर जो हम बहुत बार रियलाइज नहीं करते, बट इट इज इन द सबकॉन्शियस, दैट इज फियर ऑफ मुझे कुछ ना हो जाए, दैट कुड बी एन इलनेस, दैट कुड बी डेथ, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट, अटैचमेंट किस ऑर्डर में डेवलप होती, जिस ऑर्डर में चीजें मिलती जाती हैं, तो अटैचमेंट टू दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इतना अटैचमेंट है कि आज अगर हम आई कहते, हु एम आई, एक तो हमने थॉट्स लिए, नेम, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, लेकिन अगर पिक्चर ले, हु एम आई,
0: आई एम अ वुमन,
1: तो विच पिक्चर विल कम? आई वॉज इन अ प्रोग्राम रिसेंटली, आई सेड हु एम आई, तो कौन सी पिक्चर आती, तो एक भाई कहता, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, दैट वाज सो नेचुरल, एब्सोल्युटली, ही सेड ऑफ कोर्स दिस, सो immediately the body, this is who I am. तो इस बॉडी के साथ भी हमारा बहुत अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट कि हमने समझा ये मैं हूँ, और फिर भी सारा दिन जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते, तो हम कहते आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा हाथ कट गया, आज मेरे पेट में दर्द है, यहाँ तो कहेंगे आज हम इतना थक गए, आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, टुडे माई होल बॉडी इज पेनिंग। वी नेवर एवर से आई द बॉडी इज पेनिंग, आई द हेड इज पेनिंग। So we need to understand कि my body या I body, फिर कहेंगे पता नहीं क्या फर्क पड़ता है, I body या my body, but उसकी वजह से सबसे ज़्यादा illusion जो life में है, सबसे ज़्यादा दर्द है, क्योंकि एक fundamental truth को हम भूल चुके थे, जो हमने इस पूरी श्रृंखला में देखा कि belief system, कि belief से thoughts create होते, थॉट्स से मेरी डेस्टिनी क्रिएट होती, जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम जो हम गलत चल रहे थे वो है हु एम आई, कि आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस पोजिशन, एंड वो थॉट, वो बिलीफ से फिर सारी थॉट्स क्रिएट हुई तो सारी डेस्टिनी वो हुई. राजयोग में सबसे बड़ा जो बिलीफ सिस्टम टूटता है, यू नो, एंगर इज अननेचुरल, पीस, ये तो है ही बिलीफ सिस्टम, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम जो चैलेंज होता वो ये है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी.
0: इनफैक्ट यहाँ ये बात मैं और क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरे को बाकी सारी बातें तो समझ में आ गई कि एंगर इज नॉट नेचुरल और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और मेरा थॉट मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है, ये सब कुछ भी यहाँ तक, लेकिन मैं शरीर हूँ और मैं शरीर या मेरा शरीर है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? यू नो, लाइक ये वो एक डिफरेंट, ये एक परसेप्शन ही तो है. अगर मैंने अपने आप को शरीर भी मान लिया क्योंकि उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
1: ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज एक दिन के लिए अपने आप को ये ड्रेस मान लेते हैं. वो तो कर सकते हैं ना, वी कैन, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है. हम सोच रहे हैं ना कि मैं आई एम एनर्जी, आई एम कॉन्शियसनेस, या मैं शरीर हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन के लिए मैं शरीर हूँ या मैं ये शरीर पर ओढ़ा हुआ
0: कपड़ा,
1: ये कॉस्ट्यूम हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? जस्ट वंस लेट्स ट्राई गोइंग आउट थ्रू द होल डे, गोइंग टू वर्क, मीटिंग पीपल, इंटरैक्टिंग विद एवरीवन, विद दिस कॉन्शियसनेस, हु एम आई, आई एम दिस ग्रीन कलर कुर्ता, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन लाइफ? कुछ फर्क होगा आपके जीवन में आज सारा दिन? सिर्फ अपने आप को देखो सारा दिन कि मैं ये ग्रीन कलर का कुर्ता हूँ. नाउ व्हेन वी मीट, ठीक है, यू आर इन द कॉन्शियसनेस कि आप एक ग्रीन कलर की ये हैं, एंड आई एम इन द कॉन्शियसनेस कि मैं ये वाइट कलर की साड़ी हूँ. नाउ व्हेन वी मीट, हमारी सारी इंटरेक्शन किस कॉन्शियसनेस पे होगी?
0: इसी की, मैं
1: इसी की. ठीक है, सो आई विल लुक एट योर ग्रीन ड्रेस एंड से, ये तो ज़्यादा सुंदर है मेरे से, मेरा इतना सुंदर, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, इट वॉन्ट बी मेरी ड्रेस इतनी सुंदर नहीं है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ. फिर अगर इस पर कुछ लग गया, थोड़ा सा दाग लग गया, तो किस पर लग गया?
0: मुझ पर ही लग गया है,
1: मुझ पर ही लग गया है. फिर अगर ये थोड़ा सा फट गया आज कहीं अटक कर, तो कौन फट गया?
0: ओह, मैं फट गई,
1: मैं फट गया हूँ. और अगर मुझे पता है कि आज ये शाम तक खत्म हो जाने वाला है, तो कौन खत्म हो जाने वाला है? मैं खत्म हो जाने वाला हूँ, विच इज नॉट द ट्रूथ.
0: तो आई शुड मेक द मोस्ट आज ही के दिन.
1: तो मैं सारा दिन इसको ही कंपेयर करती रहूंगी, इसी को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करती रहूंगी, इसी के ऊपर सारा मेरा फोकस होगा. और उस प्रोसेस में अगर मैं समझती हूँ कि मैं इसके ऊपर, तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा. इसी तरह, क्योंकि हम इस कॉन्शियसनेस में चल रहे थे कि मैं शरीर हूँ, आप भी शरीर हैं, तो आपसे मिली, किस लेवल पे कंपेयर किया? ये तो मेरे से ज्यादा सुंदर है,
0: यू नो, उसकी रिक्वायरमेंट पे ही रह गई मैं,
1: क्योंकि मैंने सोचा ये मैं हूँ ना,
0: तो वो मेरा कुर्ते की रिक्वायरमेंट की इसे बचा कर रखना है, इसे
1: इसी के लेवल पे कंपैरिजन करना है,
0: इसको धोना है, इसको पूरा.
1: और अगर मैंने बोल दिया कि ग्रीन कलर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है,
0: तो फिर देन आई एम, हाँ,
1: तो किसको बोल दिया? मुझे बोल दिया, क्योंकि मैं कौन हूँ? वन रॉन्ग कॉन्शियसनेस कैन चेंज द होल जर्नी, the whole journey, because who I thought this is I am. अब consciousness change हो गई, मैं कौन हूँ? Let's say हम कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, ये मेरी dress है. अब आपकी dress मेरी dress से ज़्यादा अच्छी है. अब मेरी dress पर दाग लग गया, मेरी dress फट गई, hurt होगा क्या?
0: नहीं, it's okay.
1: या मेरी dress खत्म हो गई, कोई बात नहीं, नई dress लेंगे, it's okay ना, everything is okay. But till yesterday, everything was not okay, क्योंकि who was I? I was this dress. One wrong consciousness, I'm going to get hurt the whole day, छोटी छोटी बात लेकर. अब यही जब हमने सोचा मैं शरीर हूँ, आप शरीर हैं, तो सुंदर कौन है ज्यादा? मैं ज्यादा सुंदर हूँ? पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पूरी फैशन इंडस्ट्री कौन से बिलीफ सिस्टम पर चल रही है कि मैं शरीर हूँ? एंड माई नेचर इज दैट आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल, बट आई थॉट आई एम द बॉडी, सो हु हैज टू बी परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल? I have to be perfect.
0: Because it's the only thing which is visible, you know, how to actually...
1: No, it's about I. See, human being ki inherent nature kya hai? Ki I should be beautiful, I should be clean, I should be, you know, perfect. But maine socha, main ye hu, to ye thoda sa bhi tedha hai, to ye perfect ho jana chahiye, ye thoda sa... I went, my whole focus was... ऑन द बॉडी. इट इज लाइक अगर आपने सोचा आप ये ड्रेस है, तो पूरा दिन आपका सारा फोकस किस पर हो गया? इसी पर हो गया. लेकिन आप ट्रुथ से, तो सत्यता से डिस्कनेक्टेड थे. फिर हमने एक दूसरे से कंपैरिजन भी किया, तो बॉडी के लेवल पे, पोजीशन के लेवल पे बात भी की, तो किस लेवल पर, स्टेटस के लेवल पर, वी वर नॉट टॉकिंग टू द एक्चुअल थिंग. फिर अगर किसी ने कह दिया आज शायद आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, या आज आप थोड़े से काले लग रहे हो, तो कौन काला लग रहा है? मैं. That one, and मैं छोटी छोटी छोटी बातों पर हर्ट होते गई, हर्ट होते गई. किसी ने मेरी पेरेंटिंग पर कुछ कर दिया कि आपके बच्चे ठीक नहीं है, तो मैं हर्ट हो गई. क्यों मैं हर्ट हो गई? बिकॉज हु एम आई? आई एम अ मदर. किसी ने मेरे काम करने के तरीके पर कुछ कमेंट कर दिया, मुझे कह दिया, क्योंकि हु एम आई? आई एम दैट पोजिशन. एंड इन दिस होल प्रोसेस डैमेज ये हो रहा था कि इन दिस होल प्रोसेस हर्ट एक्चुअली कौन हो रहा था?
0: आई.
1: Because I was creating jealousy, competition, comparison, anger, hatred, just because something was being said about everything that belonged to me. तो मैं सुंदर तो अपने आप को करना चाहती थी, लेकिन शरीर के लेवल पर कंपेयर किया तो मैं एक्चुअली सुंदर होने के बजाय क्या होती गई? इसके लेवल पर मैं अपने आप को आपसे देखती गई, अंदर जेलेसी क्रिएट करती गई, तो सुंदर होने की बजाय
0: मैं और खराब होती गई,
1: और गंदी होती गई. एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एवरी डे. जस्ट बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दिस इज हु आई एम, आई थिंक दैट दिस इज हु आई एम. तो राजयोग जस्ट चेंजेस द कॉन्शियसनेस एंड इट सेज दिस इज योर्स. यस, इट्स इम्पोर्टेंट. हम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है. ये ड्रेस भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए ना कि ये मेरी ड्रेस है, साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए. इसी तरह ये मेरा शरीर है, नीट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल फाइन. लेकिन मैं कौन हूँ? ये तो नहीं होना चाहिए ना कि सब कुछ जो मेरा है वो याद हो और मैं जो हूँ वो ही भूल जाए.
0: तो मैं जब शीशे में देखूं या मैं अपने आप को जब भी देखती हूँ, तो जैसे उन्होंने कहा कि टॉल डार्क है, मतलब जो विजुअलाइजेशन, तो आप जब देखते हो तो वो चेहरा या आप ही दिख रहे होते
1: हैं. तो ठीक है ना, जब आप शीशे में देखते हो आपको ड्रेस नहीं दिखाई देती?
0: हाँ, वो भी दिखती
1: है ना, लेकिन आपको ये तो कॉन्शियसनेस है ना, ये मेरी ड्रेस
0: पहनी हुई है.
1: हाँ, ये मैंने पहनी हुई है. नाउ गो इनटू, लुक इनटू द मिरर एंड से ये मैंने पहनी हुई है, लेकिन ये भी मैंने पहनी हुई है. Two costumes we wear. First, I, the being, wears this costume, and then on this body, I wear this costume. इस तरह से भी तो मिरर में देख सकते हैं. जैसे जब आप मिरर में अपने कुर्ते को देखते हो तो ये थोड़ी सोचने लग जाते हो कि I am this. You have a clear thing. And then you just check. Is it neat? Is it clean? Is it perfect? अब जब हमें समझ में आ गया कि मैं कौन, this pure conscient being, अब भी शीशे में देखना है. लेकिन कौन से शीशे में देखना है? शरीर को देखना है तो वो शीशे में देखना है, और अपने को देखना है तो अपने थॉट्स के शीशे में देखना है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, कहीं कुछ गुस्सा, कहीं कुछ हर्ट, कहीं कोई जेलेसी वाला दाग तो नहीं लग गया. लग गया है तो एक मिनट का ब्रेक लें, एक घंटे के बाद जो लेते हैं, और उस एक मिनट के ब्रेक में उसको रुक कर क्लीन करते हैं.
0: आते जाते हम कार के मिरर में देखते हैं खुद को, तो उसी एक घंटे में, आई थिंक दैट टाइम ओनली वी शुड रिमेम्बर कि ये भी मिरर में देख लिया जाए.
1: एब्सोल्युटली, इट्स नॉट दैट वी आर निग्लेक्टिंग द बॉडी, बट वी आर लुकिंग आफ्टर द बॉडी विद अ क्लियर कॉन्शियसनेस, दिस इज माय बॉडी. गुस्सा, कहीं कुछ हर्ट, कहीं कोई जेलेसी वाला दाग तो नहीं लग गया. लग गया है तो एक मिनट का ब्रेक लें, एक घंटे के बाद जो लेते हैं, और उस एक मिनट के ब्रेक में उसको रुक कर क्लीन करते हैं. Again, it's the same thing.
0: आते जाते हम कार के मिरर में देखते हैं खुद को, तो उसी एक घंटे में, I think that time only we should remember कि ये भी मिरर में देख लिया.
1: Absolutely, it's not that we're neglecting the body, but we're looking after the body with a clear consciousness. This is my body. आज अगर मेरे, you know, कुछ बीमारी लग जाती है, let's say diabetes हो गया कोई, मुझे diabetes हो गया, I really get hurt. मेरे शरीर का एक हिस्सा थोड़ा सा ठीक नहीं है. I don't feel that bad. Because I'm very detached. Even the concept of death, वो चले गए, वो खत्म हो गए, नहीं, वो एक energy है, doesn't get created, doesn't get destroyed. क्या हो गया है? उस आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया. At the Brahma Kumaris, I really like the vocabulary. We never say, you know, so and so is dead or is gone. We say the soul has left the body. तो वो बहुत clear consciousness है. The soul has left the body. The body is here. The soul has left and left to take another one. Consciousness shift. Jaise belief system change ho gaya, thoughts change ho jayenge, destiny change ho jayegi. Jin jin baaton par hurt ho rahe the, compare kar rahe the, jealousy create ho rahi thi, वो चेंज हो जाएगी.
0: अच्छा, यहाँ एक बात, वी ऑल वांट टू बी यूनिक, यू नो.
1: यस.
0: सो द मोमेंट इज लाइक वी आर ऑल दोस पॉइंट ऑफ लाइट्स, यू नो, वी आर ऑल दैट एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी जो है, जिसकी अगर हम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो उसमें हम फिर वो कहाँ रहा, यू नो, यूनिकनेस कहाँ रही, या बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे लोगों के साथ जब मेरी बात हुई है कि मैं एक वो कॉन्शियस बींग हूँ, तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहता. मैं जब तक मैं ये चेहरा था, जब तक मैं ये एक ये था, एक शरीर था जो कि अलग था, यू नो, यूनिक था, और वो दूसरा चेहरा या वो दूसरे लोग यूनिक थे, मेरी अपनी यूएसपीज थी, मेरी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थी, उनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थी, तो फिर इंटरेस्ट था. अगर हम जेलसी और बाकी सब चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, यू नो, देयर वाज फन इन, यू नो, इंटरेक्टिंग, बिकॉज यू वर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीइंग, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीइंग. बट अगर आप भी वही पॉइंट ऑफ लाइट हो, मैं भी वही पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो वो बहुत एक वन यूनिक नहीं लगता मुझे कि मैं अपने आप में अलग हुआ, वो आप अपने, और दूसरा थोड़ा बोरिंग लगता है.
1: एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम फिर भी यूनिक हैं, क्योंकि हमारी हर एक थॉट डिफरेंट है. यू एंड मी कैन नेवर क्रिएट द सेम थॉट्स. हमारे संस्कार्स भी बहुत डिफरेंट हैं आज. अगर मुझे यूनिक रहना है और यूनिक बनना है सबसे, देन आई हैव टू बी इन द यूनिक इन द वे आई रिस्पॉन्ड, यूनिक इन द वे आई बिहेव. वॉट इफ इन अ सिचुएशन सब लोग पैनिक हो रहे हैं एंड आई एम स्टेबल, इज इन दैट यूनिक? Does unique only have to be in the way different? We are all still different. Shareer sabka different hai, costume sabka different hai, lekin personality bhi sabki different hai. Aaj aap identical twins ho sakte hain. Physically they are not unique. They are absolutely identical. फिर उन्होंने identical dress भी पहन ली उसके ऊपर, you know, बहुत होता है वो, बच्चों को तो identical कपड़े पहना देते हैं. तो शरीर भी identical, कपड़े भी identical. But they are still different.
0: Nature different
1: ho jati hai. So that is one place where we are all unique, and that's one place where we all can be beautiful. You know, mujhe ye sab kyun acha laga tha when I heard it for the first time. I said, dekho, shareer ke level par, we all can't achieve perfection. Physically, hum sab utne perfect nahi ho sakte. Professionally, hum perfect nahi ho sakte. Kisi ka kuch jyada, kisi ka kam. Possession wise, hum perfect sab nahi ho sakte. Lekin main, I, that energy, hum sab perfect ho sakte hain. We can all be equal, we can all be beautiful. The comparison or competition, ye feeling nahi aayegi. Aur unity ki feeling aati hai. You know, when we meet each other, wo jo ek barrier aa jata tha beech mein, वो खत्म हो जाता
0: है. कि मैं कहीं ऊपर या मैं कहीं नीचे, आप कहीं ऊपर, yes.
1: हमेशा आप किसी से भी मिलो ना, इमीडिएटली या तो मैं ऊपर हूँ या मैं नीचे हूँ. Like let's say, जैसे lately I traveled to some countries. अब पहले होता था I am Indian, you know. तो जैसे ये consciousness है I am Indian, तो जिससे भी मिलेंगे, you are American, you are British, you are African, you are Australian, whatever. अब वो consciousness ही हट गई, I am Indian, I live in India. ये एक अलग बात है, I live in India. You live here, but who are you? तो वो जैसे ही था ना, आई एम इंडियन एंड यू आर ब्रिटिश, तो वो एक वी आर डिफरेंट, यू नो. एंड फिर वो यू नो, भेदभाव, बैरियर, रिलीजन, आई एम हिंदू, यू आर मुस्लिम.
0: अच्छा, फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए उस पर वर्क करना होता था, यू नो, सी अगेन
1: टू फील द बॉन्डिंग,
0: यू नो, वी यूज्ड टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग. यस.
1: लेकिन जैसे ही आई एम दैट कॉन्शियंट बीइंग, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते, कॉन्शियसनेस कहते, स्पिरिट कहते, एक्चुअली वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं. इम्पोर्टेंट है कि अपने जीवन को इस कॉन्शियसनेस पे चलाना. ये मेरा शरीर है, ये उसके ऊपर ओढ़ा हुआ कॉस्ट्यूम है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पोजिशन है, ये मेरा परिवार भी है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं हूँ इन सब को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम आत्मा कहते हैं. तो अपने को याद रख के फिर जो कुछ मेरा है उसको संभालते हुए चले, और फिर जब औरों से मिले तो किससे मिल रहे हैं? आज कोई मर्सिडीज में आ जाए तो हम बहुत प्यार से बात करें, कोई

0: साइकिल पर आ जाए तो हमारा बात करने का व्यवहार चेंज हो जाए तो हम किससे बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग टू द व्हीकल, वी आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन. आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से एरिया में रहते हैं अपने शहर के, वो पूछकर फिर मैं आपसे बात करूँ. तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू योर हाउस. फिर आपका पोजिशन क्या है, आप क्या करते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. तो अगर आज हम देखें हमारे रिश्ते हम कौन हैं उस पर आधारित न होकर हमने अपने जीवन में
1: क्या क्या अचीव किया है,
0: और ये जो जीवन में अचीव किया है ये ट्रांजिएंट है, ये टेम्पररी है. इवन ये फिजिकल कॉस्ट्यूम, अभी निकले रोड क्रॉस करते करते लग गया, हाथ पांव टूट गया, कॉस्ट्यूम इज चेंज्ड. लेकिन अगर इस बेसिस पर रिलेशनशिप बेस्ड है तो जहाँ यहाँ कुछ चेंज होता तो रिश्ता भी चेंज हो जाता. राजयोग में फर्स्ट चीज है सोल कॉन्शियसनेस, कि आई एम दिस प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल. अब आप वॉचमैन से बात करो, चेयरमैन से बात करो, किसी से भी बात करो, कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर होगी. एंड इसलिए जो एनर्जी जाएगी एक दूसरे के प्रति, जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, दैट विल बी रिस्पेक्ट. बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू योर पोजिशन, आई एम टॉकिंग टू यू. वी हैव टू चेक हाउ ऑफन आर वी रियली टॉकिंग टू You. That's respect.
1: और हम हर बार ये कहते हैं कि यूनिटी जो है अनेकता में एकता की बात बार बार करते हैं, जब भारत की भी बात करते हैं, कि हमने स्टेट्स को भी हटा देते हैं. और इनफैक्ट अगर हम देखें इस शिवानी, जब हम मिलते हैं किसी भी बीइंग से, जब तक कि वो थॉट नहीं क्रिएट होता कि वो अमेरिकन है या वो कौन है या किस तरह से आया है, ये सब नहीं पता होता, हम इतने नेचुरल होते हैं. हमारा मतलब नेचुरल जो रिएक्शन टुवर्ड्स अनदर बीइंग है वो अनदर बीइंग का ही होता है.
0: लेकिन जैसे ही
1: वो सारी याद आती हैं चीज़ें या थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो वाले वो कॉन्शियसनेस आ जाती है, यू नो, तो समवेयर वहाँ तब हमारी प्रॉब्लम शुरू.
0: अब प्रोसेस है उस कॉन्शियसनेस को फिर से वापस शिफ्ट करने का. गोइंग, इसको हम कहते हैं मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब मैं बॉडी हूँ और बॉडी ने जो जो कुछ अक्वायर किया है मैंने इस शरीर में रहकर, तो मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस. एंड दैट सोल कॉन्शियसनेस जब होता वी बिकम वेरी नेचुरल. यू नो, मुझे प्रटेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको खुश करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है. यू आर अ प्योर सोल. When I look at you with this consciousness, इसके ऊपर अभी और क्या रिस्पेक्ट करेंगे? And that will be genuine respect, not for आपने क्या क्या प्राप्त किया है, but for आप कौन है. तो जैसे ही हम किसी से मिलते विद दिस कॉन्शियसनेस, उनको ऑटोमेटिकली हमारे से क्या मिलेगा? एक वेरी नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी. एंड देन माई रिलेशनशिप्स विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल.
1: वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच. ओम शांति. जिस चीज़ को मैं अचीव करने के लिए जीवन लगा रहा था, आज एक पल का माइंड सेट शिफ्ट मुझे वो अचीव करवा सकता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है. अगर कोई बात मन में उठ रही है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज अपनी पहचान हुई कि मैं हूँ कौन. मैं वो एनर्जी, चैतन्य शक्ति, वो कॉन्शियस बीइंग जो बहुत कुछ करता है. मेरी इनहेरेंट क्वालिटीज़ क्या हैं, अभी इस पर भी बात करेंगे. और कैसे, जैसे ही मेरी अपनी पहचान मुझसे होती है, ये कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरेंस रहती है, वो मेरे बिलीफ सिस्टम्स के साथ कैसे काम कर सकती है, और कैसे जो राजयोग का माध्यम लेकर अपने उन बिलीफ सिस्टम्स पर मैं काम करना चाहता हूँ उस पर मदद कर सकती है, आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

0: दोस्तों, नए किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज कौन कौन सा दिवस है, किन किन लोगों का जन्मदिन है, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिन आज। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। भारत में बाल श्रम की समस्या दशकों से प्रचलित है। भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को समाप्त कदम उठाया है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से उद्योगों में बच्चों के प्रति रोजगार के लिए प्रतिबंध लगता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम को पारित कर दिया है। इस अधिनियम के अनुसार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई है और इस समिति की सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना गया है। ईश्वर के बाल रूप तथा बाल गणेश, बाल गोपाल, बाल कृष्ण, बाल हनुमान, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत सारे देखे। भारत की धरती ध्रुव, प्रहलाद, लवकुश एवं अभिमन्यु जैसे बाल चरित्रों से पटी हुई है। बच्चों का वर्तमान दृश्य इससे अलग भिन्न है। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर है। बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। ये बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक हितों का प्रभावित करता है। बच्चे आज के परिवेश में घरेलू नौकर बनकर कार्य कर रहे, होटलों, कारखानों, सेवा केंद्रों, दुकानों आदि पर भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उनका बचपना पूर्णता चला जाता है। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र में किसी भी बच्चे को ऐसा कार्य या कारखाने इत्यादि में रखा जाए तो खतरनाक हो। कारखाना अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं, किंतु इसके विपरीत आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पहल से दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया है, जिसे बच्चों के जीवन व शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तो लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। ये कोई कम बात नहीं है। देखो, 5 करोड़ बच्चे अभी भी बाल श्रम कर रहे हैं। इन बाल श्रमियों से 29% के लगभग घरेलू नौकर हैं। ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में तथा कृषि क्षेत्र से लगभग 80% जुड़े हुए हैं। शेष अन्य क्षेत्रों में बच्चों के अभिभावक ही बहुत थोड़े पैसों में उनको ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं, जो अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको होटलों, कोटिया तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा दिया जाता है। उनके नियोक्ता बच्चों को थोड़ा सा खाना देकर मन मना काम कराते हैं। तो आज भी देखते हैं कई गाँव में ऐसा होता है, माँ बाप ही अपने बच्चों को सौंप देते हैं ऐसे होटलों में काम करने के लिए, या स्कूल में भेजते नहीं है, तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। और वहाँ पर बच्चे थोड़ा भी मनमाने काम नहीं किया तो बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। तो इस प्रकार के बच्चों का जीवन बहुत ही संकट में दिखाई दे रहा है। केवल घर का काम ही नहीं, बल्कि पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी, खेतों में काम करना, कोयले की खानों में, पत्थर के खदानों में, सीमेंट उद्योग में, मतलब सरकार ने जो देखा है कि बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, कंपनियों में भी बाल कामगार काम करते हैं, लेकिन अभी वो भी एक कानूनन जुर्म है, इसलिए बहुत जगह अभी वहाँ पर बच्चों को बड़े बड़े उद्योग में लिया नहीं जाता या काम नहीं। लेकिन जो गाँव है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जैसे होटल है, छोटे छोटे कारखाने हैं, वर्कशॉप है, गैरेज है, तो यहाँ पर बच्चों को काम पे लगाया जाता है और बच्चों का जीवन वहाँ पर नर्क जैसा बीतता जाता है। बच्चों को देखे तो ऐसे इनका बचपन के लिए ना तो माँ की लोरिया है, ना पिता का दुलार है, ना खिलौने हैं, ना स्कूल, ना बाल दिवस। जो स्कूल में बच्चे आनंद से पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल का मज़ा ही अलग होता है। स्कूल में जाते हैं तो वो पढ़ाई का मज़ा ही अलग है। स्कूल में भागते हुए जाते हैं, स्कूल में खेल खेलते हैं, लेकिन ये बच्चे अपना सारा जीवन इस परेशानी में या एक काम उद्योग में करते रहते हैं। इनकी दुनिया सीमित है, बस काम और काम। धीरे धीरे बीड़ी के अजले टुकड़े उठाकर धुआं उठाना, यौन शोषण को खेल मानना इनकी नीति बन जाती है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं छोटेपन में ही बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने लग जाते, क्योंकि इनको संस्कार भी नहीं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसी प्रकार से उनके संस्कार भी खतरनाक हो जाते हैं। वेल्डिंग के कारण आंखें अल्पायु में गवा बैठते हैं। फैक्ट्री के धुएं निकलने के कारण श्वासों की बीमारी होती है। किसी अंग को जहरीला या गैस के कारण टीवी आदि अलग अलग या यौन शोषण के कारण एड्स के शिकार भी हो जाते हैं। भरपेट भोजन या नींद न मिलने के कारण दुर्बलता आती है। तो ऐसे बहुत सारे बाल मजदूर की हकीकत बन गई है। तो इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनको हमें ख्याल देना पड़ेगा कि उन्हें हम किस प्रकार से पढ़ाएं, उन्हें हमें स्कूल में दाखिल करें। जो उनके माँ बाप है उनको समझाएं कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, आप बच्चों को पढ़ाएं, आप अधिक मेहनत करें लेकिन बच्चों का भविष्य ना बिगाड़े। ऐसे हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और बच्चों में संस्कार डालना किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि ये रोज़मर्रा के व्यवहार, वातावरण, उदाहरणों से भी होता है। और जैसे देखा जाए हमारे घर में भी कोई बच्चे होते हैं, तो हमें भी उन बच्चों के संस्कार कैसे डाल सकते हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी संस्कार कैसे डालें। तो सबसे पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत बने, बच्चों के सामने विनम्र भाषा का प्रयोग करें, सच बोले और दूसरे का सम्मान करें। बच्चे वही आदतें जल्दी अपनाते हैं जो घर में देखते हैं। अगर माता पिता गालियाँ देंगे तो बच्चे भी गालियाँ सीखेंगे। अगर माता पिता अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी अच्छा प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आज ध्यान में दें, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जो माता पिता संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे संस्कारी बने हमारे बच्चे, तो एक काम करें, घर में कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। बच्चों को नैतिक कहानियाँ सुनाएं, ईमानदारी, दया, साहस, परिश्रम से जुड़ी कहानियाँ भी बताएं। कहानी के बाद उनसे पूछो कि इस कहानी से आप क्या सीखे, तो क्या हो जाएगा उनमें, उनके मन में चलेगा, हाँ नहीं हमें भी ऐसा बनना है। इसके बाद उन्हें सम्मान करना सिखाएं, बड़ों का आदर करना सिखाएं, छोटों से प्रेम करना सिखाएं और सभी लोगों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए सिखाए। धन्यवाद, कृपया, क्षमा कीजिए, ऐसे इस शब्दों का कब कब उपयोग किया जाता है, कैसे करना है आप बताएंगे तो बच्चे जल्द ही ऐसे सीखेंगे। उम्र के अनुसार छोटे छोटे काम घर के जो होते हैं उन्हें सिखाए कि बच्चे आगे चल के कैसे होशियार बने। अपनी किताबें व्यवस्थित रखना, लिखना, समेटना, घर में जो भी हमारे बच्चे फैलाते या हवा, तो कोई भी बात को कैसे सपटना है, कैसे व्यवस्थित रखना है, तो ऐसी उनको छोटी छोटी जिम्मेवारी दे, इसलिए बचपन से ही वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और वो कभी अच्छा काम करते हैं तो अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें, अरे वाह, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे काम से क्या हो जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन भी मिल जाएगा। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार।
0: बोलिए बोलिए,
1: मेरा एक भजन है सर।
0: जी बोलिए।
1: ये पापी मन तू भजन कर क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा।
0: अच्छा,
1: वो पापी मन तू भजन कर,
0: ये पापी मन तू भजन कर,
1: हाँ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
0: जी जी जी,
1: सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी जी,
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद, जरूर हम अगर ये गीत मिलता है हे पापी मन तो भजन कर, तो मिलता है तो जरूर जरूर हम सिखा बजा देंगे। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के ऊपर हम कैसे अपने बच्चों के ऊपर संस्कार दें, बच्चों को संस्कारित बने। जिन घर में बच्चे हैं तो वो बच्चे घर की शोभा रहती है, तो बच्चों को अनुशासन प्रेम का संतुलन रखने के लिए सिखाए, नियम स्पष्ट करें, लेकिन अत्यधिक कठोरता से बचें। बच्चों के ऊपर अत्यधिक कठोरता का प्रयोग ना करें। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि नियम भले करें लेकिन कठोर नहीं, अनुशासन नहीं। कई माता पिता बच्चों से बहुत कठोर शासन जैसे सुलूक करते हैं, लेकिन ऐसे भी बर्ताव ना करें। थोड़ा प्यार, थोड़ा अनुशासन, सहानुभूति और दया सिखाएं। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखने के लिए, दूसरों की भावना समझने के लिए बच्चों को बचपन से ही प्रेरित करें और खास करके उन्हें अच्छी संगत का वातावरण दें। उन्हें कहें कि बच्चों को मित्र, मनोरंजन, ऑनलाइन गतिविधियों का ध्यान रखें। बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, अगर मोबाइल खेल रहे हैं तो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं हमारे बच्चे, कुछ गलत देखकर गलत संग में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये भी देखें कि वो किसके संग में है, उसके जोड़ीदार कौन, उनके साथी कौन है, क्योंकि बचपन में अगर संग अच्छा है तो आगे भी वो अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो सकारात्मक संग, सकारात्मक मित्र, सकारात्मक संस्कार उनका भविष्य मजबूत बनाता है। साथ ही एक साथ भोजन करना, बातचीत करना, परिवार के गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करना, तो क्या हो जाता है, बच्चों को एक साथ रहकर कुछ शिक्षा देते हैं तो परिवार का प्यार भी बच्चों को आगे बढ़ाता है। संस्कार धीरे धीरे विकसित होते हैं, बार बार समझाने से और निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, संस्कार अगर हम बच्चों को एक बार बताने से कभी कभी उदाहरण भी नहीं करते तो इसके लिए हमको बार बार समझाने पड़ता है। तो इसलिए मायूस ना हो जाइए, उसको और बार समझाएं, और बार समझाएं, दो तीन बार, चार बार, पांच बार समझने से बच्चा एक दिन पूरा समझेगा और वो अपना संस्कार भी बनाएगा। तो बच्चों में अच्छे संस्कार गुण आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या सिखाएं उनको, ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान, दया और करुणा, जिम्मेदारी, सहयोग की भावना, ये सारी बातें बच्चों को सिखाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर एक बार हम आपसे बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है या आज के दिन की विशेषता है क्या है। तो उसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमलेश जी। कमलेश जी जलंधर पंजाब से हैं और बहुत सारी देश विदेश की उन्होंने यात्रा की है और बहुत सारी अनुभवी भी है। तो सबसे पहले आप सभी श्रोताओं की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वालों का, उनको मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। जैसा कि पावन,
0: हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे?
2: भोलाराम बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी भोलाराम जी, भोलाराम जी कमलेश बोल रही हूँ मधुबन रेडियो से, माउंट आबू से।
0: हेलो जी बोल रही है?
1: हेलो कट गया
0: शायद, आवाज कट गया है जी, जी, तो फिर एक बार बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हाँ जी
0: बोलिए बोलिए।
1: भोलाराम जी बहुत ही प्यार भरी नमस्कार आपको।
2: हाँ नमस्कार है सर। हम भी के प्रो, सब पूरा प्रोग्राम सुन रहे हो, सब मधुबन भाइयों को और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम है सबको।
1: जी जी जी
0: जी जी। तो सबसे पहले हम कमलेश मैडम जी को कहेंगे कि आप अपना परिचय दे। हमारे स्टूडियो में कमलेश मैडम आए हैं, पधारे हैं, जैसे कि कहा कि वो जलंधर पंजाब से है और देश विदेश की बहुत सारी यात्रा की है। तो हम सुनते हैं कमलेश जी से।
1: ऐसा है सोमनाथ भाई के, सबसे पहले तो सुनने वालों को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति। और जैसा मैं पहले भी यहाँ आती हूँ मधुबन रेडियो में, रमेश भाई जी हैं, सोमनाथ भाई जी हैं, ये सब को हम मिलते रहते हैं। तो मैंने भी जैसे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जालंधर में 30 साल जो है
0: हाँ
1: काम
0: जी,
1: किया।
0: कौन बोल रहे?
1: हेलो
0: हेलो जी जी जी, जी।
1: तो 30 साल काम किया मैंने एज ए ब्रॉडकास्टर और सीनियर ब्रॉडकास्टर, मैं रिटायर हुई तो माइक के साथ मेरा जुड़ाव मतलब है पिछले 34 सालों से रहा है। तो मधुबन रेडियो जो है मेरे को बहुत एनर्जी देता है क्योंकि मैंने माइक के साथ बहुत, जैसे हम के खेलते हैं माइक के साथ है ना, तो यहाँ आके मुझे एक नई एनर्जी मिलती है। सोमनाथ भाई जी, जैसा कि ये पावन धरती बाबा ने जो इतनी बड़ी दुनिया बसाई है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्यारी, जिसमें बहुत सारी आत्माएं आके अपने सारे दुख भूल जाती हैं और सुख और खुशियों के गीत गाती हैं। तो खुशियों के गीत की अभी हम सुन रहे थे हम एक, हाँ जी ये आप कॉल ले लीजिए, कोई हमारे भाई आए हैं या बहन होंगी।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: हाँ जी सर नमस्ते, सरोज भाई बोलता हूँ जटाना से, सोमनाथ भाई जी ओम शांति।
0: जी जी जी जी, आज हमारे स्टूडियो में मेहमान आए, मेहमान से बात करिएगा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, कमलेश बहन जी कैसे हो?
1: बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, आपने पूछ लिया तो और अच्छे हो गया बहुत। आप बताइए कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल बस हम बहुत अच्छे हैं, और लेकिन आप जो स्टूडियो में आए तो हमको एक खुशी बढ़ गई, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे स्टूडियो में कोई भी मेहमान आते हैं
1: जी जी जी,
2: तो हमको एक खुशी रहती है कि हम आपके बातों से हम कुछ सीख पाए, कुछ जान पाए आप कहाँ से है और वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, ये हम यहाँ बैठे बैठे आपसे जान पाते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है।
1: जी जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जलंधर पंजाब से आई हूँ और वहाँ पे मैंने आकाशवाणी जलंधर में 30 साल एज ए ब्रॉडकास्टर एज ए अनाउंसर वहाँ पे जॉब की है। हाँ जी जी बिल्कुल। और
2: चलो हमारे एक नए आरजे से हमारे जो मुलाकात हुई है आज, जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे परिवार तरफ से।
1: और आपने बताया कि वहाँ की कुछ खास चीजों के बारे में बताएं, तो सबसे पहले वहाँ पे एक तो देवी तालाब मंदिर है, बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल मंदिर है, दूर दूर से लोग श्रद्धालु वहाँ आते हैं, अपनी जो कामनाएं लेके आते हैं उनकी वो पूर्ण होती है। बहुत प्यारी जगह है वो, अगर पंजाब जाएं तो वो जरूर देखें। गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब जिसको कहते हैं वो अमृतसर में है, वहाँ पे भी दुनिया भर से लोग आते हैं, आपको वहाँ जाके इतना अच्छा
2: तो,
1: लगेगा।
2: वो बताओ तो मेरा बेटा और हमारे बहू जो शादी के बाद 10 दिन के बाद वहाँ आए थे अमृतसर, और हमारा बेटा और बहू वहाँ आके दर्शन किया है वहाँ गुरुद्वार में।
1: जी जी जी,
2: तो अमृतसर आए थे, वहाँ से वो गए थे मनाली शिमला गए थे वो,
1: जी जी,
2: और कई सारी जगह पे घूम के आए थे। लेकिन आज आप जो पंजाब की बात बता रहे हैं तो ये जो पानी में जो
1: सरोवर है,
2: मंदिर है तो।
1: हाँ जी सरोवर है वहाँ पे बहुत बड़ा।
2: हाँ,
1: और
2: हाँ,
1: हमारे जैसे सिखों के 10 गुरु हुए हैं ना, चौथे गुरु गुरु अमरदास जी ने उसको बसाया था, उसकी जो उसको मतलब है पूरा किया। और वहाँ पे दूर दूर से दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज तो हमें जीवन में शांति चाहिए ना, सुख और शांति चाहिए।
2: बिल्कुल, शांति होगी थी तो सब कुछ होगा हमारे पास, लेकिन शांति नहीं होगी तो हमारे पास कितने ही धन दौलत होगी, कितने ही हमारे पास गाड़ी बंगले होंगे, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं काम के। लेकिन जब हम बैठे हैं आराम से और हम थोड़ी सी हमारे जो हमारे पास थोड़ी सी जो पूंजी होती है और हम अच्छे छोटे से छोटे मकान में रहते हैं, लेकिन शांति होती है तो हम जैसे महल में बैठे ऐसा लगते हैं।
1: ऐसा बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं और सुनने वाले जो हजारों लोग आपको सुन रही हैं वो इस बात को फॉलो करेंगे। शांति रखने के लिए आसपास का माहौल अच्छा चाहिए, और अगर आप शांत है ना, शांति से बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 50% माहौल तो सोमनाथ जी वैसे ही शांत हो जाता है ना।
0: बराबर बराबर।
2: हम तो बताएं कि हम तो शांति के साथ ही बैठे हैं, शांति में हम हैं, क्योंकि हम अमृत वेला करते हैं, हम सुबह में शाम को मल्ली सुनते हैं, हम पूरा जनवरी मास पूरा हम सुबह में 3:30 से 6:30 बजे 5:30 बजे तक हम कार्यशाला में जाते हैं,
1: योग
2: करते हैं, सारी बाबा के ज्ञान हमको भी मिला है, तो शांति तो होगी क्योंकि शांति के साथ जुड़े हैं हम।
1: बिल्कुल, बहुत
2: तो
1: अच्छी।
2: बस हमको बहुत शांति है, आपके आने से तो और अच्छे हो गए थे।
1: बिल्कुल, तो ऐसा है कि
2: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हर दम सबके साथ मिलजुल के बात करते रहे, और हमारे साथ जो आपने बात की हमारा भाग्य खुल गया आज।
1: हम भी बहुत खुश हैं आपसे बात करके। सोमनाथ भाई जी, जैसा कि हम संत महापुरुष फकीर हमें मिलते हैं ना, तो हम उनके पास जाते हैं शांति के लिए कि हमें सुख मिले, शांति मिले, हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, है ना। लेकिन एक बात जरूर है,
2: कितने बार आ चुके हैं माउंट आबू में, कितनी बार आ चुके हैं हमारे, जब हमारे एक साल में तो एक बार हम वहाँ आते हैं, हमारे सोमनाथ भाई जी, हमारे रमेश भाई जी, हमारे बहुत अच्छे सारे सभी कि हमारी इतनी ख्याल रखते हैं, हम हमारे जो भी हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, हमारे सोमनाथ भाई जी तो बहुत अच्छे हैं,
1: बहुत बढ़िया।
2: और आपको और हमारे सभी मित्र को आपके,
1: अब मेरे पास तो शब्द ही आपने खत्म कर दिए उनकी तारीफ करने के
2: लिए।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपका प्यार देने के लिए।
1: बिल्कुल, हाँ जी सोमनाथ भाई जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ आते हैं साल में एक बार, तो हम लोग जैसे किसी गुरु के पास जाना शुरू करते हैं सुख शांति के लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए ना, लेकिन वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, जाना तो है, लेकिन वहाँ उनको फॉलो करना, उनके नियम बनाए हुए नियमों पर चलने की कोशिश में लग जाना समय लगता है, क्योंकि दुनिया में हम बहुत कुछ झूठ सच ठगी चोरी और ऊपर नीचे करते रहते हैं हम सब, है ना। लेकिन जब हम गुरुओं के पास जाएं तो उनको फॉलो करने की पूरे 100% कोशिश करेंगे तो एक दिन हम उनके जैसे हो जाएंगे।
0: जैसे जिस प्रकार से हम कहेंगे हमने डॉक्टर के पास गए है, तो डॉक्टर के पास जाने से हम ठीक नहीं होते, लेकिन डॉक्टर ने जो परहेज बताई है, डॉक्टर ने जो दवाई बताई वो खाने से हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही आपने कहा कि गुरु के पास जाने से हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने जो बताए मार्ग है वो अपनाने से हमारे जीवन में खुशी और सुख शांति आ सकती है। तो आगे बढ़ते हम आपको पूछना चाहेंगे कि आपने कई विदेश का दौरा भी किया है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि वहाँ आपको कैसे लग रहा है।
1: सोमनाथ जी, जैसा कि हम लोग हर साल अपने बच्चों के पास जाते हैं
0: जी।
1: तो कई बार होता है कि विदेश में जाके आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया से, अपने देश से, अपने लोगों से अलग हो गए, लेकिन अगर वहाँ ध्यान से आप देखें तो आपका वहाँ भी मन लगेगा, अच्छी चीज़ों को देखें। एक तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े पार्क, बहुत पेड़ जो 5-5 साल 1000-1000 साल पुराने हैं ना सोमनाथ जी, उनको उन्होंने बचा के रखा हुआ है, उनकी वो सेवा करते हैं। और आपको 5-5 किलोमीटर में हर सोसाइटी के पास पार्क मिलेगा, तो जो कम चल सकती है, जो नहीं चल सकते व्हील चेयर पर वहाँ पहुँचते हैं, और जो सहयोग लेके वहाँ पहुँचते हैं, बच्चे बूढ़े सब वहाँ पहुँचते हैं। और अगर पार्कों की ये जगह जगह आपको पार्क मिलते हैं, और आप देखेंगे कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पे जो 85-90+ लोग आपको बहुत मिलेंगे, वो जब पार्क में होते हैं ना, तो उनके एक अपने साथ विशेष तौर पे एक स्टिक रखते हैं जिससे वो जो है कचरा उठा सकें।
0: अच्छा।
1: बैंड तो हो नहीं सकते क्योंकि एज के अकॉर्डिंग है ना।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: कोई भी उनको छोटा सा रैपर मिल गया, कुछ उनको कागज मिल गया, कुछ उनको कुछ और कचरा मिल गया, तो उठाते उठाते चले जाते हैं और डस्टबिन में डालते जाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो अच्छी बात है।
1: हाँ जी, और हर बंदा जो है वहाँ पे इस बात का ध्यान रखता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सफाई में बैठा हूँ तो उसको मैंने मेंटेन करना है।
0: जी जी,
1: ये नहीं कि चिप्स खाए और रैपर वहाँ फेंक के चले गए और उससे गंदगी फैलती है। ये बहुत बड़ी बात मैंने देखी। हर आदमी जो अपनी ड्यूटी समझता है इसके प्रति, हम लोग सारा दिन भगवान भगवान भगवान जय गुरु करते रहते हैं लेकिन अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं।
0: वही गाड़ियों, हम कई बार देखते हैं गाड़ियों में जैसे आपने कहा चिप्स खाते हैं और गाड़ी के बाहर वो चिप्स खाए हुआ कागज फेंकते हैं रास्ते पर,
1: और कई बार वो जो कचरा होता है ना पीछे वाली गाड़ी के किसी के मुंह पे लग जाता है, कोई स्कूटर पे आ रहा है।
0: बराबर बराबर।
1: और इसके अलावा जो बच्चों को वो शुरू से डिसिप्लिन बनाते हैं, डिपेंड होना नहीं सिखाते वो किसी पे, छोटे छोटे बच्चों को जो है अपना काम खुद करने की जो वो भावना डालते हैं तो बच्चा बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने सारे काम खुद करने लगता है, जिम्मेवारी समझने लगता है। और छोटी एज में लोग पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और काम में भी जाते हैं, जैसे 16 ईयर का बच्चा हो गया ना तो वो कोई भी काम वहाँ पे बहुत छोटे छोटे काम हैं वो काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, जो उनको काम मिला उन्होंने वो उसमें बिजी हो जाना है,
0: उसमें
1: उनको इनकम भी होती है और वो फिट भी रहते हैं और किसी पे डिपेंड भी नहीं रहते। और जो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट जो खिलौने बनाती है वो स्पेशल बनाती है, उसमें जैसे बच्चों को दरवाजा खोलने का वो कैसे खोलना है, उसमें वो कुंडी कैसे लगी हुई है, छोटे दो साल का बच्चा आपको बताएगा कि ये ऐसे खुलता है, मैं तो उसको खोलना नहीं आता लेकिन उसने खोल के बता दिया कि ये ऐसे खुलता है। और जैसे फायर ब्रिगेड आ रही है, बस आ रही है उनकी का, तो हम लोग उनको रास्ता नहीं देते हैं तो उनको सिखाते हैं कि इनको सबसे पहले मेडिकल वैन को और फायर ब्रिगेड को रास्ता देना। ये आपको वहाँ का 2-3 साल का बच्चा भी ये बता देगा ये चीज।
0: अच्छा।
1: तो हम लोग अभी तक बूढ़े हो गए, हम किसी को रास्ता ही नहीं देते। मेडिकल वैन आती है पीछे से आवाज करती रहती है, हॉर्न बजाती रहती है, हम अपने मस्त रहते हैं मोबाइल में भी। और वहाँ पे लोग ऑनेस्ट बहुत है, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं और शिकायत नहीं करते, वो अच्छे से सोते हैं। और अपने घर में हम कहते हैं कि हम पारिवारिक हैं, हम अपनी फैमिली लाइफ है हमारी, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मैंने वहाँ ये खास चीज देखी कि वो फैमिली में अपना कमा के लाते हैं, अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खुद साफ सफाई करते हैं घर की, हर काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं चाहे वो 14 घंटे जॉब करके आए।
0: देखो ये बड़ी विशेष बात है कि वो जॉब भी करते, 14-14 घंटा काम करते, ईमानदारी से काम करते, फिर आने के बाद घर का काम भी करते। लेकिन हम देखते हैं हमारे सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट है, लोग काम करना ही छोड़ देते हैं, बस करते कि आराम कैसे मिले, आराम कैसे, काम छोड़ के इधर उधर घूमने लग जाते हैं, मस्ती मारेंगे, इधर गपशप करेंगे, इधर करेंगे, टेबल पे फाइल पड़ी है, 7-7 दिन एक ही टेबल पे वही फाइल पड़ी रहती है, काम का नाम नहीं होता। तो हम जाते हैं सरकारी ऑफिस में, बोलते कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जो 5 मिनट का काम होता है वो महीनों महीनों लगाते हैं। और आपने कहा कि वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जो काम में बिजी रहते 14-14 घंटा काम करते हैं,
1: और जहाँ पे वो बिजी है ना अगर वो काम कर रहे हैं तो 100% देंगे वो, कुछ छोड़ दीजिए 1-2 लोगों को जिनकी मतलब आते नहीं, वो 1% तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं।
0: 1% तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत परसेंट है।
1: हाँ जी मुझे लगता है 99% है।
0: जी जी जी।
1: और जो है वहाँ पे अगर आप काम पे हो तो आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फन कर रहे हो ना तो वो फन भी जम के करते हैं। जिस दिन उनको छुट्टी है ना तो सुबह अपने घर को साफ सफाई करके खाना वाना घर से लेके पका के और वो पार्कों में चले जाते हैं, बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे है ना, समुद्र के किनारे वो पानी में फन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग सीख जाते हैं, उनको वो बिजी रखते हैं अच्छे अच्छे एक्टिविटीज में ताकि वो आगे जाके उनको जो उनका वहाँ का जो कल्चर है उसमें वो ढल जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी। हमें लगता है कि वो हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। आप देखिए किसी को भी बुला के खुद आप हेलो करेंगे तो आपको वो जवाब देंगे, लेकिन वहां मैंने देखा कि पार्क में आप जाओ ना, जहां से आप शुरू किया पार्क में एंट्री करी तो हर आदमी आपको हेलो बोल के जरूर जाएगा, हाउ आर यू, तो ऐसा पूछने से आप अच्छे हो जाते हो।
0: बढ़िया बढ़िया, वहाँ की संस्कृति तो काफी अच्छी है।
1: बिल्कुल।
0: हमने भी सुना है कि वहाँ के रास्ते अच्छे क्लीन होते हैं, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं और वहाँ ईमानदारी से भी बहुत कुछ कार्य होते हैं
1: जी। और बड़े बड़े जो जंगल है उनको उन्होंने डेवलप कर रखा, उसमें आपको एक भी कीड़ा पतंगा कोई नहीं मिलेगा और कोई जानवर नहीं मिलेगा। और वहाँ पे आप लंबी सैर 5-5 किलोमीटर की पूल बना रखे हैं छोटे छोटे, वहाँ आप रेस्ट कर सकते हो। मतलब एक बार आपने सैर शुरू करी तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं 1-1.5 किलोमीटर करके बैठ जाऊँ, आप वो पूरा गोलाकार 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के ही बैठोगे। और एक बात और मुझे याद आई सोमनाथ जी, हमारे सुनने वाले भी इस बात को एंजॉय करेंगे कि जैसा हम लोग रोड पे जा रहे थे तो आगे ना जाम लग गया। अच्छा, वहाँ पे जाम नहीं लगता है बसों का, गाड़ियों का ना, लोग प्रॉपर अपने अपने रास्ते में चलते रहते हैं।
0: जी,
1: अगर
0: जी,
1: आप
0: जी,
1: उनके लिए रुक गए, गाड़ी आपने रोकी है तो आपको थैंक्स करना नहीं भूलेंगे, है ना, कि आपने मेरे लिए मेरे को रास्ता दिया है। ये नहीं कि हमारे यहाँ तो हम खड़े रहते हैं, अच्छा 10 गाड़ियां निकल जाती हैं, आप वो फिर भी कोशिश 11वीं गाड़ी की कोशिश होती है कि वो भी उनको आप ही रास्ता दो, वो नहीं रुकने वाला है ना। तो वहाँ पे वो आपको थैंक्स करना नहीं भूलेंगे। और एक जब जैसे हम जा रहे थे तो रश जाम लग गया, तो बड़ी हैरानगी की बात थी कि वहाँ जाम लगा, क्यों लग गया भाई जाम? तो पता चला कि कोई हिरन जंगल से निकल के रोड पे आ गया और वो भटक गया।
0: जी जी जी जी।
1: तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा
0: जी।
1: तो वो किसी गाड़ी से टकराया होगा, थोड़ा उसको चोट भी लगी, गिर गया, तो गाड़ियां रुक गई और उसमें से लोग निकले। उन्होंने उसको फोन किया जो डिपार्टमेंट है उनका जंगलात का, और उसको सेफली पहुंचा के तब जाके वो ट्रैफिक चला। मतलब वो देखो
0: जी,
1: कितना जानवरों की भी कदर करते हैं है ना। यहाँ तो बंदे सड़क पे पड़े रहते हैं, लोग पास से निकल जाते हैं।
0: जी जी जी। हमारे यहाँ अगर सड़क पे आए कोई जानवर मिलता तो पहले हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो शिकार करना चाहते, या तो लेकर उसको भाग जाते
1: तो ये चीजें बाहर जाके आपको डिफरेंस पता लगता है
0: जी जी,
1: वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ जो अच्छाई है ना
0: जी,
1: वो आप देखिए। और आप शांति की उसमें रहते हैं ना, खोज में रहते हैं, तो आपको वहाँ शांति ही मिलेगी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप सो रहे हो तो आपको कोई शोर मचा के उठाएगा नहीं, क्योंकि आप जॉब से आए हो, है ना। और दूसरा, पार्कों में जाते हो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पे अगर आप शांति से बैठे हो तो कोई आपके पास आपको तंग नहीं करेगा कुछ भी। मतलब इतने शांत हो जाते हो, इतना कूल माइंड हो जाते हो, आप कुदरत को देखने लगते हो, कुदरत को निहारने लगते हो, जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, है ना, जिससे हमारी रचना हुई है।
0: तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी जानकारी आपको कमलेश जी ने बताया कि विदेश की संस्कृति, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कहाँ वहाँ के गार्डन के बारे में बताया, वहाँ की संस्कृति, वहाँ कैसे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: पत्थर वो।
1: मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में।

0: 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं, परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
3: To find common ground.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
6: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
5: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है।

0: महत्व को स्वीकारा है। यह फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: तो चलिए दोस्तों, समाचार के बाद आप सभी का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पहले भी कहा कि हमारे आज स्टूडियो में मौजूद है जलंधर पंजाब से कमलेश जी। कमलेश जी ने बहुत सारे आपको जानकारी दी है। तो कमलेश जी, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
4: सोमनाथ भाई जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है और इसको मनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है कि जो बचपन जो होता है ना, बड़ा प्यारा और बड़ा अमूल्य होता है और ये दोबारा वापस नहीं आता। जीवन का कोई भी पार्ट जो बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये बच्चों का ये समय जो होता है ना, उनको उनके खाने पीने का ध्यान, उनके पढ़ाई का ध्यान, उनको एक अच्छे नागरिक बनाने का पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और एक अच्छा नागरिक जब समाज में जाएगा तभी हमारा समाज जो है वो सेहतमंद मानसिक और शारीरिक तौर पर हो पाएगा। लेकिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, वो कहीं ढाबों में, कहीं कहीं भी उनको मजदूरी करते हुए जब हम देखते हैं तो बड़ा मन दुखी होता है ना। लेकिन हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं इस बात का कि हम बच्चों के लिए जो ये मजदूरी करवाते हैं छोटी एज में, पेरेंट्स बहुत बड़े जिम्मेवार हैं इसके लिए कि उनको जन्म तो दे दिया उन्होंने बच्चों को, लेकिन उनका पालन पोषण करने के लिए उनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसीलिए बेचारों को जो है मजदूरी करनी पड़ी अपना पेट भरने के लिए। अपना पेट भरने के अलावा वो लोग अपने बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे सोमनाथ भाई कि लोग एक बच्चा जो है छोटी सी उम्र में पूरे परिवार का जो बोझ उठा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसको उस काम में लगा देते हैं, तो उसकी मजबूरी हो गई कि घर में खाना नहीं है, घर में सोने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, तो बच्चे को तो समझ नहीं कि मेरा बड़ा कीमती समय जो जिस समय मुझे पढ़ना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, अपने जीवन को और अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए मुझे कुछ सीखना चाहिए, तो ये चीज़ें उसको पता नहीं होती
3: जी,
4: तो
3: जी,
4: इसी के लिए ये निषेध जो हम वर्ड लगा इसके साथ वो ये कि सरकार इसके लिए कानून बनाती है कि इस उम्र से लेकर, मतलब 14 साल है शायद,
3: 14
4: साल से
3: जी,
4: पहले
3: जी,
4: आप किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा पाएंगे
3: बराबर,
4: और अगर करवाएंगे तो आप दोषी हैं, आपको सजा हो सकती है। लेकिन चोरी ये काम फिर भी चलता है क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही नहीं है, हमारे अंदर वो ज्ञान ही नहीं है। आप ऐसे भी उदाहरण देखेंगे कि लोग 14 साल के बाद अगर बच्चे को काम करने की जरूरत पड़ी तो वो मालिक है ना जो उसको पढ़ने का मौका, उसको कुछ सिखाने का मौका देता है कि लो भाई यहाँ आप काम कर रहे हो, ठीक है आप करो काम, लेकिन उसका भी एक उम्र है
3: जी।
4: उसके बाद उसको मौका देते हैं कि तुम पढ़ लो या कुछ हाथों से काम करना सीख लो, ताकि आप एक गुलाम बन के ना रह जाओ किसी सोसाइटी के, है ना, आप अपने आप उड़ने के काबिल हो जाओ। आपके अंदर जो प्रभु ने एक खास चीज डाल के भेजी है उसकी पहचान करके उस बच्चे को

0: पढ़ाना, उसको आगे लेके जाने का संदेश देना, उसको आगे बढ़ने का मौका देना, ये बहुत बड़ा उपकार है सोमनाथ जी।
1: जी
0: लेकिन
1: जी।
0: हर आदमी इस बात को नहीं समझता, इसे सरकारें हमारी जो है वो कानून बनाती तो है, लेकिन कानून पर लागू पूरे तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि ये लागू तो हमारे अपने सोच से होना है ना, कि हम सोचें, एक एक आदमी घर में सोचे कि ये काम हमने नहीं करना है। जिन बच्चों को जन्म दिया माँ बाप ने, वो कैसे भी उनको पालें, खुद मजदूरी करके चाहे 12 घंटे काम करें, 14 घंटे, एक 15-16 साल तक उसको अच्छे से, उसको अच्छा खाना दीजिए, उसके पढ़ने लिखने का ध्यान करिए, उसको जो उसके अंदर एक ख़ास चीज़ परमात्मा हर आदमी के अंदर एक गुण डाल के भेजता है, उसकी पहचान कीजिए, उसको उसमें फ्लॉरिश करने का मौका दीजिए। यही एक अच्छे माँ बाप का कर्तव्य है और ड्यूटी है। समाज की ड्यूटी है कि अगर आपके पास ऐसा बच्चा कोई आ गया है, मजबूर बच्चा, कानूनी तौर पे 14 साल तक बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर 14 साल के बाद भी बच्चा कोई आपके पास आता है और आप उससे काम लेते हो, तो उसको जीवन में अच्छे तरीके से एक अच्छा नागरिक बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है और एक कोई कला सीखना ज़रूरी है, वो उसको मौका ज़रूर दीजिए। थोड़ा सा अपनी जो आपकी इनकम है, और बड़ी थोड़ी मजदूरी पे हम लगा लेते हैं बच्चों को, है ना,
1: जी,
0: अगर
1: जी,
0: हम
1: जी।
0: थोड़ी सी उनके उसके लिए उस पर पैसा खर्च करके, तो बच्चा आपको याद करेगा
1: जी,
0: जीवन
1: जी,
0: में
1: जी।
0: कभी वो बड़ा आदमी बन सकता है। हर आदमी अमिताभ बच्चन बन गए की ताकत रखता है, बुद्धि रखता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो ये चीजें जो है, इसीलिए ये कानून बनाया गया, ये दिन बनाया गया। दिन मनाने का मतलब ये नहीं कि हमने बात कर ली, हमने रेडियो पे, टीवी पे, हमने प्रोग्राम बड़े बड़े कर लिए, बड़े बड़े नेता आके स्टेज पर भाषण दे जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे सरकारी तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर, तो इन दिनों को मनाने का कोई फायदा नहीं है।
1: जी जी जी,
0: मैंने ठीक बोला?
1: एकदम सही है, बराबर है। सिर्फ दिन मनाना नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अमल में भी लाना है
0: जी।
1: तो कमलेश जी, हमने सुना है कि आप बहुत सारे गीत भी गाते हैं, और पिछले बार भी आप जब आए थे बहुत अच्छे अच्छे गीत भी हमारे श्रोताओं को सुनाया था
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: आज
0: जी।
1: हमारे श्रोताओं को आप कौन सा गीत सुनाएंगे?
0: देखिए, गीत तो मुझे बहुत सारे आते हैं, भजन भी आते हैं, लेकिन मौके के मुताबिक, जैसा कि हर आदमी खुश रहना चाहता है और गुरुओं, पीरों, फिरों, फकीरों, पैगंबरों के पास जब हम जाते हैं, तो हमें सबसे पहले कुदरत से जोड़ते हैं। जब हम कुदरत से जुड़ते हैं ना, तो फिर हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, थोड़ा सा खाना चाहिए, अच्छा तंदुरुस्ती के लिए है, थोड़ी सी जो, लेकिन जो कुदरत ने हमें सब कुछ फ्री दे रखा है, सूरज सुबह आता है ना हमें लाइट देने के लिए, अगर ना आए तो सोचिए क्या होगा।
1: बराबर।
0: और धरती दी है ना हमने परमात्मा ने, उस पे सोने के लिए, उस पे चलने के लिए, कितना कुछ झेलती है वो, है ना
1: जी, जी, जी।
0: आकाश जो इतनी बड़ी छत है, कुछ भी ना हो तो हम पड़े हैं जमीन पे, पड़े हैं ना, घर भी नहीं है तब भी आकाश की छत इतनी बड़ी हमें दी है। पेड़ पौधे दिए, और पेड़ पौधे इतने दिए हैं कि हमें दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, उन पेड़ पौधों से हम अपने को इतना ज्यादा तंदुरुस्त रख सकते हैं कि जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि जो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, तपस्या करते थे, वो उन पेड़ पौधों के सहारे अपना जीवन 100-100 साल, 150-150 साल जी जाते हैं। तो कुदरत से जुड़ा हुआ गीत है जो मुझे भी बहुत पसंद, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे कॉलर शायद कोई नहीं आए हैं, सुन रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: सिर्फ सुन ही रहे हैं आज
1: जी जी जी जरूर आज सुन रहे हैं, उनको वो सुनने में मजा आता होगा, तो शायद तो आपको
0: एक गीत है
1: भी देंगे। जी, जी।
0: जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है।

दोस्तों, आपने सुना कि कैसी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं कि जहाँ पर गम भी नहीं, आंसू भी नहीं, तो ऐसी दुनिया में ज़रूर हमें भी जाने के लिए खुशी होगी। जी हाँ, ऐसा युग तो सतयुगी है और वहाँ पर जाने के लिए सभी को अच्छा ही ज़रूर लगता है। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओ पापी मन कर ले भजन, ये गीत कितना सुंदर था जो गुड़ीलाल जी ने फरमाइश किया था कि ओ पापी मन कर ले भजन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर हम कमलेश जी के पास जाते हैं। कमलेश जी, हमारे श्रोताओं को बताओ कि आप इसका इस बार का आपका आना कैसे हुआ?
1: इस बार का आना तो बहुत देर से तय था जब हम बाहर से आए, लेकिन थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। हर बार ही एक मकसद होता है कि बाबा के घर जाएं और ज़्यादा सीख के आएं, उनको फॉलो करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालने के लिए। और जैसा कि हम गीत सुन रहे थे अभी कि जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, मतलब जो आत्मा रूपी जो है चीज़ वो हमारे जीवन से निकल गई, हमारे शरीर से निकल गई, तो ये शरीर व्यर्थ है ना। तो समय रहते हर चीज़ को पहचानना, एक एज के बाद हर एज में आपके पास मौका होता है उस एज के मुताबिक काम करने के लिए। जैसे पहले 25 साल जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए होते हैं, अपने आप को अच्छे से जो है तराशने के लिए होते हैं।
0: जी जी
1: फिर आप जॉब में जाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी है ना, जो पैसा कमाने के लिए, घर बार चलाने के लिए, तो वो 25 साल आपके पास होते हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें आप अपने परिवार को, आपकी शादी होती है, परिवार को बढ़ाते हो और उसको उसका पालन पोषण सही तरीके से करने की आपकी जिम्मेवारी होती है। आप हो गए 50 के बाद आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: तो उसमें आपको आध्यात्मिकता जो है आप पर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जीवन का सच्चाई सामने आने लगती है कि अब जीवन से जाना भी है, इस दुनिया से जाना है। तो जाने से पहले ये जीवन जो हमें मिला, हमें बोलने का जो मौका मिला, हमें देखने का, कुदरत को हमें महसूस करने का, हमें उसमें अपने जीवन को जीने का जो तरीका मिला, उसको परमात्मा का शुक्रिया अदा करने का, कुदरत का शुक्रिया अदा करने का। परमात्मा क्या है? ये कुदरत है जो हमें बिना शर्त के सब कुछ दे रही है, हमसे कुछ मांगती नहीं है, वो परमात्मा है। तो उसको याद करने का, उसका शुक्राना करने का। तो मेरा भी एक मौका आया, जैसे कि मैं रिटायरमेंट के बाद, मुझे अब अपने अंदर एक सवाल पैदा होता था कि मैं कौन हूँ, मैंने जीवन में क्या करना है, मैंने जीवन में और आगे क्या, अब मेरा क्या मुझे करना चाहिए जो मुझे अच्छी सच्चा सुख और शांति दे। पैसा आपको शांति नहीं देता है, वो आप ड्यूटी के लिए कमाते हो अपनी, है ना, लेकिन जो मानसिक जो पर्सनल आपका है ना, वो आपकी सुख और शांति है आपका अपना। उसको ढूंढने के लिए मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मैं जुड़ी, वहाँ से संधीरा जी जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं आदर्श नगर में, उनके साथ मेरा मिलन हुआ। वो हमारे स्टूडियो आते थे, उनसे बातचीत होती थी, तो हमेशा मुझे प्रेरते थे कि आप परमात्मा के पास आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ।
0: जी जी जी।
1: वो असली मायने में लाने वाले मुझे इस ओर वही हैं।
0: जी।
1: और सोमनाथ जी, आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं, खास करके औरत जब जुड़ती है ना, तो उसके लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है पारिवारिक तौर पर है ना, जिम्मेवारियां होती हैं, हालांकि जिम्मेवारियां वो कोई जिम्मेवारी औरत को दे दो वो उसे पीछे नहीं हटती है।
0: बराबर।
1: जब वो माँ बन जाती है ना, तो 110% देना वो शुरू कर देती
0: है। जी जी।
1: तो वो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को आप कैसे दूर करते हो? अपने इरादों की मजबूती से, अपनी शुद्धता से, अपनी पवित्रता से, अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से
0: जी, जी, जी।
1: उनको सर करते, उनको जीत लेते। और आखिरकार ये मौका आया कि मैं बार बार मधुबन आने का मुझे संदेश मिलता है और मैं बड़ा खुश होकर आती हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं है। उसको पता है कि ये अब बाबा से जुड़ गई है तो ये अब हटने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है ना। शिव पिता परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन में इतना कुछ दिया जिसके हम शायद काबिल भी नहीं थे, है ना, जो हमने जो उसने हमें सोच दी, जो हमें विजन दिया। बाबा का विजन देखिए आप, कि सबसे बड़ा विजन जो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है कि एक नारी को, एक औरत को आगे बढ़ने का मौका।
0: जी।
1: समाज हमेशा हमेशा शुरुआत से ही उसके काम में रुकावटें डालता है, लेकिन औरत जो है ना वो मुझे लगता है मर्द से ज्यादा मजबूत होती है इरादों में। अगर वो ठान ले अच्छा और बुरा दोनों, अगर वो बुराई की तरफ चलेगी तो वो जम के बुराई करेगी, अगर वो अच्छाई की तरफ चलेगी तो वो उसका कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता।
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी।
1: तो बाबा ने हमें अच्छा करना सिखाया
0: जी।
1: तो औरतों को एक जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी बात कह सके। जो पीड़ित नारियां हैं, जो मतलब है पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला सके, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनको उनका शोषण ना कर सके मानसिक शारीरिक तौर पर, वो अपने आप को पवित्र और मजबूत बनकर एक अच्छा मिसाल बने समाज के लिए। क्योंकि औरत को कमजोर समझा जाता है कि वो किसी की बातों में जल्दी आ जाती है, वो भोली होती है या उसको पता नहीं होता कि उसका शोषण हो रहा है ना, लेकिन बाबा ने बहुत मजबूत कर दिया मुझे। और एक और रुकावट जो आती है जब आपकी शादी हो जाती है तो बाबा की तरफ आने के लिए, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि वो शादी करने से रोकते हैं, वो अपने नियमों से चलाते हैं, तो मैं हमेशा, मुझे ज्ञान हो गया ना, तो मैं बोलती हूँ कि बाबा कुछ, बाबा कहते हैं मेरे पास आओ, उस पवित्रता और सच्चाई से चलने का लेसन लो मेरे से। और वो कुछ नहीं बोलते कि आप शादी करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, है ना। और मेरे युगल जो है उनको आने में समय लगा, क्योंकि किसी नई चीज में आप जाते हो, परिवार पे बहुत सारे जो बोझ होते हैं ना, उनसे निकल कर मेरे साथ आई है। पिछली बार भी मेरे साथ आए थे तो वो पूरा सहयोग करते हैं ना, मुझे आने में जाने में रोक टोक नहीं है। उनको पता है कि वो एक अच्छी, बहुत बढ़िया, एक पवित्र जगह पर जा रही है जहाँ पे उसको प्यार मिलेगा, उसको रिगार्ड मिलेगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं उनकी भी आभारी हूँ, मधुबन रेडियो की आभारी हूँ, सोमनाथ भाई की आभारी हूँ, रमेश भाई की आभारी हूँ, भानु भाई जी की आभारी हूँ। तीन मेरे भाई हैं जिनका कोई मोल नहीं है, शायद मेरे जो खून का रिश्ता जो मेरा भाई है इतना मुझे उससे प्यार नहीं अब होगा जितना इन लोगों से है, क्योंकि ये आपको आपके मुताबिक आपको सत्कार देते हैं और हमसे प्यार लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैं शायद इनसे बड़ी हूँ तीनों से, तो मैं इनको बहुत आशीर्वाद देती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, जलंधर में बैठ के भी याद करती हूँ, मैं क्रेजी हूँ। तो ये तो ये इसलिए युगल मेरे साथ आए हैं, तो उनको भी गाने का शौक, हम इकट्ठा गाते हैं, सीनियर सिटीजन रूम हमें मिला हुआ हमारी सोसाइटी में, हम संडे को हर कोई भजन सुनाता है, कोई गीत सुनाता है ना, कोई कविता सुनाता है, तो हम जुड़े हुए हैं। तो युगल मेरे साथ आए हैं, पूरा 100% योग देते हैं उनके लिए, मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबके सामने। आप गवाह हैं बहुत बड़े, और सोमनाथ भाई भी गवाह है, तो वो गाने का शौक है तो आप अगर कहें, अगर आप इजाजत
0: जी जरूर जरूर
1: छोटा सा
0: इजाजत है हमें तो बहुत, और हमारे श्रोता भी उसका लाभ लेंगे।
1: आइए आइए, शुक्रिया सोमनाथ भाई जी,
0: आइए आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों कमले जी ने बहुत अच्छी तरह सुनाया उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े, जुड़ने के समय लोगों को मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती यहाँ जाने के बाद।

0: से होगा, क्या होगा, यहाँ की कल्चर कैसे, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों का जीवन खुशियों में बनता है और घर में एक सुखी परिवार, शांतमय परिवार बन जाता है। तो पूरे परिवार के साथ वो अभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए हैं। तो चलिए हम भाई साहब से भी एक गीत सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
1: ओम शांति, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं जलंधर से हूँ और पहले भी यहाँ आ चुका हूँ मधुबन में, और मधुबन रेडियो में एक बार पहले भी आए थे, उसमें भी छोटा सा गीत मैंने एक पेश किया था।
0: जी जी।
1: और एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से, एक हमारे संत बलबीर सिंह सिचे वाले हैं जलंधर में,
0: जी जी,
1: साथ ही एरिया सुल्तानपुर लोधी का, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं।
0: जी जी।
1: और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी जी।
1: और वहाँ स्कूल है, बच्चों को मैं इंग्लिश और मैथ पढ़ाता हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो बच्चे ठीक है, आज बाल श्रम निषेध दिवस है
0: जी,
1: हमें बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए, पर हमें उनको आदत डालनी चाहिए कि वो छोटे छोटे काम करें और सहयोग करें, सफाई करें, ताकि उनमें समझ आ जाए कि हमने वातावरण को साफ सुथरा रखना है।
0: जी जी जी।
1: और इससे वो काम करने की भावना उनमें आती है, कुछ
0: जी,
1: सीखने की, कुछ सेवा भावना आती है। तो काफ़ी सालों से वो बच्चे सारे श्रम अपना स्लम के बच्चे हैं जिनके लिए वो स्कूल खोला हुआ है।
0: जी जी जी।
1: चैरिटेबल ट्रस्ट है।
0: जी जी जी।
1: तो मैं काफ़ी सालों से उनको पढ़ा भी रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ वहाँ पर।
0: चलो अच्छी बात है कि जोसले मेरे के बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करके पढ़ाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी।
1: तो मधुबन रेडियो में आए हैं तो गीत भी मधुबन बग का ही होना चाहिए।
0: हाँ जरूर जरूर।
1: मधुबन

0: थैंक यू।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो इतना सुंदर आपने गीत सुनाया कि मधुबन खुशबू देता है और जीना उसका जीना है, जो औरों को जीना सिखाता है, खुशबू देता है, तो हमें भी इस गीत के आधार से यही समझ में आता है कि हमारा जीवन भी ऐसा खुशबूदार हो जो दूसरों को खुशियाँ दे, दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाए। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम कमलेश जी से जुड़ते हैं। कमलेश जी, हमारे श्रोताओं को आप और क्या क्या देना चाहेंगे?
2: श्रोता तो मेरी जान है,
1: जी
2: अगर मैं
1: जी
2: सच बताऊं तो। जैसा कि हम माइक से जुड़ते हैं तो इतने श्रोताओं से मतलब है लगाव था, उनके फ़ोन आते थे, उनसे बात होती थी, उनसे मिलते भी थे,
1: जी
2: और आज तक मुझे उन्होंने याद रखा हुआ है कि आपकी जो आपकी आवाज़ है ना,
1: जी
2: उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि आप
1: जी
2: कैसे हो, है ना, और
1: अच्छा
2: आप क्या सोचते हो, है ना,
1: जी
2: आपकी भावना क्या है।
1: हाँ
2: ये
1: हाँ
2: माइक जो है ना, बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है।
1: जी जी
2: और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी सोमनाथ भाई जी, कि जो आप कहते हो ना
1: जी
2: वो आप करो।
1: जी
2: अगर आपने खुशियाँ देने का सोचा है ना,
1: जी
2: तो खुशियाँ दो, फिर दुख मत दो।
1: जी
2: दुख वाला चैप्टर क्लोज होना चाहिए,
1: बराबर
2: है ना। और दूसरा, जो अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, आपके सोर्सेज के मुताबिक, उसको जी जान से करो,
1: जी
2: उसको मन से करो। मुझे याद है कि हमें जब ट्रेनिंग दी गई ना, तो हमें ये बोला गया था कि घर में आपकी जिम्मेवारियां बहुत होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जब आपने आकाशवाणी में एंटर करना है तो आपके सभी जो बोझ है ना, उसका एक बैग आपके पास बहुत भारी है, उसको बाहर पेड़ पे टांग के आना है, ठीक है। और जब माइक पे जाना है तो सब कुछ भूल कर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माइक से बात करनी है,
1: जी
2: पॉजिटिव बात करनी है। तो
1: जी
2: मैं माइक से बात कर कर के, पॉजिटिव बातें करके, मुझे ये लगता था कि कोई एक कान भी मुझे सुन रहा है, अगर
1: जी
2: उसका
1: जी
2: जीवन बदल जाता है, अगर उसको मन की खुशी मिल जाती है, अगर वो उसका मनोरंजन हो रहा है या वो कुछ सीख रहा है,
1: जी
2: तो वो मेरा जीवन सफल हो गया।
1: जी जी जी
2: तो इसलिए मैंने माइक को बहुत बहुत अपने करीब समझा, अपने दिल के करीब समझा, आपके मन के दिमाग के करीब समझा, कि मैं जो भी बोलूं मैं उसको जीवन में पहले धारण करूं,
1: जी जी
2: ना।
1: जी
2: अगर मैं झूठ बोलूंगी तो झूठ पकड़ा जाएगा, मेरी आवाज़ ही पकड़ा जाएगा,
1: बराबर जी
2: क्योंकि मैं
1: बराबर
2: जीवन में गलत कर रही हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव बोल रही हूं, तो
1: जी जी
2: वो
1: जी जी
2: लोगों को पता चल जाता
1: जी
2: है ना। ऐसे ही आपकी आत्मा जो है ना, वो बहुत बहुत ही पवित्र चीज़ है, बहुत पवित्र। और अगर आप उसके साथ धोखा करते हो,
1: जी
2: तो आपको एक बार तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया हुआ है।
1: जी जी जी जरूर
2: अगर
1: जरूर
2: बाबा भी कहते हैं, मुरलियों में कहते हैं
1: बराबर
2: कि अगर आप की अंतरात्मा कोई भी गलत काम करने पर जब हल्का सा आपको बोलती है ना कि ये गलत है, तो अगर उसको आप सुन लो और उसको मान
1: जी।
2: लो।
1: नमस्कार। हाँ
3: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ सर।
1: बोलिए मदन भाई, आज
3: जी
1: हमारे स्टूडियो में कमलेश जी आए हैं, उनसे भी बात करिए।
2: हेलो।
3: कमलेश जी नमस्कार, आपको वेरी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार भाई जी, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम तो बहुत छोटा सा ही है,
2: हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आप तो
3: मदन
2: बड़े हैं ना। हाँ?
3: मदन भाई है, मदन भाई।
2: मदन भाई, अच्छा।
3: हाँ
2: आपको एक बात
3: जी जी आ
2: बताऊं,
3: रहा।
2: एक बात बताऊं
3: हाँ
2: आपको
3: जी
2: मदन जी,
3: जी
2: आप मेरे ना मामा जी,
3: हाँ
2: मेरे माता जी के 6 भाई थे, उनमें से ना अभी तो 4 हैं, 2 तो चलो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनमें से एक मामा जी हमारे जो सबसे प्यारे मुझे मामा जी, वो मदन मामा जी हैं। क्योंकि जब छुट्टियां होती थी ना, जब स्कूल से छुट्टियां होती थी हमें, जब हम छोटे थे, तो जब छुट्टियां होती थी तो वो 2-4 दिन पहले ही हमारे पास आ जाया करते थे, हमारी दादी के घर में, कि हमने बच्चों को नानी के पास लेके जाना है।
3: क्या बात है, क्या बात है, आपने तो ये अच्छी बातें करके, खूबसूरत बातें करके, और हमारे भी बचपन और हमारे भी दादे मामा
2: याद आ
3: भाइयों
2: गए।
3: को याद दिला दिए,
2: जी जी
3: प्यारे
2: जी
3: प्यारे
2: और होता
3: आप
2: पता
3: ना
2: क्या था,
3: करेंगे
2: होता था ये कि जिस दिन लास्ट डे होता था ना स्कूल में, तो मामा को भी इतना शौक होता था कि मैं बच्चों को लेके जाना, और हमें भी फटाफट बैग उठाया और भाग के मामा के साइकिल पे बैठ गए और घर आए, खाना वाना खाया और फटाफट चलो जी नानी के घर। और हम ना साइकिल पे 5 किलोमीटर था हमारी नानी का घर, तो बहुत पेड़ थे रास्ते में और एक ना क्या उसको बोलते हैं नहर चल रही थी जी, साथ जी, में पानी की, तो हम उसमें साइकिल रोक के उसमें पानी में मुंह धोना और मामा जी ने हमें बड़े प्यार से मतलब कुछ खिलाना रास्ते में, कुल्फी खिलाना, ठंडा पानी पिलाना है ना, तो वो सब याद है। अब वो बेचारे बूढ़े हो गए है ना, अब बूढ़े हो गए और मुझे इतनी याद आती है उनकी, तो मैं हर थोड़े दिनों बाद उनको मिलने का मन होता है, कभी बार नहीं भी मिलने जा पाते, लेकिन जब हम जाते हैं तो उनकी आंखों में वो प्यार देखते हैं, बचपन का आशीर्वाद देखते हैं और दुआएं देते हैं, हम भी उनको दुआएं देते हैं। आत्मा को आत्मा की पहचान जब हो जाती है, प्यार मिलता सच्चा और सुच्चा, तो फिर हम एक दूसरे को आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो रिश्ता कोई भी हो,
3: क्या आपने तो इतना सब कुछ सुना दिया है कि मेरे एक एक घर में मामा मामी भाइयों को सबको याद कर रहा हूँ पूरे विश्व की। हाँ, और जहाँ जहाँ मैंने देखा है मामा मामी का प्यार और भांजों का, जब तक मैं इतना बाबे को कहता हूँ कि वाह बाबा वाह, तो आपको नमस्कार करते हैं आपको दिल से, और आपका दिल, आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आपका पूरा परिवार खुश रहे और आप जहाँ रहते हैं वहाँ सब कुछ रहे हैं, ऐसी शुभकामना। और इसके साथ एक गाना गाते हैं, आज जिनका भी जन्मदिन है इन सभी को नमस्कार करते हैं और आपका बहुत बहुत वेरी वेरी नमस्कार करते हैं और एक गाना गाते
2: हैं। नमस्कार, सादर नमस्कार।
3: प्यारा चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, वो चंदा मामा

0: बड़ा अच्छा गाना है
1: बहुत अच्छा।
0: और अभी जी अभी कंपनी में आवाज बहुत आती है, थोड़ा मजा और
1: एक एक,
0: आता
1: एक
0: ही है मजा तो मगर
1: हाँ जी मदन जी एक और बात के मामा जब हम बोलते हैं ना मामा मामा तो दो माँ माँ और माँ मतलब डबल हो जाता है ना
0: क्या बात पहले माँ
1: बिल्कुल माँ से प्यारा मा, मामा और मा। मामा से प्यारी माँ
0: क्या बात है माँ माँ थी जब तो मामा बना और मामा थी तो बहुत घुमा फिरा के बात है चक्कर घुमाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है क्या बात है मजा आ गया
1: बातों में खिलाड़ी है भैया
0: जी जी आपकी बहुत बहुत प्यारी आवाज है बिल्कुल मैंने सुनी भी ऐसी लग रहा है कि बस थैंक यू आपका दिन अच्छा जाए और बस
1: बचपन में आया हमारे बहुत बहुत शुक्रिया खुश रहो खुश रहो खुश रहो
0: जी जी जी
2: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि देखो श्रोताओं कि कितनी अच्छी बात मामा का अर्थ भी कितना अच्छा कमलेश जी ने बताया जी जी जी
1: जी हम हाँ जी सोमनाथ भाई जी सुनने वाले जो है ना वो हमें बहुत प्यार करते हैं
2: जी जी जी
1: वो हमारी आवाज को सुनना चाहते हैं कौन किसको प्यार करता है इस पापी दुनिया में करता है भाई
2: बिल्कुल नहीं
1: तो जो प्यार करता है उसको समेट लो उसको संभाल के रखो तो मैंने श्रोताओं को संभाल के रखा हुआ आज तक
2: जो हमारे जो रेडियो मधुबन को सुनने वाली वो तो हमारा एक परिवार जैसा है और सभी सवेरे से उनका प्यार मिलता रहता है जरूर फोन करेंगे जरूर याद प्यार लुटाते रहते हैं
1: हाँ जी, जी,
2: तो उनका एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि रेडियो मधुबन को सुने रेडियो मधुबन को फोन करे और हमारे सारे सभी आरजे को याद करते सारे आरजे से प्यार करते सारा रेडियो मधुबन को याद करते जी जी जी
1: तो और आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप करना चाहते हो उसको जी जान से करो और पूरी लगन से करो मन से करो है ना और एक जो सबसे बड़ी बात सोमनाथ भाई मैं नोट करती हूँ कि लोग कमाते तो हैं लेकिन खर्चीले भी बहुत हो गए हैं
2: जी जी
1: वो कहते हैं कि आज की जनरेशन जो है ना भविष्य में विश्वास नहीं रखती
2: जी।
1: वो सिर्फ प्रेजेंट को जीना चाहती है तो उसके लिए वो खाना बाहर से खाएंगे खूब पैसा लुटाएंगे और
2: जी जी।
1: बाहर दूर दूर घूमने जाएंगे बहुत खर्चा करेंगे कपड़ों पे खर्चा करेंगे जबकि पैसा जो है ना आज का जोड़ा हुआ पैसा जो अगली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एक पावर बन जाता है आप उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो अगर आज एक पीढ़ी ने अच्छा पैसा कमा के उसको जोड़ा हुआ है तो आपने कभी सोचा नहीं होगा जीवन में कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो एक अच्छा इंसान बना सकते हो अच्छा डॉक्टर बना सकते हो तो ये पैसा जो है ना ये जरूरत है हमारी इसको वेस्ट नहीं करने का
2: जी जी जी
1: बड़ी मेहनत से कमाया एक पीढ़ी कमाती है दूसरी उसको उड़ा देती है तो फिर क्या होता है फिर गरीबी देखते हो आप गरीबी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे
2: जी जी
1: है ना तो ये मटेरियल जो है ना ये मटेरियल है जो पैसा इसको भी बचा के बचत करके रखना है ताकि हमें जब जरूरत पड़े या किसी को भी कभी जरूरत होती है आपके पास जब आपके पास थोड़ा ज्यादा होता है ना पैसा जब आपके पास होता है पैसा तो किसी को आपसे कुछ उम्मीदें लग जाती हैं कि मैं अगर मुझे जरूरत पड़ी दुख में सुख में तो मुझे ये साथ देगा मेरा थोड़ा
2: जी
1: बहुत
2: जी।
1: जितना आप दे सकते हो अपनी हैसियत के मुताबिक तो वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है
2: जी जी
1: वो भी एक बड़ा सहयोग होता है जैसे हम यही आते हैं आप देख लीजिए इतना बड़ा इंतजाम है सोमनाथ जी इतना बड़ा इंतजाम है ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: आप देखिए चार जने घर में होना तो मुझे होता है कि सुबह क्या बनाऊं दोपहर को क्या बनाऊं शाम को क्या बनाऊं तो यहाँ पे बाबा का लंगर इतना खुला चल रहा है इतनी स्वच्छता से बन रहा है सेवादार इतनी सेवा कर रहे हैं
2: जी, जी, जी,
1: और पैसा कहाँ से आ रहा है पैसे से हो रहा है ना
2: जी, जी,
1: ये तो ये तो चाहिए हमें खरीदने के लिए नहीं तो फिर ये इतना बड़ा जो इतनी बड़ी दुनिया बाबा ने खड़ी कर दी है इसमें सबका सहयोग रहा अपने पैसे को कमाइए सही जगह लगाइए सही जगह थोड़ा ज्यादा भी खर्च हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो अच्छी जगह लगा वो फल देगा अच्छा फल देगा
2: बराबर, बराबर
1: अगर आप गलत जगह पैसा लगाएंगे तो वो निष्फल होगा
2: जी जी जी
1: आपको उसका कष्ट भी होगा मानसिक और जो है वेस्ट हो गया पैसा आपने मेहनत से कमाया था ये चीजें तो छोटी छोटी बातें हैं जीवन में अगर हम इनको अप्लाई कर लें तो हम भी सुखी रहेंगे और दूसरे भी सुखी रहेंगे
2: जी जी जी तो दोस्तों आज आप मिले हैं कमलेश जी से, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जलंधर पंजाब से, और बहुत सारे विदेश की भी बातें उन्होंने बताई, छोटी छोटी टिप्स दी कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, हमारे जीवन का आनंद कैसे लेना है। गीत भी उन्होंने गाया, उनके साथ युगल ने भी गीत गाया। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है नई किरण इस कार्यक्रम को यही पूरा करने का। कल फिर मिलेंगे नई किरण इस कार्यक्रम में, तब तक लेते हैं विश्राम। धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुबन रेडियो का सुनने वालों का, और सोमनाथ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: ओम शांति।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर खर्राटे आते हो तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप खर्राटों पर कंट्रोल कर सकते हैं। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, अगर आप कोई सिखाने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं सिखाने के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाएंगे। क्या सिखाने वाली हूँ वो अभी नहीं बताऊंगी, आप सुनिएगा कार्यक्रम, आशियाना जान जाएंगे। पर हाँ, हिंट दे देती हूँ, चटपटी रेसिपी है, ठीक है। और आज का

टंग ट्विस्टर बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसको आप अधिक से अधिक दो बार और कम से कम एक बार बोल के सुनाएंगे। तो ये सब कुछ सुनेंगे आज के कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। राजा शिवी की धर्मपरायणता, उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक में भी पहुंच गई थी। इंद्र और अग्निदेव शिवी की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिवी के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और इंद्रदेव बाज। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत पर दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अभी आपका शरणागत हूँ, मेरी कृपया रक्षा करें। शिवी ने कबूतर को निश्चिंत रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया, तभी वहां पर एक बाज आ पहुंचा और शिवी से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, ये कबूतर मेरा आहार है, मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था, मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं, आप मुझे मेरा आहार वापस कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, ये तुम्हारा आहार रहा होगा, किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ, विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने की व्यवस्था दी है, अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा। जो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है, उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है, आप ये पाप न करें। राजा शिवी ने कहा, तुम्हारी बातें सत्य है, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है, इसके बदले मैं तुम्हें अन्य मास का प्रबंध करा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय है, मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ, इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज की तर्कपूर्ण बातों से राजा शिवी निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं, किंतु प्रजा कल्याण में प्रयोग का अधिकार है। कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही रास्ता बताने का अनुरोध किया। बाज ने कहा, आप राजा है, मैं प्रजा, प्रजा का संतोषजनक पारितोषक जरूर दीजिएगा। शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है, मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट करके दे सकता हूँ।

इंद्र ने कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभय दान के बदले में आपने अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी कीर्ति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक ये पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर है। अग्नि ने भर दिया, मेरी प्रचंडता न आपको विचलित करेगी और न आपका अहित करेगी। देवता शिवी को वरदान देकर के स्वर्गलोक चले गए। अपने वचन पर अड़िग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। मैं हूं गायक कलाकार रामशंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशाना और आज बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो सिर्फ सोने वाले को ही नहीं बल्कि उसके आसपास सोने वाले को भी परेशान कर देता है। तो किसके लिए? खर्राटे। खर्राटे सिर्फ स्वयं को ही परेशान नहीं करते, आसपास में सोने वाले को भी परेशान कर देते हैं। तो आइए, क्यों आते हैं खर्राटे ये भी जानेंगे और इसके उपाय भी आपको बताएंगे। जब हम सोते हैं तो गले और जीभ की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, ठीक है। यदि श्वास का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाए तो हवा के आने जाने से कंपन पैदा होता है और खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। खर्राटों के मुख्य कारण है ज़्यादा वजन माने मोटापा, नाक बंद रहना, एलर्जी या साइनस की समस्या, पीठ के बल सोने की आदत, धूम्रपान या शराब का सेवन, पर्याप्त नींद नहीं लेना, बढ़ती उम्र के कारण गले की मांसपेशियों का ढीलापन। तो अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। आप क्या करेंगे, करवट लेकर के सोइएगा। निवारण आपको बता रही हूँ, करवट लेकर के सोइएगा। पीठ के बल सोने से खर्राटे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा निवारण है वजन को नियंत्रित रखिए। थोड़ा वजन कम करने से भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। तीसरा उपाय भी बहुत ही सुंदर है, सोने से पहले भाप लीजिए। यदि नाक बंद रहती है तो भाप लेने से श्वास का मार्ग है खुलता है। फिर बहुत ही सुंदर उपाय है, गुनगुना पानी पीजिएगा। रात में सोने से पहले गुनगुना पानी गले को आराम देता है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, सोने से पहले हल्दी वाला दूध लीजिए, ये गले की सूजन कम करता है। और बहुत ही सुंदर उपाय और भी, पर्याप्त नींद लीजिए। थकान और नींद की कमी भी खर्राटों को बढ़ा सकती है। लास्ट उपाय है, सिर थोड़ा ऊंचा रखकर सोइए। तकिया थोड़ा ऊंचा रखिए, इससे सांस लेने का रास्ता खुला रहता है। यदि खर्राटों के साथ सांस रुक रुक करके आती हो, दिन भर बहुत नींद आती हो, सुबह सिर दर्द रहता हो या अचानक घुटन महसूस होती हो, तो ये स्लीप एपनिया नामक समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिए। बाकी तो यही कहना चाहूँगी, अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मन, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही है। इसलिए खर्राटों को केवल मजाक न समझें बल्कि इसके कारणों को पहचानें और समय रहते उपाय अपनाएं। इसी शुभकामना के साथ आइए फिर से सुना देते हैं आपको आज का प्यारा सा टंग ट्विस्टर गीत। तो बाद में सुनाएंगे, आज का टंग ट्विस्टर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और फिर से दोबारा भी सुनना चाहते हैं तो आप फोन कॉल्स करके बता सकते हैं, तो हम दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार आपको बोल के सुना सकते हैं। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम लेने वाले ने आमों का भंडार लगाई। यह आपको दो बार, अधिक से अधिक दो बार बोल के सुनाना है, कम से कम एक बार बोल के तो सुनाना ही है, ठीक है। और अब फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आज का खुशनुमा जीवन का रख चुकी हूँ आपके समक्ष। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही की यही रह जाएगी मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान। तो बहुत ही सुंदर विषय है, देखते हैं कौन जुड़े है। हेलो हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सुरेश भाई?
1: बहुत बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: जी।
1: और टम टिस्टर भी आपने था पूछ लिया है, तो पहले तो मैं आपको टम टिस्टर सुना दूं, बाद में मैं विषय पे आता हूँ।
0: ठीक है।
1: की आम वाले ने एक बात दीदी बोल दीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर लो।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं सुना देती हूँ। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
1: आपने जो एक शब्द बोला, आम लेने आई या लेके आई?
0: लेने आई, लेकर के नहीं, वो खरीदने आई है ना, तो लेने आई।
1: ले, हाँ, लेने आई।
0: हाँ जी,
1: चलो अच्छा है, मेरा थोड़ा सा गलती हो थी इसलिए मैंने।
0: अच्छा,
1: हाँ, हाँ,
0: जी।
1: चलो अच्छा, मैं बता दूँ। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेके आई, लेने आई।
0: जी।
1: आम आशा आई तो आम वाले ने आमों की मौका भंडार लगाई। आम वाले आंगन में
0: शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्दों का ध्यान दीजिएगा
1: जी।
0: हाँ जी बोलिए।
1: आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आम लेने तो आशा आम आशा आई तो आम लेने ने आमों की आमों का भंडार लगा। इसमें
0: जी जी, फिर भी अच्छी कोशिश की, क्या बात है। आशा तालियां नहीं बज रही तो हम हाथ से ही बजा देते हैं।
1: जी, थोड़ा शब्द में मेरा उल्टा उठा गया है, वो क्या था नहीं चलिए।
0: जी जी, होता है, कभी ऐसा हो जाता है।
1: और जो आपने विषय बताया तो विषय बता दीजिए।
0: हाँ जी, विषय फिर से दोहरा देते हैं। विषय है बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही की यही रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान।
1: वो तो दीदी बिल्कुल सही है। देखो, हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी का साथ ऐसी प्रेम भाव से रहते हैं, और तो ही तो दीदी हम लोग याद करते हैं कि जी सब कुछ तो यही रह जाना है, धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला सभी यहाँ रह जाना है, लेकिन हमने किसी के साथ बिताया अच्छा वक्त, प्रेम भाव और हमारी अच्छाई, वही तो दीदी साथ आती है। लोग हम जाने के बाद लोग याद करते हैं, कैसे याद करते हैं कि हम अच्छे थे, अच्छा काम किया था, एक दूसरे के साथ खुश के खुश मिजाज से हमने बात की थी, और खुशी से हमने एक दूसरे को खुशियाँ बांटी थी, वही तो हम याद करते हैं ना हमको
0: जी।
1: वरना तो कोई याद ही नहीं करते। देखो, कई लोग ऐसे जाते हैं तो कोई कहते हैं कि चलो उसका जाने से तो अच्छा हुआ, वो किसी के साथ बोलता भी नहीं था, वो सुनता, वो अच्छी तरह से खुश भी नहीं रहता था, किसी के साथ अच्छा उसने बर्ताव नहीं किया है, तो इससे कौन याद करेगा दीदी
0: जी।
1: मैं बताऊं तो थोड़े दिनों की पहले की जो बात है दीदी, एक भाई हमारे अच्छा हो गया था, सभी लोग के मुंह पे एक ही जवाब था, चलो उस गया तो अच्छा हुआ, और किसी के साथ उसने अच्छा वर्तन नहीं किया, स्वभाव अच्छा नहीं था, किसी के वो बोलते थे कुछ दुकान से सामान लेने जाते थे तो ऐसे चिड़चिड़ाते बोलते थे, तो इसको कौन याद करेगा दीदी। तो अच्छा स्वभाव हमारा, अच्छा एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, किसी का सब अच्छा व्यवहार करते हैं,

0: तो हम लोग याद करते हैं हमको
1: जी,
0: ऐसे तो कोई याद नहीं करते हैं, तो बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी एक दूसरे जब तक हम है तब तक एक दूसरे के अच्छी तरह से बात करें, खुशियाँ मनाए, एक दूसरे की हेल्प करें
1: जी,
0: बस सब कुछ तो यही रह जाना है, बाकी
1: बिल्कुल
0: तो अच्छे है तो याद करेंगे वरना नहीं करेंगे दीदी। नमस्ते
1: जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुनाया है, कोशिश अच्छी की है आपने, शब्दों का तो थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर में शब्दों का ही खेल है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इसलिए देखते हैं कौन और भी बेस्ट सुनाते हैं। वैसे बहुत अच्छा सुनाया है आपने, बहुत बहुत आभार, और आप भी जुड़िएगा आज का टंग ट्विस्टर। देखें आप ऐसे मत सोचिए कि अरे कहीं शब्द स्लिप हो जाएंगे तो हंसेंगे, यहाँ कोई हंसने वाले नहीं है, यहाँ सब सीखने वाले हैं, ठीक है, और मोटिवेट करने वाले हैं कि क्या बोला है आपने, अच्छा ही बोले। देखिए कोशिश सभी को करनी चाहिए, ठीक है। हेलो
2: हेलो उषा बेन,
1: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार,
1: सुप्रभात।
2: बस ये दुकान पे है श्रेष्ठ जानती है जो कपड़े एक हाथ से बना रहे हैं और रेडियो भी सुन रहे हैं। अभी अभी सुरेश भाई ने जो बात बताई स्टम्प से सुनाया
1: जी,
2: मेरे क्या है कि भाई स्टम्प सिस्टम तो मैंने पढ़ा है वीडियो में इसमें भी
1: जी,
2: लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर बाद में सुनाऊंगा,
1: ठीक है।
2: और आज का
1: विषय है बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यहीं की यहीं रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है बहन जी, जो कई लोग देखो अभी एक भाई गुजर गया, अभी हमारे यहाँ स्मशान में हम गए थे
1: जी,
2: तो सभी बोलते थे कि भाई कुल मिला के ये जो करता था वो सब करता था ठीक है, लेकिन बोलता अच्छा था, अच्छा बात करता था, हंसी बोलता था
1: जी,
2: ये था तो सभी बात करते थे कि क्या लेने लेके जाना, बचपन में भी अभी भी बात हुई
1: जी,
2: सप्ताह हो गया है हमारे पड़ोसी ही था, तो ये साथ में आना आने वाला है
1: जी।
2: देखो मुस्कान ठीक है, तो पशु को कोई हंसते हुए देखा है, गाय सब हमारे है पशु
1: जी जी जी बिल्कुल, इंसान तो के चेहरे पर ही मुस्कान होती है,
2: मुस्कान नहीं है, एक मनुष्य को भी भगवान ने दिया है मुस्कान, बोलना ये आदत
1: जी,
2: ये सब मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि से इसको उपयोग करना, लेकिन कई लोग तो क्या है कि भाई कोई बोल जाते हैं ठीक है, अरे ठीक है तो बैठे हैं, वरना ठीक नहीं होते तो खटिया में नहीं होते, ऐसा जवाब देते हैं
1: जी
2: तो ये ठीक है, स्वभाव है अपना अपना, लेकिन बाद में कोई फिर खटिया में होता है तो फिर कोई बुलाने के लिए भी नहीं जाता है
1: जी
2: तो स्वभाव कुल मिला के अच्छा रखना
1: जी, बिल्कुल सही कहा
2: आपने, याद करें लोग
1: जी,
2: नहीं अच्छा अच्छा
1: जी। तो चलिए कंचन भाई बहुत बहुत आभार, बहुत ही आपने विषय को अच्छी तरह स्पष्ट किया है, टंग ट्विस्टर सुनाने की फिर से जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है।
2: थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।
1: हाँ जी हाँ जी, अभ्यास करके फिर जुड़िएगा, ठीक है। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है, आपने कहा है कि एक व्यक्ति है जो गुजर गया है, अभी कल ही अंतिम संस्कार था, तो अच्छे लोग होते तो उनकी तारीफ ही करते, और जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि बंदा ठीक नहीं था तो लोग बातें तो हर एक की होती है ना, तो कह रहे थे कि अच्छा रहा धरती का भार थोड़ा कम हुआ, अब क्या कहेंगे, बोलिए। एक नहीं अनेक लोग बात करते हैं, जब हमारा स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं होता है, हम देने की भावना नहीं रखते हैं, सबसे लेने की और छीनने की भावना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पता चलता ही है, सभी इंसानी है ना, समझ ही जाते हैं, और फिर अंदर ही अंदर लगता है कि कैसा बंदा है, कैसा व्यवहार करता है, लेने की भावना। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो सिर्फ लेना जाना है, उन्होंने देना नहीं सीखा, लेकिन लेने से आपको, आप महसूस करिए, खुद ही महसूस करिए, हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा और लेते समय हमारी आंखें नीचे झुक जाएगी शर्म के मारे, है ना। और छीन के लेना वो बात अलग है, छीन के लेने वाला तो वो इंसान है ही नहीं, लेकिन यहाँ मैं इंसान की बात कर रही हूँ कि लेने की जिनकी भावना है उनका हाथ तो नीचे रहेगा ना, हमेशा मांगने की मुद्रा में, आंखें झुकी हुई और चेहरे पर स्माइल नहीं रहेगी क्योंकि वो मांग रहा है, लेकिन देने वाले का देखिए आप, आंखें ऊपर की तरफ, आंखें भले वो देने वाले की तरफ कर रखा है, ठीक है, नीचे, लेकिन हाथ ऊपर की तरफ और चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि और वो है असली मुस्कुराहट, क्योंकि वो असली खुशी मिल रही है। इसलिए कभी अगर किसी ने कुछ दिया नहीं है तो देख करके देखो, फिर असली खुशी आती कि नहीं आती, आप रोज की खुशी देखो और देने के बाद की खुशी देखो, आपको खुद को अंतर नजर आएगा कि सही मायने में खुशियाँ आज मिली है। तो देने की भावना हमारी होनी चाहिए। चलिए इस विषय पर और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए और अपने विचार व्यक्त करिए। आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, उसको भी कोशिश करिए सुनाने की। मैं दोहरा रही हूँ, आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। ये आज का टंग ट्विस्टर है, अधिक से अधिक दो बार बोल के सुनाना है, कम से कम एक बार, और यही पर एक अल्फिराम लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है। नदियां अपना जल बांटती है, वृक्ष अपनी छांव, फूल बांटते हैं खुशबू, यही प्रकृति का स्वभाव। इंसान भी यदि प्रेम और सम्मान बांटना सीख जाए तो हर घर बन जाए खुशियों का गांव। बहुत ही सुंदर विषय है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जिसको भी मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देख कर के अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, तो हम आपको स्पेस दे करके सुनाएंगे ताकि आप लिख सको, ठीक है। बाकी कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि टंग ट्विस्टर ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जो जुबान के एक्सरसाइज करवाते हैं। बॉडी के एक्सरसाइज तो हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन फर्राटेदार बोलने के लिए जुबान की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए टंग ट्विस्टर सुनाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा, नहीं तो वॉइस मैसेज तो आप भेज ही सकते हैं, वो भेज दीजिएगा। विषय बहुत ही सुंदर है, देना सीखिए। लेना लेना लेना लेना क्यों बोझा चढ़ाना, कितना लेंगे। कहते ना, लेने वालों का कभी न पेट भरता है ना मन भरता है, लेते ही जाता है, लेते ही जाता है, चाहिए चाहे नहीं चाहिए, ऐसा है। और देने वाले भी हैं दुनिया में, सब तरह के लोग होते हैं। देने वाले हमेशा उनका मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है कि चलो कुछ नेक कार्य किया है। लेने वाले का मन हमेशा भारी रहेगा, अरे मैंने उससे लिया, उससे कर्जा चढ़ा दिया, उससे देखो मांगना पड़ा मुझे, देखो मुझे आज उनके सामने हाथ फैलाना पड़ा। किसी के भी लिए, चाहे ज़रूरी नहीं कि हम पैसा ही मांग रहे हैं, हम खाने का मांग रहे, चाहे कुछ भी, घर परिवार में रहते हैं, कभी शक्कर कम हो गई पड़ोसी के या जाते लेने, तो भी कैसे हम एकदम आवाज़ को नीची रख करके बोलेंगे, अच्छा आज हमारी शक्कर ख़त्म हो गई, थोड़ी सी शक्कर देंगे क्या, है क्या आपके पास ज़्यादा, कितना मतलब एक मांगने से पहले कितने संकल्प चलेंगे, और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब नहीं है, मार्केट में जा नहीं सकते, वो बात अलग है, ठीक है, कि ये एक हमारा व्यवहार है, हम पड़ोसी से ले रहे हैं दे रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी किसी के चेहरे ऐसे फुले होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो इनके ऊपर ही है, सारी दुनिया का बोझ इनके ऊपर ही है, कभी हंसते ही नहीं है। और कभी कभी वो हंसते तो बड़े अच्छे लगते हैं कि अरे चलो आज तो फलाना बंदा हंसा। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलना हुआ, तो देखा कि एक बच्चे के पापा मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे, तो वो बच्चा खुश हो गया, अरे दीदी देखो देखो आज मेरे पापा हंसे। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई, हंसना इंसान का स्वाभाविक नेचर है और हंसना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं दीदी, मेरे पापा कभी हंसते ही नहीं है, बहुत कम हंसते, लेकिन आज हंसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो नन्हे मुन्ने बच्चों को भी कैसा अच्छा लगता है, तो सोचिए मुस्कान चेहरे पर होगी तो ये भी हम किसी को जैसे कि खुशियाँ दे रहे हैं, है ना। तो बच्चों को अच्छा लगता है तो फिर बड़ों को क्यों नहीं लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा मुस्कुराता चेहरा, ठीक है। और ठीक है, धन दौलत की बात अलग है कि भाई कोई धन दौलत का दान करते हैं, अपना अपना सामर्थ्य, लेकिन भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो फलाना व्यक्ति बांट रहा है तो मैं उससे लेने जाऊँ, मैं पहुँच जाऊँ, या क्या करूँ मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो मैं भी बांटता, तो ये भावना अच्छी है बांटने की, चाहे बांट नहीं पा रहे हैं परिस्थिति बस, लेकिन भावना तो श्रेष्ठ है ना, कि मेरे पास होता तो मैं भी बांटता। तो कोई बात नहीं, धन दौलत नहीं है तो खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, छोटे मोटे कामों की मदद कर दीजिए। मुझे यहाँ पर एक दृष्टांत याद आ रहा जो आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार ट्रेन में एक बहुत बड़ा व्यापारी बैठा हुआ था, और एक व्यक्ति आया, वो अपनी चीज़ों को, पानी की बोतल लेकर के आया था, पानी की बोतल सभी को दे रहा था, लेकिन लेने वाले कोई नहीं थे, वो मतलब बेचना चाहता था, उसको बहुत ही आवश्यकता थी, तो वो सेठ जी के पीछे पड़ गया, सेठ जी ले लो ना, लंबी सफ़र है आपकी, एक बोतल ले लो ना। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा, सुने का अनसुना कर दिया, फिर बार बार कह रहा था तो बोले कि अच्छा ले तो लूँगा, लेकिन खाली पानी की बोतल लेने से काम नहीं चलेगा। तो बोले कि और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसी दयनीय स्थिति, चेहरे पर तो झुर्रिया तो नहीं है, लेकिन ऐसा चेहरा लटकाए रख रखा है कि जैसे झुर्रिया हो पड़ी हुई हो, उदास चेहरा। तो बोले कि भाई पानी की बोतल तो मैं लूँगा और डबल दाम दूंगा, लेकिन एक चीज़ और मुझे चाहिए। बोले अच्छा, एक और चीज़ तो मेरे पास कुछ है ही नहीं पानी के अलावा, देखिए आप मेरे पास है ही नहीं। बोले कि नहीं है, तुम्हारे पास ही है और वो मुझे चाहिए। वो आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी आपको क्या दिख रहा है मेरे अंदर, मैं तो देखिए पानी की बोतल के अलावा मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। बोले कि है, उदास चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, पहले मुस्कुराहट के साथ आओ तो फिर मैं पानी की बोतल खरीदूंगा। फिर वो समझा, फिर उसको समझाया कि इस तरह उदास चेहरे से कोई नहीं खरीदेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, एनर्जी के साथ बात करो, देखो तुम्हारी बोतलें फटाफट बिक जाएगी। और सचमुच वो सेठ जी को एक बोतल दे करके गया, आगे गया, सारी बोतलें उसकी बिक गई, वापस आया तो सेठ जी के पैर छुए। सेठ जी ने कहा क्या हुआ, पैर क्यों छू रहे हो? अरे सेठ जी आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, मैं तो हंसता हुआ गया तो सभी ने बोतल खरीद ली और मेरे पास एक भी बोतल नहीं रही, बल्कि और ज़्यादा होती तो भी बिक जाती। तो कहने का भाव यही है कि कुछ नहीं दे सकते तो चेहरा तो खुशनुमा रख सकते हैं ना, इसमें तो हमारा कुछ लूटने वाला नहीं है, है ना। खुशनुमा चेहरा भी लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि वाह भाई आज तो किसी से पल्ला पड़ा है, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ बात की, मन बड़ा खुश हो गया। और एक उदासीन व्यक्ति को देख करके कहेंगे कि ये तो पता नहीं किसका मुंह देखा है ना। तो फिर ये बांटिए, बाकी देने की भावना रखिए, कोई भी आप ज़रूरी नहीं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये भी देखा था कि एक जैसे मजदूरी करते हैं माता पिता, उनके बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे, तो बच्चा खाना खा रहा था कि कुत्ते का पिल्ला है जो उसके पास आ गया, रोटी पकड़ा रखी थी, रोटी खा रहा था बस वो ऐसे ही हाथ से ही, और कुत्ते का पिल्ला आ गया। अब कुत्ते के पिल्ले की भी इच्छा थी खाने की, या उसको ऐसा लगा, उसने क्या किया, अपनी रोटी, एक रोटी वो फोल्ड करके खा रहा था। बचपन को याद कर लीजिए जब हम भी खाते थे, है ना, फोल्ड करके, तो फोल्ड करके खा रहा था, तो उसको आधी तोड़ी, आधी पिल्ले को दे दी, आधी खुद खा गया। देखिए ऐसी गरीबी में भी बच्चों का स्वभाव देखिए, उसको देख करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि देखो इस बच्चे के देने की भावना कितनी अच्छी है कि उस पिल्ले को आधी रोटी दे दी, आधी खुद खा ली। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, लेकिन देना ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। देने से कभी भी कम नहीं होता, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और लोगों से उधार ले ले करके कर्ज के बोझ तले दबेंगे तभी दिवाला पड़ेगा। बाकी देने वाले कभी नहीं हारे और वो कभी उनके ऊपर बोझा नहीं चढ़ता है, देने वाला हमेशा आगे ही जाता है। तो चलिए इस विषय को यही समाप्त करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ना चाहते तो आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। यह आज का टंग ट्विस्टर है और हमारे एक बहन ने वॉइस मैसेज के साथ टंग ट्विस्टर भेजा है, तो उनकी आवाज़ में आपको टंग ट्विस्टर सुना देते हैं।
1: जय श्री कृष्णा, सुप्रभात, ओम शांति। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वालों ने आमों का भंडार लगाई। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके लिए। ये दीपा सोमानी कपासन से आपने वो इस मैसेज भेजा है, बहुत बहुत आभार और थैंक यू दीपा जी। और अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज मैं आपको सेव पूरी सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। चटपटी चीज़ का नाम लिया था कि चटपटी चीज़ सिखाऊंगी, तो चटपटी में सेव पूरी बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी है, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मुंबई की रेसिपी है। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह प्रख्यात हो जाता है। कोई भी एक जगह की चीज़ है वो सब तरफ फैल जाती है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, बाहर के बहुत सारे राजस्थान में काम करते हैं, तो इसे एक दूसरे की चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। वहाँ के काम करने वाले यहाँ आकर ठेले खोलेंगे, कैंटीन खोलेंगे, यहाँ के लोग बाहर जा कर के, ठीक है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ सेव पूरी में। आप क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको पूरियाँ बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। आप आटा लीजिए, पूरी बनाने के लिए आटा लेना है। आटे को छान लीजिए। देखिए सामग्री और रेसिपी साथ ही साथ सिखाऊंगी। तो आटा लिया, आटे में आप अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा नमक, और अब आप अच्छा सा मोमन डालिए तेल का, और फिर अच्छी तरह मिक्स करके फिर पानी से टाइट गूंदिए। टाइट गूंद लिया, अब इसको एक तरफ रख दीजिए गीले स्वच्छ कपड़े से पलेट करके। अब इधर आप मसाले की तैयार कर लीजिए। तीखी चटनी बनानी है आपको तो हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, ये आपको तीखी चटनी बनाने के लिए ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आप तीखी चटनी बना करके पीस लीजिए। साथ ही साथ मैं सिखा ही देती हूँ ना, ताकि आप आराम से बना सको। तो धनिया ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, अदरक लीजिए, फिर तो चाहे तो आप दो तीन काली मिर्च, दो तीन लौंग भी आप डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। और इसमें थोड़े से आप जो दाल आती है ना, चने की दाल, वो खाने वाली नहीं, जो हम भूंगड़े की जो दाल होती है, जो इडली में डालते हैं, इडली की चटनी में, वो वाली थोड़े से वो भी दाल डाल दीजिए। और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें ले लीजिए और क्रश करके रख लीजिए। नमक तो आपको डालना ही है स्वाद के अनुसार। तो ये बन गई तीखी चटनी। अब आप इमली की चटनी भी बनाइए साथ ही साथ। तो इमली की चटनी आपको सिखाया, फिर भी आपको सिखा देती हूँ। इमली और खजूर लीजिएगा, और इमली को पहले ही भिगो दीजिए कम से कम दो घंटा, और साफ़ करके, ठीक है। खजूर और इमली को बीज बीज निकाल करके एकदम साफ़ करके भिगोना है। भिगोने के बाद अब आप मिक्सर में क्रश कर लीजिए, भले हैंड मिक्सी से आप क्रश कर लीजिए, ठीक है। और इसमें गुड़ डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, नमक डाल दीजिए और अच्छी तरह हिला कर रख दीजिए। तो ये बन गई इमली की चटनी। छोक इसका नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो तीखी चटनी तैयार है, इमली की चटनी तैयार है। अब आप आलू बॉईल करिए। आलू बॉईल करके उसको भी थोड़ा सा मैश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आलू बॉईल कर दिया। अब आप बारीक सेव तैयार रखिएगा। और अब आप क्या करेंगे, इधर जो हमने आटा गूंद करके गीले कपड़े में पलेट के रख रखा है, तो इसको एक बार फिर से अच्छी तरह व्यवस्थित गूंद लीजिए। फिर आप इसका लुआ बनाइए बड़ा सा, और भले थाली लीजिए, भले कचरोट लीजिए, कचरोट जिसको परात कहते हैं, पीछे की साइड में आप पलेथन लगा करके अच्छी तरह इसको बेल लीजिए बड़े सा। रोटी तो छोटी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी आपको बेलना है, पर पतली, ठीक है। बहुत पतली भी नहीं, लेकिन मोटी भी नहीं, रोटी की तरह, रोटी से थोड़ी पतली आप बेल लीजिए। बेलने के बाद अब आप एक छोटे, भले कटोरी हो, किनोर वाली चाहिए, भले ग्लास हो, जो भी है, उससे आप गोल गोल राउंड में काट दीजिए। तो आपके एक साथ में कितनी पूरियाँ तैयार हो जाएगी। एक एक छोटी छोटी पूरी बेलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इकट्ठी बेल देंगे ना तो बहुत सारी पूरियाँ एक साथ में निकल जाएगी। तो फिर काट करके बस आप निकाल दीजिए उन पूरियों को, और दूसरा जो आटा बचा है उसका वापस लुआ बना दीजिए, दूसरे आटे में मिला करके इसी तरह वापस रोटी बेल करके काट लीजिए और इनको तेल में तल लीजिए। तलना है आपको हल्के हल्के ब्राउन बादामी कलर की हो जाए दोनों तरफ से, ऐसा कलर आ जाए फिर आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये पूरियाँ भी तैयार हो चुकी है। अब पूरी के ऊपर आप सबसे पहले आलू का मसाला रखिए, मतलब आलू जो बॉईल किया है उसको मैश करिए। उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दूसरी चीज़ों में डाल रखा है, तो बस खाली उसको मैश कर दीजिए और मैश किया हुआ आलू रखिए पूड़ी पर। और अब आप इसके ऊपर डाल दीजिए तीखी चटनी, फिर डालिए इमली की चटनी, फिर आप डालिएगा आपको बारीक काट के रखना है टमाटर, टमाटर डालिएगा। ठीक है, और फिर दही डालिएगा थोड़ा। अब आप बारीक सेब डालिएगा और पहले धनिया डाल दीजिए, धनिया पत्ती अच्छी तरह धुलाई करके साफ करके काट के धनिया एक तरफ रखिए, धनिया डालिए। और अब आप डालिएगा लास्ट में बारीक सेब और फिर पिरसिएगा। जिनको भी सर्व कर रहे हो सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और वयस्क भी आराम से खा सकते हैं। बुज़ुर्गों के लिए थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी, अगर दांत नहीं है तो वो पूरी खा नहीं पाएंगे, और दांत है तब तो वो भी आनंद ले सकते हैं। आजकल तो वैसे ही दांत नहीं होते तो नकली दांत बिठा देते हैं ताकि हर एक चीज़ खा सके, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुविधा साइंस ने निकाली है नकली दांत बिठाने की, तो उसके द्वारा आप हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह सेव पूरी तैयार हो चुकी है, जिसकी विधि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूरी के आटे के लिए मैंने कहा, देखिए वैसे तो मैदे की पूरी बनाई जाती है, लेकिन अनावश्यक मैदा क्यों खाना है? जहाँ भाई मैदे के बिना वो चीज़ बन ही नहीं सकती, वहाँ पर आप मैदा यूज़ करिए। जहाँ मैदे के अलावा भी ऑप्शन है तो फिर मैदा आप इग्नोर करिएगा, मैदा कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जैसे कचौरी है, समोसा है, अब वो मैदे के बिना नहीं बनेंगे तो वो बात अलग है, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन सेव पूरी में ऐसा कुछ नहीं है, मैदा नहीं होगा तो भी चलेगा। आटा लीजिए, आटे को छानिए, फिर आटे में नमक और हल्का सा अजवाइन डालिए और मौन डालिए तेल का, और आवश्यकता के अनुसार पानी डालकर टाइट इसको गूंद लीजिए। ठीक है, फिर आप इसको तो ढक के रख दीजिए गीले कपड़े से, और मसालों में आप तीखी चटनी बना दीजिए। तीखी चटनी में पुदीना, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डाल करके क्रश कर लीजिए मिक्सर में। तो ये बन गया, तीखी चटनी बन गई। इमली की चटनी बनानी है, इमली खजूर को साफ करके इसके बीज निकाल करके धुलाई करके भिगो के रख दीजिए। घंटा दो घंटा भिगने के बाद आप भले मिक्सर में क्रश करिए, भले हैंड मिक्सी चला लीजिए, और एक रस हो जाए छान लीजिए, जूस की जाली से इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें हल्का सा नमक मिला दीजिए और गुड़ मिला दीजिए। ठीक है, गुड़ ज़रूरत है तो, क्योंकि खजूर डाली हुई है तो आवश्यकता हो तो ही आप गुड़ डालिएगा। तो ये बन गई इमली की चटनी। फिर आप आलू बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद इसको मैश कर दीजिए छिलके निकाल करके। ठीक है।

सभी पूरियों पर चाकू से पतले पतले चीरा करना है ताकि वो पूरियाँ फूले नहीं। हम क्या है कि सेव पूरी बना रहे हैं ना, तो पूरी फूली हुई नहीं चाहिए, इसलिए बारीक बारीक चाकू के किनोर से थोड़ा सा खड्डे कर देना है ताकि तलते समय वो फूले नहीं। और फिर जब ये पूरियाँ निकालो तो आटा का तो जो साइड में से कटिंग होती ना, उसको आप वापस लुआ बना करके बेल दो और इसी तरह पूरियाँ बना दो और इनको तल लो। तल करके बादामी कलर की दोनों तरफ से हो जाए सुनहरी सुनहरी निकाल दीजिए। और अब आप पूरी पर मैश किया हुआ आलू रखिए और आलू के ऊपर तीखी चटनी डालिए, इमली की चटनी डालिए, अब आप टमाटर बारीक कटा हुआ डालिए, अब आप दही डालिए और धनिया डालिए, फिर आप डालिए सेव, बारीक सेव, और बस आप सर्व कर सकते हैं। हाँ, खाते समय आपको तैयार करके रखनी है प्लेट, क्योंकि अगर पहले रख देंगे तो पूरी नरम पड़ जाएगी, नरम पड़ जाएगी तो खाने का सारा ही मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो इस तरह ये सेव पूरी तैयार हो चुकी है। पहले हम अपने इष्ट देव को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद ही फिर हर कोई आनंद ले सकता है सेव पूरी का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, लेकिन उसके पहले अलका जी काबरा चित्तौड़गढ़ कप्पासन से, आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुना, मतलब भेजा है, तो सुन लीजिए उनका भी।
5: अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुनकर आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाया। आम वाले ने आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुनकर आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
4: बहुत सुंदर, तो ढेर सारी तालियां। तो प्यारे श्रोता बंधु, अब आप सभी से अनुमति चाहेंगे। आज के कार्यक्रम था, आपने सुनाई है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, खराटे आते हैं तो क्या करना चाहिए आप सभी ने जाना है, तो आप ज़रूर जो भी नुस्खा अच्छा लगा हो उसको आजमाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और रेसिपी में जो आपको सेव पूरी बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, फिर कौन जुड़े हैं उनका भी नाम बताऊंगी। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों की भंडार लगाई। तो अब मैं खुद के लिए भी ताले बजाऊं। फिर जुड़े हैं टंग ट्विस्टर में सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया है, मतलब बहुत अच्छी कोशिश की है आपने। फिर कंचन भाई जुड़े, लेकिन उन्होंने टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया। और दीपा सोमानी, अलका जी आप जुड़े हैं, आपने भी टंग ट्विस्टर अच्छा सुनाया है। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, तो आप दोनों के लिए ढेर सारा। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है, अगर आप विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण काम कीजिए, बस स्वयं को परिवर्तित कर लीजिए तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, कल क्या है, कल शनिवार है, शनिवार को क्या रहता है अंताक्षरी कार्यक्रम। और कल भी देखिए पुरुषोत्तम महीना के लास्ट दिन चल रहे हैं, कल एकादशी थी, आज 12 है, कल 13 है, वो दो तीन दिन में ये अदक मास है वो खत्म हो जाएगा। तो कल भी भजन की थीम ही रहेगी, आध्यात्मिक गीतों की थीम, ठीक है। इसमें शब्द देंगे आपको, फिर शब्द से आपको सुनाना है, ठीक है। कुछ हट करके खेलेंगे, इसलिए कल जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और अभी हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे, तो मिलेंगे कल तक। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के हम आप सभी के बीच में आते हैं। कुछ ऐसी बातों को हम सुनते जो हम जानते भी हैं, लेकिन करना और जो लोग करते हैं उनको जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वाह, क्या जिया है इन्होंने अपने जीवन को। दोस्तों, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन किस ओर जा रहा है और उस परिवर्तन से क्या हमारा सम्मान बढ़ रहा है समाज में, अपने व्यक्तिगत परिवार में और जीवन में, और उस परिवर्तन का एक जरिया हमें भी पता चले तो क्यों ना हम भी फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही अनोखी बातों को लेकर के हमारे मेहमान हमारे बीच में आए हैं। हमारे साथ है श्री राम त्यागी जी। आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले दो दशकों से। दोस्तों, श्री राम जी राजस्थान से हैं और पिछले दो दशकों से जो माउंट आबू या शांतिवन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आध्यात्मिकता से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके जीवन की ये यात्रा कैसे रही है, आइए जानते हैं। श्री राम जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप राजस्थान से हैं और ये राजे रजवाड़ों की इस शहर में रहते हुए आपका बचपन कैसा बीता, लौकिक परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और वहाँ से आपको इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक संपर्क या रुचि कैसे बढ़ी वो बताइए।
1: थैंक यू, फिर से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
0: जी।
1: मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा, और किसान जो परिवार होता है वो किसान है मेरे पिताजी, और हम लोगों में जो हमारी एक जाति है त्यागी, उसमें सब जमींदार लोग होते हैं। जमींदार माना उनके पास जमीन बहुत होती है, और जमीन के ऊपर इन लोगों को बड़ा ये रहता है कि हमारे पास तो जमीन है, और जमीन के होते हुए भी अगर हमारे देखा जाए तो मेरे से भी बड़े जो मेरे भाई थे ताऊ के लड़के, उनको एक नौकरी का ऑफर आया, वो भी उन्होंने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे यहाँ तो खुद लोग नौकरी करने आएंगे, हम किसकी नौकरी करेंगे, ऐसा नशा रहता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, हम उसमें पले हैं वातावरण में, तो काफी स्वाभिमानी वातावरण रहता है, वो परिवार काफी अच्छा, सब लोग गाँव के हम लोग हैं तो मिलनसार होते हैं गाँव में, कोई किसी भेदभाव ज्यादा द्वेष नहीं होता है, मिलजुल के रहते हैं। किसान फैमिली में पढ़े लिखे तो ज़्यादा पढ़ाई में इतना ये नहीं होता है, सब खेती में लग जाते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाने का बहुत हमको प्रयत्न किया जिसके कारण हम बीए तक पढ़ाई किया। पढ़ाई के बीच बीच में हम जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, खेल में जाना, स्कूल में ये वो सब चलता था। हमको आठवीं क्लास तक तो सब नॉर्मल जीवन, क्योंकि हम सोचते थे कि हम शहर में जाएंगे। जब हमारा एक गाँव में एक स्कूल था और वो स्कूल था आठवीं तक, ये नाइन्थ हो जाएगा तो हम शहर में जाएंगे, बड़ी एक इच्छा थी शहर में जाने की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम नाइन्थ में आने वाले थे वही स्कूल हमारा
0: अपग्रेड हो गया,
1: अपग्रेड हो गया, हमने कहा अभी भी नहीं जा पाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो नाइन्थ टेंथ पढ़ा।
0: ये कौन सी गांव की बात है?
1: ये हमारा गांव पड़ता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मनिया के पास एक चैना का पूरा गाँव है।
0: अच्छा।
1: वहाँ दयरी स्कूल था हमारा, और वो स्कूल में ही हम शुरू से पढ़े
0: जी,
1: तो वो अपग्रेड हो गया। फिर हमने सोचा चलो कोई बात, दसवीं तक पढ़ के इलेवेंथ में तो हमको जाना ही है शहर के अंदर, टाउन में जाएंगे। तो जैसे ही हम टेंथ में आए तो वो इलेवेंथ का उसमें क्लास शुरू हो गया, फिर से अपग्रेड हो गया, माना ट्वेल्थ तक वो पहुंच गया
0: जी।
1: हमारा ये इच्छा पूरा ही नहीं हो पा रहा था, हमने कहा बारहवीं तक पढ़ने के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने हमारा इच्छा था कि हमको शहर में पढ़ने जाना है, कॉलेज करना है। उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज किया
0: तो कॉलेज पढ़ने कहाँ गए?
1: कॉलेज हम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा
0: जी,
1: जो मेन डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें हम कॉलेज करने गए, जो गवर्नमेंट कॉलेज था, काफ़ी बड़ा कॉलेज था। और कॉलेज में भी हमारा ऐसा ही डिसिप्लिन रहता था स्कूल जैसा, वहाँ के जो कुलपति थे वो काफ़ी अच्छे थे, डिसिप्लिन करते थे, तो हमको ज़्यादा ये अंतर लगा नहीं कॉलेज और उसमें स्कूल में, क्योंकि धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उससे विलेजेस बहुत जुड़े हुए हैं, वहाँ कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ शहरी वातावरण हो, लेकिन हाँ वहाँ गाँव जैसा वातावरण अच्छा है, माना शांति है, कोई ज़्यादा क्राइम नहीं है। हालांकि वो चंबल घाटी के उसमें आता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा, वहाँ काफी डाकू लोगों का होता है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता है, वो तो बाहर से किडनैप करके लाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे, फिर पुलिस उनसे कुछ रास्ता अपना मुठभेड़ करती रहती है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं, चाहे रात में जाएं चाहे दिन में जाएं। तो हमारा जीवन है ना, हमने कहा जब हम संगति में पढ़े ना ट्वेल्थ क्लास के बाद, जैसे बाहर आए ना हम, थोड़ा बीच बीच में हमारा कंपनी ऐसी मिली, दोस्तों की मिल जाती है शहर में आए तो, थोड़ा तम्बाकू खाना, पहले सुपारी खाया फिर गुटखा खाया, फिल्म देखना, हम फिल्म 10th क्लास तक तो हमने हॉल थिएटर नहीं देखा था कि थिएटर क्या चीज होती है। 8th क्लास तक हमने टीवी हमारे गांव में टीवी नहीं होता था
0: जी।
1: हमारा टीवी हमारे आया, उसमें हमने महाभारत देखना शुरू किया
0: जी।
1: महाभारत से हमने टीवी शुरू किया है, पहले रामायण तक हमारे गांव में टीवी नहीं था।
0: अच्छा।
1: एक ही टीवी हुआ करता था, उसमें सब लोग गांव से काम छोड़ करके वहां बैठ करके एक घंटा वो महाभारत देखते थे
0: जी। तो जब आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे धौलपुर में, तो फिर आप हर दिन अप एंड डाउन करते थे या धौलपुर में रहते थे?
1: अप एंड डाउन करते थे, हमारे घर से 17 किलोमीटर है कॉलेज।
0: अच्छा,
1: तो हम साइकिल से जाते थे
0: जी।
1: 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर जाना 17 किलोमीटर आना। मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल, एटलेस साइकिल चलती थी, बहुत अच्छी साइकिल, तो हाँ उससे जाते थे हम, वो अप डाउन करते थे
0: जी।
1: और वहीं रहते रहते हमने फिर उसके साथ कंप्यूटर भी सीखा। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे दोस्तों की कंपनी में हमने थोड़ा गुटखा खाना तम्बाकू खाना वो आदत हो गया, चुपके चुपके खाते थे, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद जब हम स्कूल छोड़ा उस समय के बाद, तो हमको एक था कि हमें कुछ करना है अपना, घर वाले बोलते कुछ करते नहीं हो, हर चीज सीखी हमने। मैंने लाइट का काम भी सीखा, प्लम्बरिंग का काम सीखा, सारा काम सीखा। बाद में मैंने ड्राइविंग सीखा, मैंने ड्राइविंग ट्रक से सीखना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब हम ट्रक में गए ना, तो वहां पे हमको ना एक अलग आदत हो गई, जो हमें ट्रक सिखाने वाला था वो दारू पीता था। उसके साथ उसने बोला कि आप घी की रोटी खाओगे या, मैंने देखते हैं, उसने बोला गाड़ी में हम घी का डब्बा रखें या दारू की बोतल। मैंने घी तो बहुत खाया, दारू पी लेते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि वो एक होता था कि क्या होता है इसमें,
0: एक क्यूरियोसिटी थी
1: वो। तो 6 महीना हमने ट्रक सीखा। 6 महीने के बाद कुछ घर में ऐसा हादसा हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वो छोड़ के घर पे आया। मेरे भाई गवर्नमेंट जो रोडवेज होता है यूपी में, उसमें चालक थे
0: जी,
1: ड्राइवर। उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं आया घर पे, तो वो आदत मेरे को बनी हुई थी, तो कभी कभी मैं वो पीता था, वो ट्रक सीख लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से उनको एडमिट करा के आ रहा था, तो वही जिस गाड़ी पे सीखा था वो आगरा से मुझे गाड़ी धौलपुर के लिए मिली, वही मिल गया। मैंने किराया लगेगा नहीं, अपना ही उस्ताद है, मैं बैठ गया उसमें। बैठने के बाद हमने पी लिया दारू, फिर हम चलाने लगे गाड़ी, तो एक रास्ते में सामने से एक फौजी की गाड़ी आ रही थी और इधर से मेरी गाड़ी, और हमारी गाड़ी का थोड़ा सा स्क्रैच हुआ साइड से,
0: तो
1: हम रुक करके वहीं पे उनको उतर गए फौजियों के सामने। लेकिन फौजी ने ऐसा समझा कि उसका गलती है, वो रुका नहीं। हम तो फौजी की गाड़ी समझ गए भाई, इनके इनको छोड़ के भागना नहीं है, वो चले गए। तो हमने चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ
0: जी।
1: ऐसा हमको आदत हो गया, तो पीते रहे। इसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में ना इसी बीच में एक कोई बाहर से आगरा साइड से मेरे रिश्तेदार आए मेरी माँ के पास
0: जी,
1: और उनको कुछ किताबें देखे गए
0: जी।
1: मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, घर गृहस्थ में रहते, तो गांव में पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे इतना, लड़कों के ऊपर ही ध्यान होता था। तो माताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, एकदम अंगूठा टाइप।
0: आपकी भी कोई भाई बहने हैं?
1: मेरे दो भाई, एक छोटा एक बड़ा
0: जी,
1: एक मेरे से बड़ी बहन है।
0: ओके, उनको पढ़ाया?
1: वो भाई सब लोग पढ़े, लेकिन बहन भी नहीं।
0: अच्छा, आपकी बहन, सगी बहन
1: भी नहीं पढ़ी? मेरी जो ओन सिस्टर है उसको भी नहीं पढ़ाई कराया
0: जी।
1: हाँ, माना लड़कियों को पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं था
0: जी।
1: तो बहन की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। मेरा तो पहले शुरू से विचार नहीं था, शादी करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। होता ना कि जैसे कि हम बड़े हो गए, शादी का मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ये चाहे मैं संस्था से जुड़ा हुआ कि नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना है और कुछ अलग से करना है। शादी तो सभी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग से करना है। और मुझे एक बात याद रहती थी कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर हर घर से एक युवा मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ राम राज्य स्थापन कर सकूं
0: जी।
1: तो वो बात मेरे को हमेशा आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि देश के काम में आए या समाज के काम में आए, किसी की सेवा कर सकूं, शुरू से था। और एक बात और बताऊंगा आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे राजस्थान के अंदर ही रहना है।
0: अच्छा।
1: सबसे बड़ी बात ये थी, मेरे मन में पता नहीं क्या था, क्यों ऐसा था कि मुझे जॉब भी करनी है तो राजस्थान में करनी है, रहना है तो राजस्थान, किसी भी कोने में राजस्थान के में रहना है। मुझे अपने स्टेट को छोड़ के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं मैं, ऐसे स्टेट में नहीं, या तो फिर मुझे राजस्थान में रहना है, ऐसा मेरा वो था। तो कोई जॉब ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि मौका ही नहीं मिला वो चीज के लिए, जरूरत नहीं पड़ी
0: जी। आपकी माता जी की कोई दोस्त आए, उन्होंने किताब दिया।
1: फिर माता जी ने बोला मेरे को कि बेटा ये है ना, ये किताब है और ये आपको मुझे रोज पढ़ के सुनानी है।
0: जी,
1: हम लोग रोज सुनते ना,
0: मुरली पढ़ते
1: हैं, मुरली पढ़ते हैं
0: जी,
1: वो बोलते हैं। तो वो पहले होती थी तीन पन्ने की होती, लिथो की टाइप किया होता था।
0: ओके।
1: आजकल कंप्यूटर है, वो लिथो की होती, तीन पेज बड़े बड़े होते, उसमें दो मुरलियां होती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अलग अलग डेट होती थी। तो मैं रोज माता जी को सुनाता था और 8-10 माताएं गांव की सुनती थी। बस इतना काम था मेरा, अपना गुटका भी खाना है और बस वो करना, मुझे अच्छा। कोई लेना नहीं, मेरा काम वो जॉब था मेरा इस समय लोग माता जी को खुश करने का। अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मेरा उस दिन रोटी नहीं मिलेगी मेरे को।
0: अच्छा।
1: मेरी माता जी तुम कुछ भी काम नहीं करेगा ना, खेत में करना, कोई भी काम नहीं करना, लेकिन तुमको मुझे मुरली सुनानी है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, यही काम में तो बड़ा अपना खुश था।
0: तो घर में जब पता चला कि आप तंबाकू गुटखा ये सब कर रहे हैं, कभी ने आपको रोक टोक नहीं किया?
1: मैं एक्चुअली हम चोरी से खाते थे।
0: अच्छा।
1: एक दिन हम रात को सोए हुए थे तो गाँव में जैसे बाहर सोते है ना आंगन में,
0: जी,
1: तो हमने ना उसको जैसे वो थूक देते ना तो वहाँ लाल लाल हो गया था
0: जी।
1: तब मेरे पिताजी को पता चला, फिर उन्होंने हमारे पर थोड़ा कंट्रोल किया, तो हम फिर बाहर खाते थे, घर में नहीं खाते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, हालांकि उनको पता हल्का सा रहता, लेकिन उनके सामने हम नहीं खाते थे
0: जी।
1: तो जब हम ट्रक पे आए तब हमने दारू पीना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा किया। और दारू पीने का ऐसा नहीं हम सारा जिंदगी पिए, 1.5 साल के बाद जब हम हमारे घर में ये माता जी ने जो सुनाया मेरे को, तो मैं रोज सुनता था उसको। लेकिन एक मेरी माँ की एक और मेरे ऊपर एक अटैकिंग रहता था, उसको अटैक ही बोलता हूँ मैं। सवेरे 3:30 को आपको उठना है।
0: अच्छा।
1: माता नहीं, माता जी को बोला मैं, दिस इज नॉट माय जॉब, मैं माता जी ये मेरा नहीं है
0: जी,
1: आपको मैं मुरली सुनाता हूँ ये काफी नहीं है। कि नहीं नहीं बेटा सुन लो, मैं नहीं उठ सकता। मेरी माता जी मेरे लिए बढ़िया चाय बना के लाती थी।
0: अच्छा।
1: कि चाय बना के, तो चाय पी उतनी देर तो आदमी जगेगा ना। चाय पीने के बाद 10 मिनट में जगता था, 10 मिनट में मेरी माता जी एक कॉमेंट्री करती थी मेरे सामने।
0: अच्छा।
1: बोलू आपके सामने?
0: हाँ।
1: तो वो कॉमेंट्री होती थी कि मैं आत्मा हूँ। मैं तो सोचता नहीं आत्मा क्या होती है
0: जी,
1: आत्मा पेट में होती है, कहाँ होती है? मैंने माँ आत्मा बताओ कहाँ होती है? तो माता जी बोलते ये दोनों भ्रकुटियों के बीच जो आत्मा है ना, बोलो मैं आत्मा फील करो ये, और ये आपके ऑर्गन्स है, वो आत्मा के साधन है। जब माता जी के मुंह से मैं सुना ऑर्गन्स, बाप रे, इतनी पढ़ी लिखी है मेरी माता जी, ऑर्गन्स इंग्लिश में बात कर रही है, ऑर्गन्स तो मेरे को भी समझ नहीं। माता जी ऑर्गन्स क्या होता है? ऑर्गन्स होता है बेटा ये शरीर, इसके हिस्से शरीर के। मैं तो एक सेकंड के सन्न रह गया।
0: अच्छा।
1: मैं माता जी आपने सीखा कहाँ से? कि मुरली में तो रोज आता है, जबकि मैं रोज सुना रहा हूँ उसको, मेरे को नॉट आउट नहीं हुआ वो। लेकिन माता जी ने कहा ये तो अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे को हल्का सा माता जी के ऊपर सम्मान बढ़ने लगा।
0: अच्छा।
1: कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है तो कुछ तो बात है
0: जी।
1: मैंने उनको बोला कि वो कॉमेंट्री 7 मिनट की पूरी हो जाती थी, और उसके बाद कॉमेंट्री करते करते मैं भले चाय भी सो जाता था।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: लेकिन उठते जरूर
1: उठते 3:30 को मेरे को आप बताओ 84 से लेकर के, और मैंने शायद ही कभी 3:30 मिस किया होगा।
0: अच्छा।
1: शायद ही, या कहीं बाहर गए हो माता जी के घेरे से बाहर है उनके एरिया से तो बाकी हमने कहा ठीक है पढ़ाई लिखाई करके आराम से सोया करेंगे, अभी तो माता जी सोने नहीं देती है। तो हम ऐसे उस नशे में थे कि हम तो आराम से पढ़ाई लिखाई पूरा करके, उसके बाद जब मैं सुनाने लगा वो चीजें, इसी बीच में मैं जब ट्रक से आया तो वो आदत थी, तो मैं चुपके से वो पीने लगा। जब दारू पीता था मैं, तो मेरे मन में एक का आता था कि अगर मैं ऐसे पीता रहूं तो मेरा होगा क्या? मेरा थोड़ा बहुत जमीन है ये बिक जाएगा, मेरे हिस्से में जो जमीन आएगी मैं वो तो बेच दूंगा उतना ही, उसके बाद क्या होगा? ये उसके पीने के बाद वो संकल्प आते।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर जो माता जी को मैं सत्संग की वो किताब सुनाता था, तब मुझे लगता था कि इसमें एक चीज आती थी उसके अंदर कि कई बच्चे है ना, ये उसमें भाषा होती थी ये
0: जी।
1: हाँ, जैसे भगवान की भाषा आजकल हम जो सुनते हैं, पहले तो ये चीज का हमको ज्ञान नहीं था
0: जी।
1: तो उसमें आती थी कि कई बच्चे हैं ज्ञान सुनते सुनाते हैं और विकर्म भी करते रहते हैं
0: जी।
1: तो मैं उस लाइन को जल्दी पढ़ देता, क्योंकि ये समझाना नहीं है माता जी को, नहीं आज ही पीछे पड़ जाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये क्या हुआ सिस्टर, ये 3 दिन लगातार आया मुरली में
0: जी,
1: जो हम पढ़ाते थे उसमें। मैंने माता जी को बोला माता जी आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, रोज एक ही कॉपी उठा के ले आते हो, ये क्या है? इस मेरे को समझ, ये कौन सा आपका कागज है? वो एक ही कागज, एक जैसा ही कागज क्यों रहता है? सब में वो मीठे मीठे होता है सब में। नहीं नहीं बेटा, इनमें सब में तारीख अलग होती है। वो मैंने कभी नोट नहीं किया। लेकिन माताजी को वो सब चीज पता कि नहीं बेटा इसमें तारीख गलत, तुम्हें लाओ उठा करके। बोले हुआ क्या? नहीं, मैंने कहा आप तीनों उठा के लाओ। तो एक में दो लाई, एक अलग से लाई, तो तारीख अलग, आगे पीछे का जो भी होता है वो अलग। उसमें मैंने ध्यान से देखा वो लाइन तीनों में एक ही थी। बोला हुआ क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे छोड़ के। उस चीज पे मेरे अपने आप अटेंशन चला गया कि मैं इसको सुना रहा हूँ और इसमें ये लाइन लिखी है कि कई बच्चे कर्म भी करते रहते हैं और ज्ञान सुनते सुनाते रहते हैं। उस लाइन ने मेरे को
0: अटेंशन खींचा,
1: अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उस लाइन को मैं और भी लाइन मुरली में उसको ध्यान से सुनता था क्या। फिर मेरे धीरे धीरे जीवन में एक नरमपन आया, जैसे वो जो था एक कड़कपन था कि नहीं मुझे ज्ञान सुना, वो माता जी को सुनाया, मैं अपने नशे में रहा। फिर मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, मेरे विकर्म क्या है
0: जी,
1: मैं क्या विकर्म करता हूँ। तो विकर्म तो मेरा एक ही था
0: जी,
1: गुटखा तंबाकू खाना और कभी कभी उधार पीना। गांव के जीवन इतना बढ़िया होता है कि वहाँ किसी से ना दे ऐसे ना किसी को मार काटे। सबसे बढ़िया मेरे गाँव की एक आज भी एक आपको बता दूं क्या है, मेरे गांव में आपको एक अंडे का छिलका भी नहीं मिलेगा।
0: अच्छा,
1: मीठ तो अलग चीज है। मेरे गांव में कोई बकरी या मुर्गी नहीं मिलेगी आपको।
0: अच्छा,
1: आज भी मेरा गांव ऐसा है,
0: पूरा वेजिटेरियन
1: फुल्ली वेजिटेरियन।
0: वाह, बहुत सुंदर।
1: हमारे गांव में कोई ही आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल की जनरेशन जैसे ड्रिंकिंग करना वो अलग बात है, लेकिन आपको मीट, अंडा और ये चीज कभी नहीं मिलेगी हमारे गांव में। और वहाँ की एक और वहाँ एक भय बैठा हुआ है कि अगर आपने अपने घर में मीट लाया तो आपकी कुल देवी रूठ जाएगी।
0: अच्छा,
1: तो कोई लाता नहीं है और ना कोई खाते भी नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: कोई भी नहीं खाते हैं हम 84 से मेरे घर में प्याज का छिलका भी नहीं आया है।
0: अच्छा,
1: जब से मेरी माताजी ने सुनना शुरू किया, माताजी ने मेरे घर में किसान मतलब पिताजी किसान से प्याज की खेती करते थे। माताजी ने बोला खेत से बेच देना, घर में एक
0: प्याज नहीं आना चाहिए,
1: आना नहीं चाहिए, एक भी पीस नहीं आना चाहिए। मेरे पिताजी ने उसको बंद कर दिया। आप सोचो 84 से अभी तक कोई मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती है। तो अपने आप जीवन तो ऐसा था, लेकिन हम बाहर जाके ये सब चीज किए। लेकिन जब मैंने वो सुना, मैं अपनी लाइन पे आता हूँ
0: जी,
1: जब मैंने वो सुना तब मुझे लगा कि ये तो मुझे अभी छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़ने की अभी छोड़ू कैसे? कुछ दिन छोड़ दिया, फिर आया तो माता जी ने बोला, दीदी आई थी हमारी जो क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जी की जो बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, तो हमारा आगरा से आई थी, उससे जुड़े हुए थे वो लोग, मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा,
1: तो लेकिन जब मैं पहली बार देखा सफेद साड़ी वाली जो दीदियां होती हैं, वो काफी मेरे को एकदम जैसे देवी जैसे होता है। मैंने कहा ये तो इतने चमक रहे हैं लोग, तो हम तो कैसे, मैं तो पास में। बोला दीदी आओ आओ आओ। माता जी को मैंने पहले बोला कि मेरा किसी शिकायत मत करना, नहीं मुरली नहीं सुनाऊंगा आपको। माँ तो माँ होती है ना
0: जी।
1: तो माँ ने बोला कि नहीं सुनाएंगे, नहीं बोलेंगे। दीदी को बोल दिया। तो उन दीदियों को बोला, तो दीदियां कुछ नहीं बोली मेरे को, रक्षाबंधन था तो राखी बांध के जा रहे थे मेरे को। तो बोला कि भाई सबने दिया है, श्री राम तुमने कुछ नहीं दिया मेरे को।
0: अच्छा,
1: दीदी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आएगा भी कहाँ से, सब तो खर्चा कर देते हो ना। जब दीदी ने बोला कि खर्चा कर दो, इनको कैसे पता मैं क्या खर्चा करता हूं, मुझे डाउट होने लगा। मैंने माताजी की तरफ ऐसे देखा, माताजी पीछे छुप गई दीदी के।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद दीदी ने बोला कि आप दोगे? मैंने कहा दीदी बोलो कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जो ड्रिंकिंग करते हो ना वो छोड़ दो। हम तो ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं कर सकते
0: जी।
1: मैंने कहा जी बोल। मेरी दीदी बॉम्बे की, और बॉम्बे में वो ऐसे उसमें समाज से थी कि वहां इस चीज को जानते नहीं, तो वो शौक हो गई कि जो कि 10th 12th का बच्चा है ये, और अभी इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, और ये ऐसे कैसे कर सकता है। और सिस्टर सबसे बड़ी बात, हम तीनों टाइम ड्रिंक करते थे।
0: अच्छा,
1: सुबह उठना, दोपहर हो, ये हम पूरा केस खरीद के लाते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, उसका एक एक नहीं कभी खरीद, और जाके अपने वहाँ खेती में गाड़ देते थे, उसी में से खेत में पी के घर जाते थे, और बाहर से सेंट वेंट लगा के ताकि किसको बदबू ना आए। ऐसे कारनामे करते थे हम
0: जी।
1: ठीक है, तो दीदी ने जब बोला ना मेरे को, तो मैंने दीदी मैं आपको सोच के बताऊंगा कि ठीक है तेरे को टाइम देते हैं। मैं 3 दिन के बाद मैं गया एक दोस्तों के साथ, मैंने सुबह से पीना शुरू किया और शाम तक मैंने 11 बियर पी लिया। 11
0: जी,
1: पेट भर गया मेरा, खाना पीना कुछ नहीं किया। आकर के मैंने माता जी को बोल दिया शाम को, माता जी आज से मैंने छोड़ दिया। माता जी ने बोला कि शाबाश। पिताजी बोला हाँ तुमने शाबाश दे दिया तो क्या छोड़ देगा? मेरा बेटा छोड़ देगा। बोला कि वो पता है भगवान की वाणी सुनता है।
0: अच्छा,
1: और सुनाता है, भगवान इसको ताकत देगा, बाबा इसको शक्ति देगा। ऐसे बाबा शब्द नहीं, बाबा क्या है? बाबा माना भगवान, शिव, जिसको तुम रोज मुरली सुनता है ना, वो शिव बाबा है और कोई नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो और उसकी मेरे मन में उसकी प्रति भावना बढ़ गई
0: जी।
1: उस दिन से मैंने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब दारू उसी दिन बंद।
0: बस वही आखिरी दिन थे।
1: वो आखिरी दिन। सबसे बड़ी बात, मुझे विश्वास क्यों होने लगा ये ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ, बाबा की तरफ, कि उस दिन मुझे एक अलग शक्ति मिली कि मैंने छोड़ दिया और माता जी ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल छोड़ देगा आज से। वो तो चाहे वरदान समझ लो, चाहे ईश्वरीय शक्ति समझ लो, उस दिन से मेरी इच्छा भी नहीं हुई। होते ना कि कोई अल्टरनेट चीजें देखता है लोग, ये गुटका का भी बताता हूँ आपको कैसे हुआ। ये तो पहला बड़ा टॉपिक तो पहले छोड़ दिया एक दिन। अब गुटका की बताऊ कैसे छोड़ा मैंने। वो मेरा एक भाई था बीके, वो आज वही धौलपुर में आज भी वो गीता पाठशाला सेंटर चलाता है वो ब्रह्मा कुमारी। उसकी दो बहनें सरेंडर हैं
0: जी,
1: धौलपुर में हैं
0: जी
1: दोनों
0: जी।
1: तो वो भाई मेरे को एक दिन ले गया कि चलो आप तो अभी ज्ञान में, आपको तो ज्ञान है ना, तो चलो कहीं जाके ज्ञान सुना के आते हैं, प्रचार करके आते हैं
0: जी
1: ओम शांति का
0: जी।
1: मैंने कहा चलो। हम गए तो उन्होंने सारा करा दिया और मुझे बोला कि आप ये एक लक्ष्मी नारायण का चित्र हुआ करता है हमारे इसमें
0: जी, जी।
1: वो चित्र को उन्होंने टांग दिया, बोला इस पे सुनाना है आपको
0: जी।
1: तो मैंने उसको भाई को बोला
0: जी
1: कि भाई मेरे को तो आदत नहीं, आप सुनाओ। तो वहां लिखा था एक धर्म एक भाषा, राजनीतिक एवं धार्मिक सत्ता एक के हाथ में, ऐसी ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी। अच्छा। सुना के मैं बैठ गया।
0: अच्छा।
1: वो लोग बोले कि बड़ा पूरा हो गया इसका जल्दी डेढ़ मिनट में। तो उन्होंने बोला कि ये अभी नए नए बाबा के बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। वो भाई हमको ले जा रहा था भरतपुर
0: जी।
1: भरतपुर में एक आश्रम है, वहां उसकी लौकिक बहन रहती थी। तो रास्ते में सिस्टर वो हमको एक वो मिला आरटीओ चेकिंग, बस में जा रहे थे, गाड़ी उसने रोक दिया
0: जी।
1: टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको एक उसका
0: जी।
1: गुटकेगा
0: जी।
1: तो वहां रुके तो मेरे को तो वही आ गया टाइम खाने का, ऐसे तलब लग रही है खा लूं करके। तो वो भाई को बिठा करके मैं बस में पानी पी के आता हूँ, बस रुकी है। उन्होंने बोला भाई आधे घंटे तक बस नहीं जाएगी यहाँ से
0: जी।
1: हम गए, एक छोटा सा बच्चा दुकान पे बैठा, उससे मैंने एक वो लिया पुड़िया उसका गुटके का, और ये उतार के बैच दिया वो भाई ने, वो मैंने जेब में रख लिया।
0: अच्छा।
1: देखो आपको बिल्कुल सही सही बात बता रहा हूँ, कुछ छुपाने वाला नहीं है
0: जी।
1: कि जीवन में कैसे परिवर्तन आया मेरे में
0: जी।
1: तो वो गुटका में खा करके बस में ऐसे चढ़ाई था, तो वो मेरे भाई थे ना बड़े, वो इस बारे में लोगों को समझा रहे थे कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति आजाद नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि 3 इंची की सिगरेट के पीछे 6 फुट का आदमी गुलाम है, 1 रुपए की पुड़िया के बिना आदमी रह नहीं सकता है तम्बाकू के बिना, तो कैसे आजाद बोलेंगे। ये 1 रुपए की पुड़िया वाला शब्द मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा मैंने सुन लिया
0: जी।
1: मैंने कहा अगर मैं अंदर गया
0: जी
1: तो लोग मेरे मुंह में देखेंगे या खुशबू आएगी और मैं भी ये इस वेश में हूँ
0: जी।
1: तो बोलेंगे ये दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, इसका ही भाई खा रहा है
0: जी।
1: सिस्टर मैं सीधा पीछे अपना पैर किया और गया, मैंने पानी से मुंह साफ किया जा करके नल पे
0: जी।
1: और वो दिन
0: जी,
1: आज का दिन
0: जी,
1: मैंने उसके अल्टरनेट में सौंफ भी नहीं खाया,
0: ओके,
1: सुपारी भी नहीं खाया
0: जी।
1: वो मेरा वहां क्लोज हो गया
0: जी।
1: सब लोग वंडर करने, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते
0: हैं जी।
1: फिर हमको भी नशा आने लगा, ये ईश्वरीय शक्ति है
0: जी,
1: ये भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता
0: जी।
1: तो मैं जहां तक अपनी जर्नी को देखा कि जब से मेरे को माताजी ने पकड़ा इसमें, ये ज्ञान सुनाना शुरू किया है, ये तो मेरे अंदर परिवर्तन अपने आप आता गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी।
0: फिर आप समर्पित होने का डिसीजन कैसे लिया, और वो भी मधुबन में हेडक्वार्टर में?
1: समर्पित कैसा था कि कुछ समय के बाद मैंने ना अपना बोर्डिंग स्कूल चलाया।
0: अच्छा।
1: खुद का मेरा स्कूल था
0: जी,
1: और वो 8वीं तक मैंने स्कूल चलाया 6 साल
0: जी।
1: पहले 3 साल किसी और के स्कूल में काम किया था, नशा करते करते ही काम किया था। जब ये हो गया तो मैं जब नशा छोड़ दिया मैंने अपना स्कूल चलाया, और वो स्कूल मैंने खोल दिया था 98 में मैंने स्कूल खोला। तो वो स्कूल मैंने चलाया और मैं यहाँ पे सेवा में आता रहता था माउंट आबू में। तो यहाँ सेवा में तो काफी यहाँ के जो भाई थे मेरे, जो फ्रेंड बने, वो काफी मेरे को मोटिवेट करते थे, और मोटिवेट माने मुझे मतलब प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे कि ये जीवन कैसा है। तो अच्छा लगता, मैं यहाँ पे पूरा जो वेकेशन होता था, छुट्टियां होती, पूरा यहीं करता था, सेवाएं करता था, तो किसी किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जब स्कूल खोला तो मैं यहाँ आने वाला था, तो मेरे एक भतीजा था, मतलब उसने बोला कि अंकल ऐसा करो, हमने नया स्कूल खोला है, वो चलाने का, उन्होंने कैसे मेरे को बोला कि हमने नया स्कूल खोला है, उसमें सिर्फ आपका हमने नाम डाला है, आप एडमिनिस्ट्रेटर उसके वो व्यवस्थापक हो, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, बस ज्यादा नहीं, आप 3 महीना रह जाओ, जो स्कूल है ना खुल जाए, फिर आप चले जाना क्योंकि आपका नाम डाला है। और उन्होंने क्या चालाकी किया कि इनको शिव का नाम बहुत प्यारा होता है,
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने शिव बाल विद्या मंदिर लिख दिया उसका नाम,
0: अच्छा।
1: हाँ, और ऊपर ओम शांति पूरा सिग्नल,
0: अच्छा।
1: तो वो पूरा उन्होंने इनकी भावना इसमें बढ़े ऐसा उन्होंने स्कूल खोला,
0: अच्छा।
1: और सारा मेरा उसमें सिग्नेचर चलेगा। वो स्कूल हमने चलाया आठवीं क्लास है आपको बताएं 2004 तक चलाया था हमने इसको,
0: अच्छा।
1: तो जब स्कूल हम चला रहे थे उस समय काफी अच्छे मतलब मेरे में 400 बच्चे आ गए थे आठवीं तक के स्कूल में, और मैं मेरा कुछ नहीं मेरे को तो बोला आप कभी भी माउंट आबू जाओ कभी, मेरे को पूरा फ्री छोड़ा उन लोगों ने, स्कूल आपके नाम से चलेगा लेकिन चलाएंगे हम क्योंकि मान्यता मेरे नाम से मिलेगी नहीं, मैंने तो अपना बीए किया है उन लोगों को उसके लिए तो बीएड और क्या क्या चाहिए होता है स्कूल के लिए, तो मान्यता वो लोग लेके रखे थे लेकिन व्यवस्था के रूप में मेरा नाम रखा था,
0: अच्छा।
1: हाँ, और उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से एक निमंत्रण आया, मेरा अट्रैक्शन तो था ही यहाँ का
0: मधुबन का,
1: हाँ। तो यहाँ से एक भाई ने मेरे को बोला, आप शायद जानते हो, एक गिरीश भाई है हमारे डायमंड हाउस में, उन्होंने बोला कि भाई आपकी बहुत जरूरत है भगवान के घर में, और भगवान को आपकी जरूरत है, अगर आप आओगे तो अच्छा है, नहीं तो सोच लो आप अपनी तकदीर को खुद लकीर लगा रहे हो। हम आपका इंतजार 97 से कर रहे हैं, आज 2004 हो गया, आओ तो आ जाओ आप। वो शब्द थोड़ा मेरे को टच कर गया। शनिवार का दिन था, स्कूल में हम बाल सभा करवा रहे थे और फोन, पहले वो फोन गांव में होते वायरलेस वाले, गांव में एक ही फोन होता था,
0: अच्छा।
1: वो लोग बुलाने के लिए आए कि साहब आपका माउंट आबू से फोन आया है,
0: अच्छा।
1: वो लोग तो उनके लिए तो माउंट आबू बहुत दूर की चीज थी क्योंकि किसी ने देखा नहीं था, माउंट आबू से फोन आया आपका, अभी मैंने जब बात किया तो इन्होंने बोला कि आपको आना ही है और ये आपके लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे क्योंकि आपके चक्कर में हमने किसी को यहाँ और रखा नहीं है, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं
0: जी।
1: तो मैंने तुरंत बाइंड अप किया, शनिवार का दिन था और 29 तारीख थी, मैं वहां से गया सेंटर पे, बोला अब सेंटर पे भी एक पेपर आ गया मेरे सामने,
0: अच्छा।
1: हमारी दीदियां पहले बोलती आप मधुबन में रह जाओ, वहां समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ आप ब्रह्मा कुमारी जी में, और उसके बाद बोले कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है,
0: अच्छा।
1: मैंने कि क्यों नहीं जाना है, कि अभी यहाँ से एक बहन जा रही है वो आश्रम आपको संभालना है,
0: अच्छा।
1: मैंने कि ओके, मैंने कि मैं तो ऐसे नहीं है, मेरे को अभी जाना है, मैं थोड़ा सा मन खराब हो गया तो मैं बैठ गया वहाँ पे मेडिटेशन रूम में
0: जी।
1: तो मेडिटेशन करने लगा मैं, तो दीदी ने तुरंत, दीदी का मतलब वहाँ की जो इंचार्ज थी उनका, कि आप तैयारी करो, आप वो जो जाने वाले थे वो नहीं जा रहे हैं, आपको ही जाना है,
0: अच्छा।
1: 1 अगस्त को मैं यहाँ पहली बार आया 2004 में और यहाँ पहुंचा, और तब फिर यहाँ से मेरी जीवन यात्रा ये शुरू हुई
0: जी। सो जब से आप 2004 1 अगस्त से मधुबन में रहना शुरू किया और आज दिन तक आपका लगभग 2 दशक पूरा हो चुके हैं, तो इस यात्रा में आपने क्या सीखा मुख्य रीति से संक्षिप्त में?
1: हाँ, मुख्य रीति से ये सीखा मैंने कि जीवन में संयम और धैर्य
0: जी,
1: क्रोध पर काबू और अच्छे गुणों की धारणा, मतलब जीवन को यहाँ रहते हुए भी अगर यहाँ रह रहे हो क्योंकि यहाँ एक एनवायरमेंट होता है, इस एनवायरमेंट में अपने जीवन से दूसरों के जीवन को परिवर्तन करने की हमने कला सीखी कि मेरे अंदर पहले क्रोध बहुत था, तुरंत मैं हाइपर होता था, लेकिन मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन के अंदर वो ताकत है कि असंभव को आप संभव कर सकते हैं, जो इवन कई लोग इसको जड़ से खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा यहाँ आकर के हमको,
0: जिसके आप एक उदाहरण है,
1: मैं कोशिश आज भी कर रहा हूँ
0: बहुत सारी चीजों में,
1: बहुत सारी चीजों को हमने पूरा ये किया है,
0: जड़ से खत्म किया है
1: जो कि कोई भी आपको गलत धारणा है, आपके चंचलता है, वो सब मेरे अंदर बहुत चंचलता थी, लेकिन मेडिटेशन से वो स्थिरता आई है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें मन को लगा सकते हैं और जितना समय तक चाहें हम लगा सकते हैं।
0: बहुत खूब, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही श्रीराम भाई आपका। परिवर्तन मतलब एक सुंदरता, परिवर्तन मतलब जीवन का एक आदर्श, परिवर्तन मतलब जीवन में इतना संयम लेके आए, आने वाली पीढ़ी आपकी जीवन से सीखे कि जीना है तो कैसे ऐसे जीना है। थैंक यू सो मच आज आप आए हमारे श्रोताओं के बीच में, और आध्यात्मिकता से, योगी जीवन से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन आता है और एक आम जिंदगी जीते हुए भी एक योगी की तरह कैसे जीना है आप अपने जीवन से हमारे श्रोताओं को दर्शाया है। शुक्रिया आपको।
1: थैंक यू
0: सो मच दोस्तों। इसे कहते हैं जीना, इसे का नाम है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम एक घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएँ आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: जी तो दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है, तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है इसके बारे में बताएं।
1: फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं
0: जी,
1: और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना
0: जी।
1: क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जैसा समय डिमांड कर रहा है हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है
0: जी। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है?
1: जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है।
0: ओके,
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए?
1: जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में AC है और 24 hours AC ऑन होता है, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो एकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 hours AC वाला कमरा मिलेगा। तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घड़ा कभी जौ चना और कभी वो भी मना। मीन मैं तैयार हूँ
0: जी,
1: मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन हो त न एक समान।
0: जी,
1: जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसे भी बातें मेरे लाइफ में आ रही है, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
0: खुश रहना है।
1: जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है, तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या, हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रति पल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल। और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है?
1: फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है
0: जी।
1: और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भी पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें, मैं पंक्चुअल हूँ दैट्स फाइन, दूसरा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता दैट्स ओके।
0: जी, कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं
0: जी।
1: हम इरिटेट हो के सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे?
0: नहीं,
1: वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ, उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रादर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ
0: जी।
1: किसी आपकी जो स्पीड है ना थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे वन वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं, पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई, एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो। उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है तो आपको भी अच्छा होगा, आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो दो घंटे में करे तो वाह, ढाई घंटे लग जाए तो भी वाह, तीन घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है, हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
0: जी बिल्कुल, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है, तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफेक्ट में ना आए।
1: जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है।
0: ओके।
1: उनकी दो अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वॉज सो गुड, कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वॉज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली

0: कि फला ने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं
1: जी।
0: तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले दो तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं
1: जी।
0: और फिर हम उन्हें प्यार से बोलें कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है। तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है
1: जी,
0: उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना मानना सहज हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब फ्लेक्सिबल बने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए?
0: बिल्कुल। कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होते हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भी मेहनत का फल कभी बेकार
1: नहीं
0: जाता है, मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भी मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है। हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार एक राजा थे
1: जी।
0: सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे
1: जी।
0: फिर उनको लगा कि भी ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कल की क्या गारंटी है, सभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं
1: जी।
0: जब आपको ऐसी हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या। तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या। तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ मंत्र लिखा हुआ है, जो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा। तो उस पे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा उनकी आंखों में चमक आ गई
1: जी।
0: उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया। उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी
1: बीत जाएगा,
0: ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया
1: जी।
0: तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती हैं।
1: जी बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर?
0: मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे, लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए
1: जी।
0: तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं
1: जी,
0: ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं उनके

0: साथ अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे
1: जी,
0: हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक
1: नहीं है जी।
0: तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है। एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर काम आती है जब हम अपने कम्फर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं
1: जी। कम्फर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सम्मान दो ताकि आप बन गए होकर के अफर्मेशंस दो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब हम एक विज़न बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विज़न में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में?
1: लेकिन कई बार लगते हैं ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से।
0: पर झूठ उम्मीद है।
1: ओके।
0: उम्मीद है। ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए
1: जी
0: लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये झूठ तो नहीं है ना
1: जी, मनोबल है और होप yes, है जी।
0: ये सत्य हो सकता है। तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं, मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो भी क्या दिक्कत है
1: जी।
0: तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव हालातों को इनवाइट करें
1: जी। जैसे एक क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स फेस नहीं कर पाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कई बार आप नए नए ऑफिसेस में गए हो, आप अपने सीनियर्स को फेस नहीं कर पाते हो और कंपैरिजन कॉम्पिटिशन्स के माहौल रहते हैं, तो वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं?
0: सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं। अक्सर यही होता है कि हमें जो अच्छा मिला हुआ होता है ना, हम उस पर गौर नहीं करते हैं। मान लीजिए आज मेरी जॉब एनटीपीसी में है फॉर एग्जांपल, तो एनटीपीसी में बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वहां जो शॉर्टकमिंग है वो मुझे दिख रहा है
1: जी।
0: मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ओएनजीसी में तो ऐसा है, एनटीपीसी में तो ऐसा चल रहा है, ओएनजीसी फार बेटर है। लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं एनटीपीसी छोड़ के ओएनजीसी में जाऊंगी तो ओएनजीसी में मुझे लगेगा एनटीपीसी में तो वो अच्छा था
1: जी,
0: फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे याद आने लगती है जो शायद से ओएनजीसी में मिसिंग है। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावे होते हैं
1: जी।
0: तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उसे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है। लेकिन जो हमें मिला है यदि हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें, तो हमें इन चीजों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं थोड़े गुसैल हैं या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है, अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है। हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी
1: बढ़ गई, बढ़ रही है,
0: बढ़ रही है और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है।
1: अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में।
0: हाँ जी
1: जी, जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने?
0: हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है
1: जी।
0: तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो, उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें,
1: जी,
0: ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी।
1: जी,
0: तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने
1: लगेंगे,
0: शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ।
1: जी,
0: एक बार एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफी सारे उनके इनमेट्स रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा, तो अब इनको विचार चलने लगा। ऑफकोर्स जो आते हैं वही फिर वहां के सब बातों की देखरेख करते हैं, तो फिर तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इनमेट्स हैं, आपके बीच में एक देवदूत है
1: जी,
0: आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है, इतनी मेहनत से वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश
1: जी
0: ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रही, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी, तो लोगों को लगा 3 टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है जो
1: रोजाना
0: चलता ही रहता है, और इस व्यक्ति को देखो आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है, तो उसको भी तो परिस्थितियां आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता, शायद यही देवदूत है
1: जी।
0: तो हर व्यक्ति की नजर दूसरे के लिए क्या बन गई,
1: देवदूत है,
0: देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी
1: शुरू हो गया जी।
0: तो इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नजरिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए
1: दुनिया अच्छी है।
0: तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा।
1: बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को, और जैसे दीदी ने कहा कि आपको अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज, एंडोस्कोपी 2,500 रूपए, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज 9,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन 14,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन 17,900 रूपए से शुरू, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी 29,000 रूपए से शुरू, सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है, इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: जी थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के हैं।
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे। कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे। और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। तो दीदी, हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है, और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है, और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं।
1: विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता ये एक जायज सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है
0: जी,
1: या मैं चाहती हूँ ये चीज करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज नहीं करी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात, हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया
0: जी
1: कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में दो बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो
0: जी,
1: तो क्या करा जाए।
0: कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए।
1: बीच वाला रास्ता मतलब तीन पे रखे पंखे को
0: जी
1: या वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर लीजिए,
0: फिर ओढ़ लीजिए।
1: पर जिसे जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए।
0: जी,
1: तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है। ये सोच, ये जो सोच है ना कि नहीं, मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
0: जी,
1: तो जैसी हमारी सोच होती है ना, फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही
0: जी,
1: अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े रूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद ही करना पड़ेगा, एसी तो बंद ही करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है
0: जी।
1: लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है। और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जीवन के लंबे सफर में हम सर्वाइव कर सकते हैं
0: जी,
1: और अगर हमारे में वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं हमें भी जड़ से उखड़ने वाली नौबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है
0: जी,
1: झुकता वही है जिसमें जान होती है
0: जी,
1: अकड़े रहना मुर्दे की
0: पहचान होती है।
1: तो जीवन है, विचार है हमारे अंदर, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम दूसरे की संवेदना को समझ सकते हैं, दूसरे की प्रायोरिटीज को हम समझ सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजीली आ जाती है।
0: जी बिल्कुल। मान लीजिए एक ग्रुप में आप हैं और आपको एडजस्ट करना आता भी है, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियां आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है या हर बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल भी रखें क्योंकि आपको उनके साथ काम भी करना है, तो आप फ्लेक्सिबल भी रहें।
1: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो सामने वाला कुछ भी कह के कमेंट करके क्रिटिसाइज करके वो हमें नीचा नहीं महसूस करवा सकता है
0: जी।
1: वो कोशिश जरूर कर सकता है हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचा महसूस करवाने की, पर एग्जैक्टली हम क्या महसूस करेंगे वो चॉइस हमारे पास है।
0: ओके
1: अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है तो हम वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, ये उनकी सोच है। बट आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और कैसी हूँ वो मुझे बेहतर मालूम है, ठीक है ये उनकी सोच है, डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हमें सामने वाले से वो अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर हम सामने वाले से वो अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि भाई मैंने अच्छा किया कितना अच्छा किया
0: जी।
1: और फिर जब वो अप्रूवल हमें नहीं मिलता है, वो अप्रिशिएशन हमें नहीं मिलता है, तो हम भी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं अच्छा किया भी या नहीं। तो वो चीजें तभी आती है जब हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमें इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है
0: जी। ब्रह्मा कुमारीज में हमने सुना है कि जो राजयोग होता है उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है?
1: वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है
0: जी।
1: तो राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है
0: जी।
1: आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी
0: जी।
1: तो राजयोग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है, और विज्ञान का एक सिद्धांत है
0: जी
1: कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है
0: जी।
1: तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है, या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियाँ, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं
0: जी,
1: कुछ नहीं बदला है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो अपग्रेड करो अपग्रेड करो आता रहता है, एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत
0: जरूरी है,
1: अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे
0: जी।
1: तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी
0: अपग्रेड करना पड़ेगा,
1: अपग्रेड करने की जरूरत होती है। और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है, और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्जन अपने आप को बना लेते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं, तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोष देते हैं और वो हमें दोष देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी, मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ करके फ्लेक्सिबल होकर के उसके आनंद ले सकते हैं?
1: बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा।
0: ओके।
1: क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया, मान लीजिए
0: जी,
1: इट्स नो वे इन माय हैंड
0: जी,
1: कि मेरे हाथ में है ही नहीं
0: जी।
1: हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई जरूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट जहां पर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है, वहां पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट
0: जी।
1: क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसे मैं चेंज कर सकती हूँ?
0: नहीं,
1: मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा? एक्सेप्ट।
0: एक्सेप्टेंस।
1: अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है, आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन, मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है
0: जी,
1: कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माई टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन, अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूं।
0: जी,
1: तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते,
0: हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
1: तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से। उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए?
1: वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है, तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने
0: मना
1: कर दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
0: जी,
1: माना ये एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहां पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ
0: जी,
1: उसकी आदतें
0: बिगड़ जाएंगी,
1: बिगड़ रही हैं, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना
0: चाहिए,
1: जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भाई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा अगर वो सही नहीं है तो। कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता
0: जी,
1: हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी
0: जी,
1: परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए
0: जी,
1: ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजीली हैंडल कर सके।
0: अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है
0: जी,
1: और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है, तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार, विचार, हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं
0: जी,
1: तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना
0: जी
1: अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें
0: जी,
1: जब तक अति जरूरी
0: नहीं
1: ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग
0: ना करें।
1: हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीज़ें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है
0: जी।
1: तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं। तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वाह, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है
0: जी।
1: तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो ज़रूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए।
1: जरूर, इट विल बी माय प्लेजर।
0: थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।

श्रीमती नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आज हम लोग विशेष पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे। और आशा करता हूँ हर बार हम लोग जब फाइनेंस की बात करते हैं, एक लंबा चैप्टर चल रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर एक जो एक्सपीरियंसेस है हम लोग कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर, और बड़ी अच्छी बातें हो रही है कि कैसे हम लोग साउंड फाइनेंशियल हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, इन बातों को गहराई से बारीकी से जान रहे हैं। और पिछली बार हमने थोड़ा सा फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है उसको भी हमने टच करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखा जाए तो पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उसको मान के चलना भी नहीं है, क्योंकि हमारी इमोशंस भी है, हमारे लाइफ भी है, हमारे रिलेशनशिप भी है, उन सारी चीजों को पैसे से तोला नहीं जाता। और कुछ सोसाइटी भी हमारी जहाँ पर बहुत लोग गरीब हैं, और कुछ ऐसा सोसाइटी है जहाँ कम लोग हैं लेकिन बहुत अमीर है, तो वो इनबैलेंस भी क्यों है, तो वो भी हम लोग अगर थोड़ा सोचें तो मुझे लगता है कि काफी चीजें हमको निकल के आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को कभी पढ़ाया ही नहीं जाता तो वो चीजें जो है एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है एजुकेशन में ये चीजें आनी चाहिए, उसके बारे में पैसे को यूज कैसे करना, पैसा क्या है, ये सब बातें जो है हम लोग को एजुकेशन में कभी भी सिखाया नहीं जाता। हम लोग को बोलते हैं कि बस डिग्री ले लो और पैसा कमाओ, या डिग्री ले लो नौकरी करो, डिग्री ले लो एंटरप्रेन्योर बनो, तो ये चीजें समझ में आती है, लेकिन फाइनेंस आने के बाद उसे कैसे हम लोग ग्रो करें और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना, और वो मानवता के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए यूज कैसे हो, है ना। इट इज नॉट दैट कि आपने कमाया और जमा कर दिया बैंक में तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। और हमारे आज के खास मेहमान भानु जी हैं। भानु जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में इन चंद तालियों के साथ। और आप लाइफ कोच भी हैं, एडवाइजर भी हैं, और काफी कंपनीज में जो है आप मैनेजमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में लोगों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनर भी हैं। और इसके साथ में आज हमारे एक खास मेहमान शोभित नारायण अग्रवाल जी भी है। आप भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, एडवाइजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोभित जी आपका भी आज के इस प्रोग्राम में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शिवा भाई हमारे साथ रेगुलर, सभी को जोड़ने का और फाइनेंस को कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं, हर व्यक्ति फाइनेंस को अच्छी तरह से समझे, मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझे, इसके पीछे वो हमेशा रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आज के विषय में

0: जो विषय लेंगे वो चीजें भी बड़ी अच्छी रहेगी, और फाइनेंस को लेकर वो भी टॉपिक है तो आज हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप जरूर नोट करके रखे, ध्यान दे कि कैसे उन चीजों को आप प्रॉपरली समझ पाए। शिवा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति।
0: ओम
1: और रमेश
0: शांति।
1: भाई जी, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया है कि हमें ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिए जहां हम सब एक साथ जुड़ सकते, भिन्न भिन्न जगह में रहते हुए भी। फिजिकली भानु भाई जी बेंगलोर में हैं, सोभित भाई लखनऊ में हैं, और आप मधुबन में हैं, अबू में, और मैं अहमदाबाद में हूँ। तो एक बहुत सुनहरा एक पल है जहां हम एक अच्छे टॉपिक के, जब हम बात कर रहे थे भानु भाई जी से, भानु भाई जी टीसीएस जैसे अपनी कंपनी में काफी यंगस्टर्स को मैंने देखा हुआ है, नासिक में भी काफी यंगस्टर्स की करियर को उन्होंने बनाया है, और काफी यंगस्टर को उन्होंने मेंटरिंग और गाइड किया है कि वो अपना कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो करियर है वो शुरू कर सके। और उसके साथ साथ सुमित भाई हमारे एक यंग एंटरप्रेनर हैं, वो नरसिम्हन जी मुंबई से पढ़े हुए हैं, और उनको एंटरप्रेनरशिप का काफी गहरी माना जो नॉलेज है और साथ साथ अनुभव भी है, और यंग होने के कारण, यूथ होने के कारण उन्होंने भी, ये कभी आपने किसी के अंडर में जॉब करे और कोई नौकरी करे उन्होंने कभी सोचा नहीं, शुरू से ही वो अपनी जो बिजनेस है उस पे उन्होंने डटे रहे और अच्छे रीति उसको चला रहे। तो आज की जो टॉपिक है, जो आज की जो मेन टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बनना एक एक सबको एक इच्छा है और हर एक को एक सपना रहता है, लेकिन उसके अंदर जो माइंडसेट चाहिए, जो मनोभाव और मनोस्तर चाहिए, जो साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, उसके ऊपर में काफी हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला, हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, मैं भानु भाई जी से उनकी बहुमूल्य जो हमारी गाइडेंस ये चाहेंगे हम, कि आज के यूथ के पास, आज एन एंटरप्रेनर उसके पास क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, वो किस किस फील्ड में एंटरप्रेनरशिप को यूज कर सकता है। हम देखते हैं फूड से लेके जैसे ओला उबर तक, ई कॉमर्स तक, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म इमर्ज हो रहे हैं, और कोविड के दौरान सैनिटाइजर और बहुत सारे, जो हमने देखा कि कोविड का एक नया एंटरप्रेनरशिप का एक मौका मिला। तो भानु भाई जी, आप थोड़ा सा इन ओवरऑल गाइडेंस और थोड़ा सा आपके अनुभव से बोलिए कि किस फील्ड में आज यूथ के लिए मौका है और कहाँ वो अपने आप को पिच इन कर सकता है।
0: हेलो, पीछे कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़े पटाखे भी जल रहे हैं। दिस इज जस्ट टाइमिंग। सो आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपने पूछा अभी कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की चॉइस कैसे बनाएं। तो मेरा ये बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंसर है, देश देशपांडे, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला हमेशा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक है जो अगर अपने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, नॉइस करते हैं। एक होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉब्लम है ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। और तीसरे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जो वो प्रॉब्लम को हेड ऑन लेते हैं, उसको चैलेंज करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें वो लेते हैं। तो ये जो तीन अप्रोचेस हैं, अभी हमें जो मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर की कम्युनिटी जितनी बड़ी है वो कंट्रीज सक्सेसफुल होते हैं, जितना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंकरेज करें। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करना है तो पहले मोर फंडामेंटली हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की माइंडसेट को हमें एंकरेज करना है, क्योंकि एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने की माइंड आनी चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास तो भंडार है प्रॉब्लम्स की, और इस हर एक प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप करने की। अभी इसमें हमें कमर्शियल, हमारे सारे जो प्रोडक्ट अभी हम डिलीवर करते हैं, शॉप में जाते हैं, डिलीवरी जो है वो सब सर्विस मॉडल में परिवर्तन हो गए। अभी 10 मिनट में आपको ग्रोसरी मिलेंगे, 15 मिनट में आपको मेडिसिन मिलेंगे। ये सब जो है नए नए प्रोडक्ट्स को सर्विसेस में कन्वर्ट करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स आपको आ गए। ये एक डेवलपिंग कंट्री में जो मिडिल क्लास है उसके एस्पिरेशन के लिए ये सब जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे तो बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जो सोशल चैलेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल हम फूड ग्रेन्स को हम कैसे जो नीडी लोग हैं वहां तक पहुंचाएं, हमारे जो हेल्थ केयर है वो कैसे पहुंचाए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब एरियाज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसेस जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हर सेक्टर में गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब जो है मिलके ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं. तो जो यूथ है उनके लिए तो देर इज ए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी राइट फ्रॉम कॉलेज. उनको ऐसे ओरिएंटेशन है, उनके कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं, कोचेस होते हैं जो उनको डेफिनेटली गाइड करके ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करेंगे और उनको वो प्रॉब्लम्स को लेने में बहुत मदद कर सकते हैं. और हम जो काम करते हैं इंक्यूबेशन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे यंग इनोवेटर्स अपने आइडियाज के साथ आते हैं और हम उनको पूरा कंपनी बनाने तक पूरा हम सपोर्ट भी करते हैं. तो ऐसे जो मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी एक गोल्डन एज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं. इसमें साइंस भी है, इसमें स्किल भी है, इसमें आर्ट भी है, ये सब सीखना है खुद को डेवलपमेंट करने की, खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आप एक साल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने में आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस एक साल में आपको मिल जाएगा. तो आपका और वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनने के लिए, आपको सीखने के लिए, जल्दी सीखने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अपने आप को आगे बढ़ाएं.
1: भाई जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी के समय की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक सर्विस में बदल चुका है. कि पहले तो हम टूथपेस्ट 5 रुपया में खरीदने जाते थे, या मेडिसिन जाके लेके आते थे, या कोई टेस्टिंग हो, मेडिकल टेस्ट वगैरह हम करते थे, लेकिन आज हमारे घर तक आके कोई टेस्ट करके जाता है, ब्लड, यूरिन एंड मेडिसिन, वो भी 30% 20% डिस्काउंट्स में घर तक पहुंचा दिया जाता है. और सच में एक मेडिसिन पाने के लिए पहले कितना ढूंढना पड़ता था कि एक जगह दूसरी जगह, और गांव में तो मेडिसिन पहुंच भी नहीं पाता था. तो आपने जैसे बोला कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो गुजरात गवर्नमेंट में भी उन्होंने एक शुरू किया एक प्रोजेक्ट, जिसमें अगर आपके पास कुछ नया आइडिया है, बाकी कुछ भी नहीं, नया आइडिया है, आप गाली गवर्नमेंट को आप देंगे, गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करे तो 2 लाख रुपया स्ट्रेट आपको मिल जाएंगे. तो इस तरह से गुजरात गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रहा है. लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जाने से पहले थोड़ा सा आज एन यंग एंटरप्रेनर, मैं थोड़ा सा सुबीत भाई जी को ये पूछूंगा कि सुबीत भाई, आप एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड के भी है, और आपने एक इतनी बड़ी कॉलेज से, आपने नरसिम्हाजी से पढ़े मुंबई से, जब आपके दोस्त सारे प्लेसमेंट और नौकरी और बहुत सारे जॉब के लिए जा रहे थे, तब आपके अंदर में ऐसे कौन सी थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ जो आपने सोचा कि नहीं, मैं अपना ही बिजनेस शुरू करूं, और इसमें कौन सी चीज आप अपने में और दूसरे में फर्क देख रहे जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बना पाया, और जिसको दूसरों को एंटरप्रेन्योर बनाने में एक रुकावट डालता है, और थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को क्या प्रमोट कर रहा है, उस चीजों को थोड़ा सा हमें डिटेल बोलेंगे.
2: बिल्कुल, आपने सवाल 3-4 सवाल आपने पूछे एक सवाल में. तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि व्हाट वाज माय माइंडसेट, तो मेरा माइंडसेट ये था कि आफ्टर माय मास्टर्स देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी इन टर्म्स ऑफ फैमिली, करियर, मनी, द प्लेस दैट आई वांट टू सेटल इन, सो फ्रेंड्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स. एंड मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, it was family. So family, and then it was career. It was not career first or then family. So in terms of priority, I knew that I had to come to Lucknow. Second was career. So ab Lucknow mein aakar, I belong to like a business background family, and I'm the 7th generation in this business. लेकिन मैंने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने शुरू किया, एंड उसको शुरू करने के लिए जो माइंडसेट मेरा ये था, वो था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी. सो वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ज्वेलर्स, एंड तो वो एक जो चाह थी मेरे अंदर कि मैं कुछ अलग करूँ, और सोशल सर्विस और एजुकेशन, ये दो फील्ड्स मुझे बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के फील्ड में, सोशल सर्विस भी, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ. तो मैंने उस फील्ड में जाकर और थोड़ी शिक्षा दीक्षा मैंने प्राप्त करी, और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं कहूँगा बस 1 लाख रुपए से मैंने शुरू कर दिया था ये काम, ऑफिस स्पेस थोड़ा सेटअप करके. एंड इनिशियली मैंने जब ये शुरू किया था, तब तो कुछ भी मैंने खर्च नहीं किया था. इट स्टार्टेड थ्रू इनविटेशंस. कॉर्पोरेट्स मुझे बुलाते थे और अलग अलग संस्थाएं

0: हैं जो कि स्टार्टअप्स को वो लोग इनकरेज करते हैं। और इसके अलावा फिकी फ्लो जो कि विमेन्स विंग एक चलता है लखनऊ में, वो भी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी प्रमोट करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी, और जैसे भानु भाई ने एग्रीकल्चर की बात करी, तो ऐसे लोग जो इस फील्ड में मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर मेडिसिन इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो जो साइंटिफिक रिसर्च बॉडीज हैं जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के वहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके साथ बहुत ढेर सारे प्लान्स आइडियाज होते हैं। वो ऐसे लोगों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और यंग थिंकर्स, यंग स्टार्टअप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को वो पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब चीजों के साथ भी वो सपोर्ट करके लो बजट में गवर्नमेंट असिस्ट करके उनको बढ़ावा देती है। तो ऐसा है
1: जी
0: भाई जी।
1: शिवा, मैं आपको एक बात पूछूंगा, क्योंकि हम जैसे एक मिडिल क्लास और ट्रेडिशनल फैमिली, जबकि हमारे फादर भी जॉब में थे और मेरे काफी फ्रेंड है जो भी जॉब के फैमिली, उनकी बैकग्राउंड जॉब का है और दे गोट इन टू, उन्होंने इंजीनियरिंग किया और उन्होंने काफी एमबीए डिग्रीज भी लिए और इतने हाई क्वालिफिकेशन बावजूद देन ऑल्सो वो कभी भी सोचे नहीं कि हम अपना कुछ बिजनेस शुरू करें। और उनकी फैमिलीज का भी रेजिस्टेंस तो रहता ही है बाय नेचुरल, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज और रिस्क अवर्जन एक रहता ही है। तो ये जो माइंडसेट है कि आपको जो दिख रहा है कि अभी के समय में आपके भी सारे दोस्त इंजीनियर्स काफी हैं और इंजीनियरिंग के दौरान कई लोग यूएस चले गए होंगे, कई लोग अच्छे अच्छे आईटी कंपनीज में होंगे, बट क्या चीज है जो एंटरप्रेन्योर बना देता है, क्या चीज है लोगों को जिंदगी भर नौकरी में ही अटका देता है, आप उस चीज को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस बैरियर को तोड़ने का कोई एक ठोस, एक अच्छा, एक कोई एक टिप्स देंगे जिससे लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे बट थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी ले और थोड़ा सा अपना करियर, क्योंकि इकोनॉमी की जो सेफ्टी है उसको भी थोड़ा इंश्योर करें। बानू भाई,
2: हाँ, तो ये जो है उसको बोलते हैं होली ग्रेल। एक एंटरप्रेनर को कैसे स्पॉट करें, एक एंटरप्रेनर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये जो है देर इज नो वन सिंगल आंसर। इसका ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड आंसर है, बट एक हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमारे जो एंटरप्रेनरशिप के एप्लीकेंट्स होते हैं नॉर्मली टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, माना छोटे शहरों से आते हैं, और हमने एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए हैं जो मैं समझता हूँ कि इट इज गुड फॉर अस टू एनकरेज इन जनरल। फर्स्ट है कि अपने फैमिली में, अपने फर्स्ट जनरेशन के ग्रेजुएट्स होते हुए भी प्रॉब्लम को करीब से देखना। माना फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फीमेल एंटरप्रेनर है, उनके फैमिली में वो शायद पहले ग्रेजुएट हुए होंगे, बट उन्होंने अपने फैमिली में फार्मर की, एग्रीकल्चर की इश्यूज को देखा उन्होंने बहुत पास से, और उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स को देखा जहाँ पे फार्मर सुसाइड्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को उन्होंने पास में देखा। तो उन्होंने जैसे इंजीनियरिंग में थे उसी टाइम में उन्होंने अपना मन बना लिया था कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी आफ्टर 4 इयर्स वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, वो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को उसको सॉल्व करते हैं। वो ऑनियंस की सेक्टर में काम करते हैं, गोदाम नाम है उसका स्टार्टअप का। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ये आप जो प्रॉब्लम है उस

0: लगा के आप ट्राई करेंगे हर ऑप्शन को, तभी आपका सक्सेस मिलेगा। लेकिन इसमें हमें एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल रहना है। क्यों, जैसे मैंने बोला कि टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से ज्यादा से लोग आते हैं, तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर फैमिली में पैसे की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है, तो आप इसमें जल्दी से मत कूदो। आप 3-4 ईयर्स आप कॉरपोरेट नौकरी करो, पैसे सेव करो, उसके बाद में आप ट्राई करो। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ऐसा है कि आपको आइडियाज के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे, आपको आइडियाज के लिए ग्रांट्स मिलते हैं। दूसरे बाहर के कंट्रीज में आपको आइडियाज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है ना। तो इंडिया में ग्रांट्स मिलेंगे आपको, बहुत धीरे धीरे आपका ग्रोथ पाथ होगा। तो इसीलिए आप यू कांट टेक अ बिग बेट, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आपका फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स का जो जर्नी होगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे रिस्क को समझ के जो अंदर आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा एंटरप्रेन्योर के लिए। ये अपने इकोसिस्टम को, एक और मेंटर को साथ काम करने का भी एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दूसरे जब अगर एडवाइस देंगे तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसके अनुसार अपने लाइफ को चेंज करना, अपने लाइफ के चॉइसेस को चेंज करना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीसरा होता है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में जो है ना, उनका आउटलुक अलग होता है कि थियोरिटिकल नहीं होता है, उनका एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन होता है। अगर वो एजुकेशन करते हैं, वो शायद ब्राइट स्टूडेंट ना भी हो, उनको 50-60% मार्क्स भी मिले होंगे, लेकिन एक या दो सब्जेक्ट में जो भी उनको अच्छा लगता है ना, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन ओरिएंटेशन दिया होगा अपने लाइफ में कि इसको थियरी मगअप नहीं करना है मुझे, लेकिन ये सब्जेक्ट को समझना है, इसको कैसे काम में ला सकते हैं ऐसे समझना है। ऐसे लोग जो है मैं समझता हूँ ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए।
1: भानु भाई जी, एक बात आप बोलते बोलते बहुत अच्छे बात बताए कि सुनने की क्षमता, पर जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आता है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। ज्यादातर हमारा नॉन बिजनेस बैकग्राउंड का मैं देखता हूँ, बहुत इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि वो सुनता नहीं है, और ना सुनने के कारण वो कई फेल्यूर को फेस करता है, और वो फेल्यूर से फिर वो जख्म और वो सदमे से निकल पाना और फिर से खड़े होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं फिर थोड़ा सोबित भाई जी से पूछूंगा, टॉकिंग बिट पर्सनल, कि अग्रवाल फैमिलीज में मैं देखता हूँ, अगर मैंने बचपन में हमारे गांव में देखा कि उनके बहुत बड़े दुकान था और उनके जो बच्चे थे वो स्कूल भी कॉलेज भी जाते थे, पर वो दुकान में वो काम करते थे, वो कायदा छोटे छोटे काम करते थे, वो सामान को रखना फिर वो सामान बेचना, तो छोटे छोटे जैसे मम्मी पापा से उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती थी, पर उनकी अंदर की जो ईगो भी, कई बार सामान उठाना पकाना वो सब भी काम करते, और वो जो हिसाब करते करते बाय द टाइम मैं देखा कि जब वो ग्रोनअप हो गए, 18 ईयर हो गया, तो दे बिकम द ओनर ऑफ द सब एंड ऑलमोस्ट दे एक्ट एज ए ओनर एंड देयर फादर आर बिहाइंड, जस्ट दे आर लुकिंग आफ्टर हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मैं ये जो सीखने की कला है अपनी फैमिली फैमिली बिजनेस से और बड़ों से, और एक बिजनेस बैकग्राउंड के जो फैमिलीज में ये चलता आ रहा है, वो चीज अगर नॉर्मल, अगर कोई यूथ, कोई बड़े ऐसे व्यक्ति या बिजनेसमैन या कोई एजुकेटेड जो इस पे काम कर रहा है, उससे अगर वो थोड़ा सा अपनी मेंटरिंग या थोड़ा सा कोचिंग अगर ले ले और सुनते रहे, और सुन के अगर काम करने की क्षमता रखे, पेशेंस रखे, तो मेरे ख्याल से सक्सेस रेट काफी बढ़ जाएगा। तो सुभित भाई, इसके ऊपर आप थोड़े से शॉर्ट में हमें थोड़ा ग्लिम्स देंगे कि ये चीज कैसा होता है और कहाँ हम अपनी फेलियर को, क्योंकि मैंने काफी देखा है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस बैकग्राउंड की फैमिली के होते, उनकी बिजनेस फेलियर की रेट काफी कम होता है, जबकि नॉर्मल बैकग्राउंड उनकी फेलियर की रेट ज्यादा होता है। सुभित,
2: जैसे कि भानु भाई ने कहा था कि एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होता है, थोड़ा सा आपके पास प्रबंध होना चाहिए फूड क्लोथिंग शेल्टर का बिफोर यू टेक यू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी बात, अग्रवाल फैमिलीज में ऐसा होता है जैसा शिबा भाई आपने कहा कि बच्चे शुरुआत से ही अपने बिजनेस में जाना शुरू कर देते हैं। मैंने भी ऐसा किया था और मैं समझता हूँ कि केवल अग्रवाल फैमिलीज में नहीं बल्कि सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, एज अ करियर काउंसलर माई ऑब्जर्वेशन इज दैट चिल्ड्रन फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द फादर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। कम ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर वो तब होता है जब कोई ऑप्शन नहीं, चांस नहीं है। इफ द फादर इज नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल पोजिशन तब अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली इफ द फादर इज बीन इन अ गुड फाइनेंशियल पोजिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस और सर्विस, बच्चे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात ये है कि आपने जो कहा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस तो इसमें ये आता है कि यू नीड टू होल्ड ऑन। after investing a certain amount of money, you can't expect the returns overnight or, you know, after 3 months. You will have to be patient and you will have to put in your efforts. Maybe you'll have to wait for 1 year or 2 years to break even. And then you have to also keep in mind the competition in mind. Here, I want to mention a very important point. Just the way service class people, when they come together, they talk about, you know, the hierarchy position in an organization or how to get work done effectively. Similarly, when businessmen of various fields, they come together, and it is also observed that, you know, there's a lobby of businessmen who come together and they make friendships. There's a lobby of servicemen who come together and make friendships, and they have their own inner circle conversations and discussions of how they can scale up the business. What is the economy doing? What is the local region doing? Where can the products be sourced from? How are you doing? How are you saving your taxes and so on? So that is another very healthy way to keep the spirit up and going, because you need to have like birds of a feather flock together. Ek bahut achhi kahawat hai angrezi mein. So wo ek आपको धीरे धीरे उस तरह से आप एक सर्कल बन जाता है, उसमें आप डेवलप करके फिर ग्रो करते हैं. बट यू नीड टू होल्ड ऑन एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर मोटिव्स. ऐसा नहीं होता होना चाहिए अरे क्योंकि ना जॉब करने में आपको इतना पैसा नहीं मिलता है इसलिए मैं बिजनेस कर लेता.
1: सुबीत भाई, आप एक बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि आपको जैसे जैसे आप बिजनेस में ऊपर जाते हो तो आपका एक सर्कल बनता है, और जब सर्कल आपस में मिलते हैं और सर्कल आपस में बात करते हैं तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है. और वो सर्कल, हेल्दी सर्कल मेंटेन करना, जैसे जॉब वालों की अपनी हायरार्की के हिसाब से डीजीएम, एजीएम, जीएम, वो अपनी सीट पे अपनी बातें करते हैं, ऐसे बिजनेस में भी अपने डेवलप के हिसाब से उनकी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, बाकी हर लेवल का, तो उससे फिर उनकी जो सोर्सिंग नेटवर्क और काफी वो चीजें आसान हो जाते हैं. तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम इंडिविजुअली रह के हर चीज सीख के अगर करना चाहे तो मुश्किल है, थोड़ा सा हमें सोशलाइजेशन जो थोड़ा उसके लिए भी टाइम देना पड़े, और सबके साथ मिलके कोई सोशल इवेंट हो, एक्टिविटी हो, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करे तो उससे भी हमारा काफी पहचान और हमारा एक लर्निंग हो जाता है क्रॉस. भानु भाई जी, इसमें एक बात है कि सुमित भाई ने तो अच्छी बात बताया कि पैसे बिजनेस फैमिली के हो तो लर्निंग चाहिए अपने फादर पेरेंट्स के जो भी बिजनेस, उसे सुन के और सबर रख के चलना चाहिए. बट जैसे मैं सपोज बिजनेस फैमिली का नहीं हूँ, बट मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट, फिनांस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैंने किसी का नहीं सुना और आई जम्प इन टू बिजनेस, एंड बिजनेस में सपोज मैं ह्यूज लॉस कर लेता हूँ पहला अटेम्प्ट में, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट पेशेंस, आई डू नॉट हैव दैट लिसनिंग कैपेसिटी. और कहीं ना कहीं वो झटका मिलता ही है, अगर आपको आपके पास पेशेंस नहीं हो, लिसनिंग कैपेसिटी नहीं हो, आपको झटके सुनने पड़ते हैं. भगवान जैसे कोई थप्पड़ मारता ही है कि आप दूसरे की सुनो, आप थोड़ा झुको, आप थोड़ा सा सब्र रखो. सो इन दैट केस अगर फेलियर हो जाए, ड्रास्टिक फेलियर हो, तो आप अपने आप को कैसे वहां से निकल के आएंगे उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, और आपने ऐसे केसेस कैसे हैंडल किया है या देखा है उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्स दें.
0: मैं एक छोटा सा डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में. बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग चीजें हैं. अगर आप एक चीज कहीं से लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल होलसेल से लेके रिटेल में बेचना, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है. इसमें आपका शायद कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होगा, शायद आप बस ऐसे लेके आपने बेच दिया, तो ये बिजनेस है. इसमें क्या होता है नॉर्मली कि बहुत प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है. आपने लाइक होलसेल टू रिटेल इज अ बिजनेस मॉडल, होलसेल में खरीदो रिटेल में बेच दो, इट्स अ प्रूवन बिजनेस मॉडल. या आपने काम को दूसरों के साथ, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग का आपने बिजनेस बना लिया, तो इसमें आप 10 लड़कों को अपने पास रखो और जहां भी पेंटिंग का रिक्वायरमेंट आता है आप उनसे करा लो, तो ये मैन पावर की बिजनेस है. इसमें ये भी एक प्रूवन बिजनेस मॉडल. एंटरप्रेन्योरशिप में अलग होता है, जिसमें दिस विल रिक्वायर ए डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम. उसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन को डिलीवर करने का और उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है, और उसमें बिजनेस मॉडल भी शायद कुछ इनोवेशन हो. तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों में डिस्टिंक्शन भी है और इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी है. फॉर एग्जाम्पल जो आपने रिस्क की बात बताई, फेलियर की बात बताई, ये दोनों में इक्वली हो सकते हैं. बिजनेस में क्योंकि बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा प्रूवन है, शायद उसमें कम रिस्क हो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में भी ज्यादा से ज्यादा रिस्क हो सकता है. अभी मैं समझता हूँ कि दोनों एक्चुअली हमें एक करियर पाथ की बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हमें सोचना है कि ये दोनों जो अप्रोचेस हैं, बिजनेसमैन बनना या एंटरप्रेन्योर बनना, मैं समझते हैं कि माइंडसेट की बात है। अभी एक बड़े से बड़े कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं टाटा ग्रुप में हूँ या कोई और बड़ा कंपनी, आईटी कंपनी लीजिए, उसमें अगर टीम मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं कोई भी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि वो सेल्फ स्टार्टर हो, खुद अपने आप कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आप स्टार्ट हो जाए और वो रास्ता ढूंढे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किन के साथ हमें मिलके काम करना है, किन के पास राइट स्किल होगा जहां पे जाके हमें काम कराना है। ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये जो है इन डिमांड है अभी मार्केट में। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक माइंडसेट के रूप में देखें तो मैं समझता हूँ कि फेल्यूर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, देन वी लर्न मच मोर। आपके पास जो स्किल्स आपने एक्वायर किए, हमेशा हमें ये रखना है कि हमने क्या स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी और ने एंटरप्रेन्योर बना तो हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तब हमें स्किल्स नहीं आएंगे। अगर हमें खुद कुछ आइडिया है, कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सीखने को मिलता है और वो जो हम सीखते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होंगे। अगर हम फेल्योर फेस करते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि हमें एक स्टेप बैक लेना है, हमें फिर से जाके वही को ट्राई बार बार ट्राई नहीं करना है। वी हैव टू टेक ए स्टेप बैक, हमें रीअसेस करना है, हमें मेंटर्स के साथ, कोचेस के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि हमारा अप्रोच ये था, हमें किसी और के साथ, कोई और एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है तो उनके साथ हमें शेयर करना है। इससे ज्यादा से ज्यादा हमें सीख मिलती है। अगर हम उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए अभी हम रेडी नहीं है, तो ये जो स्किल्स हमने एक्वायर किए हैं उनको हमें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके एक ट्रेडिशनल जॉब लेना बेटर होगा, क्योंकि आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, दिस बिकम्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इवन इन अ कन्वेंशनल जॉब। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है, मैंने जैसे पहले बोला, एक साल में वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, बिकॉज इतने साथ इतना काम करना पड़ता है और इतने रिस्क और प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है, तो दे डेफिनेटली लर्न ए लॉट। तो ऐसे एक्सपीरियंस वालों को कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो उस पे अगर 2-3 साल काम करेंगे, लेकिन अपना एम फिर से रखे कि मुझे भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उस एक्सपीरियंस को और ये ब्रेक को दोनों मिला के मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट उनका डेफिनेटली और सक्सेसफुल होगा। ऐसे थोड़ा मैच्योर अप्रोच लेके उनको फेलियर्स को भी एक स्टेपिंग स्टोन लेना, एस्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर इज डेफिनेटली अ स्टेपिंग स्टोन। आजकल सिलिकॉन वैली में बोलता है कि आपके अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे, इन्वेस्टमेंट राउंड करेंगे, तो वो इन्वेस्टर जो है पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कोई फेल्यूर्स है पहले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, क्योंकि फेल्यूर का इतना इंपॉर्टेंस है। तो हमें भी फेल्यूर को सेलिब्रेट करना है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में। 95% ऑफ स्टार्टअप्स विल फेल, स्टार्ट करेंगे तो फेल होंगे, लेकिन वो फेल में से हमें कुछ सीखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमारा अटेम्प्ट है वो और रिफाइंड हो।
1: भानु भाई जी, ये आपने बहुत अच्छे बात बताया कि अगर शुरुआत में अगर फेल्यूर भी हो पर लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स कुछ उसने जो मेहनत किया है और जो रिगरस उसने हार्डवर्क किया है, उसकी जो एक्सपीरियंस एक साल का है वो 3 साल के बराबर होते हैं, और उसको लेके वो जॉब अप्लाई करने के लिए वो साइनेस या उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस शुरू किया था डूब गया, फिर नौकरी के लिए चला गया, अभी नौकरी करेगा फिर पता नहीं नौकरी कर पाएगा। सो देर आर लॉट मेनी क्रिटिसिज्म, लॉट मेनी सोशल रेजिस्टेंस में भी देयर।
0: शुभित भाई,
2: हाँ, कैन यू हियर मी?
0: या आई कैन हियर यू।
2: शिभा भाई इज फ्रीज,
0: आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, यू हैड समथिंग टू से, या ऑन दिस टॉपिक, इट विल बी रिलेवेंट।
2: राइट, सो आई वांटेड टू ऐड ऑन, मैं ये कहना चाहता था कि जो एक्सपीरियंस की बात करी कि एक एंटरप्रेन्योर साल भर में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले लेता है, क्योंकि उसको फाइनेंसेस डिसाइड करने होते हैं, उसको स्टाफ रिक्रूट करना होता है, उसको मार्केटिंग भी करनी होती है, उसको ट्रेंड्स को समझना होता है। अभी देखिए कितना बड़ा चेंज आया है पोस्ट कोविड, प्री कोविड व्हाट वाज द वे, पोस्ट कोविड एवरीथिंग इज गॉन ऑनलाइन। फिर इसके अलावा आपको ऑपरेशंस भी देखने होते हैं, लॉजिस्टिक्स, ऑफिस मैनेजमेंट देखना होता है, वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना होता है, फिर सप्लायर्स वेंडर्स को देखना होता है, और आपके जो क्लाइंट्स होने वाले पोटेंशियल, आपका जो ज्योग्राफिक रीजन होता है जहां काम करना होता है। सो ये सब कुछ पैरेलल चलता रहता है, एंड यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो यू ऑल्सो नीड टू हैव द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। So how do you find the right people? And then when it comes to the groundwork, wherein being the leader of an organization, there is also a very basic understanding that the temperaments matter a lot and the kind of product that you are into. So likely you will having that kind of a human resource also working in your own organization. So ye sab cheeze bhi hoti hai, with time you learn and you understand, because for anything to be successful, your human resource should stay with you. They should not leave you. Otherwise, you'll have to retrain them, and then the focus is shifted, and the focus should be on the client, on selling your product, and it should be in an automated mode gradually. So all of this takes time and effort, and I think in the whole process there is a lot of learning happening. At the same time, it makes you mature about life. Aur ek baat aur bahut important, hold on, kya karna hota hai, whatever is your work timing. For example, 9 to 6. Aapne apna shop ka time banaya, aapne apna entrepreneurship ka time banaya hai. You have to be there. You cannot say, aaj customer nahi aaya hai, aaj kaam nahi hai, to chalo hum work from home kar lenge. Jaise in service, you know, office band hai, to hum work of home kar lenge. Do din ki leave le li. Aaj man ne chutti ka, to fir humne medical leave laga diya. Things like that. So in entrepreneurship, this does not happen. So you have to be very determined, and there are no holidays over here, because you are the one, you can make less money also, and you can make more money also within the same month. So it is totally up to you how you are working towards it. What do you have to say, Bhanu bhai?
0: Correct. Aur main samajhta hu ki agar aapke paas koi reporting boss na ho, us time pe aap kaise behave karte ho, that becomes the biggest test of your character. Koi boss hai jo har din har micromanage karta rahega, then if you work nicely, there is nothing much, no speciality. But wo jo discipline aata hai, jo self directed discipline hai, I think that is a big test, and that is also a big resource. So I think that is why entrepreneurship should be looked at as a mindset. Then we will be able to take that mindset. In fact, I hope all the big companies, employees also get a training in entrepreneurship mindset, because then I think we will be able to see different kind of working. Hamara jo employees hain, regular kaam karne wale employees, unko bhi agar entrepreneurship skills mil jaye, to wo bhi apne companies mein better output produce kar sakte.
3: Bilkul, bilkul. Ek sawal aaya hai, ye Subhash ji likhte hain, ek baat samne aayi hai. Mindset, mind health, isko kaise hum log samjhe?
0: और मेरा एक हाँ, और शायद शोभित भाई का भी कुछ इनपुट होगा इसमें. मैंने एक स्पेशली हम एक इंक्यूबेटर है, फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है हम, जो हमारे पास जो है बहुत सारे एंटरप्रेनर्स आते हैं. मैं पर्सनली एटलीस्ट 500 एप्लीकेशंस देखता हूँ हर साल एंटरप्रेनर्स के साथ, एंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हर एक थीम से, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यू नो, सिटीजन सर्विसेज, पुलिस, क्राइम, सब एरियाज से स्टार्टअप्स के आइडियाज आते. सो इतने सारे आइडियाज होने के बावजूद क्या है कि, और उसके लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है. मैं समझता हूँ कि आज जो नीड है, इमीडिएट नीड है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंक्यूबेटर है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए माइंडसेट और जो मेंटल हेल्थ की सपोर्ट चाहिए, मैं समझता हूँ इसकी सबसे जरूरत है. क्योंकि ये जैसे अभी शोभित भाई ने लिस्ट बताया कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, तो दिस इज ऑलमोस्ट ए सुपरमैन जैसा बनता है वो एक एंटरप्रेन्योर. हर दिन जो है 10-15 चीजें होती हैं जो गिरने वाले होते हैं, और उन सबको संभाल के चलना पड़ता है. नेक्स्ट डे फिर से 9 बजे ऑफिस को आना है. इट इज नॉट ईजी. ऐसे लाइफ को कंटिन्यूसली इतने साल करते करते उनके वो स्ट्रेस जो है एक्युमुलेट होता रहता है. तो हर दिन जो है उनके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए मैं समझता हूँ कि वी हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप, और हमारा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एंटरप्रेन्योर्स लैंडस्केप में मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए. इनके मेंटल हेल्थ के लिए तीन, मैं समझता हूँ, एरियाज जो है सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने के. एक है कि रेजिलियंस. रेजिलियंस माना एक बार फेलियर हो गया तो नेक्स्ट डे वो रिबाउंड कैसे करेंगे, उसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे बिल्डअप करें, वैल्यूज कैसे बिल्डअप करें, और उनको शायद ब्रह्मकुमारी में समझाते हैं ड्रामा, उसके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उनके लिए हम क्रिएट करें ताकि उस फेलियर को भी हम रेगुलर समझें. सेकेंड होता है, मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों से गुण सीखना. जितना जल्दी वो गुण ग्राहक बनते हैं, उतना जल्दी एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने की इंपॉर्टेंट स्किल होती है. और तीसरा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि उनको एक फोरसाइट बैलेंस रखना है, माने 2-3 साल आगे के लिए भी सोचना है और प्रेजेंट मोमेंट में भी उनको रहना है. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है कि उनको लॉन्ग डिस्टेंस व्यू भी होना है और इमीडिएट आज के करंट व्यू भी रखना है. ये तीन एरियाज में समझता हूँ कि अगर उनको स्किल्स को हम डेवलप करें तो आप एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करेंगे, उनको मेंटल हेल्थ के सपोर्ट कर सकते हैं. ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने तीन एरियाज को आइडेंटिफाई. शोभित,
2: तो आई गिव यू a live example of a businessman who is successful across the country now, and unhone matlab karodon rupaye se unhone matlab ek risk lena aur ek made in India product banana. Wo log defense communication systems बनाते हैं जो कि पहले इंपोर्ट होता था, लेकिन अब वो मेड इन इंडिया काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड उसको करते हैं। तो जब हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया था कि हम अपने काम को स्केल अप करेंगे, उसको हम नेशनल लेवल पे ले जाएंगे, सो एक होता है स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, उसके लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल आल्सो हैव टू ट्रैवल। ऐसे काम के लिए तो आपको अलग अलग देशों में भी जाना होगा, वियतनाम, चाइना, जर्मनी, अलग अलग देशों में भी जाना होगा। तो वो सब भी किया और वाइफ के साथ बात किया कि व्हाट इफ अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो मेरा साथ दोगी मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि क्योंकि इवेंचुअली आप सब पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, घर के लिए, घर में सब बना रहे। तो वाइफ ने सपोर्ट किया, वाइफ ने कहा बिल्कुल आप करिए और आप जहां रखेंगे वहां रहेंगे और आपके मन के अंदर ये जज्बा है, आप ऐसा करना चाहते हैं और आप सक्सेसफुल होंगे, और नहीं भी हुआ तो हम साथ में है, दो रोटी दाल सब्जी तो हम खाएंगे खाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये जो

0: एक बात होती है कि एक होता है बिना फैमिली को बताए अपने हस्बैंड ने कुछ लोन ले लिया और कुछ काम कर लिया, एक हुआ है फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर तब आपने कुछ इस तरह का बड़ा कदम उठाया, तो बहुत अंतर हो जाता है मेंटल हेल्थ में।
1: रमेश भाई, एक बात बहुत बार बार आता है कि फेलियर की बात तो इजी है कि फेलियर को लोग समझते भी है और उसको फिर कोई लोग निकल भी आते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लोगों का सुनते हैं, कई भगवान की भी थोड़ा सा मूर्ति और उनकी भी थोड़ा सा निश्चय भी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है भानु भाई जी और रमेश भाई जी, जो आप बहुत अनुभवी है, कि जब इंसान बहुत सक्सेस पाता है, जब बहुत उसको माना कंटिन्यूअस सक्सेस मिल रहा है और एक के बाद एक सक्सेस मिलते जाता है, तो इंसान कई बार समझ नहीं पाता है और उसकी ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड रियलिटी से वो छूट जाता है, बोलते हैं ना धरती से वो डिटैच हो जाता है। तो फिर उस समय हमने कई फेलियर्स देखे, तो उस केस में अपने आप को कैसे एक संभाले, नहीं तो गिरने की चांस काफी बढ़ जाता है। चाहे हमने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी देखा, सिनेमास की भी पर्सनालिटीज देखे, ऐसे बिजनेस की भी लाखों ऐसे केसेस है जो कंटिन्यूस सक्सेस के बाद देन वो सीरीज ऑफ फेलियर उनकी लाइफ शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट में कैसे मैनेज किया जाए?
2: जी शिवा भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है सबके मन में आता भी होगा। और देखा गया है कि जब बहुत सक्सेस होने के बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति एकदम से फिर गायब हो जाता है, इंडस्ट्री में उनका चेहरा नहीं दिखता। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री में सब कुछ ऐसा नुकसान होने के बावजूद भी वो वापस स्टार्टअप करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर से सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो जो लोग लगे रहते हैं, जो लोग फील्ड को नहीं छोड़, चाहे नुकसान हो गया कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड रूट में रहते हैं और उनको पता है कि काम मुझे करना ही, तो वो फिर उसमें भी देह अभिमान छोड़कर वो छोटे से पर्दे पे भी आ जाते हैं और वहां से उन लोग शुरू करते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको वापस वो सारी चीजें वापस वो कैप्चर कर लेते हैं और फिर से आ जाते हैं। तो बहुत लोग हैं एक बार वहां से हटने के बाद, नुकसान होने के बाद, वो फिर से क्या कहते हैं वापस आने में उनको जो है, या वापस उनको खड़ा होने में दिक्कतें तब होती हैं जब वो अपॉर्चुनिटीज को लेने के बजाय मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं कि छोटा काम कैसे करूं, वो चीज उनके अंदर आ जाता है, तो वो फेलियर ज्यादा होते हैं और उनको लंबा खींचना पड़ता है। लेकिन जो आदमी सोचते हैं कि हाँ नुकसान हो गया, चलिए यहाँ जो कुछ मिल रहा है वहां से शुरू करते हैं, तो वो छोटे से शुरू करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे वापस, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है तो नेचुरली वो वापस ऊपर उड़ जाते। तो ये चीजें हमने देखी है। शिवा भाई का शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। बानो भाई, मुझे लगता है कि आप और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें फिर पूरा।
3: हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो दो प्रॉब्लम्स है, एक है बहुत जल्दी सक्सेस को पाना और दूसरा है सक्सेस को पाने के बाद जल्दी गिर जाना और जल्दी उसको लॉस एक्सपीरियंस करना। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सक्सेस में हाई हेडेड बन सकते हैं, हैवी हैंडेड बन सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाए रखना और अपने पुराने रिलेशनशिप्स को उसी ग्राउंडेड रीति से हम कैसे संभालें, ये सब जो है सक्सेस मैनेजमेंट का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं समझता हूँ कि दोनों में, सक्सेस में और फेल्यूर में, दोनों में अगर हमें समान रहना है तो एक बात होती है इम्पैक्ट फोकस। हम इस बिजनेस में क्यों आए, ये हमें थोड़ा इसको फ्रेम करके रखना है हमारे घर में कि हमने इस एरिया में हमने क्यों एंट्री किया पहले। अगर हमें सक्सेस मिलता है तो ए इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव, बैंक बैलेंस नहीं, हमने जो इम्पैक्ट लाना चाहा हमने कम्युनिटी में, वो हमने अचीव किया कि नहीं। अगर वो अचीव कर रहे हैं तो उसका गोल कैसे बढ़ाएं, अगर उसमें हमें सक्सेस है तो नेक्स्ट हमें बेंचमार्क को हमें ज्यादा बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है हमें हमेशा हमारे पैर को धरती पे रखेगा, नहीं तो हम इजीली, हम जैसे बोलते हैं ना कैरिड अवे, हम ऐसे ही जाएंगे और हमारे बेसिक्स के साथ हमें कनेक्शन नहीं रहेगा। उससे ही जो है देहाभिमान में, वो आपने बोला, अहंकार आएगा, रिलेशनशिप्स में डैमेज होगा और बाकी सब जो है डाउन स्ट्रीम चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे फेल्योर में भी हमें इम्पैक्ट को रखना है, हम हमेशा बोलते हैं कि तीन एलिमेंट होते हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्वर। फेल्योर किसी भी कारण हो सकता है कि आपने गलत प्रॉब्लम चूज किया, दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम सही था लेकिन सॉल्यूशन गलत था, तीसरा हो सकता है प्रॉब्लम भी सही था, सॉल्यूशन भी सही था लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर रेडी नहीं था। तो ये तीनों जो है हो सकते हैं सिचुएशन। हमें ये ह्यूमिलिटी चाहिए उस समय कि हमें एक बार स्टेप बैक करके देखना है कि हम फेल क्यों हुए, हमने शायद रॉन्ग प्रॉब्लम चूज किया होगा, या हमारा सॉल्यूशन गलत हुआ होगा, या मैं रेडी नहीं हूं अभी इसके लिए। तो ये तीनों एरियाज को हमें एसेस करना है और ये तीनों भी हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पे अभी हमारे 60-70% स्टार्टअप जो है फेल होते हैं, रॉन्ग प्रॉब्लम चूज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हो सकता है कि फेलियर के अलग अलग रीजन हो सकते, इसीलिए हमें इम्पैक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किसी की जान को बचाना है इस सिचुएशन में, तो वो ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर उस इम्पैक्ट के ऊपर हमारा फोकस है, तो हम अलग अलग रीति से ट्राई करके फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्षमता रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस और फेलियर दोनों में जो है हमें अपने आप को मैनेज करने की टेक्निक्स को हमें लाना है।
1: मेरे ख्याल से समय की एक सीमा है। जी जी हाँ रमेश भाई आप कंक्लूड आप कीजिए, लेकिन इसमें एक बात मैं बोलते हुए आप करना कि अकेले में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो वो इजी है, लेकिन एक टीम को लेके एंटरप्रेन्योर आप किस तरह से आप काम करते हो, आपका भी रेडियो मधुबन में बहुत सारे टीम है, तो टीम को लेके आप कैसे करते हो और हम सब भी कहाँ कहाँ बैठे हैं, सबको लेके आप कैसे चलते हो, जो सक्सेस का एक पैरामीटर है, उस बात को बोलते हुए आप कंक्लूड कर दो।
2: ओके शिवा भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए हर व्यक्ति अगर इंडिविजुअल करना है वो आसान है, खुद को समझो और खुद को आगे बढ़ाते जाओ और वो आसान है, लेकिन टीम के साथ अगर हमको सक्सेस अचीव करना है तो हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, उनका क्वालिटी, उनका विशेषता होता है, उन सभी चीजों को देखते हुए उनके साथ हमको जो है आगे बढ़ना है। अगर उनकी कमियों को देखेंगे तो वो आपके लिए बड़ी रुकावट वाली काम होगी, बहुत मुश्किल कर देगा आपको। टीम चलेगा, काम चलेगा, लेकिन आपका चेहरे पे स्माइल नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, काम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अंदर से एक धुंध रहेगा। लेकिन हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उनके विशेषताओं को देखते हुए, उनके अपने रोल को देखते हुए अगर आप उनको समझेंगे तो उनके साथ आप ताल से ताल मिलाएंगे तो आप खुश रहेंगे। और आप अपने आप में देखिए कि मुझे जो जॉब दिया है, मुझे जो काम मिला है, मुझे जो सेगमेंट मिला है, उस सेगमेंट को मैं बहुत अच्छी तरह से करता जाऊं, मैं दूसरों को ना देखूं, तो वो चीजें जो है टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टीम में मूव ऑन करने के लिए आपकी खुशी भी इम्पोर्टेंट, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस चीज को लेकर हम चल सकते हैं। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह से हमारी जीवन शैली होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद उसको लॉन्ग टाइम में रन करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या क्या बातें होती है, वो लेकर आज हमने डिस्कशन किया। शिवा भाई ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, भानु भाई ने भी अच्छा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारे सुमित भाई ने भी अपना बिजनेस का खुद का अनुभव, क्योंकि उनका बिजनेस फैमिली है तो नेचुरली पढ़ाई करते हुए भी वो बिजनेस में थोड़ा थोड़ा अपना जो है एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और जब जैसे ही पढ़ाई पूरा हो जाता है दे जंप इनटू द बिजनेस, तो वहां पर उनको क्योंकि पहले का अनुभव है और एक परंपरागत चीजें भी उनमें कुछ ब्लड में भी होता है तो इसलिए वो आसानी से उन चीजों को करने में तैयार हो जाते हैं। और वही चीज दूसरे लोगों में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर अरे बाप रे इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आएगा, ये सोच सोच के दे टेक द डिसीजन, मेरे ख्याल से बहुत लंबा टाइम लगता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, लेकिन फिर भी हमें सीखने को मिलता है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना ही है तो पहले से माइंडसेट बनाएं, तो आपके पास बिजनेस नहीं, आपका पूरा परंपरा से नहीं है, लेकिन जो बिजनेस चल रहा है वहां पर एक पार्ट टाइम आप आधा घंटा एक घंटा काम करके उसको सीख सकते। इफ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस देन यू कैन लर्न एनीवेयर, कैसे भी जाके आप, जैसे मैं स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते हुए केमिस्ट का, ऐसे किसी पिताजी ने बोला आप कुछ बिजनेस का सोचो बोले, तो मैं केमिस्ट के पास फ्री में काम करता साल भर, लेकिन मुझे इतने मेडिसिन के नॉलेज आ गए, बड़ा अच्छा लगने लगा और लोगों का अप्रिशिएट मिला, अरे तू मेडिकल में है और तेरे को ये सब मालूम है दवाई का, और सामने से लोग मुझे बोलते थे ये मेडिकल में इसको तो दवा का सब पता है, तो उससे मेरे को ऐसा खुशी मिलती थी ना, एक वो चीजें एक अपने आप में एक जो है लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है तो आपको लगा। और मैंने अच्छा सक्सेसफुली मेडिकल स्टोर रन भी किया, इंडिविजुअली रन किया विदाउट मनी, हमने पार्टनरशिप में एक फाइनेंसर से जुड़ के 8 से 10 साल मैंने उसको अच्छी तरह से रन किया, फिर बाद में हमने गिव अप। तो कहने का भाव ये है कि आपका परंपरागत बिजनेस ना हो तो भी आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे भी करके उसको कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट, लेकिन वही थोड़ा सा मैनेज करना है हर चीज में। थैंक यू शिवा भाई, थैंक यू सोबित भाई, थैंक यू भानु भाई, जय हिंद जय भारत, ओम।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से चलते हैं मीना से मिलने, जो अभी तारा के साथ स्कूल से वापस लौट रही है।
1: तारा दीदी, बहन जी बता रही थी कि अगले हफ्ते अपने स्कूल में जो संगीत का मुकाबला होने वाला है, उसमें आप और बेला दीदी मिलके कोई गाना गाओगे।
2: पता नहीं।
1: अरे आप ऐसे क्यों?
2: और नहीं तो क्या, अब देखो ना, कल स्कूल की छुट्टी के बाद बेला और मैंने गाने का अभ्यास करना था, लेकिन वो मुझे बिना बताए घर चली गई और आज स्कूल भी नहीं आई। अब अगर अभ्यास ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे?
1: तारा दीदी, ये भी तो हो सकता है कि बेला दीदी की तबीयत ठीक ना हो।
2: ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मीना, बेला के घर चलते हैं।
0: मीना और तारा बेला के घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में मिले उन्हें पोंगाराम चाचा।
3: अरे मीना, तारा, बेला तुम्हारे साथ नहीं आई?
2: चाचा जी, बेला तो आज
3: अच्छा, स्कूल में गाने का अभ्यास कर रही होगी बेला। आज सुबह स्कूल जाते समय मुझसे कह भी रही थी, पिताजी कल की तरह आज भी घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी।
2: अब लेकिन चाचा जी, बेला तो...
3: चलो अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गई। मीना, तारा, तुम तो जानती ही हो कि बेला की माँ अपने भाई के यहाँ रहने गई हुई है। अब मैं जा रहा हूँ उसे लेने। ये बात मैं बेला से सुबह कहना भूल गया था। तुम दोनों उससे कह देना कि मैं और तुम्हारी चाची शाम तक लौट आएंगे। ठीक है बच्चों?
2: जी चाचा जी। मीना, आखिर बात क्या है? चाचा जी कह रहे थे कि बेला स्कूल गई हुई है, जबकि वो तो आज स्कूल आई ही नहीं।
1: लेकिन फिर बेला दीदी गई कहाँ होंगी?
2: मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है मीना।
1: आप चिंता मत कीजिए दीदी, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर। अरे हाँ, शायद मीता दीदी को पता होगा।
2: मीता को? लेकिन मीता तो शहर गई हुई थी अपनी मौसी के यहाँ।
1: वो तो पता नहीं दीदी, लेकिन कल शाम को जब मैं खेल के लौट रही थी तो बेला दीदी मीता दीदी से खूब हंस हंस के बातें कर रही थी।
2: अच्छा, चलो मीना, मीता के घर चलते हैं।
0: मीना और तारा पहुँचे मीता के घर।
2: बेला, तुम यहाँ? पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, और तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? गाने का अभ्यास भी?
4: वो सब बाद में तारा, पहले ये देखो, फिल्मी पत्रिका मीता लेके आई है शहर से।
5: हाँ तारा, बड़ी मजेदार किताब है। बेला और मैं तो कल से बस इसी पढ़े जा रहे हैं।
4: तारा, मीता शहर से बहुत सुंदर कपड़े भी लेके आई है, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। तुम भी आओ ना मीना।
1: बेला दीदी, मुझे देर हो रही है, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, पोंगाराम चाचा चाची जी को लाने गए हैं, कह रहे थे शाम तक लौटेंगे।
4: ये तो और भी अच्छी बात है, क्यों मीता? अब तो मीना भी चली गई तारा। चलो तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ।
2: ये तो
5: लिपस्टिक है, लगा के देखो।
2: लेकिन मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई।
5: लगा ना तारा, तेरे होंठ एकदम गुलाबी लगेंगे।
0: और अगले दिन स्कूल में जब मीना खेल के मैदान में खड़ी थी।
2: मीना, मीना।
1: तारा दीदी, मगर ये पेड़ के पीछे क्यों छुपी हुई है?
2: यहाँ आओ जल्दी।
1: तारा दीदी, आज आप स्कूल क्यों नहीं आई?
2: मीना, बेला मुझे आज फिर से मीता के घर ले गई थी, इसीलिए मैं...
1: और आपके गाने का अभ्यास?
2: मैंने बेला से कहा भी था मीना, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती वहीं रोक लिया।
6: और इसीलिए तुम स्कूल नहीं आई?
2: बहन जी, आप...
6: बात क्या है तारा, तुम्हारे होठों पे ये तुमने लिपस्टिक कहाँ से लगाई?
2: जी वो मीता और बेला।
6: मीता और बेला, वो दोनों भी स्कूल नहीं आई? आखिर बात क्या है तारा?
2: बहन जी, वो मीता शहर से...
0: तारा ने बहन जी को सारी बात बताई।
2: बहन जी, अगर मैं मीता और बेला के साथ ना रुकती, उनकी बात ना मानती, तो उन्हें बहुत बुरा लगता और वो मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाती।
6: क्या तुम वहाँ रुकना चाहती थी?
2: नहीं बहन जी, मैं तो स्कूल आके गाने का अभ्यास करना चाहती थी।
6: तो तुमने ये बात मीता और बेला से क्यों नहीं कही?
2: बहन जी, अगर मैं उनकी बात ना मानती तो वो दोनों मुझसे नाराज हो जाती और मुझे डरपोक कहती।
6: देखो तारा, अगर बेला और मीता सच में तुम्हारी अच्छी सहेलियां हैं, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हें स्कूल न आने की सलाह देके वो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान तो कर ही रही हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर रही हैं। सच्चे दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, उन पे दबाव नहीं डालते, समझी?
7: लेकिन बहन जी, मैं करती भी तो क्या?
6: मैं जानती हूँ तारा, बेला तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है, लेकिन अगर हम अच्छे दोस्तों को सही काम के लिए हाँ बोल सकते हैं तो गलत काम के लिए उन्हें ना भी बोल सकते हैं। ना बोलने में कोई बुराई नहीं है। मान लो कोई हमसे कहे कि जाओ कुएं में छलांग लगा दो, तो क्या हम हाँ बोल देंगे? बोलो।
7: आप ठीक कह रही हैं बहन जी।
0: और अगली सुबह जब तारा स्कूल जा रही थी,
1: तारा तारा मीता और मैं साथ वाले गांव जा रहे हैं नाटक देखने, शाम तक लौट भी आएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो ना।
7: लेकिन मैं वो
5: डरती क्यों हो तारा?
7: नहीं मीता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
1: ये क्या कह रही हो तारा, हम तो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियां हैं।
7: बेला, सच्चे दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, उन पे दबाव नहीं डालते।
5: तुम हमें ना बोल रही हो अपनी सहेलियों को?
7: नहीं मीता, मैं अपनी सहेलियों को नहीं बल्कि एक गलत काम को ना बोल रही हूँ। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन स्कूल भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। बेला, तुमने नाटक देखने जाना है तो जाओ, मैं किसी और के साथ गाने का अभ्यास कर लूंगी।
1: तारा, मुझे माफ कर दो तारा।
7: एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि तुम स्कूल से बिना वजह के एक भी छुट्टी नहीं करोगी।
8: छुट्टी नहीं करोगी, मन लगाकर पढ़ोगी।
1: हाँ तारा, आज से मैं कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं करूँगी, लेकिन तुम किसी और के साथ तो गाना नहीं गाओगी ना?
7: इसका जवाब मैं तुम्हें एक ही शब्द में दूंगी, और वो शब्द है नहीं।
0: उस दिन के बाद से बेला और मीता ने स्कूल से एक भी छुट्टी नहीं की, और मुकाबले के दिन पहला इनाम जीता तारा और बेला की जोड़ी ने। देखा दोस्तों, बुरी चीजों को ना कहने में ना तो घबराना चाहिए और ना ही शर्माना चाहिए। चलो अब देखें कि आज हमारे महान कवियों ने क्या लिखा है।
1: गलत राह जब दोस्त दिखाएं, याद ये रखना बात,
8: प्यार से उनको मना करो तुम, डरने की क्या बात।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिठू ने। लगता है मुझे भी इन दोनों से कविता लिखना सीखना ही पड़ेगा। खैर वो सब बाद में, क्योंकि अभी समय है एक गाना सुनने का।

0: जितनी मजेदार कहानी उतनी ही मजेदार कविता, और जितनी बढ़िया कविता उतना ही बढ़िया था गाना। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है सितार। और भारत के एक मशहूर सितार वादक कौन है?
3: पंडित रविशंकर जी।
1: शाबाश सुमा। चलो बच्चों अब सितार के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी, सितार का पहला अक्षर है स, और स से होता है सूरज।
1: शाबाश कृष्णा। और मुहावरा?
5: सूरज को टॉर्च दिखाना।
1: टॉर्च नहीं गोलू, दीपक। सूरज को दीपक दिखाना। और इस मुहावरे का मतलब होता है?
6: बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की जरा सी प्रशंसा करना।
1: बिल्कुल सही कहा मिली। अब अगला शब्द कौन बनाएगा?
7: बहन जी, स के बाद सितार में आता है त, और त से होते हैं तिल।
1: शाबाश मोनू। अब तिल से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
8: तिल का ताड़ बनाना।
1: हाँ सुमी। और इस मुहावरे का मतलब?
9: बहन जी, इस मुहावरे का मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा देना।
1: बिल्कुल ठीक सुमी। अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
10: स और त के बाद सितार में आता है र, और र से होती है राई।
1: सही जवाब दीपू। और मुहावरा?
11: एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ राई।
1: राई नहीं दीपू, खाई। खाई। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। राई से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
12: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
12: राई का पहाड़ बनाना।
13: राई का पहाड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना।
1: शाबाश मीना। मिट्ठू ने भी बिल्कुल ठीक कहा। राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है
12: तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना।
1: हाँ, तो मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
14: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 11 विच इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द बिट्रेयल ऑफ फेथ एंड द ऑथर इज E.R. Breathwaite. That means Edward Ricardo Breathwaite. Okay. Book, as usual, Golden Rays for the class 10th of Rajasthan Board of Secondary Education. So, students, आज मैं आपको lesson number 11 पढ़ाऊंगा, जो कि last lesson है इस book का, Golden Rays का. Writer है E.R. Breathwaite. तो सबसे पहले मैं अबाउट द ऑथर के साथ स्टार्ट करता हूं. एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट बॉर्न 1922, 1922 में इनका जन्म हुआ. पूरा नाम एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट इज अ गुयानीज नॉवेलिस्ट, राइटर, टीचर. ये जो है गुयानीज, गुयाना एक शहर है, जगह है, देश है छोटा सा, वहां के निवासी थे गुयानीज. जैसे इंडिया का अगर कोई है तो बोलते हैं ना इंडियंस या इंडियन, तो ये गुयाना के उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट, राइटर, लेखक, टीचर, अध्यापक एंड और डिप्लोमेट, और क्या थे, एक कहना चाहिए कि सरकारी अधिकारी. बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज, और ज्यादातर इनको अपनी कहानियों के लिए जाना जाता है, ऑफ सोशल कंडीशंस, जो कि सामाजिक एंड रेशियल और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल, काले लोगों के खिलाफ जो सामाजिक और जातीय जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके खिलाफ जो कहानियां इन्होंने लिखी हैं, उसके लिए इनको ज्यादा जाना जाता है. ब्रेथवेट वॉज फर्स्ट एजुकेटेड एट क्वींस कॉलेज. सबसे पहले उन्होंने शिक्षा प्राप्त की क्वींस कॉलेज में, गुयाना, गुयाना के क्वींस कॉलेज में, एंड और देन द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में 1940 में. ही वेंट ऑन टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1949 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी आ गए, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है. फ्रॉम विच ही अर्न्ड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड अ डॉक्टरेट इन फिजिक्स, जहां से उन्होंने एक तरह से ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली, यूजी की डिग्री जिसको बोलते हैं, और उसके बाद वहां से डॉक्टरेट इन फिजिक्स की भी उन्होंने उपाधि हासिल की. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ही ज्वाइंड द रॉयल एयरफोर्स. वो जो रॉयल एयरफोर्स, जो ब्रिटेन की सेना है, इंग्लैंड की जो सेना है, जिसका रॉयल एयरफोर्स नाम है वायु सेना, एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में उन्होंने उसको ज्वाइन किया. आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, लाइक मैनी अदर एथनिक माइनॉरिटीज, कई सारे अपने जैसे जो अल्पसंख्यक थे उनकी तरह, Despite his extensive training, उनकी जो बहुत बड़ी जो प्रशिक्षण उनका हुआ था, उसके बावजूद Breathwaite could not find work in his field. वो अपना जो उनका फील्ड था पायलट का, हवाई जहाज उड़ाने का, उसमें उनको जॉब नहीं मिला. And disillusioned, और उनके जो विश्वास थे वो टूटते चले गए. Reluctantly, दुखी होकर के, मतलब ना चाहते हुए भी, took up a job as a स्कूल टीचर, एक स्कूल के अध्यापक के रूप में उनको नौकरी लेनी पड़ी इन द ईस्ट एंड ऑफ लंदन, लंदन के पूर्वी हिस्से में. द बुक टू सर विद लव इन 1959, ये जो किताब है जिससे ये अंश लिया गया है, जिसका नाम है टू सर विद लव, सर SIR, टू सर विद लव, और ये 1959 में लिखी गई, वाज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस देयर, और वहीं स्कूल टीचर रहने के दौरान जो उनके अनुभव रहे, उसी के ऊपर यह किताब पूरी तरह से आधारित है. ब्रेथवेट्स न्यूमरस राइटिंग्स हैव प्राइमरीली dealt with the difficulties of being an educated man. ब्रेथवेट की बहुत सारी जो लेखन है, बहुत सारा जो उनका लेखन है वो मुख्य रूप से इसी पर आधारित है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितनी सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा. अ ब्लैक सोशल वर्कर, एक काले समाज सेवक के रूप में, अ ब्लैक टीचर, एक काले अध्यापक के रूप में, एंड सिंपली अ ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन सर्कमस्टेंस, और एक इंसान के रूप में अमानवीय परिस्थितियों में किस प्रकार उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने अपमानजनक परिस्थितियां उनके साथ रही, कहां कहां उनका अपमान हुआ. इनह्यूमेन. तो अब पढ़ते हैं अबाउट द टेक्स्ट इस लेसन के बारे में. द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम E.R. ब्रेथवेट्स ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विद लव. ये अंश जो एक ऑटोबायोग्राफी की तरह एक उनका उपन्यास है जीवनी के जैसा ही, टू सर्व विद लव, उससे लिया गया है यह अंश. इट डील्स विद हिज डिसइल्यूजनमेंट विद द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, और ये इसमें बताया गया है कि जो इंग्लैंड का निवासी या इंग्लैंड वासी समझने की वजह से, वहां का जीवन कि जो वहां की जो जीवन की शैली है उसको अपनाने की वजह से कहां कहां उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा. विच ही फाइंड्स फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड डिसेप्शन, जो कि जीवन शैली जो है ब्रिटेन की पूरी तरह से पाखंड से भरी हुई है, झूठ से भरी हुई है. ही फेल्ट डिसीव्ड एंड डिसइल्यूजन, उनके साथ उनको ऐसा लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ, एंड रोट अबाउट द मिसलीडिंग ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, और जो अंग्रेजों का जीवन जीने का तरीका है उसमें जिस प्रकार के अपमान उनके साथ हुए उसी पर उन्होंने ये पूरा उपन्यास लिखा है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द इंग्लिश पीपल से एंड डू, और वो लिखते हैं ब्रेथवेट कि अंग्रेज लोग जो कहते हैं और करते हैं उसमें, यानी उनकी कथनी और करती में बहुत सारा अंतर है. दे से दैट दे डू नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक, एंड वो कहते हैं कि वो काले और गोरों में फर्क नहीं करते, एंड दैट द ब्रिटन्स एंड द निग्रोस एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ लिविंग, और वो ये भी कहते हैं कि जो इंग्लैंड के मूल निवासी हैं और जो अफ्रीकी मूल के निवासी हैं उनके बीच में वो अधिकारों को लेकर के किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, उनको भी पूरे अधिकार हैं. बट लेकिन ब्रेथवेट फील्स दैट, ब्रेथवेट ये महसूस करते हैं कि सच हाई साउंडिंग वर्ड्स, वो इस तरह के जो अच्छी ध्वनि पैदा करने वाले जो शब्द हैं, आर पार्ट ऑफ पॉलिश्ड पॉलिसी टू बिफूल द निग्रो पॉपुलेशन, लेकिन ये सब इंग्लैंड की जो जो जो अफ्रीकी मूल के निवासी हैं उनको धोखा देने के लिए ही इस तरह की चिकनी चुपड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं. He points out that, वो ये इशारा भी करते हैं कि in Britain, इंग्लैंड में there are abusive terms, वहाँ पे गाली गलौज की कुछ शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, such as जैसे कि डार्की, निगर और ब्लैक, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, used to address a negro, एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. ही सटायरिकली कमेंट्स, वो व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि यस, हाँ, इट इज वंडरफुल टू बी ब्रिटिश अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन. वो कहते हैं कि हाँ, इंग्लैंड का निवासी होना बहुत ही गर्व की बात है जब तक कि कोई इंग्लैंड नहीं आए. यह है उनका व्यंग्य दरअसल, वास्तव में तो भेदभाव हर जगह होता है, चाहे कोई सा भी इलाका हो, लेकिन फिर भी समझदारी के साथ जीना पड़ता है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन, द बिट्रेयल ऑफ फेथ, विश्वास का टूटना. द बिट्रेयल ऑफ फेथ, उम्मीदों का टूटना, बिखरना. बिलीफ इन एन आइडियल डाइज हार्ड. बिलीफ इन एन आइडियल डाइज हार्ड. जब कोई आदर्श मरता है तो बहुत कठिन होता है. आई हैड बिलीव्ड इन एन आइडियल फॉर ऑल द 28 ईयर्स ऑफ माई लाइफ. मेरे पास भी एक आदर्श था, मेरा भी एक आदर्श में विश्वास था, और वो आदर्श ये था द आइडियल ऑफ द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, कि अंग्रेजों का जीवन जीने का जो तरीका है, अंग्रेजों की जो जीवन शैली है, उसके प्रति मेरा आदर्श था, बहुत अच्छा था. मेरा विश्वास था कि शायद वो संसार में सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है. इट हैड सस्टेन्ड मी व्हेन एज अ यूथ इन हाई स्कूल ऑफ नियरली ऑल वाइट स्टूडेंट्स आई हैड टू वर्क हार्डर और रन फास्टर देन दे नीडेड टू डू इन ऑर्डर टू मेक द ग्रेट. और ये मेरा आदर्श तब तक रहा जब एक युवा के रूप में अपने विद्यालय में मुझे लगभग सभी गोरे विद्यार्थियों से ज्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती थी और ज्यादा तेज भागना पड़ता था ताकि मैं कोई स्थान प्राप्त कर सकूं. इट हैड इंस्पायर्ड मी इन माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स व्हेन आइडियल्स वर ड्रैग्ड इन द डस्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट फॉलोइंग द स्पेनिश सिविल वॉर. और ये मेरे विश्वास जब मैं कॉलेज और महाविद्यालय में आया, यानी विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जब मैं आया, उन दिनों मेरे ये आदर्श तब तक कुछ बने रहे जब तक कि ये पूरी तरह से धूल में नहीं मिल गए. मेरा विश्वास पूरी तरह से जब तक टूट नहीं गया, और उसके बाद जब तक कि स्पेन की जो सिविल वार, नागरिक युद्ध जो हुआ, तब तक मेरे अंदर ये विश्वास बने रहे. बिकॉज क्योंकि ऑफ इट आई हैड नेवर सॉट टू अक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप. क्योंकि तब तक मैंने कभी भी अमेरिका की नागरिकता लेने के बारे में नहीं सोचा था. एंड व्हेन आफ्टर ग्रेजुएशन, अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, एंड टू इयर्स ऑफ फील्ड वर्क, दो वर्ष के काम के बाद इन वेनेजुएला में आई केम टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड आ गया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, अपनी एमए की पढ़ाई करने के लिए, स्टडी इन 1939. आई फेल्ट दैट, मैंने ये महसूस किया कि एट लॉन्ग लास्ट आई वॉज पर्सनली आइडेंटिफाइड विद द हब ऑफ फेयरनेस. कि मैं ये सोचता था कि आखिरकार मुझे भी यहाँ के निवासियों की तरह ही पहचान मिल जाएगी. टॉलरेंस एंड ऑल द फ्रीडम्स, यहाँ पे मुझे सहनशीलता, जो मैं करना चाहता हूँ वो, और पूरी स्वतंत्रता मुझे यहाँ के निवासियों की जैसी ही मिल जाएगी. इट वॉज देयर फॉर विदाउट एनी हेजिटेशन दैट, इसीलिए बिना हिचकिचाए आई वॉलंटियर्ड फॉर सर्विस विद द रॉयल एयरफोर्स. इसीलिए मैं जो ब्रिटिश वायुसेना जो थी उसको भी मैंने ज्वाइन किया इन 1940 में, विलिंग एंड रेडी टू ले डाउन माई लाइफ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडियल विच हैड बीन माई लोडेस्टर. मेरा जो बहुत ही प्रमुख विश्वास था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसको टूटने नहीं देने के लिए मैंने अपना जीवन त्याग कर दिया ब्रिटिश सेना के लिए, वायुसेना के लिए. बट नाउ, लेकिन अब दैट सेल्फ सेम आइडियल, लेकिन वही मेरा अपना आदर्श, वॉज गॉल एंड वॉर्मवुड, वो सब टूट गया इन माई यूथ, मेरी जवानी, इन माई माउथ, वो सब कुछ, मेरा आदर्श जो है वो मेरा मुंह में ही रह गया, मेरे अंदर ही रह गया वो. वो आदर्श जो मैंने सोचा था वो मुझ तक ही सीमित रह गया। द मेजोरिटी ऑफ ब्रिटन्स एट होम हैव वेरी लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट दैट इंटेंजिबल येट अमेजिंगली रियल एंड इन वैल्यूएबल एक्सपोर्ट द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ मीन्स टू कॉलोनियल पीपल एंड दे सीम टू गिव लिटिल थॉट टू द फैंटास्टिक फिनोमिनन ऑफ रेसेस सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर सेल्व्स इन पिगमेंटेशन एंड टाइडली स्कैटर्ड जियोग्राफिकली। आगे ब्रेथवेट बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो द मतलब अधिकांश ब्रिटन्स ज़्यादातर इंग्लैंड के वासी अपने घरों में वो बहुत कम ही प्रशंसा का भाव रखते हैं, जो कि क्या कहना चाहिए, मतलब ऐसा भाव वो रखते हैं जो मतलब किसी पर असर नहीं कर सकता, किसी को समझ में नहीं आ सकता। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से वास्तविकता में वो अपनी जो जीवन शैली है उसका आयात उसका निर्यात करते हैं। वो लोगों को चीख चीख करके बताते हैं कि ब्रिटिश जीवन शैली जो है वो बहुत महान है, बहुत अच्छी है। उसका मतलब उनका ये होता है कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश देशों के जो लोग हैं कॉलोनियल, यानी जहां जहां इंग्लैंड का अधिकार रहा कभी, उन लोगों को वो लुभा सके, उन लोगों को वो आकर्षित कर सके। बहुत ही सोची समझी, जो वो लोग जो उनसे कलर में भिन्न हैं, रंग में भिन्न हैं, बनावट में भिन्न हैं, उन लोगों को वो किसी तरीके से समझा करके यहां पर बुला सके। एसिडुअसली आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद ब्रिटिश लॉयल्टीज, और ना चाहते हुए भी ये लोग अपने आप को इंग्लैंड के साथ वफादारी स्थापित कर सके, वहां के विश्वासों को, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस और वहां की परंपराओं के साथ अपने आप को जोड़ सके। दिस एटीट्यूड कैन इजीली बी ऑब्जर्व, इस तरीके को आसानी से देखा जा सकता है इन द वे जिस प्रकार इन विच द कलर्ड कॉलोनियल विल कोट द ब्रिटिश सिस्टम्स। जो उपनिवेश जो दो उपनिवेश हैं ब्रिटेन के, वो जिस प्रकार वहां के अंग्रेजी व्यवस्था को जिस प्रकार उसका बखान करते हैं, खासकर कानून व्यवस्था का, एजुकेशन शिक्षा का एंड गवर्नमेंट और सरकार का, एंड विल अडॉप्ट फैशंस इन ड्रेस एंड सोशल कोड्स, और जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं में जो उनका रहन सहन है, इवन दो हिज नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स हैज डिपेंडेड लार्जली ऑन सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, और जो भी ऐसा कहता है उसकी जानकारी आम तौर पर वो सही नहीं होती है। उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि हमारे देश के प्रति इन्हें आकर्षित करना, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। यस, हाँ, इट इज वंडरफुल टू बी ब्रिटिश, हाँ, इंग्लैंड का वासी होना बहुत अच्छा है, अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन, जब तक कि कोई इंग्लैंड ना आए, जब तक कि कोई ब्रिटेन में आए नहीं, तब तक तो बहुत अच्छा है। बाय डिंट ऑफ केयरफुल सेविंग और थ्रू हार्ड वन स्कॉलरशिप्स मैनी ऑफ देम अराइव इन ब्रिटेन टू बी एजुकेटेड इन द आर्ट्स एंड साइंसेस एंड इन द varied processes of legislative and administrative government। बहुत से लोग जिनके बारे में ब्रेथवेट बताते हैं कि जिस प्रकार कई तरह के साधनों का उपयोग करके किसी न किसी प्रकार से किसी भी तरीके से बहुत सावधानी के साथ अपनी बचत करके या फिर जो कठिन से कठिन स्कॉलरशिप्स होती हैं, छात्रवृत्तियां होती हैं, उनको हासिल करके बहुत से लोग यहाँ आते हैं ब्रिटेन में शिक्षित होने के लिए, कला में, आर्ट्स में, साइंस में, विज्ञान में, और कानूनी जो अलग अलग तरीके होते हैं लेजिस्लेटिव, उनमें प्रशासनिक व्यवस्था को जानने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, दे कम, वो आते हैं बोल्स्टर्ड बाय अ फर्म कंडीशनड बिलीफ दैट ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश स्टैंड फॉर ऑल दैट इज बेस्ट इन बोथ क्रिश्चियन एंड डेमोक्रेटिक टर्म्स इन दियर नेवीट दे एस्क्राइब दीज हाई प्रिंसिपल्स टू ऑल ब्रिटन विदाउट एक्सेप्शन। तो आगे ब्रेथवेट वुड लाइक टू से कि वो लोग जो यहाँ पर इस तरह की स्कॉलरशिप लेकर के या बहुत मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, किसी का सहारा लेकर के, किसी की मदद से, किसी बात से प्रभावित होकर के, या फिर जो बहुत ही स्वभाव से सीधे साधे लोग होते हैं, व्यवहार में बहुत सीधे लोग होते हैं, उनके पास कोई ना कोई कारण होता है यहाँ आने का, या जिनके जिनका मानना है कि भाई यहाँ इंग्लैंड में ही जाकर के सब कुछ ठीक है, ऐसे लोगों के लिए वो ब्रेथवेट हैं, वो कहते हैं कि ये लोग जब यहाँ आते हैं, बहुत दृढ़ विश्वास जिनका होता है, जिनकी परिस्थितियाँ, जिनकी मान्यताएं बहुत ऐसी होती हैं इंग्लैंड वासियों के लिए कि इंग्लैंड के लोग सबसे अच्छे हैं हर तरीके से, व्यवहार में भी, सिद्धांतों में भी, राजनीतिक व्यवहार में भी, राजनीतिक सिद्धांतों में भी, और जो यहाँ की मान्यताएं हैं उनमें भी, लेकिन ये लोग पहले से किसी तरीके का निसंदेह अपवाद रूप से भी, एक्सेप्शनली भी कोई किसी तरह का अध्ययन नहीं करते हैं वास्तव में, कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिनके बारे में हम जो सोच रहे हैं वो वास्तव में वैसा है भी या नहीं। आई हैड ग्रोन अप ब्रिटिश इन एवरी वे, मेरा हर तरीके से लालन पालन एक अंग्रेज की तरह हुआ है। माई सेल्फ, मैं, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एंड माई पेरेंट्स पेरेंट्स, और मेरे माता पिता के भी माता पिता, नन ऑफ अस न्यू और कुड नो, हम में से कोई ना तो जानता है ना जान सका एनी अदर वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कोई और शैली, हमारे परिवार का कोई सदस्य जान ही नहीं सका ऑफ थिंकिंग, सोचने में, ऑफ बीइंग, होने में, वी न्यू नो अदर कल्चरल पैटर्न, हमने कोई और सांस्कृतिक तरीके को, किसी और सांस्कृतिक व्यवस्था को हमने अपनाया ही नहीं, सिवाय एंड आई और मैं हैड नेवर हर्ड एनी ऑफ माई फोर बियरर्स कंप्लेन अबाउट बीइंग ब्रिटिश, और मेरे पूर्वजों में से किसी से भी मैंने इंग्लैंड वासी होने पर कोई शिकायत उनको करते हुए नहीं सुना। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, आई वॉज टॉट टू अप्रिशिएट इंग्लिश लिटरेचर, मुझे कहा गया कि मैं अंग्रेजी साहित्य की प्रशंसा करूं, पोएट्री, काव्य की प्रशंसा करूं, एंड प्रोज, और वहां का जो जो जो लेखन है, जो गद्य है, उपन्यास है, कहानियां हैं, उनकी भी मैं तारीफ करूं, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी, चाहे वो प्राचीन हो चाहे वो वर्तमान की हो, एंड इट वाज एब्सोल्युटली नेचुरल फॉर मी टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द ब्रिटिश हीरोज ऑफ द एडवेंचर स्टोरीज अगेंस्ट द विलेंस ऑफ द पीस, यहां तक कि जो शांति के दुश्मन थे और ऐसे जो हीरो थे उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ करके देख सकूं, हुवर इनवेरिएबली नॉन ब्रिटिश, जो कि ब्रिटेन के नहीं थे, एंड सो टू माय बॉयश माइंड, मेरे बाल मन में मोर इजीली आसानी से केपेबल ऑफ विलेनस कंडक्ट, ताकि मेरे बाल मन में किसी तरीके का विद्रोही व्यवहार नहीं आ सके, द मोर सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरे विद्यालय और महाविद्यालय जीवन में मुझे बहुत ही चुनिंदा चीजें पढ़ने दी गई, वाज मार्क्ड बाय द सेम प्रेडिक्शन फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य के प्रति ही मुझे, मैं आकर्षित हो सकूं, ऐसी ही चीजें मुझे पढ़ने दी गई, एंड आई डिड नॉट हेजिटेट टू डिफेंड माई प्रेफरेंसेस। मैं अपनी प्राथमिकताओं को किसी तरीके से मतलब बचा भी नहीं रहा हूं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, जो कुछ मेरे अंदर था, मेरा स्वभाव था, मैंने जो सोचा था, टू माई अमेरिकन कलीग्स, मेरे अमेरिका के जो वासी साथी थे, उनके प्रति जो कुछ मैं सोचता था, उसमें मैं किसी तरह का मतलब वो भी नहीं कर रहा हूँ, बचाव भी नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में ऑल द वाइल इन अमेरिका, अमेरिका में रहने के दौरान आई विगरसली रेजिस्टेड एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटेन। मैं इंग्लैंड की कोई भी आलोचना बहुत बुरी तरह से मैं उसका विरोध करता था, स्वीकार ही नहीं कर सकता था, और या ब्रिटिश पॉलिसी या फिर इंग्लैंड की योजनाओं की, इवन वेन, यहाँ तक कि इन द प्राइवेसी ऑफ माई ओन रूम, मेरे अपने कमरे में भी क्लोज्ड एग्जामिनेशन क्लियरली प्रूव्ड द रीजनेबलनेस ऑफ सच क्रिटिसिज्म। यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी ऐसी आलोचनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, अब इसका लास्ट भाग, इस लास्ट लेसन का कल हम पढ़ेंगे। गुड बाय, थैंक यू।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और हम आ गए हैं एक नई दुनिया में। नई दुनिया इसलिए क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती, ये दुनिया होती है बच्चों के मन की दुनिया, और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं बच्चों की दुनिया। तो अगर बड़े भी हो गए हैं हम, तो हमारे अंदर ये दुनिया कहीं रहती जरूर है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और कौन कौन है एक बार आपका नाम और क्लास तो बता दीजिए।
3: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
4: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम आराध्या है, मैं 2nd क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम शिवन्या है, मैं 2nd क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में हूँ।
2: ओके, और आज एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले घूमना किस किस को पसंद है?
9: दीदी मुझे।
2: आप लोगों को पसंद है, बोलो।
4: हाँ मुझे पसंद है।
10: मुझे भी पसंद है।
2: अच्छा किसको बहुत ज्यादा पसंद है?
11: मुझे।
12: दीदी मुझे बहुत पसंद है।
2: बहुत ज्यादा पसंद है,
13: मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ।
2: हाँ ओके ठीक है। तो क्या क्या पसंद है घूमने के बारे में, सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ घूम के आए थे आप लोग को बहुत मजा आया? वैष्णो देवी। ओके, और बाकी लोग?
14: मैं ना जब सेकेंड में थी तब मैंने ना इधर एक राजस्थान ट्रिप की थी मेरे फैमिली के साथ।
2: ओके, और आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमना सबसे ज्यादा मजा आया था? हाँ राध्या याद है? भूल गए तो भी कोई बात नहीं, बाद में बता देना, ठीक है। आपको कहाँ अच्छा लगा था?
15: मुझे माउंट आबू बहुत अच्छा लगा।
2: माउंट आबू ना, फर्स्ट टाइम आया आप माउंट आबू? राघव घूमने कहाँ गए थे वो बताओ, आप यहाँ तो रहते हो।
16: नहीं मैं पहले नहीं रहता था, जब पहली बार आया था तो मैं इधर ही घूमा था पहली बार।
2: और इसके अलावा कुछ अच्छा लगा था या माउंट आबू सबसे अच्छा लगता है?
16: नहीं बहुत जगह अच्छी लगती है,
2: जैसे
16: वैष्णो देवी और कटरा
2: अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छी जगह है वो भी। और आपको?
17: दीदी मुझे भी माउंट आबू अच्छा लगता है, और भी जगह अच्छी लगती है जैसे की महाकाल मंदिर, उज्जैन। हाँ यहाँ इस जगह पे मेरे को ज्यादा पसंद है माउंट आबू में, और पांडव भवन ऊपर जाओ वहाँ पे तो और ही अच्छा लगता है।
2: राइट।
16: दीदी जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो बीच में जो भी मंदिर आते हैं ना, हम उन सब के दर्शन करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ मंदिर है और हम ऐसे सीधे जा रहे हैं, हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, हम सबके दर्शन करके आते हैं। फिर
2: कितना अच्छा लगता है ना।
16: दीदी उधर जब सबसे टॉप पे पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और बादल इधर ही होते हैं ऊपर।
13: मैंने वहाँ मैंने देखा, लेकिन मैं वहाँ बैठे हुए नहीं, चलती गई अपनी पावर से।
2: और क्या घोड़ा भी तो देखा था आपने, है ना, और क्या देखा था? फिर चलते चलते थक नहीं गए थे आप? इतना ऊंची ऊंची खुद चल लिया आप?
13: आधे प्लेन में भी बैठा।
2: प्लेन में कैसा लगा? अच्छा लगा, डर नहीं लगा? इतने ऊपर से डर नहीं लगता? अरे वाह मजा आया ना देखने में। आद्या को कुछ आपको याद आ रहा है, कुछ बताओ क्या?
13: माउंट आबू।
2: माउंट आबू में क्या अच्छा लगा आपको, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्या मजा आया देखने में? पहाड़ दिखे?
9: यस।
2: पहाड़ अच्छे लगते हैं आपको? या पानी अच्छा लगता है? झील में भी तो, झील भी तो है माउंट आबू में, है ना? अच्छा, किसके साथ गए थे आप घूमने, ये तो बताओ।
9: मेरी मम्मा साथ, मेरे भाई साथ। जब मैं मम्मी के पेट में थे तब पापा माउंट आबू आते थे, अब नहीं आते पापा माउंट आबू।
2: कोई बात नहीं, आप तो आ गए ना मम्मी के साथ, ठीक है, वेरी गुड।
17: जब मैं राजस्थान आई थी तब सेकेंड में, उधर रेगिस्तान में ना, उधर एक सूरज का एक सीन आया था, उधर हमने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए थे, जैसे कि सूरज हमारे हाथ में आया है वैसे।
2: फोटोज भी लेते हैं। अच्छा, किस किस को यहाँ फोटो खींचना आता है, बोलो बोलो।
10: मुझे
17: मुझे
9: मुझे
17: मुझे
2: सबको आता है। अच्छा, और कितने टाइम से आता है आप लोगों को फोटो खींचना, मतलब अभी अभी सीखा है नया नया या पहले से आता है?
17: पहले।
2: आप दोनों को
10: पहले से आता है?
9: पहले से।
2: पहले से? अच्छा अच्छा, ज्यादा अच्छी फोटो कौन खींचता है, सच सच बताना, सच्ची सच्ची बताना।
17: मैं खींचती हूँ सबसे अच्छी फोटो।
2: अच्छा
17: हाँ
10: दीदी, मैं भी खींचती हूँ।
17: मैं भी खींचती हूँ,
2: वीडियो भी बना लेते हो? बाप रे। और आध्या?
9: मैं फोन से वीडियो बना लेती हूँ।
2: फोन से वीडियो बना लेते हो आप? अरे वाह, वेरी गुड। किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने जब घूमने गए थे तब?
10: दीदी मेरे पास एक कैमरा भी है।
2: अच्छा, तो उससे किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने?
10: मैं जब पहली बार माउंट आबू गया था तो मैंने उधर यूज किया था, अलग अलग जगह घूमने गए थे उधर अलग अलग जगह की फोटो खींची थी। मतलब वो पॉकेट कैमरा होता है ना वो वाला।
2: तो नेचर की फोटो खींची थी? ओके। और आप लोगों ने किस चीज की फोटो खींची?
4: जब मैं अग्रोवा गया था तब मेरी बहन और मैंने सेल्फी ली थी एक साथ।
2: एक साथ सेल्फी ली थी? हाँ, सेल्फी लेने भी सब लोग अपने, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके आप फैमिली के साथ जाते हो, उनके साथ फोटो खींचते हैं ना। तो आप लोग और नेचर की फोटो कौन कौन खींचता है यहाँ पे? सब लोग खींचते हो?
17: दीदी मुझे नेचर की फोटो खींचना बहुत पसंद है।
10: दीदी नेचर है ना, मतलब ऐसे बहुत कलरफुल होता है, मतलब जब सूरज सनसेट हो रहा होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, सन उग रहा होता है तो भी अच्छा लगता है, जब मतलब नाइट हो रही होती है तो भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब फोटो खींचता हूँ।
2: ओके, और आप लोग नेचर की फोटो खींचते हो कोई? आप खींचते हो? किस चीज की खींचते हो?
4: जैसे एक बार रेनबो आया था तो खींच ली थी, और कभी कभी जैसे सनसेट होता है तब खींच ली ऐसे।
2: अरे वाह, वेरी गुड। और रेनबो देखा आपने तो कैसा लगा?
9: जैसे मटकी लेके खींचते वो वाला।
2: मटकी लेके फोटो खींची? अच्छा, तो उन्होंने ड्रेस दी होगी जो फोटो खींचते है ना, आपको भी दी थी, आपकी तो छोटी सी ड्रेस होगी है ना। ओके, रेनबो कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा लगा
2: है ना। रेनबो के बारे में तो पढ़ते है ना स्कूल में, रियल में रेनबो किस किसने देखा है?
9: मैंने
2: सबने देखा है रेनबो।
10: दीदी
2: कैसा लगता है रेनबो?
17: रेनबो एकदम कलरफुल होता है, नीचे के कलर्स होते हैं ना एकदम लाइट लाइट होते थोड़े बहुत।
10: दीदी मैंने सबसे रेयरेस्ट रेनबो देखा है, मैंने बुक में पढ़ा था जब एक रेनबो के ऊपर एक और रेनबो आता है तो वो बहुत रेयरेस्ट दिखता है, वो मैंने देखा था दो रेनबो एक साथ।
2: कहाँ पे?
10: मैं खेल रहा था बैट, मैंने तब देखा था।
2: यहीं पे माउंट आबू में?
10: नहीं, उधर हरियाणा में।
2: हरियाणा में देखा था आपने? वाओ। शिक्षा ने देखा है रेनबो?
17: दीदी देखा है रेनबो, बहुत सुंदर लगता है। हमारे यहाँ एक बार बारिश हुई थी ना, हम छत पे गए थे, बारिश में तो जाना अच्छा लगता है छत पे, तो हम लोग है ना बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला छत पे नहीं जाओ भींग जाओगे बीमार हो जाओगे, फिर भी हम लोग छत पे गए, छत पे गए बारिश हो रही थी और रेनबो भी निकला था बारिश होते ही में।
2: कितना सुंदर लगता है ना?
17: बहुत सुंदर लग रहा था, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी और बादलों से थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी,
2: तब तो और अच्छा लगता है,
17: बहुत सुंदर लग रहा था।
2: आपने कहाँ देखा?
9: मैं घर पे छत पे गई तो जब मैं नहा रही थी तो मैंने रियल में रेनबो देखा।
2: छत पे देखा, बारिश में देखा? वाओ, मजा आया होगा ना देख के।
4: मैं जब बाहर बैडमिंटन खेल रहा था मेरे दोस्तों के साथ तब मैंने देखा था। बहुत अच्छा लगा था।
2: बहुत अच्छा लगता है ना, सारे कलर्स दिखाई देते हैं है ना। आपने देखा है रेनबो? देखा है कहाँ देखा?
9: गली में।
2: गली में खेलते खेलते आपने भी? अरे वाह, वेरी नाइस।
17: दीदी मैं जब पांडव वन गई थी ना उधर इतने सारे वो माउंटेन्स थे और इतना मस्त उधर जो नेचर था ना उसकी बहुत अच्छे फोटोज निकली और उधर का एटमॉस्फेयर भी एकदम ठंडा था इधर से ज्यादा।
2: अच्छा, ठंडी में घूमना अच्छा लगता है कि गर्मी में घूमना अच्छा लगता है?
17: दीदी ठंडी में।
14: दीदी ठंडी में।
5: दीदी ठंडी में। दीदी ठंडी में।
11: गर्मी में।
2: गर्मी में अच्छा लगता है आपको?
16: दीदी स्प्रिंग्स में घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि जब ठंड होती है तो हम सोचते हैं काश धूप होती, और जब समर होता है सोचते हैं काश ठंड होती, तो इसीलिए स्प्रिंग।
2: ओके, आपको गर्मी में क्यों अच्छा लगता है? सबने तो ठंडी बोला, क्या अच्छा लगता है गर्मियों में? क्यों अच्छा लगता है आपको
11: गर्मियों में? ठंडी ठंडी एसी की हवा आती है और आराम से घर पे बैठते हैं सारे साथ में खेलते हैं घर पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: सब साथ में खेलते हैं वो भी अच्छा लगता है ना? हाँ, घूमने में तो साथ में खेलना भी तो होता है, इस बारे में तो किसने बात ही नहीं करी। एकदम करेक्ट बोला आपने। जब घूमने जाते हो तो क्या खेलते हो ये बताओ?
14: मैंने ना जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब हमने टाइम पास के लिए कार्ड्स खेले थे। दीदी हम जैसे कि कभी बस या ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, अगर फैमिली साथ में होती है तो उनको जैसे तैसे मना के बोलते थे प्लीज अंताक्षरी खेलो, या है ना हम ऐसे खेलते हैं तो गाने की खेलते हैं, तो पता है सब लोग इतने खुश होते हैं, पहले नहीं मैं नहीं गाऊंगी आप गाओ ऐसे करते हैं, बाद में हमें तो चांस ही नहीं मिलता वो खुद ही अपने वो शुरू हो जाते हैं, फिर आराम से चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब पहुंच गए हम।
2: हाँ, फिर सब गाने लगते हैं ना?
14: सब गाते हुए जाते हैं,
2: पहले शुरू नहीं कर रहा होता है कोई?
14: कोई नहीं करता शुरू, शुरू हमें करना पड़ता है। हाँ, एंड तो पता ही नहीं चलता,
2: पता ही नहीं चलता। और आप लोग क्या खेलते हो जब घूमने जाते हो? तो
5: ट्रेन में बैठे होते हैं और मैं टॉय ले लेती हूँ खेलने के लिए, जैसे कि माउंट आबू आई हूँ तो वहाँ पे टॉय ले लेती हूँ, ट्रेन में निकाल के खेल लेती
2: हूँ। कौन से टॉयज हैं आपके पास?
5: डॉल
2: है, डॉल के साथ खेलते हो गाड़ी में? अरे वाह,
5: यहाँ भी डॉल,
2: यहाँ भी लेके आए अपनी डॉल को? अरे वाह, उसका कुछ नाम भी है, क्या नाम है? साइनी। अरे वाह, आपने रखा? अरे वाह, नाम तो बड़ा यूनिक है।
18: और आराध्या क्या खेलती है?
5: टॉयज में।
2: हाँ, मतलब रास्ते में जैसे आप घूमने जा रहे होते हो तो कुछ गेम्स खेलते हो आप, या टॉयज के साथ लेके आते हो अपने साथ? टॉयज लेके चलते हो, लाते हो कि घर पे छोड़ के आते हो टॉयज? आप बता दो।

0: इतना इंटरेस्टिंग है ना, जब हमने उनो फर्स्ट टाइम मेरे और मेरे भाई ने स्टार्ट किया था खेलने के लिए, तब उसमें इतना मजा आ रहा था कि हम रोज ही उनो खेल रहे थे।
1: ओके, तो ट्रैवल के साइन मतलब खेलते भी हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपको घूमने के बारे में अच्छी नहीं लगती या मजा नहीं आता करने में, ऐसा कुछ?
2: रोड पे
1: मजा नहीं आता, क्यों?
2: क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता।
1: अच्छा नहीं लगता, क्या बुरा लगता है उसमें से? स्पीड में जा रहा होता है इसलिए, या फिर बोर हो जाते हो?
2: बोर
1: हो जाते हो अंदर अंदर बैठे बैठे?
0: दीदी मुझे बस में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बस में ना मुझे चक्कर आके उल्टी होने जैसे होता है।
2: मेरे को कार में
1: होता है, तबीयत ठीक नहीं लगती है।
0: और कार में मुझे भी होता है।
1: तो अगर तबीयत ठीक नहीं लगती है तब तो बहने ही अच्छा लगता है।
2: मैं पापा से बोलती हूँ पापा सोने वाले बस में चलो,
1: जिसमें लेट जाते हैं ना,
2: बेड वाली
1: उसमें फिर ठीक लगता है ना। ये तो अच्छा आइडिया है
0: दीदी। मतलब हमको इधर से हरियाणा जाना होता है या फिर हरियाणा से इधर आना होता है ना, तो हम पूरा दिन गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मतलब हम सुबह 2 या 4, 6 ऐसे बजे निकलते हैं और रात को जाके हम 12, 1, 2 इतने बजे पहुँचते हैं।
1: तो बहुत लंबा हो जाता है,
0: 2 या 1 दिन निकल जाते हैं,
1: है ना, बहुत लंबा हो जाता है ना। फिर क्या करते हो इतने देर?
0: दीदी हम तो दीदी सब सो जाते हैं, मैं ऐसे उठ के सबको देख रहा होता हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है।
1: रात को भी नींद नहीं आती?
0: रात को आती है,
1: दिन भर नहीं आती ना, बोर हो जाता है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है
3: दीदी? मुझे ट्रेन में बड़ा सफर होता है ना कई देर का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं बोर हो जाता हूँ और मेरे को रात को नींद भी नहीं आती उसमें।
1: रात को भी नींद नहीं आती, हिलती रहती है ट्रेन,
2: बैठने वाली
1: मुझे
2: दूर का रास्ता
1: नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है? नहीं लगता, पास वाला अच्छा लगता है ना, जल्दी जल्दी पहुँच जाए। पर यहाँ से हिसार से तो यहाँ आने में टाइम लगता है ना। फिर क्या करते हो? गेम्स खेलते हो?
0: दीदी कई बार है ना ट्रेन में नींद भी नहीं आती, जैसे अपा कई दिनों से अपने घर वाले बेड पे सो रहे होते हैं, तो उसके बाद अपा उधर सोएंगे तो अपा को नींद नहीं आती, क्योंकि वो अलग होता है इसीलिए।
1: बिल्कुल, अपने बेड पे नींद आती है कई बार ना।
0: दीदी आप कहाँ घूमने गए हो जरा बताओ?
1: मैं आपको लास्ट में बताऊंगी एपिसोड के, ठीक है?
0: पक्का
1: प्रॉमिस।
0: ठीक है।
1: अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप लोग जब घूमने गए थे तो बेस्ट चीज कौन सी देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी?
2: भूल भुलैया
1: कहाँ पे है? लखनऊ में है वो तो। कैसा लगा वहाँ पे? घूम गए थे क्या वहाँ पे? है ना, बहुत सारे दरवाजे है ना
2: के वो मामी मा।
1: वहाँ तो कितने सारे दरवाजे है ना जो एक जैसे रखते हैं एकदम, है ना। आप लोगों ने भूल भुलैया के बारे में सुना है? बाकी लोगों ने अगर देखा नहीं है तो सुना तो होगा।
0: दीदी पहले आनंद सरोवर में था तो मैं उधर एक बार खो गया था।
1: हाँ, और जो लखनऊ में भूल भुलैया है ना बहुत पुरानी है, उसमें ना इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे रूट्स हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ जाना है, तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इतने सारे सेम रास्ते हैं वहाँ पे।
0: तो निकलते कैसे हैं
1: वहाँ पे? आपके साथ अब गाइड रहते हैं जो आपको बताते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं कि आप ढूंढो, पर मोस्टली ढूंढना मुश्किल होता है, दरवाजा नहीं मिलता, अंदर खो जाते हैं।
0: दीदी मुझे ना इधर एक हंडर हाउस में गए थे हम, उधर बहुत मजा आया, और एक ट्रेन भी थी उस साइड पे, मतलब जो बच्चों वाली ट्रेन होती है उससे थोड़ी अलग थी, और वो रियल में इसमें स्लो चलने लगी और बाद में गुफा के अंदर भी गई।
1: कहाँ पे थी ये ट्रेन?
0: वो ट्रेन इधर ही गई तो थी राजस्थान में, जब हम एक मतलब पार्क घूमने गए थे उधर।
1: ओके,
0: और जो हंटर हाउस था ना उधर, उसमें बहुत डर लग रहा था, मतलब आगे भी नहीं चल रही थी।
1: हाँ,
0: और एक की पोल भी खुल गई
1: कि वो कौन है पता चल गया ना। और शिक्षा को क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा? आपने तो उज्जैन का बताया था।
0: दीदी मुझे तो ज्यादा नदियाँ वगैरह यही चीजें अच्छी लगती हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो बस मेरे को तो बैठे रहो उसी में,
1: बस वहीं बैठे रहो।
0: हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ है ना खाने के लिए लेके जाओ तो मछलियों को खिलाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो आ जाते हैं साथ में, बस उनको पकड़ तो नहीं सकते।
1: पकड़ तो नहीं सकते। हाँ। ना? नहीं तो उनको भी तो हर्ट होता है फिर। पर देखने में मजा आता है ना।
0: हाँ, बाकी वो बहुत सुंदर लगते हैं,
1: बहुत सुंदर लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा?
3: जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो हमने कई सारे एनिमल्स देखे थे।
1: अच्छा,
3: जैसे कैमल्स, पीकॉक और भी कई तरह के एनिमल्स।
1: तो वो सबसे अच्छा लगा था आपको? फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका?
3: मेरा फेवरेट एनिमल लायन।
1: ओह, लायन। तुम

0: ओके, पर लायन तो थोड़ा मुश्किल है ना दिखना, बहुत सारी जंगल सफारी होती है.
1: और लेपर्ड,
0: लेपर्ड हाँ वो भी थोड़ा रेयर है दिखना.
1: दीदी लेपर्ड, लायन और टाइगर.
0: हाँ बहुत सारी चीज है. आपको सबसे अच्छा क्या लगा था घूमने गए थे तो, बेस्ट चीज जो आपने देखी थी? अरयाध्या को याद है कि उसने क्या देखा था जो सबसे अच्छा लगा? कोई चीज जो देखने में आपने देखा, पहली बार देखा ये तो मैंने, ऐसा लगा हो. कोई बात नहीं, बाद में बता देना ठीक है.
2: दीदी मैं ना अभी एक ट्रिप को गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब स्कूल लेके जा रही थी. वो सांगली में थी और उधर एक विस्परिंग टीकर का नाम था. और जब से हम अंदर गए ऐसे फॉरेस्ट जैसी लग रहा था पूरा. और उधर जैसे भी उन्होंने नाम लिखा था वो भी पेड़ के एक इस पे लिखा था, मतलब उधर जो लकड़ियां थी उस पे नाम लिखा था उन्होंने. और अंदर बोटिंग की, फिर वो ऊपर से ऐसे लकड़ियां लगाया हुआ थोड़ा होता है, फिर उसमें चलना बहुत डर लगता है ना, उधर चले. फिर रेन डांस किया, स्विमिंग पूल में गए, और मतलब जैसे फाउंटेन होता है ना वैसे उन्होंने क्रिएट किया था, बहुत मजा आया उधर.
0: तो सबको अलग अलग चीजें देखने में मजा आता है ना, किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं, किसी को रेनबो अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, किसी को ट्रेन्स अच्छी लगती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें अच्छी लगती है घूमने जाने पे. और कुछ सीखने को भी मिलता है ना. हमारे इंडिया में इतना रिच हिस्ट्री है मालूम, कितना कुछ है. जो जैसे आप महल देखते हो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े, तो वहाँ पे हमें जो राजा हुए थे पहले उनके बारे में जानने को मिलता है.
3: दीदी आपने वहाँ पे आपने उस दिन मूवी देखी थी बाबा की?
0: हाँ वो तो मैंने पहले देखी थी, बहुत पहले. लेकिन
1: दीदी पहले इंडिया में ना इतना सोना होता था कि ना अंग्रेज ने पूरा घर भर लिया था, तो अभी ना इंडिया का सोना खत्म नहीं हुआ था.
0: बिल्कुल, इंडिया बहुत रिच कंट्री थी हमेशा से, अभी भी कल्चरली बहुत रिच है. और जीडीपी भी इंडिया का अभी बहुत आगे जा रहा है,
1: अभी
0: ग्रोथ बहुत अच्छी है.
1: सेवंथ कंट्री है
0: अभी तो, फोर्थ हो रही है.
1: हाँ फोर्थ कंट्री है. और जब पहले तो कितना सारा पैसा होगा अगर अभी इतना सारा पैसा है तो.
0: और पता है कितनी यूनिक यूनिक चीजें, जैसे आपने भूल भुलैया के बारे में बताया ना, तो वो जो बिल्डिंग्स बनी है आपको पता है वो कई तरह की दाल और उन चीजों से लेके बनी है, ईंटों से नहीं बनी है वो. तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से बनी है लेकिन दालों से बनी है. तो हिस्ट्री इंडिया की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार.
1: दीदी कोहिनूर ना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था, वो भी इंडिया के पास था, पर लंदन ने चुरा लिया था उसको.
0: हाँ ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो बहुत सारी चीजें इंडिया के बाहर चली गई. तो आप लोग जब घूमने जाते हो नेचर भी देखो, हिस्ट्री भी देखो, और नई नई चीजें लर्न भी करो.
3: आपने देखा था शरीर छोड़ दिया था गांधी जी ने?
0: हाँ उसके बारे में भी, आप देखो म्यूजियम्स वगैरह में जाते हो ना तो कैसे क्या हुआ था वो भी बताया जाता है. बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में जो हुई. बोलिए
2: दीदी, वो अपने पांडवन में हिस्ट्री हॉल देखा है?
0: हाँ बिल्कुल.
2: इतना अच्छा है ना, उधर सब बताया गया पहले क्या हुआ था कैसे हुआ था.
0: बिल्कुल. तो
3: आप यहाँ पे ओम घूमने गए थे? ओम
0: हाँ जी, मैं यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में घूमने जाती हूँ. और आप लोगों ने पूछा था ना मैं कहाँ मुझे अच्छा लगता था घूमना.
2: यस.
0: तो क्योंकि हम एपिसोड को अभी बाय बाय करने का टाइम आ गया है तो मैं बता देती हूँ, मेरी फेवरेट प्लेस वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम गए थे एक बार, आपको पता है इंडिया में आइलैंड्स भी हैं है ना.
2: यस.
0: तो हम वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो वहाँ पे बहुत सुंदर इंडियन ओशन है इतना बड़ा, तो वहाँ पे जो पानी पानी इतना सुंदर दिखता है, और वो जो लैंड है वो भी बड़ा यूनिक है. बहुत छोटा सा है मगर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं, और बोट हैं पुरानी पुरानी, और बीचेस है जो बहुत सुंदर लगते हैं.
1: दीदी आप आइलैंड के बीच में बोट से गए थे?
0: से भी गए थे, और किनारे बैठ के देखा भी. और राजस्थान भी अगर घूमा ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. उदयपुर के महल, जयपुर के महल.
3: दीदी आपने जब छपरा गए थे तो आपने वो देखा था बहुत बड़ा, मेरे घर बहन के घर के पास है वो बहुत क्या? बड़ा सा वो गंगा.
0: हाँ वो तो नहीं देखा मैंने, अब जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए.
3: वहाँ पे बोट घूमने के लिए नहीं देते, दूसरे गाँव ले जाते हैं.
0: कोई बात नहीं हम दूर से देख लेंगे है ना, लेकिन बहुत कुछ सीखने को जानने को तो राजस्थान में भी मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है. फिलहाल वक्त हो गया है बाय बाय करने का. हम लोग एक ही रूम में बैठे बैठे बहुत सारी जगह घूम आए हैं, तो अभी हम अपने दोस्तों को करते हैं गुड बाय और उनको करते हैं विश कि वो भी अलग अलग जगह घूमें, देखें और सीखें. तब तक के लिए बाय बाय.

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद कहते थे, नया भारत गढ़ो, पर कैसे? अनगिनत जनता की भूख मिटाकर उन्हें शिक्षित कर नया भारत गढ़ना आसान काम नहीं। हमारा राष्ट्र गरीब है, सबकी भूख मिटाने के लिए हमें धन चाहिए, पर क्या रोटी के टुकड़ों से हमारी समस्या हल हो सकेगी? इतने वैभवशाली अमेरिका और दूसरे उन्नत राष्ट्रों के लोगों को क्या मन की शांति और सुख मिला है? उन लोगों में कितने ही लोग आज धन होने के बावजूद घोर निराशा के शिकार बने हुए हैं। जीवन में कुछ भी अर्जन करने योग्य दिखाई न देने पर वे उद्देश्यहीन भटक रहे हैं।
1: स्वामी जी ने ये सब देखा था, महसूस किया था। वे कहते थे, हमें फौजी सामर्थ्य चाहिए, पर अपनी सुरक्षा के लिए, न कि पड़ोसियों को लूटने के लिए। उसी प्रकार हमें धन चाहिए, हमारे गरीबों का पेट भरने के लिए। सिर्फ अपने लिए धन कमाना हमारा राष्ट्रीय आदर्श नहीं है।
0: और सर्वोपरि हमें चाहिए शांति। भला वो कौन सी वस्तु है जो हमें शक्ति और समृद्धि के साथ शांति भी दे सकेगी? शायद विवेकानंद साहित्य में हमें उस रास्ते की चाबी मिले। समाज के बारे में स्वामी जी का विचार था।
2: पहले लोग ये भी कहते थे कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा, विशेषकर भारत में। हमें समस्त देश में ऐसे पुराने सठियाए बूढ़े मिलते हैं जो सब कुछ साधारण जनता से गुप्त रखना चाहते हैं। इसी कल्पना में वे अपना बड़ा समाधान कर लेते हैं कि वे सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं, अथवा स्वार्थ से अंधे होकर मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री पुरुष अज्ञानता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहे, क्योंकि उन्हें धन मिलने पर या उनकी विद्या सीखने पर समाज डावाडोल हो जाएगा? समाज है कौन? वे लोग जिनकी संख्या लाखों है, या आप और मुझ जैसे 10-5 उच्च श्रेणी वाले, जिस जाति की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है वो जाति उतनी ही उन्नत है। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है।
1: स्वामी जी ने बार बार एक ही चीज की जरूरत को महसूस किया था, और वो है शिक्षा।
2: केवल शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहां के गरीबों के भी अमन चैन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों की याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। ये अंतर क्यों हुआ? उत्तर में पाया, शिक्षा से। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग ये भाव खो बैठे हैं, उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है। शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करके बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है।
0: जनता को शिक्षित करना आसान काम नहीं, पाठशाला भर खोल देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को रुचिकर बनाना होगा, जरूरत पड़ने पर हमें उनके पास पहुंचना होगा।
2: मेरी योजना है भारत के इस जनता समूह तक पहुंचने की। हमें अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, अर्थात सब आदर्शों को धीरे धीरे जनता में पहुंचाना होगा। उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अपने बराबर उठाइए, उन्हें लौकिक ज्ञान भी धर्म के द्वारा दीजिए। मान लो इन तमाम गरीबों के लिए तुमने पाठशालाएं खोल भी दी, तो भी उनको शिक्षित करना संभव ना होगा। कैसे होगा? चार बरस का बालक तुम्हारी पाठशाला में जाने के अपेक्षा अपने हल बखर की ओर जाना अधिक पसंद करेगा। वो तुम्हारी पाठशाला ना जा सकेगा, पर यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों ना जाए। यदि खेती हर का

0: का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उसके हल के पास या कारखाने में अथवा जहां भी हो वहीं क्यों ना भेंट की जाए, जाओ उसी के साथ उसकी परछाई के समान। गरीबों को शिक्षा प्रायः मौखिक रूप से ही दी जानी चाहिए। स्कूल आदि का भी कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहां एक मिट्टी का घर और एक हॉल बनाओ। कुछ मैजिक लैंटर्न, थोड़े से नक्शे, ग्लोब और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहां गरीबों को, यहां तक कि निम्न समुदाय को भी एकत्र करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैंटर्न और दूसरे पदार्थों के सहारे ज्योतिष, भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ।
1: स्वामी जी किताबी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, वे चाहते थे बुनियादी शिक्षा। इसी शिक्षा पर बाद में गांधी जी ने भी जोर दिया था।
0: तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव गांव में जाकर देश के लोगों को समझा देना क्या बालस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो, भाई सब उठो जागो, और कितने दिन सोगे। और शास्त्र के महान सत्यों को सरल करके उन्हें जाकर समझा दो। सभी को जाकर समझा दो कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धर्म में एक सा अधिकार है। निम्न समुदाय तक को इस अग्नि मंत्र में दीक्षित करो और सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वो भी कोई शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।

0: हमारी 50% नारियों के शिक्षित हुए बिना वो कैसे संभव हो पाएगा?
1: इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूत में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बोलो तो? स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियां बड़ी बनी हैं। जिस देश में जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं, वो देश वो जाति न कभी बड़ी बन सकी और ना कभी बड़ी बन ही सकेगी। महामाया की साक्षात मूर्ति, इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है? उनकी समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, पर उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुमसे बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। त्रिजाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम भगवान हो? दूर हो।
2: स्त्रियों को शिक्षित करना होगा, चरित्र गठन और नीति शिक्षा देनी होगी, तभी उनकी संतानें भी शिक्षित और चरित्रवान होंगी, स्वामी जी ने कहा है।
1: अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं होंगी, धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी, यही एकमात्र पथ है। हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं। हिंदू स्त्री के लिए सतीत्व का अर्थ समझना सरल ही है, क्योंकि ये उसकी विरासत है, परंपरागत संपत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम ये ज्वलंत आदर्श भारतीय नारी के हृदय में सर्वोपरि रहे।

जिससे वे इतनी दृढ़ चरित्र बन जाएं कि वे चाहे विवाहित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था में अपने सतीत्व से तिल भर भी डिगने की अपेक्षा जीवन की निडर होकर आहुति दे दें। साथ साथ महिलाओं को विज्ञान एवं अन्य विषय, जिससे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। देश की स्त्रियों का जीवन इस प्रकार गठित हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा।

0: अशिक्षितों को मौका देना होगा। सदियों से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तभी स्वामी जी लिखते हैं,
1: स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतानों द्वारा देश का मुख उज्ज्वल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। कुछ विनाश न करो। मूर्ति भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, नहीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ और देखो मामला कहां तक जाता है। यदि सहायता ना कर सको तो अनिष्ट मत करो। जो जहां पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं, नहीं तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही शिक्षा लाभ करता है। तुम्हारा कर्तव्य है सुयोग देना और बाधा दूर करना।
2: सभी को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र विचार विकसित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
1: जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा चक्र प्रवर्तन कर दूं जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुंचा दे और फिर स्त्री पुरुष अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन उन्नति और कुशल क्षेम का एकमेव साधन है। जहां ये स्वतंत्रता नहीं है वहां मनुष्य उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी। जैसे मनुष्य को सोचने, विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पोशाक पहनावा, विवाह शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वो दूसरों को हानि न पहुंचाए।
0: भारतीयों को सबल बनना होगा। बल केवल दैहिक नहीं, मानसिक दृढ़ता भी चाहिए।
1: मैं तुमसे कहता हूं, इसी समय हमको बल और वीर्य की आवश्यकता है। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल का चिंतन करना है। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि ये कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है और इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है। अब उनको आत्म तत्व सुनने दो, ये जान लेने दो कि उनमें से नीचे के नीचे भी आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा जो न कभी मरती है न जन्म लेती है।
0: स्वामी जी ने वेदांत को अच्छी तरह समझा था। वे उसे जन जन में व्याप्त कर देना चाहते थे। वेदांत किसी एक वर्ग में सीमित ना रहे।
1: जहां भी बुराई दिखाई देती है वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एक तत्व पर विश्वास किया जाए तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। वेदांत के इन महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है। ये केवल अरण्य में अथवा गिरी गुफाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे। वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना मंदिरों में, दरिद्रों की कुटियों में, मछुओं के घरों में, छात्रों के अध्ययन स्थानों में, सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक संतान, चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी पुकार सबके लिए है। इनका अवलंबन करो, इनकी उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणित करो। बस देखोगे भारत का उद्धार निश्चित है।
2: वे दलितों के मसीहा थे। दलितों की जरूरतों को वे सबसे ज्यादा महत्व देते थे।
1: यदि स्वभाव में समता ना भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात दलितों के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो एक दलित के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी। इन लोगों को उठाना होगा, इन्हें अभयवाणी सुनानी होगी, बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे समान सब में अधिकार है।
0: दलितों को सुविधा देने का मतलब उच्च वर्ण को दबाना नहीं। स्वामी जी ने इससे वर्ण संघर्ष की आशंका जताई थी।
1: उच्च वर्णों को नीचे उतारकर इस समस्या की मीमांसा न होगी, किंतु नीची जातियों को ऊंची जातियों के बराबर उठाना होगा। उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर निम्न समुदाय, और संपूर्ण कार्य निम्न समुदाय को उठाकर ब्राह्मण बनाना है। जातियों में समता लाने के लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्णों का बल और गौरव है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गरीब किसान मजदूर और धनवानों के बीच परस्पर कहीं जाति विरोध का बीज ना पड़ जाए।
2: किसी को भी अधिक सुविधा ना मिले, यही सही मायने में साम्यवाद होगा जिसमें स्वामी जी का विश्वास था।
1: विशेष अधिकार का भाव मानव जीवन का विष है। जब कभी विशेष अधिकार तोड़ दिया जाता है तब जाति को अधिकाधिक प्रकाश तथा प्रगति उपलब्ध होती है। किसी को रंच मात्र विशेषाधिकार नहीं है। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग स्वभावता सक्षम होने के कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक धन संग्रह कर लें, किंतु धन प्राप्त करने के सामर्थ्य के कारण वे उन लोगों पर अत्याचार और अंधाधुंध व्यवहार करें जो उतना अधिक धन संग्रह करने में समर्थ न हो, तो यह कानून का अंग नहीं है और संघर्ष इसके विरुद्ध हुआ है। अन्य के ऊपर सुविधा के उपभोग को विशेषाधिकार कहते हैं और इसका विनाश करना युग युग से नैतिकता का उद्देश्य रहा है। यह कार्य ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति साम्य और एकत्व की ओर है तथा जिससे विविधता का विनाश नहीं होता। इस प्रकार अपने विशेषाधिकारों तथा अपने भीतर की उस प्रत्येक वस्तु को जो विशेषाधिकार के लाभ में सहायक है रौंदते हुए हम उस ज्ञान के लिए प्रयास करें। इससे समस्त मनुष्य जाति के प्रति अनन्यता की भावना पैदा हो।
0: उच्च वर्ग के लोग अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते, ये पतन की राह है। ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है।
1: भारत के पतन और दारिद्र्य दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेटकर उसने अपना कार्यक्षेत्र संकुचित कर लिया था तथा आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी अपने रत्नों का भंडार नहीं खोला था। लेन देन ही संसार का नियम है और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वो अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे सकें उसे सहर्ष ग्रहण करें। विस्तार ही जीवन है और संकोच मृत्यु।
2: संसार की समस्त जातियां लेन देन के सिद्धांत मानकर आगे बढ़ी हैं। एकांत और अकेले जीने की प्रवृत्ति खतरनाक है। स्वामी जी मेल मिलाप लेन देन की बात करते हैं।
1: आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। क्या समता स्वतंत्रता कार्य कौशल पौरुष में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या उसी के साथ धर्म विश्वास संस्कृति और स्वाभाविक वृत्ति में हिंदुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो? आपके लिए यह नितांत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट करने और अक्सर निरर्थक बातें बनाने के स्थान पर आप अंग्रेजों से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालन, ईर्ष्याहीनता, अथक लगन और अटूट आत्मविश्वास की दीक्षा प्राप्त करें। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा पालन करना सीखना चाहिए। जब तक हिंदू ईर्ष्या से बचना और नेताओं की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखता उसमें संगठन की क्षमता नहीं आएगी। भारत को यूरोप से बाह्य प्रकृति की विजय सीखनी होगी। हमने मानव जाति के एक पहलू का विकास किया है तो उन्होंने दूसरे का। चाहिए ये कि दोनों का मेल हो।
0: कुछ मूलभूत मानवीय गुण हैं जिनका विकास जरूरी है, स्वामी जी ने बताया है।
1: प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरा, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो या कर रहे हो उनकी सहायता करना। सर्वप्रथम तो हमें उस चिन्ह ईर्ष्या रूपी कलंक को धो डालना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत करो। भलाई के काम करने वाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोगों को जीवन मात्र के लिए शुभ कामना करो। विशाल बनना, उदार बनना, क्रमशः सार्वभौम में उपनीत होना, यही हमारा लक्ष्य है। अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। इस समय चाहिए प्रबल कर्म योग, हृदय में अमित साहस, अपरिमित शक्ति।
2: अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी होगी। घर को हवा और रोशनी चाहिए। आंखें खोलकर अपने आसपास के जरूरतमंदों को निहारना होगा।
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें अब पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास अभावग्रस्त लोग रहते हैं, तुम्हें उनकी यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित है उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा है, अतः जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश, सेवा के संदेश, सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाध सागर में निरंतर नीचे डूबते जा रहे हैं।
0: अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर हमें देखना चाहिए कि अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क आदि राजाओं के काल में शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि तथा सुख सभी बातों में भारत कितना उन्नत था। यह स्पष्ट है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में हमारे सम्मुख जो महान आदर्श थे वही हमारे अतीत के गौरव के कारण थे।
2: आज हमारी अवनति कैसे हुई है? हमारा पतन क्यों हुआ? इसका कारण हमें ढूंढ निकालना चाहिए। इसलिए भावी भारत का गठन करते समय जिन आदर्शों ने हमें उन्नत एवं महान बनाया उनको स्वीकार करना चाहिए और जिन बातों के कारण हमारी अवनति हुई उनका त्याग करना चाहिए। विवेकानंद ने अपने साहित्य में हमें इन्हीं बातों की सीख दी है और ये भी कहा है कि हमें कुछ ऐसे नए विषयों को भी ग्रहण करना चाहिए जो उस युग में उपलब्ध नहीं थे, मसलन विज्ञान और टेक्नोलॉजी।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज 12 जून है, 12 जून की विशेष बातें आपसे शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आपको भी आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किन का जन्मदिन है। एक तो एक्टर श्यामा जी का जन्मदिन है, इसके साथ में नरेंद्र सिंह तोमर, सी के नागराज राव, सूरज भाई खांडे, ई श्रीधरन और गीतांजलि श्री, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में सी नारायण रेड्डी, गोपीनाथ कविराज, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, नीलोफर राजकुमारी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर एक सुंदर विचार के साथ। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं और कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए ये गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं और ये एक राजनीतिक हैं और विशेष 17वीं लोकसभा के भारत के केंद्रीय ग्राम विकास पंचायती राज पेयजल और स्वच्छता मंत्री बनाए गए हैं 17वीं लोकसभा के अंतर्गत, किंतु 7 जुलाई 2021 को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद उन्हें कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और ये मुंशी सिंह तोमर नामक किसान के पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म आज ही के दिन 1957 को 12 जून को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पोरसा विकास खंड के तहत आने वाले ग्राम ओरेटी में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की वहीं पर और इस दौरान महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने और शिक्षा पूरी करने के बाद वे ग्वालियर नगर निगम के पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहे और 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। तो आइए उनके बारे में और बातें जानते हैं। राजनीतिक परिचय की बात करें तो धीरे धीरे स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति का थोड़ा सा मन में था और नरेंद्र तोमर संगठन क्षमता के साथ ही प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखते थे और कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे। और बात करने के बजाय काम को तवज्जो देने वाले तोमर पहली बार प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र से 2009 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। वे इसके पहले प्रदेश से राज्यसभा में थे और तोमर इस बार ग्वालियर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए और युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रहते हुए 1996 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और तोमर पहली बार 1998 में ग्वालियर से विधायक निर्वाचित हुए और इसी क्षेत्र में 2003 में दूसरी बार चुनाव जीता और इस दौरान वे सुश्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवाजी सिंह चौहान मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे। तो आइए आगे बढ़ते हुए, उत्कृष्ट मंत्री का जो सम्मान है इन्हें प्राप्त है और 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने उत्कृष्ट मंत्री के रूप में सम्मानित किया था इन्हें। 2008 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और उसके बाद 15 जनवरी 2009 में निर्विरोध राज्यसभा चुने गए। तो ये थी कहानी तोमर जी की आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मस्त।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं अब एक और शख्सियत के बारे में। जी हाँ, बात करते हैं सी के नागराज राव के बारे में। जी हाँ, सी के नागराज राव कन्नड़ लेखक थे, नाटककार थे और मंच कलाकार के साथ निर्देशक और पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति सी के नागराज राव। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 12 जून 1915 को हुआ और 1983 में के सी नागराज राव को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उनकी रचनाओं के लिए पट्टमा महादेवी शांति लता देवी के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था और वे इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये पुरस्कार शुरू हुआ और इसका पहला जो अवार्ड है ये इनको मिला और वर्ष 1978 में कर्नाटक साहित्य अकादमी द्वारा उनकी सही रचना को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य कार्य के रूप में पुरस्कार भी मिला। तो कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार, आप सभी जानते हैं कि लेखक को जो है मल्टी टैलेंट कह सकते हैं। लेखक के जीवन में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो जिस विधा में लिखते हैं उसको समझाने या उसको प्रेजेंट करने के लिए फिर उन्हें लोगों को समझाना पड़ता है। तो इन्होंने लिखने के बाद उन्हें फिर से नाटकीय तौर पर लोगों के बीच में प्रेजेंट भी किया और इस वजह से वो मंच कलाकार के रूप में भी लोगों के सामने रहे और जो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं उनको दिशा निर्देशन देते रहे, तो निर्देशक भी बन गए और जो काम हो जाता था तो पत्रकार के रूप में समाज में इस सारी विधि को बताने के लिए काम किया, तो सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के रूप में भी उनकी एक ख्याति बनी। तो कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में परमात्मा जो है अनंत शक्तियाँ दे देते हैं और इसी तरह नागराज राव को भी मल्टी टैलेंट ईश्वर ने शक्ति दी, क्षमता दी और उन्होंने उसका सही उपयोग करके लोगों की सेवा की। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ रेडियो मधुबन पर। आपके लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। ये है सूरज भाई खांडे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बहुत ही पॉपुलर गायिका है। 1986 और 67 में सोवियत रूस में हुए बहुत ही सुंदर उत्सव भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का मौका इन्हें मिला और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन्हें दाऊ रामचंद्र देशमुख और स्वदेश देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से नवाजा। तो आइए, इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा, हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए, पूना से हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े, उनसे भी बातें कर लेते हैं। अभी मेरे साथ हैं प्रदीप पाटिल और उनके साथ में उनकी जो धर्मपत्नी है छाया प्रदीप पाटिल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात होगी। और आप अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कैसे हैं आप और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें।
3: देखो, ये मैं तो भगवान के ऊपर से विश्वास करके सब बताता हूँ मैं क्योंकि बहुत ही ये कठिन परिस्थिति से निकाला हुआ है मैं।
1: जी जी जी।
3: ये जो जो टाइम आज है, जो आज मैं 30 साल पहले देखते थे तो अपन कहाँ थे और अपन कहाँ आ गए, तो ये भगवान विश्वास और सही रास्ते, सही कर्म करो, सही कर्म का जो फल जो मिल रहा है आज वो सही मुझे मिल रहा है। लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ जीरो था, जीरो की वजह से मेरे बच्चे जो पड़े, मैं नो प्रॉपर्टी, ओनली वन माय प्रॉपर्टी दिस माय डॉटर एंड माय सन। बच्चों अच्छे निकले, बच्चों अच्छे पास हो गए और कॉलेज कैंपस से जॉब लग गए। लड़की मेरी बी होगी, एमए होगी, एमएससी में जूनियर इंजीनियर लग गई और लड़का भी अच्छा एमएनसी कंपनी में ये किया, उन्होंने बी एमबीए किया और पीजीडीसीएम उसने आईआईएम इंदौर से किया। और इंदौर करने के बाद मुझे अफसोस ये होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे यहाँ तक लाया, इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो, अरे आगे तो सुनो, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है तो सही समय आने के बाद भगवान सही समय देता है। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि माँ बाप अपने परिस्थिति से बच्चों को पढ़ाए लिखाते हैं, दुनिया के तमाम माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्चा करते हैं, तो उनके बच्चे देखो, मेरे बच्चे लगे करके मैं नहीं बोलता, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना ये करता हूँ मेरे बच्चे लगे, मेरे बच्चे से भी ज़्यादा पढ़ के बाकी के बच्चे लगाओ, ताकि माँ बाप के चेहरे पर जो आनंद और हंसिया जो आती है वो एकदम बेहतरीन है। और यहाँ पर आने का ब्रह्म कुमार में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अपन भगवान के यहाँ दरबार में आ गया, देवांगन में पहुँच गया अपन, बहुत सही जगह आ गया और सही समय में आ गया। हम तो देरी हो गई मगर सही काम करो, उसका मेवा मिलने वाला है। बस भगवान से तुम्हें यही प्रार्थना करते रहो, कर्म करो अच्छे और फल देने वाला भगवान ईश्वर ऊपर बैठा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: और सीसीटीवी तो यहीं लगे हुए हैं मगर दुनिया का सीसीटीवी उसके पास है वो उसके पीछे कुछ नहीं रह जाए।
1: जी जी जी जी। प्रदीप जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, अपना अनुभव साझा किया। आप जीरो से हीरो बन गए अभी क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो आपने समझा है और कर्म का जो सिद्धांत है वो आपने अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल ईश्वर देगा, ये आपने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए, आपके जो धर्मपत्नी है छाया जी से भी बात करना चाहूँगा। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
4: ठीक हो? पहली बार है मेरी। मराठी में बोलूं?
1: हाँ बिल्कुल बोलिए, आप अपना अनुभव सुनाइए।
4: माझी पहली वेळ आहे ही माइक समोर यायची आणि खूप धन्यवाद देते मी की आज मला हा दिवस मिळाला। मला असं दुःख होत होतं की मी हाऊस वाईफ आहे, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो सर्विस नहीं करती, लेकिन मैंने मुझे लड़के को लड़की को सिखाया पढ़ाया तो वो मेरा कर्म पूरा हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और रहा भगवान का, तो भगवान का भी चल रहा है उनके हिसाब से, और वो भी ऊपर ऊपर लेके जा रहा है।
1: बिल्कुल।
4: और मुझे अच्छा लगता आज कि मैं कुछ कर पाई बच्चों के लिए, संस्कार कर दिया मैंने, अच्छे से संस्कार कर दिया और अपना कर्तव्य निभाया। और मिस्टर ने भी साथ दी, वो व्यसनी नहीं थे।
1: बिल्कुल।
4: हाँ, तो उन्होंने भी साथ दी और कम पगार में सब चल गए।
1: हाँ, अच्छा किया।
4: और पढ़ाई भी की बच्चों की,
1: तो
4: बच्चों
1: अच्छा
4: बड़े हो गए, बड़ी लड़की की शादी हो गई, दामाद भी अच्छे मिले और लड़का भी पढ़ा लिखा हो गया, वो गुड़गांव में है,
1: अरे वाह,
4: उनकी शादी होने की है, बस एक ही इच्छा है उनकी शादी अच्छी बहू मिल गई तो बस अपना
1: काम हो गया।
4: हाँ, काम हो गया।
1: अच्छा, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के कैसे लग रहा है, कब गए?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी जी,
4: पहली बार है मेरी आने की तो पहले नहीं लगता ऐसा, देखते ऐसा लगा कि भगवान के पास पहुंच गए हम लोग इतना आनंद, इतना आनंद कि मायके भी नहीं मिलता, इतना इतना मिल रहा।
1: हाँ,
4: प्यार मिल रहा है इतना, तो बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी।
4: और भगवान का साथ है हमारे पास।
1: बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल चाचा जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। प्रदीप जी के साथ आप जो है अपने जीवन को जी रहे हैं और दोनों मिलके आपने अपने बच्चों की पालना अच्छी की है और उनका जो है फल आपको मिल रहा है,
4: मिल रहा है।
1: और यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया है। यही अनुभव इम्पॉर्टेंट है कि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होना और अपने जीवन को सुंदर बनाना। छा जी एंड प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: दे तो।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज 12 जून है और आज विशेष श्यामा जी का जन्मदिन है और भारतीय सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक, 1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्री श्यामा का नाम सुनते ही आज भी उस दौर के हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के जहन में एक बेहद खूबसूरत, चुलबुली और बेहतरीन अभिनेत्री का चेहरा सामने आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग शायद ही इस बात से परिचित होंगे कि अभिनेत्री बनने से पहले श्यामा करीब 50 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी हैं। तो आइए इनके बारे में कहानी आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

ये दास्तां है खुर्शीद अख्तर की, जिनका जन्म 7 जून 1935 में हुआ। जन्म का स्थान लाहौर, पर तब यह अंदाजा लगाना कठिन था कि ये खुर्शीद अख्तर आगे जाकर बन जाएंगी श्यामा, मशहूर और मारूफ हीरोइन।

0: 1940 की दहाई में श्यामा लाहौर से मुंबई चली आई। साल था सन 1945। स्कूल अंजुमन हाई स्कूल, जहां पर एक दिन सब लड़कियों ने मिलकर प्लान बनाया कि जाएंगे फिल्म देखेंगे, फिल्म के सेट्स पर पहुंचेंगे। तो खुर्शीद अख्तर ने भी कहा मैं भी चलूंगी।
1: अरे गाड़ी का वक्त हो गया, बिल्लू अभी तक नहीं आया।
0: ये भी पहुंची सेट्स पर, जहां पर शमशाद बेगम और नूर जहां जैसी दिग्गज गायिकाएं रिहर्सल कर रही थीं। डायरेक्टर साहब ने कहा इतनी सारी लड़कियां तो क्यों ना इनमें से किसी को एक छोटा सा किरदार दिया जाए। जब पूछा कि भाई कौन लड़की काम करेगी, तब मात्र 9 बरस की उम्र में खुर्शीद अख्तर ने कहा मैं करूंगी। बस उस कव्वाली का ये हिस्सा बन गई। कव्वाली थी आहें ना भरी, फिल्म का नाम जीना।
2: इसने तो कमाल कर दिया है, मेरे देखते देखते क्या कुछ सीख गई।
0: फिल्म के डायरेक्टर थे शौकत हुसैन, जो दरअसल मशहूर अभिनेत्री और गायिका नूर जहां के हस्बैंड भी रहे। हिमालय फिल्म वालों ने श्यामा से कहा था कि तुम कभी जिंदगी में हीरोइन नहीं बन पाओगी। इस ललकार ने श्यामा को हिला के रख दिया था।
1: तो उसने ऐसा कहा तुमसे, तू क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
0: फिर इन्होंने ठान लिया अब तो ये अभिनेत्री बन के दिखाएंगी।
1: मैं गाँव की गंवार लड़की नहीं, जिसे रेल में बैठ कर डर लगता हो। पढ़ी लिखी हूँ, बैंगलोर तो बैंगलोर, अमेरिका तक अकेली सफर कर सकती हूँ।
0: खुर्शीद अख्तर से इनका नाम हुआ श्यामा। ये नाम रखा डायरेक्टर विजय भट्ट ने।
1: उनके दिल में कोई पाप नहीं, अरे पगली, वो तो हमें दिल से चाहती है।
0: ये वो दौर था जब बहुत सारे हीरो हीरोइंस के ओरिजिनल नाम बदल दिए जाते थे।
1: आप तो हमेशा यही कहती हैं।
0: अपने स्कूल के दिनों में भी श्यामा अक्सर अपनी सहेलियों का मनोरंजन करती। लंच ब्रेक होती तो टेबल पे खड़े होकर ये डांस दिखाती। और धीरे धीरे यही शौक अभिनय के जुनून में तब्दील हुआ और किस्मत ने साथ दिया, श्यामा बन गई हीरोइन।
2: भगवान किस्मत का दरवाजा अपने हाथ से नहीं खोलता, इसी दुनिया में कोई ना कोई बहाना बन जाता है।
0: छोटी बहन, भाई भाई, दो भाई, गुरुदत्त की फिल्म आर पार कौन भूल सकता है, और बाद में बरसात की रात, इन तमाम फिल्मों में ये नजर आई। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म थी शारदा।
1: आपको मुझे चुप कराने का क्या हक है महारानी जी? शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे लिए तो आपके पास 100 नसीहतें हैं, लेकिन जब आपकी बहन का सवाल आता है तो ये नसीहतें कहां जाती हैं?
0: 16 साल की श्यामा काम कर रही थी फिल्म सजा में। इसका डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर थे फली मिस्त्री। फली मिस्त्री ने कहा कि श्यामा तुम सबसे बेहतरीन चेहरा हो फोटोग्राफ्स के लिए, हर कोण से तुम्हारी फोटो निहायत खूबसूरत आती है।

0: फिल्म सजा के मुकम्मल होते होते फली मिस्त्री और श्यामा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे।
1: क्या यूं खत लिख देना अच्छा लगेगा?
0: ये मोहब्बत शादी में तब्दील हुई। हालांकि फली मिस्त्री ने शादी की शुरुआत में कहा था कि श्यामा काम मत करो, लेकिन शादी के बाद श्यामा अपने आप को रोक ना पाई और फिल्मों का हिस्सा बनी रही।
1: आखिर काम एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। मैंने सोचा शायद आप थक गए होंगे, जरा हवा खुली हो जाए।
0: इनकी शादी हुई थी सन 1953 में। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, 2 लड़के फारूख और रोहन और बेटी शिरीन।
2: मैंने कई बार सोचा कि शायद इस घर में नया मेहमान आने के बाद हम फिर एक बार इकट्ठे हो जाएं।
0: बहुत सारे हीरोज भी श्यामा से शादी करना चाहते थे, पर जब दिल लग गया फली मिस्त्री से तब सबके ऑफर्स ठुकरा दिए गए।
3: लेकिन मैं आपके हुक्म का इंतजार नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो मेरे जी में आएगा।
0: गुरुदत्त साहब के साथ फिल्म आर पार में इनका रोल बहुत पसंद किया गया।
1: कौन सा लग?
4: यही एल ओ वी ई
1: लव लव। मैंने तेरा सर।
0: गुरुदत्त चूंकि खुद बड़े अच्छे कोरियोग्राफर और डांसर थे तो वो अक्सर श्यामा को बोलते कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, गाना खूब अच्छा बनेगा।
4: सर

0: मेरे प्यार की कसम।
1: पर साल सन 1979 ऐसा साल बनकर आया जिसने श्यामा की जिंदगी को तितर बितर कर दिया।
2: ठीक कहती हो बहन, जहाँ बस ना चले वहाँ चुप रहना ही अच्छा है।
1: 1979 में फली मिस्त्री का इंतकाल हो गया, पर तब तक श्यामा भी फिल्मों से जरा दूर ही हो चुकी थी।
3: आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
1: जॉनी वॉकर के साथ भी श्यामा की जोड़ी खूब जमी थी। श्यामा हालांकि शम्मी कपूर से अक्सर घबराया करती थी, क्योंकि एक रोमांटिक सीन के दौरान शम्मी कपूर ने इतने जोर से इन्हें झप्पी मारी थी कि इनकी सांसें थम गई थी। उसके बाद श्यामा ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया।
2: मैंने कोई झूठ बात कही है तो मुंह पर जवाब दो।
1: सबने पूछा क्या बात है, तो कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। शम्मी साहब ने भी कहा हुआ क्या श्यामा, बहाने करती रही। लेकिन बाद में एक फिल्म और शम्मी कपूर के साथ इन्होंने साइन कर ही ली।
2: तुम इनकी बातों पर ना जाना, इनसे कागज पर लिखवा लो कि तुम इनकी तरफ से भाई साहब से फैसला कर सकते।
1: बुढ़ापे में श्यामा ने बहुत कुछ सहा भी और बहुत कुछ अच्छा भी रहा। बूढ़ी होती हड्डियों ने जवाब दिया था, जिस वजह से दोनों टांगों में एक बार फ्रैक्चर भी आया था। घर से बाहर आना जाना जरा बंद हुआ। और फिर सन 2017 तारीख 14 नवंबर 82 साल की उम्र में श्यामा जी ये दुनिया छोड़ चल बसी। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया गया। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की एक और सुनहरी परी ये दुनिया छोड़ चल बसी।
3: इंसान कभी कभी खुशी के मारे रो देता है, फिर जबान रुक जाती है और आंसू जबान बन जाते हैं।
1: भारतीय सिनेमा के इतिहास में श्यामा जी का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

समाचार पत्र ने वृद्ध दिवस पर एक संदेश प्रतियोगिता रखी। हजारों संदेश समाचार पत्र कार्यालय पहुंचे। प्राप्त संदेशों को 3 सदस्यीय एक निर्णायक समिति को सौंप दिया गया। तीनों सदस्य एक कक्ष में बैठकर वाचन करने लगे। संदेश को पढ़ते पढ़ते शर्मा दंपत्ति की आंखों से आंसू छलक उठे। अतीत में खोकर वे भाव विह्वल हो उठे। याद आने लगे वे ढेर सारे संदेश जिन पर आंख बंद करके उनका बेटा स्वीकार कर लेता था। अविश्वास या तर्क कुतर्क की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और कभी कभी तो हमारी साधारण बातचीत में भी संदेश ढूंढ लेता था और स्वेच्छा से अमल भी करता था। उसका मन इतना कोमल था कि दूसरों को अपने माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार करते सहन नहीं कर पाता था। गुस्से से भर कर कहता था कि मैं बड़ा होकर इन मतलबी लापरवाह बेटों को समझाऊंगा, इनके लिए एक मिसाल बनूंगा, अपना कर्तव्य निर्वहन करके एक संदेश दूंगा कि संसार में यदि कोई सच्चा शुभचिंतक है तो वो माता पिता ही हैं। इनकी अवहेलना, इनका अपमान अक्षम्य है। तीसरे निर्णायक भल्ला जी, जो कि उन्हीं के साथ वृद्धाश्रम में रहते हैं, उन्होंने पूछा, क्या हो गया आपकी आंखों में आंसू? शर्मा जी बोले, देखिए भल्ला जी, आज फिर मेरे बेटे ने वही सुंदर और सबसे अच्छा संदेश भेजा है।

पहली बार में जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी जब भी अपनी कलम चलाते हैं, कमाल की बात यह है कि रिश्तों में भरी संवेदनाएं इतनी बारीकी से समाज की दोहरी मानसिकताओं को बड़ी होशियारी से वो अपनी कथाओं के माध्यम से उजागर कर देते हैं। ये सच है इस समाज का। कथनी और करनी अलग अलग हो गई है, और कथनी करनी रहनी जिसकी एक समान है ना, उसे जीवन में कोई तनाव नहीं होता। लेकिन अगर अवसाद है, निराशा है, तनाव है, भय है, तो कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र के साथ जीवन जी रहे हैं हम। शर्म भी शायद तभी आती है। दोहरा चरित्र करके एक बड़ी सुंदर कथा देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ढूंढिएगा। फिलहाल माता पिता और उनसे जुड़ी संवेदनाओं पर क्या ही कहें, जितना बोलूंगा उतना कम होगा। आप भी जितना कहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे उतना कम होगा। ये लघु कथा पर्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है। कैसी लगी आपको लघु कथा कमेंट के जरिए बताइए, और हाँ, औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए और कलम की ताकत भी सब तक पहुंचनी चाहिए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: गुलगुले भाई गुलगुले, मजे मजेदार बने, मिर्च मसाले के चार खूब बने तैयार। हाय हाय हाय,
1: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी,
2: यो यो यो यो,
1: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी।

0: देखो चला रे चला हाय मेरा मन
1: तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी पांकी की तुवान
0: देखो चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला रे मेरा मन हे भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी
2: पढ़ना सीखा लिखना सीखा जीना सीखा रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
3: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? If there is any question from the 10th chapter, I will be in trouble. एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी examination hall में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is any question from the 10th chapter or not. और बस उनके आँखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble. Automatically, he's in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने blackout हो जाता है, और जो 9 chapter में से पढ़ा, वो धीरे-धीरे evaporate होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूँ। जिस कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters away. 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No, he will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, लेकिन 100 meters Indian record तो उसको तोड़ना ही था. What I'm trying to communicate is, ऐसा नहीं है कि उसके पास energy नहीं था, energy था, but he kept on programming. I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया, एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he is there in front of the television. 10 बजे वो realize करता है, oh my god, tomorrow मुझे इतने सारे assignments submit करने हैं. और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता है कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, टक 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला। Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 a.m. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aarambh karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock, hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 baje ka alarm rakhta hai, lekin 3 baje bhi uthega, 3:15 baje bhi uthega, 3:30 baje bhi uthega. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. It's a way we program ourselves. A sara din he's there in Khandala, enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं पढ़ाई की, जब भी बात करते हैं कुछ सीखने की, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कैसे सीखूं, कहां से सीखूं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा, हम ये कह सकते हैं भाई, कि ऐसा जादुई यंत्र मौजूद है जिसके पास खजाना है शिक्षा का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट के माध्यम से आजकल हम क्या नहीं सीख सकते। सच में लर्निंग एक हमारे लिए टूल बन चुकी है, और वो उसको इस्तेमाल करने के लिए बस आपको सही सर्च करना है, सही जगह जाना है, सही चीज़ पढ़नी है। और दोस्तों, आप NCERT की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं। ऐसे ही कई गवर्नमेंट के भी ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोडिंग और टेक्निकल कोर्सेज भी हैं, आर्ट और क्राफ्ट के हिसाब से भी है, और बहुत सारी और चीज़ें भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे, लर्निंग को आसान कैसे बनाएं, आपको पता चलेगा कुछ ही क्षणों में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, और दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आज कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में, जैसा कि आपसे वादा किया था, जहां पे आप सीख सकते हैं, आपके लिए लर्निंग आसान हो सकती है। दोस्तों सबसे पहली वेबसाइट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है स्वयं। जी हाँ, swayam.gov.in। जी हाँ, जब भी कोई सरकारी वेबसाइट होती है वो हमेशा IN से एंड होगी, कभी भी .com से नहीं या .org या किसी और से नहीं, बल्कि .in, जिसे हम समझ जाते हैं कि ये असली है, ये फेक नहीं है। तो स्वयं मतलब नाम से ही सिद्ध होता है कि स्वयं पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे आप इस वेबसाइट को खोलेंगे आपको यहाँ पे कई कोर्सेस दिखाए जाएंगे जो कि पॉपुलर हैं। आप चूज़ कर सकते हैं हेल्थ में, ह्यूमैनिटीज़ में, लॉ में, मैनेजमेंट में, मैथ और साइंस में, डिज़ाइन में, प्लानिंग में। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए आप मैथ और साइंस पे क्लिक करते हैं, तो आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से एक बेसिक कोर्स है नंबर थ्योरी में, प्रोफेसर श्रीपद गार्गे द्वारा, IIT बॉम्बे का ये कोर्स है। जिन और दोस्तों मतलब इस तरह के आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं ये, जो ये कोर्स करा रहे हैं यहाँ पे। और आपको आपके लिए वीडियो भी उपलब्ध है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं वो कोर्स कैसा है। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन और फिज़िक्स का है, मतलब बहुत बारीक बारीक विषय हैं जिसमें आप एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे है। और जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं जो यहाँ पे ये कोर्सेस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस पे भी आप कर सकते हैं। फ्री कोर्सेस फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगे, आपको आप खुद सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट को अर्न भी कर सकते हैं आप कोई यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज टॉप यूनिवर्सिटी से, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से भी। यूनिवर्सिटी क्रेडिट भी आपको मिल सकता है। कैसे? आपको बस ये क्लिक करके देखना है, समझना है, और यहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक और वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो है दीक्षा, deeksha.gov.in। जी हाँ, आप लिख भी सकते हैं, पहली थी स्वयं SWAYAM, और अब ये है दीक्षा, दीक्षा यानी DIKSHA.gov.in। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस, टेक्स्ट बुक, इंटरैक्टिव कंटेंट, कोर्सेज, ऐसा आपको आप सीखने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिस पे आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट से अगर आप ढूंढना चाहें कोर्सेज को, तो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, वर्ल्ड अराउंड अस, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, और भी कितने सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, कोर्सेज को पता कर सकते हैं कि अगर आप मतलब फाउंडेशन कोर्स भी है, प्रिपरेटरी कोर्स भी है, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, NCERT, CBSE, NIOS, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। आप ओपन लर्निंग की बात करते हैं तो वो भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको, स्टेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ठीक है, शिक्षा तो है ही, जहाँ पे हम किताबों में पढ़ते हैं और गेन करते हैं वो नॉलेज, मगर साथ साथ स्किल भी तो होनी चाहिए। आजकल जिनके पास स्किल है उनके पास काम है। तो स्किल की बात करें तो स्किल इंडिया आपको एक और मददगार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। तो आप स्किल इंडिया सर्च कर सकते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल मैंने खोला है, skillindiadigital.gov.in इस वेबसाइट को अभी खोला है, तो आप इस पे देखेंगे आपको स्किल कोर्सेज दिखाई देंगे जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं, अपैरल, मेडअप्स, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, बेकरी, बैंकिंग, बटीक एंड टाई एंड डाई, ब्यूटी वेलनेस, ब्यूटी कल्चर, हेल्थ केयर, बी कीपिंग, बायो फार्मिंग, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसर, फैब्रिकेशन, फ्लावर अरेंजमेंट, फर्नीचर, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ग्रीन जॉब्स, हैंडपम्प मैकेनिज्म, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट, मतलब हाइड्रोकार्बन, हेल्थ केयर, इंडियन प्लम्बिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें आपके पास। आप एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप और उसके अंदर भी क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्लिक किया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्सेज पे, तो 27 कोर्सेज की लिस्ट आ गई मेरे पास। बने नौकरी के लिए तैयार, यू नो कैसे, हाउ टू गेट अ जॉब, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भाषाएं हैं, आप भाषा भी चूज कर सकते हैं। इसमें कितने घंटे का ये कोर्स है, कितने समय में आपको कंप्लीट करना है, वो भी लिखा हुआ है। तो ये सभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं लॉगिन करके। ऐसी कुछ और वेबसाइट्स के बारे में आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ यानी युवा मंच के साथ, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों हम आपको बता रहे हैं आज उन वेबसाइट्स के बारे में जो सरकारी हैं यानी विश्वासपात्र भी हैं और आप वहां पे विभिन्न कोर्सेज कर सकते हैं और डिटेल में जा सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब तक हमने बात की थी स्वयं वेबसाइट की, फिर हमने बात की थी दीक्षा की, फिर हमने बात की थी स्किल इंडिया डिजिटल हब की और अब हम बात कर रहे हैं माई भारत की। जी हाँ, माई भारत पे भी आप जा सकते हैं। माई भारत पर आपको कई तरह के कॉम्पिटिशन्स भी मिलेंगे, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। आप सर्च कर सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए भी उपलब्ध है ये प्रोग्राम। आप रजिस्टर भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पर और साथ साथ आप अपडेटेड भी रह सकते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कैसे आपको उनका हिस्सा बनाना है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम जो दिख रहा है वो है कि माय भारत वॉलंटियर टुडे, उसमें एक प्रोग्राम दिख रहा है जहाँ पे दो वॉलंटियर्स पर ब्लॉग जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किए जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे हेल्थ के बारे में, लिटरेसी के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, जेंडर के बारे में और सामाजिक मुद्दों के बारे में। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 29 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 तक और साथ साथ आपको 5,000 पर मंथ जो है वो दिया भी जाएगा 2 साल के लिए। रेगुलर स्टूडेंट इसमें हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि फिर आपके लिए आपको पढ़ाई नहीं, आपको छोड़ के करना है कुछ भी, लेकिन उसकी जो आखिरी डेट है वो आज ही है अप्लाई करने की, यानी कि 12 जून है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया इस पे भी आप और चीज़ें पता कर सकते हैं, ऐसे कई कार्यक्रम इस पे दिखते रहते हैं तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। एक और पोर्टल के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल। जी हाँ, नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल। तो आप अपनी पसंदीदा इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं कि आपको कैसे आपको इंटर्न करना है, कहाँ आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कई तरह के इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, आप कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ट्यूलिप इंटर्नशिप, रूरल मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भारतीय भाषा समिति इंटर्नशिप बाय सिस्को, या फिर विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, NHIDCL है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे जिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है कि क्या क्या अवेलेबल है, उसमें कौन सी इंटर्नशिप अवेलेबल है, उनके बारे में भी बताते हैं और किस तरह से आपकी अवेलेबिलिटी, आप स्टेट वाइज भी इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक और जो वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हैं वो है PMKVY। जी हाँ, अभी फ़िलहाल मैं खोल नहीं पा रही हूँ ये वेबसाइट, लेकिन ये भी बहुत सुंदर एक प्रयास है, इसको भी आप देख सकते हैं। यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इस पे भी आप जा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं आपको क्या इंटरेस्ट देता है, आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा है। और दोस्तों आप साथ ही साथ ई स्किल पे भी जा सकते हैं। जी हाँ, ई स्किल इंडिया पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ भी आप स्किल के बारे में और कुछ पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी मदद के लिए आज अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हम उनका लाभ उठा रहे हैं, क्या हम उनको समझ पा रहे हैं या उसमें अपनी चीज़ें सर्च कर पा रहे हैं? कई बार तो हमें इन वेबसाइट्स के बारे में ही नहीं पता होता। तो इसीलिए दोस्तों जब हम इंटरनेट की दुनिया के आज सिटीज़न बन ही चुके हैं
तो होता है ना कि जहाँ के आप नागरिक होते हैं वहाँ के बारे में आपको बहुत कुछ पता होता है. आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या फेमस है, कहाँ पे जाना आपको अच्छा लगता है, सब पता होता है. तो ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें आपके काम का क्या है, आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या मदद करेगा. नो डाउट, कभी भी हम ये नहीं कहते कि भाई एंटरटेनमेंट आप करो ही मत. एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है लाइफ में, लाइट भी रहना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी सक्सेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और इसलिए इन वेबसाइट्स को विज़िट ज़रूर कीजिए, अपने पसंदीदा चीज़ों को चुनिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपने ठान लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है हमें इजाज़त लेने का, लेकिन रेडियो मधुबन आपके साथ बना रहेगा. अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई क्वेरीज है, कोई और बात आप शेयर करना चाहते हैं, किसी बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो बस आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: पूर्ण
1: पढ़ना सीखा लिखना सीखा जीना सीखा रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला
2: लाइफ इज अ बुक जीवन एक बहुत सुंदर किताब है रीड इट उसको पढ़ो है ना कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ एक बातों को फॉलो करना है हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का कौन सा उपवास करना है कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है लेकिन उपवास करना है दो बातों का और एक है न्यूज़पेपर्स का हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी बहुत अच्छी किताब है एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना और वो है आदिदेव ब्रह्मा हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार
3: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है एक आपकी बात को इग्नोर कर दो ठीक है सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में है कमजोर तो है आई कांट हेल्प खाना ऐसा है आजकल पानी ऐसा है मौसम ऐसा है तो ये कमजोर है थर्ड ऑप्शन इज ठीक है आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है बिल्कुल कमजोर हो गया है लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में तब डिप्रेशन होने का चांस होता है आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ओए रुको, रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
2: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
1: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क
3: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

हंसी आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे रोहित आपका स्वागत करता हूं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के इस कार्यक्रम एक दुनिया एक भाषा पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हमारे साथ है हमारे शो पर, जिनका नाम है दिलीप नीलकंठ बापट। और उनसे हमें एक ऐसे बहुत सारे अनुभव सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप जब उनके बारे में सुनेंगे और जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी कलाएं उनके अंदर है। वो एक आर्टिस्ट भी हैं और एक बहुत टेक्निकली इतने अच्छे से हैम यूज करने वाले ऑपरेटर भी हैं। तो जल्दी हम शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने शो पर। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर।
1: धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते
0: नमस्ते। तो दिलीप जी, हम शुरुआत करते हैं शो की, और आई थिंक मेरे साथ साथ हमारे श्रोता भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे आपके परिचय को जानने में, तो शुरुआत की जाए आपके कुछ परिचय के से।
1: ठीक है, तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप नीलकंठ बापट और मैं अलीबाग मुंबई के नजदीक जो सिटी है वहां रहने वाला हूँ, और मेरा अभी आयु है 67 इयर्स। और मैं बहुत ही खुश हूँ आज कि आप लोगों से, रोहित जी के द्वारा मैं बात कर सकता हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हैम रेडियो ऑपरेटर हूँ, उसके पहले मैं महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट में वर्कशॉप में काम करता था, सुपरिटेंडेंट का वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, वैसे क्लरिकल में था लेकिन वही सब मुझे देखना पड़ता था। तो 37 ईयर मैंने वो काम किया, और बीच में आगे का भी मैं आपसे बात बोलूंगा। रोहित जी, आप पूछिए, क्या आपको और पूछना है?
0: जी दिलीप जी, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और बताइए हमारे श्रोताओं को। जैसे आप आर्टिस्ट हैं और आपने नाटक और ऐसे बहुत सारे कलाओं के फील्ड में काम किया है, तो अगर आप थोड़ा सा वो अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें कि आपने अपने क्या क्या किया है और कैसे फिर उसके साथ साथ आपको हैम का इंटरेस्ट आया और कब आपने हैम के बारे में जानना और उसका लाइसेंस लिया।
1: चलिए ठीक है, जरूर जरूर बताऊंगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करते हुए। तो दोस्तों, बात यह है कि बेसिकली हमारा जो गांव है अलीबाग, ये इतना बड़ा तो था नहीं, पहले से छोटा ही गांव था। तो मेरा पूरा जो शिक्षा है वो सब अलीबाग में ही हो गया, पूरा कॉलेज तक बीकॉम पढ़ा हूँ मैं, तो स्कूल से लेके कॉलेज तक सब अलीबाग में ही मैंने पढ़ाई किया है। तो अलीबाग एक विलेज होने के कारण यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती नहीं थी पहले हमारे ज़माने में। तो जब जब भी किधर भी मुझे कुछ मौका मिलता था अपनी कला दिखाने का, तो मैं उसका जरूर और चांस लेता था और मेरी जो भी कला है वो लोगों के सामने पेश करता था। वैसे मुझे एक्टिंग और सिंगिंग में बहुत बहुत मतलब इंटरेस्ट है पहले से, स्कूल डेज से।

और फिर प्रोफेशनल सिंगर भी बना मैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं वैसा मैं कराओके में अभी भी गाना वगैरह गाता हूँ, तो ये सब एक्टिविटी मैं करता हूँ अभी भी। दूसरी एक बात है कि मेरा जो नौकरी था वो स्टेट ट्रांसपोर्ट में था अलीबाग, तो वहाँ हमारी जो ड्यूटी रहती थी वो ड्यूटी संभाल के ड्यूटी में किधर ही कुछ भी मैं गड़बड़ न करते हुए पूरा का पूरा ड्यूटी को सम्मान देते हुए पूरा मेरा डिवोशन से उधर काम करता था, और इसी के कारण जब भी मुझे अदर देन मेरा ड्यूटी काम करने का मौका मिलता था मैं जरूर करता था। हमारे यहाँ से मुंबई नजदीक है तो मैं मुंबई जाके टीवी सीरियल पिक्चर शॉर्ट फिल्म ऐसे सब में काम किया हूँ, और 24 बरस मैंने मराठी स्टेज मतलब ड्रामा में काम किया हुआ है, 6 बार मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है और वैसे दूसरे भी अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये बात है, ये तो अवार्ड तो मिलते रहते हैं, ये सब अवार्ड का जो है वो जैसे अपना काम होगा उसी के हिसाब से दिया जाता है, तो वो तो नहीं, आप अपना काम मन लगा के करते तो जरूर आपका जो भी मेहनत है उसका चीज हो जाता है, लोग आपको डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ावा देते हैं। तो ये सब मेरे बारे में भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सब लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और हमेशा मुझे मेरे घर वालों ने भी अच्छी तरह से बैक किया। तो इसके बीच में मैं और एक बात आपको कहता हूँ कि मैं जब कॉलेज के जीवन में जैसे मैं कॉलेज के जीवन में ड्रामा में और सिंगिंग में काम मेहनत करके मन लगा के सब काम करता था, उसी टाइम मैंने चेस का भी मुझे चाव था, मैं बुद्धि बोलते हैं उसको चेस, तो वो स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत आगे तक गया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में जोनल चैंपियनशिप में मैंने 3rd रैंक लिया हुआ है वो टाइम में 1977, तो ये बात है। तो और

करेंगे तो जरूर सक्सेस आपके पीछे भागेगा। ऐसा ही एक दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ऐसे नहीं कि दूसरे के वो क्या करता है मैं क्या करता हूँ, ऐसे कभी नहीं सोचने का है। हमें बस अपना काम और काम से मतलब रखने का है।

0: दारू ये सबसे मैं हमेशा दूर रहा हूँ। तो मैं जो सुनने वाले उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सबसे अगर आप दूर रहोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहता है, आपके फैमिली भी खुश रहती है, आप लोगों का घर में भी आनंद रहता है, आपके बच्चे आपके माता पिता सब खुश रहते हैं कि हमारा लड़का अच्छा है, नेक है, कोई व्यसन उसको नहीं है। हमारे मराठी में बोलते हैं सुपारी के खांड का भी व्यसन नहीं है, मतलब जो सुपारी रहती है पहले खाते थे हम पान में मिला के, वो भी नहीं खाता है, इतना मतलब प्योर है। तो ऐसे रहना चाहिए आदमी ने, कौन सा भी व्यसन किस चीज का रहना चाहिए, काम का। जो भी काम आपके पास है वो काम दिल से मन से करो, यही है। अभी मेरे बारे में दूसरी बात यह है कि मैं जब नौकरी में काम एसटी में काम करता था स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तो वैसे तो मैं क्लरिकल के लिए पोस्टिंग था, लेकिन मेरा दिमाग लगा के मन लगा के मैंने मेरे डिपो में अलीबाग डिपो में 80 बसेस थी, तो वो पूरा 80 बसेस का जो फ्लीट था उसका नंबर के साथ पूरा मैं दिमाग में रखता था और उसी के हिसाब से मैं खुद प्लानिंग करके हमारे बड़े साहब को बताता कि भाई ये गाड़ी अच्छी है, इसका ये काम है, उसका ये काम है, और ये काम करेंगे तो ये और लंबी दूरी तक जाएगी बस। तो ये सब जो है ये हमें करना चाहिए, अपने काम से मतलब रखते हुए, सिर्फ मेरा ही काम नहीं तो पूरा जो अपना डिपार्टमेंट है उसका, उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा, उसका विकास कैसे होगा और सब ठीक ठाक कैसे चलेगा। अभी हमारा जो है प्रोफेशन जो था ये पब्लिक के लिए था, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट में जब पब्लिक ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ती है और वो मतलब खपा हो जाते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि कोई भी हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। अड़चने तो बहुत आती है सबको, लेकिन वो अड़चनों के ऊपर हमें मात करनी चाहिए। तो ये सब मैं आपको शेयर करना चाहता था। रोहित जी,
1: जी दिलीप जी, तो आप ये जो आपने बताया कि आप स्टेट ट्रांसपोर्ट में काम करते थे और साथ साथ ड्रामा और एक्टिंग और इवन सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग भी आपने कहा कि ये सब आप करते थे, तो वहां से फिर आप हैम ऑपरेटर की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कब आपने हैम लाइसेंस लिया?
0: करेक्ट, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। अब वो पहले जमाने में क्या था, अभी हमारे पास टीवी के ढेर सारे चैनल रहते हैं, बहुत सारा मीडिया हमारे हाथ में मोबाइल के जरिए है, लेकिन 1970, 1975, 77, 80 ये जमाने में हमारे पास कोई मीडिया नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर और जो रेडियो रहता था और डीडी का डीडी नेशनल, यही एक चैनल सबके यहाँ चलता था। तो इसी के लिए हम लोग जो थे वो वही देखते थे, उसी के ऊपर मिलने वाले इंफॉर्मेशन से हम लोग आदि हो गए थे। वो टाइम में इतना मीडिया हाइक नहीं किया था, आज किधर भी कुछ भी हो जाए आपको सेकंड भर में मालूमात हो जाती थी। तो वो जमाने में ये कुछ नहीं था, आज के लड़कों को पता नहीं होगा, जो नए लड़के जो अभी अभी ये फील्ड में आए हुए उनको बोलेंगे तो हंस पड़ेंगे कि कैसे दिन आप लोगों ने निकाले होंगे वो टाइम, कि आपके यहाँ ना मोबाइल था, ना टीवी के चैनल थे, ना कुछ था, सिर्फ रेडियो और न्यूज़पेपर, बस उसके अलावा कुछ नहीं मनोरंजन का। तो जो हम एक्टिविटी करते थे कॉलेज के जमाने में, गाना गाना, एक्टिंग, ड्रामा करना, यही बस मनोरंजन के लिए साधन थे लोगों के। तो रेडियो के जरिए मनोरंजन ज्यादा रहता था और उसी के कारण बिल्कुल छोटी आयु में मुझे रेडियो का सुनने का मैं आदि हो गया। हमारे घर में भी रेडियो था, मेरे पिताजी जो थे वो रेडियो के आदि थे, वो पहले रेडियो लगाते, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये न्यूज सुनते थे, फिर हमारे यहाँ मुंबई भी चलता था, वो सुनने को मिलता था हमें, तो ये सब सुनते थे।

सिंगर बैठे अंदर, ये अंदर कैसे इतना छोटा रेडियो उसके अंदर कैसे बैठे है? तो बोलता था उनको छोटा बना के अंदर रख दिया है, तो उसी के कारण उसी के कारण मुझे बहुत मजा आता था कि इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से रेडियो में कैसे बैठता है और कैसे गाना गाता होगा। तो ये सब दिलचस्पी मुझ में थी। इसी के कारण हुआ क्या कि जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरा एक ही काम था बस, रेडियो पिताजी ऑफिस चले जाने के बाद मैं रेडियो नीचे लेके उसको पीछे से खोल देता था और फिर इधर उधर देख के फिर वापस पैक करके रख देता था। तो इस बीच में रेडियो बहुत सारे मैंने खराब भी कर दिए, लेकिन उसी के कारण मेरा रेडियो का नॉलेज बढ़ गया कि उसमें क्या क्या सर्किटरी रहती है, क्या नहीं है, क्या नहीं, कैसे क्या किया तो क्या होता है, उसका डायल कैसे होता है, ये सब मुझे वो टाइम रेडियो को हमेशा खेलने के कारण रेडियो के साथ मुझे वो पता चल गया। पहले के जमाने में पुराने जो लोग हैं अगर वो सुनते हैं तो उनको भी पता चलेगा कि हम उसका जो डायल घुमाते थे पॉइंट टू पॉइंट अगर चलता है तो ही ठीक रेडियो चलता था, नहीं तो डोनाल्ड डक जैसा आवाज उसका आता था, तो उसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता था। तो वो ट्यूनिंग का भी मैं उसी टाइम में सीख गया था, परफेक्ट पॉइंट चलने का। और वो जमाने में रेडियो ऑस्ट्रेलिया आता था 13 मीटर बैंड में 21,850 किलोहर्ट्ज़ पे। तो ये वो टाइम उसी के जमाने से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ अगर मैं लगाऊं तो फिर मुझे रेडियो ऑस्ट्रेलिया सुनने को मिलेगा और मुझे क्रिकेट का मैच सुनने को मिलेगा। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के ऊपर भी वहाँ पहले क्रिकेट का मैच कमेंट्री चलता था, तो वो कमेंट्री सुनने के लिए मेरे दोस्त लोग आते थे और हम कमेंट्री चाव से सुनते थे, तो वो मजा ही अलग था। लेकिन ये बात बेसिक बात यह है इसमें कि इसी के कारण मेरा रेडियो की हॉबी दिन ब दिन बढ़ती गई और जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया वैसे वैसे मुझे एक्सप्लोर करना शुरू हो गया कि किधर क्या लगता है, कौन से टाइम में क्या सुनने को मिलता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट अपना ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फिर इधर यूरोप है, अमेरिका है, तो वो टाइम में सभी ग्लोब के चारों कोने से रेडियो स्टेशन चलते थे और वो अलग अलग टाइम जैसे उसी वही मुझे पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ जब दिन होता है तो मिडिल ईस्ट में क्या होता है, अमेरिका में रात होती है, इधर दिन आगे ऊपर निकल जाता है जापान का। तो ये सब टाइम जोन जो है वो वही उसी से मुझे पता चल गया। तो ये सब नॉलेज जो है वो मैंने स्कूल डेज में ही प्राप्त किया और उसी के कारण मेरा रेडियो का हॉबी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर एक दिन मेरे पास जो रेडियो, उसी के कारण क्या हो गया कि मैं रेडियो नया नया रेडियो का मॉडल मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया। तो एक बात अभी बोल देता हूँ मैं भूल जाऊंगा, मेरे पास 55 के ऊपर रेडियो है अभी। अच्छा। वर्ल्ड के बेस्ट रेडियो मेरे पास है 55 के ऊपर और मेरा रेडियो का प्रदर्शन ही चलता है पुणे में, अलीबाग में। मैं वर्ल्ड रेडियो डे जो 18 फरवरी को रहता है, सॉरी 11 फरवरी को रहता है वर्ल्ड रेडियो डे, वो टाइम में पुणे में मेरा रेडियो का एग्जीबिशन रहता है और 18 अप्रैल को वर्ल्ड एमेच्योर रेडियो डे जो हैम रेडियो का डे रहता है उधर भी मेरा रेडियो का प्रदर्शन ही मैं लगाता हूँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, उनको नॉलेज मिलता है। तो पुराने जमाने से नए जमाने तक के पूरे रेडियो के सेट मेरे पास है। तो वो तो अभी मैंने फ्लो में बोल दिया। तो हुआ क्या कि जब मेरा पुराना शौक था रेडियो सुनना सुनना, तो वो सुनते सुनते एक दिन मेरे पास जो रेडियो था सोनी का, उसमें हैम रेडियो का एक

0: सुहास सामंत करके, उनके साथ उन्होंने उनका लैंडलाइन का नंबर शेयर किया वो टाइम, तो वो नंबर मैंने लिख लिया और फिर वो नंबर से मैंने उनसे बात किया कि भाई मैंने आपका ये ऐसा आवाज सुना और आपने ये नंबर दिया, आई एम सॉरी मैंने ये आपका ये सुना इसलिए। तो वो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि भाई बढ़िया काम किया आपने, हमारे सिग्नल आपके यहाँ अलीबाग में अच्छे जा रहे हैं, ये सुनकर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो फिर उनको मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला मैं पुणे में रहता हूँ, आप कभी पुणे में आएंगे तो जरूर मुझे मिलिए। तो फिर मैं जब पुणे गया उनसे मिला तो फिर उन्होंने मुझे हैम के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर मैं हैम का स्टडी करने लगा। 2005 से मैंने हैम का स्टडी कर दिया और फिर उन्होंने ही मुझे हैम के एग्जाम में तैयारी पूरी करके हैम के एग्जाम को बिठा दिया। इन बिटवीन क्या हो गया, मेरी आई साइट जो है वीक होने लगी, तो बहुत सारे इलाज किए मैंने। वो जो रेटिना जो रहता है अपने आँख का, वो रेटिना मेरा डीजनरेट हो गया, मतलब सड़ गया, प्रॉपर भाषा में बोलूँ तो सड़ गया। तो ये हेरिडेटरी रहता है, थोड़ा डायबिटीज का भी उसमें इश्यू रहता है, तो उसी के कारण मेरी आई साइट एकदम कम होती गई। तो उसके लिए इलाज एक ही था, डॉक्टर रामचंदानी करके मुंबई में, उनके पास एक इंजेक्शन देते थे, आँख में सीधा इंजेक्शन देते हैं, उसको एंटी वेज अवास्टिन इंजेक्शन बोलते हैं। उसे अगर तीन का मैंने कोर्स किया, एक आँख में तीन, दूसरे आँख में तीन, तो मेरा जो डिजनरेशन का स्पीड था वो कम हो गया और मुझे मतलब समझो एक आँख का अपना 100% विजन है तो उसमें मेरा सिर्फ 8% विजन बच गया और दूसरे आँख में तो सिर्फ 4% विजन बच गया, लेकिन जो इंजेक्शन लिए उसी के कारण उतना तो मेरा बच गया। इसी के कारण हुआ क्या कि मुझे इतना समझता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन मैं उसको दूर से ये नहीं समझता है कि औरत आ रही है या कोई आदमी आ रहा है या गाड़ी आ रही है या रिक्शा आ रही है, कुछ तो आ रहा है जा रहा है ऐसा मुझे समझता है। तो ये मेरे दिक्कत पैदा हो गई, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं बोला ठीक है अभी ये तो अपने नसीब का एक भाग है कि हमें ये ऐसा हो गया है, तो इसमें भी मात करनी चाहिए और अपना हॉबी एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने फिर रबड़े सर से सब बता के, उन्होंने जो हैम रेडियो का जो है उसमें एग्जाम को मुझे बिठाया, फिर मैं पुणे में एग्जाम दिया और पास भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे रेडियो का नॉलेज तो पहले से था और मैंने कोर्स भी किया था रेडियो कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का, उसी के कारण फिर मुझे दिक्कत नहीं आई परीक्षा देने में और पास होने में। सिर्फ मुझे राइटर लेना पड़ा था तो वो राइटर उन्होंने प्रोवाइड किया था, तो ये बात है। तो वैसे मैं हैम ऑपरेटर बन गया।
1: जी दिलीप जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपकी कहानी है कि कहाँ से रेडियो की कहानी आपकी शुरू हुई बचपन से और उसके बाद इतना कुछ होते हुए और इतना बड़ा एक चैलेंज एक आपकी लाइफ में एक तरह से आया आपकी आंखों के साथ, बट फिर भी आपने वो कंटिन्यू किया अपना इंटरेस्ट, आपका जो पैशन था रेडियो के लिए। तो आई थिंक बहुत लोगों को काफ़ी इंस्पायरिंग होगा ये सारा सुनना आपसे ये अनुभव, और उनकी लाइफ में भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए वो आगे बढ़े हमेशा और रुके नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये यात्रा ये कहानी पूरी सुन करके दिलीप जी। तो हम चाहेंगे दिलीप जी आप थोड़ा सा अगर डिजास्टर के बारे में, जैसे आजकल इतना हैम को वापस प्रोत्साहन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी बहुत सारे क्लब्स और एनजीओ हैं जो चाहते हैं कि हैम का यूज हमारे देश में और बढ़े, उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि डिजास्टर या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हैम बहुत एक अच्छा उपयोग हो सकता है उसका। क्या आप कुछ ऐसा अनुभव अपना

0: आप ऐसे समय पर हैम का उपयोग कर सके या औरों को करते हुए देखा?
1: यस जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में। देखिए, पहले उसी के पहले मैं एक बात और बताता हूँ। ये जो हैम रेडियो का एक्टिविटी रहता है, इसमें हैम का लाइसेंस लेना पड़ता है पहले। ये लाइसेंस का जो प्रोसीजर है एकदम ईजी रहता है, और उसके लिए वर्ल्ड अपना जो वर्ल्ड का जो हैम कम्युनिटी है उनकी तरफ से हर जगह ऑल कंट्रीज में अपना अपना एक एग्जाम लेने वाला गवर्नमेंट का सेक्शन रहता है। वैसे हमारे इंडिया में WPC वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, ये जो है ये अपना हैम का एग्जाम लेता है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट WPC, ये उसका नाम है। इसका ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में और सॉरी हर स्टेट में है।

कोराई एरिया है, वहाँ WPC का ऑफिस है। तो अभी क्या हुआ गया है, मोदी गवर्नमेंट ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैम कलेक्टर ऑफिस में जरूरी है, हैम को बुलाओ, उसका नॉलेज का इस्तेमाल करो और वो डिजास्टर में काम आना चाहिए अपना, ऐसा सब ग्रुप बना के रखो। तो ये बहुत अच्छा सजेशन गवर्नमेंट की तरफ से हर कलेक्ट्रेट में दिया गया। और इतना ही नहीं, कलेक्टर का जो एग्जाम रहता है उसमें भी ये उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया है उनको कि डिजास्टर में काम करते वक्त कौन कौन सी एजेंसी को आपने हेल्प लेनी है, तो उसमें भी हैम ऐड कर दिया गया है। और एक बात मैं आपसे यही आगे बढ़ने से पहले बोल देता हूँ, ऐसी एक कहावत है हैम में कि जो देश में सबसे ज्यादा हैम कम्युनिटी काम कर कार्यरत है वो देश टेक्निकली बहुत ही साउंड है। अभी देखिए, जापान में हमेशा अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं, अब पहले से ही है। इतना छोटा सा जापान देश, अमेरिका में 25 लाख हैम है, यूरोप में भी ऐसे ही कुछ 12-15 लाख हैम है, साउथ अफ्रीका और ये इसमें अभी कम है लेकिन उधर भी अभी बढ़ोतरी होने लगी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे हैम है, चाइना में भी बहुत सारे हैम एक्टिव है, 1.5-2 लाख के ऊपर है। अभी हमारे इंडिया में 60-70 हजार तक संख्या गई है हैम कम्युनिटी की। जब मैं एग्जाम दिया तब मेरा 11,000वां नंबर था तो अभी इतना बढ़ गया है। और दूसरी बात यह है, अगर आप इसमें कॉलेज के स्टूडेंट बोलेंगे कि इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, तो 2-3 बेनिफिट रहते हैं। मेन बेनिफिट ये है, समझो रोहित जी आपका क्वालिफिकेशन और मेरा क्वालिफिकेशन एक है, तो हम लोग अगर जाते हैं प्रदेश में नौकरी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो अगर आपके पास हैम का लाइसेंस है और मेरे पास नहीं है तो आपको प्रायोरिटी है वहाँ। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए मतलब वो लोग इतना उसका महत्व रखते हैं ये हैम के हॉबी का, तो इसमें टेक्निकल इशू ज्यादा रहता है। अभी डिजास्टर में क्या होता है, डिजास्टर कभी किसी को बता के नहीं आता है, अर्थक्वेक कभी भी आपको कभी भी आ सकता है, आपको तैयार रहना पड़ता है।

0: का हो या अदर जो सोर्सेस है, वो सबसे हमें अलर्टनेस पहले 10-15 दिन ही पहले पता चल जाता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है। तो ये कह रहा हूँ कि हैम का डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपने रोहित जी पूछा वो क्वेश्चन जो है, उसी का आंसर अभी मैं दे रहा हूँ कि हैम का जो महत्व है वो टाइम इसीलिए है। देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या रहता है, उनके पास बहुत सारी मशीनरी रहती है, लेकिन वो जब टावर के ऊपर कम्युनिकेशन चलता है, जैसे टेलीफोन का टावर रहता है, जाओ जो अपना हम बोलते हैं कि नेट नहीं है या रेंज नहीं है, आजकल लड़के बोलते ये रेंज नहीं मिल रहा है, तो रेंज नहीं है तो आपका सिग्नल जाता ही नहीं आगे। तो यही एक मेन बेसिक डिफरेंस है हैम में और गवर्नमेंट एजेंसीज में। हैम में ये जो है वो जो बेनिफिट है ये है कि हमारा रेंज का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम हमारे जो रेडियो है वायरलेसली चलाते हैं और उसके लिए इंटरनेट या दूसरी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के कारण पहले अपने टावर गिर जाते हैं, टेलीफोन के खंभे, तो कम्युनिकेशन पहले वहाँ ही पूरा बंद हो जाता है, लैंडलाइन का भी कम्युनिकेशन आपका बंद हो जाता है। वैसे आजकल लैंडलाइन ज्यादातर यूज होती ही नहीं है, ये आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क पूरा खत्म हो जाता है साइक्लोन में। तो वो टाइम क्या होता है, हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन रहता है, हम हमारे जो रेडियो है वो बैटरी के ऊपर चलाते हैं, और ये हमारा बैटरी और रेडियो का सेट रहता है, उसके लिए हमारा एंटीना रहता है। तो हम छोटे से एंटीना से दूर दूर तक संदेश भेजने का काम करते हैं। तो क्या हुआ, जब निसर्ग साइक्लोन अपने यहाँ आ गया हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, पहले समझो 700 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में वो घूम रहा था साइक्लोन, तो पता चल गया कि भाई ये अभी एक 2-4 दिन में आगे बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगा और वो रायगढ़ जिले में हिट कर जाएगा। तो फिर हमारा कलेक्टर मैडम थी निधि चौधरी, तो और शिंदे साहब हमारे डीसी थे, डीएसपी थे जी, और पुलिस वायरलेस के जो डीवाईएसपी थे हमारे पाटिल साहब थे, आरबी पाटिल। तो ये सब हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट है रायगढ़ जिले का कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ हमने हमारा रेडियो सेटअप खड़ा कर दिया पूरा, और वहाँ से हमने VHF, वैसे 3 प्रकार का इसमें कम्युनिकेशन रहता है, VHF माने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF माने अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और HF हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल है ये बहुत दूर कॉन्टिनेंटल, एक मतलब आशिया से पूरा यूरोप तक जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तो ये सब जो है ये दूर का जो अपना कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तब ये HF का सिग्नल हम लोग यूज करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए VHF का या UHF का हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। तो जब साइक्लोन आ रहा था तो हमारा जो हैम का टीम है वो हमने पहले से ही बना रखा था, मुंबई और थाना एरिया के हैम अलीबाग में आए, मैंने अलीबाग का जो मेन ऑफिस है डिजास्टर का कंट्रोल वो मैंने संभाला था, फिर हमारे नितिन आईना पूरे VU2CNN ये है मैं वो, उनको हमने महाबलेश्वर सेट कर दिया ऊपर जाके, वो उधर है, फिर दूसरे एक देशपांडे है मैं और एक गुरव करके है मैं, तो उनको हमने 3 जगह पर सेट किया, एक रायगढ़ और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे श्रीवर्धन करके है वहां, और एक महाड़ के नजदीक में खड़ा किया। तो क्या होता है, जब साइक्लोन आता है तो पहले वो कोस्टल एरिया से गुजरता है, तो कोस्टल एरिया में ज्यादातर कौन लोग रहते हैं, मछुआरे लोग रहते हैं, तो ये जो मछुआरे लोग रहते हैं उनकी झोपड़ी रहती है, झुग्गी झोपड़ी जो हम बोलते हैं, वैसे उनके घर रहते हैं। तो जब साइक्लोन आता है तो पहले उधर हीट करता है और वो लोगों का पूरा घर उध्वस्त हो जाता है उसमें। तो निधि चौधरी मैडम, कलेक्टर मैडम थी, उन्होंने हमें ऐसे ऑर्डर दिए थे कि आप ऐसा करने का है, जो लोकल एरिया है अलीबाग रोहास श्रीवर्धन जो 60 किलोमीटर रेंज में है, मतलब बाय एयर, वहां से हम सिग्नल भेजेंगे और वो हमारे सिग्नल जो है वो रिपीटर के द्वारा महाबलेश्वर जाएंगे, फिर महाबलेश्वर से फिर नीचे, महाबलेश्वर ऊंचाई पर है तो ऊंचाई पर भेजने के बाद फिर वो नीचे आएंगे तो सभी दूर सिग्नल चले जाते हैं लंबे दूरी के। तो हमने ये पूरा सेटअप लगाया और फिर निधि चौधरी मैडम हर 10-10 मिनट के बाद हमसे अपडेट लेती थी। पहले हमने क्या किया, निसर्ग साइक्लोन के टाइम पहले हमने सब जो लो लाइन एरिया में मछुआरे थे या ये बागायतदार रहते जिनके नारल नारियल और आम के पेड़ वगैरह जो बागान रहते वहां से जो उनके जो सब लोग रहते थे उनको हमने लो लाइन एरिया से निकाला बाहर, बस में डाल के उनको पक्की घरों में ऊपर लेके आए। मतलब क्या हो गया कि लो लाइन एरिया पूरा हमने खाली कर दिया। जब साइक्लोन आएगा तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जीवित हानि तो रोक सकते हैं। तो ये अच्छी बात हो गई कि हमने वो लो लाइन एरिया से सब लोगों को उधर से निकाला। और जब साइक्लोन हिट कर गया तो बहुत सारा नुकसान हो गया, पेड़ गिर गए, इलेक्ट्रिक के पोल गिर गए, पूरा 15 दिन हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, पूरे रोड ब्लॉक थे क्योंकि पेड़ गिर गए थे और लोगों के घर के छत उड़ गए थे। 5-5 किलोमीटर लाम दूरी पर लोगों के फैन के छत मिल गए लटकते हुए फैन के साथ में, इतना बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन हमने जो लोगों को निकाल के रखा था उसके कारण जीवित हानि जीरो हो गई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहना चाहिए, निधि चौधरी मैडम का इसके लिए गवर्नमेंट में भी सत्कार कर दिया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। नुकसान तो खैर हम उसमें टाल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं, साइक्लोन तो हिट करना ही करना है, लेकिन हमें क्या यह है कि भाई लोगों को हमने निकाल दिया। तो ये बात मुझे पहले बतानी की थी लोगों को कि हैम के कारण ये कंट्रोल करना जो नामुमकिन चीज, तो ये हम हैम कम्युनिटी में निसर्ग साइक्लोन के कारण टाइम में एग्जैक्टली करके दिखाई। तो हमें प्राउड फील है इसका कि भाई हमारा जो हॉबी है ये कुछ तो काम आ गया, लोगों के काम आ गया। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कुछ ना कुछ, जैसे राम सेतु उभारने में खारी का वाटा बोलते हैं ना, गिलहरी मदद करने के लिए गई थी, तैसे ही हमारा गिलहरी जैसा ही थोड़ा सा काम था गवर्नमेंट को मदद करना जो हमने किया, तो हम वी फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ये बात है। और उसके बाद फिर दूसरा शुरू होता है रिहैबिलिटेशन। साइक्लोन तो अपना काम करके चला गया, आगे जो भी गिराना था तोड़ना था वो सब करके वो आगे निकल गया, फिर लोगों की जिंदगानी पूरी जो उध्वस्त हो गए थे वो सब उनका पूरा नॉर्मल होने के लिए, फिर एक बार हमारा हैम का ही काम था, इधर लोगों की जरूरतें क्या है, पीने का पानी चाहिए, फिर दवाएं चाहिए, फिर खाने की पैकेट्स चाहिए, राशन चाहिए, फिर जो रास्ता ब्लॉक हो गया है वो रास्ता के जो पेड़ गिरे हुए उनको काट के बाजू निकालने के लिए जो भी साधन सामग्री रहती है वो चाहिए। ये सब जगह हम कॉल करके हमारा हैम रेडियो से कलेक्टर मैडम जी के आदेश पर सबको बताने के बाद हमने सबको इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी कैसे हो सकेगा ये सब काम, इसके ऊपर ध्यान दिया। और उसी के कारण 8-10 दिन में ही सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और फिर बहुत सारा रोड भी ब्लॉकेज निकाला गया और फिर इलेक्ट्रिक का काम तो खैर बहुत दिक्कत वाला था, वो लोग भी बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने भी पूरी मेहनत से दिल लगा के काम किया और इलेक्ट्रिक भी प्रोवाइड हो गई वापस। तो ये सब होता है, रिहैबिलिटेशन में आता है, जब पहले हमने उनको निकाला और उसके बाद फिर उनको रेस्क्यू करके वापस अपने अपने घरों में भेज दिया। तो ये होता है साइक्लोन में हैम का उपयोग। रोहित जी।
1: जी दिलीप जी, तो आई थिंक हमने पहले भी कई ऐसे अनुभव सुने हैं जहां पर ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसे हैम केवल एक हॉबी नहीं बट एक जरिया बन सकता है समाज को ऐसी सिचुएशंस में हेल्प करने का। और जैसे आपने कहा कि आप कितना प्राउड फील करते हैं उस समय पर अपने साथियों का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का, अपने देश के लिए कुछ काम करते वक्त जो प्राउड फीलिंग आती है, आई थिंक उसका एहसास ही बिल्कुल अलग होता है। जी तो आपने बहुत अच्छा शेयर किया हमारे साथ कि आपने कितनी सेवा की एक तरह से, और आपके साथ जितने बाकी हैम ऑपरेटर थे उन्होंने भी कैसे हेल्प किया। जी अगेन मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपकी सेवा का उन सभी लोगों की तरफ से एक बार, और बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। दिलीप जी और हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप कितने टाइम से हैम यूज़ कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा दोस्त आपने हैम के थ्रू बनाए हों, बहुत कोई ऐसा इंटरेस्टिंग व्यक्ति से आप कभी बात कर सके हों जो हमें जान करके फायदा मिल सकता है, अगर आप शेयर करें तो?
0: यस जरूर, ये भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। देखिए इसके बाद और एक साइक्लोन आया था जो हमारे महाराष्ट्र के तो खैर दिक्कतें पैदा करके गया ही, लेकिन गुजरात में उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। उसका नाम था तोकते। तोकते जो साइक्लोन आया उसने बहुत सारा दिक्कतें पैदा की गुजरात में, लेकिन जैसे आपने पूछा मित्र मिलते हैं कि नहीं, तो मेरे बहुत सारे मित्र गुजरात के हैम हैं जो बहुत

है राजू भाई, और फिर दीपक भाई डेल्टा विक्टर अल्फा ये है, फिर अमरेली के हैम है हमारे विठल भाई, और दूसरे है डॉक्टर केतन सर, यांकी चार्ली, तो ये सब है, ये अहमदाबाद से है, अहमदाबाद से और भी ईएक्सपी करके है मैं हमारे राजेश, उनकी लड़की भी है मैं, तो ये सब लोग जो है वो टाइम जो तोकते साइक्लोन आया वो टाइम उन्होंने अलग अलग जगह पे स्टेशन से

उनका कम्युनिकेशन पूरा रिकॉर्ड करके, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, यस ये भी मुझे बताने का था, मेरा एक हैम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे दिलीप पापट टाइप करते हैं, दिलीप पापट रेडियोज, या सिर्फ दिलीप पापट भी टाइप किया तो उसमें एक रेड राउंड में डी आता है व्हाइट में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे सब वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा हैम का कम्युनिकेशन कैसे चलता है और हम हैम में सब जो दोस्त लोगों कैसे बातें करते हैं और कैसे हमारा कम्युनिकेशन चलता है ये आपको पता चलेगा। और जरूर अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको हैम कम्युनिटी पूरे इंडिया में कैसे एक्टिव है ये पता चल जाएगा। तो भारत में बहुत सारे हैम हैं जो मेरे मित्र हैं, और एक हैम है हमारे मित्र जो पुणे से है, डॉक्टर अपने श्रीपाद कुलकर्णी करके है, उनका एक खुद का रेडियो स्टेशन भी है, जैसे आपका मधुबन रेडियो है वैसे ही उनका श्रीपाद रेडियो करके रेडियो है, और वो भी बहुत लास्ट 8 ईयर से उनका रेडियो स्टेशन चला रहे हैं ऑनलाइन।

पुण्य तिथि, पुण्य स्मरण, ये सब उनके गाने वो चलाते हैं मराठी हिंदी, तो आपको वो गाने सुनने को मिलेंगे। वो बहुत अच्छे, उनके पास भी बहुत सारा रेडियो का कलेक्शन।

है, उनका कॉल साइन है VU3YBU। ये VU3 VU2 क्या होता है, ये हैम में जो एग्जाम देते हैं हम लोग, उसमें एक मोर्स कोड रहता है जो पहले पोस्ट में रहता था, डा डा डिडिट डिडिट डिडिट, वो जो कोर्स होता है, ये मोर्स कोड के साथ अगर आप जो एग्जाम देते हैं और पास होते हैं तो आपको VU2 मतलब जनरल ग्रेड का लाइसेंस मिलता है, और दूसरा है VU3 जिसमें मोर्स कोड ऑपरेट नहीं किया जाता है, तो ये ग्रेड गवर्नमेंट देती है। तो वो YBU है, श्रीपाद कुलकर्णी, उनका श्रीपाद रेडियो भी आप जरूर सुनिए, और वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया हुआ है, वो हमारे मित्र है। और दूसरे एक जापान के हैम आए थे बीच में हमें मिले, और दूसरा एक मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करने का है, जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो लास्ट ईयर नहीं, यही फरवरी के टाइम में यूक्रेन के जो हैम है हमारे उनके साथ मैंने अलीबाग से कांटेक्ट किया, कम्युनिकेट हो गए वो, तो ये बहुत बढ़िया मुझे मौका मिला उनसे, अलीबाग से यूक्रेन से बात हो गया था मेरा। और दूसरा एक है मैं नॉर्वे के है मैं हमारे वो बेसिकली है अमेरिकन, लेकिन नॉर्वे में वो काम करते हैं बोटी के ऊपर, वो उधर से ग्रेग जोहानसन करके है उनका, उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो गया, तो ये भी अच्छे मित्र बन गए हैं अभी। और इसमें एक बात और है, सब लोगों को एक आश्चर्य लगेगा, हमारी माता जी अभी 87 ईयर के है, वो भी बोलती है हमेशा कि तुम लोग जो बात करते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे बरसों से

0: जो हम बोलते हैं वो किसी से कभी मिले भी नहीं रहते, लेकिन इतनी प्रेम भावना हमारे में रहती है कि हम जब बात करते हैं तो बाजू में बैठे वाला आदमी सोचता है कि ये कितने पुराने मित्र हैं। तो ये एक मजेशीर उसमें है इन्फॉर्मेशन। तो वो तोकते के टाइम में जो गुजरात के हमारे मित्र जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, और वहाँ बहुत अच्छे से गवर्नमेंट की और लोगों की मदद की है। तो हैट्स अप टू ऑल गुजरात हैम्स वंस अगेन। वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे उनका अभिनंदन किया हुआ है और थैंक्स भी दिए हुए है। तो ये सब हैम की बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो शेयर किया है।
1: जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब शेयर करने के लिए। एक तरह से आपने बताया कि कैसे भारत में तो आपके इतने सारे मित्र बने ही हैम के थ्रू, बट आपने जैसे कहा कि यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी आपने उनसे भी बातचीत की, और अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से भी आपके इतने सारे मित्र बने हैं हैम के थ्रू, और जितना प्रेम आपने बताया कि हम मिल करके बातें करते हैं, लगता ही नहीं कि हम मिले नहीं होंगे इन पर्सन, बट इतना प्यार और इतना स्नेह एक दूसरे के साथ है उन चीजों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी उतना ही इंटरेस्ट आ रहा होगा आपकी सारी बातें सुन करके, और वो भी कोशिश करेंगे और हमें नए हैम उनके थ्रू मिलेंगे आपके अनुभव से इंस्पायर हो करके। दिलीप जी, मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे श्रोताओं को कि कैसी स्किल्स आपको लगता है कि आपके अंदर डेवलप हुई हैम रेडियो की वजह से, क्या जीवन में ऐसा एक इम्पोर्टेंट बदलाव या एक कुछ सीखने को आपको मिला जो आपको लगता है कि हैम रेडियो नहीं होता तो बड़ा मुश्किल था?
0: ये मुझे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज मैंने मतलब ये किया है कि देखिए, आप आरजे है या आरजे के साथ काम करते हैं तो आपको पता है, रेडियो के सामने बैठकर जब हम बात करते हैं तो बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें एक है, जब आपका क्वेश्चन और इसका जो सेशन रहता है तब जो सामने वाला बात करता है तो उसका आपको पूरा ही सुनना पड़ता है। एग्जैक्टली यही हम हैम में सीखते हैं, दूसरे का सुनना, दूसरा जो बात करता है वो पहले सुनो, ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो, उसका जो बोल रहा है उसको भी महत्व दो, उसको जो भी कहना है उसका पूरा मौका दो कहने का, और बाद में आप आपका रिएक्शन उसके ऊपर दो, जो भी आपको आंसर करने का है या रिएक्ट होने का है वो सब उसी के ऊपर। तो हैम क्या करता है को हमें सुनने को सिखाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी। इसमें पेशेंस, जो पेशेंस है वो आपके डेवलप हो जाते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, कि जितना ज्यादा पेशेंस आप रखेंगे उतना ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट रहता है, अच्छा रहता है, और लोग आपको ज्यादातर उसके कारण ये करते, बात करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर हम हमारी बात करते रहेंगे तो दूसरा क्या कहना चाहता है, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है ये पता ही नहीं चलेंगे। तो ये मैं सब श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ, हैम रेडियो आप जरूर बनिए। हैम रेडियो बनना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज उसमें रहता है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको शेयर करता हूँ, देखिए पुराने जमाने के जो हैम थे उनके लिए कोई मीडिया नहीं था, उनके लिए ना गूगल था ना कुछ था। आजकल ये जो ऑनलाइन का जमाना है, इसमें गूगल में अगर आप हैम या अमेच्योर रेडियो सर्च करेंगे तो आपको ये एक्टिविटी के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इंडिया में हैम के एग्जाम कैसे देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, उसके आपके नियर बाय कौन से एग्जाम सेंटर है, उसकी फी कितनी है, फीस उसकी भरनी पड़ती है वो कितनी है, आपको एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, ये सब अवेलेबल है गूगल पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादातर यंग जनरेशन से, वैसे यंग जनरेशन और ये जरूरत नहीं है, 12 बरस से 90 बरस तक कोई भी आदमी हैम बन सकता है और हैम में अपना योगदान दे सकता है और ये एक हॉबी है। हम जो भी काम करते हैं, मैंने जो भी आपको बताया, ये जो हम काम करते हैं ये हॉबी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए कोई ना पैसा मिलता है ना हम पैसे के बारे में सोचते हैं। हमारा बेसिक फंडा ही यही है कि पैसा कमाना अपना उद्दिष्ट नहीं है, किसी से भी पैसा लेने का नहीं है। अगर हम हैम का कुछ भी करते हैं, ट्रांसमिशन, कुछ इंफॉर्मेशन देते, तो इसमें पैसा बिल्कुल लेने का नहीं, किसी से भी हम पैसा लेते नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है कि आप सिर्फ डिवोशनली काम करने का है, तो ये ध्यान में रखिए।

और इसी के अलावा एक स्पेशल आपके लिए लोगों में उत्कंठा रहती है कि हैम ऑपरेटर बोले तो आपको जरा ज्यादा ध्यान दिया जाता है आपकी तरफ। बस और क्या चाहिए, इतना काफी है। तो जरूर आप WPC के वेबसाइट पे जाइए, सब मालूमात कीजिए। ज्यादातर लोग हैम बनते रहिए और गवर्नमेंट को और अपने समाज को मदद कीजिए। देखिए आज हम मदद कर रहे हैं, वैसे आगे भी मदद करेंगे लोग। तो जो भी डिजास्टर में अटक जाता है वो कोई अपना रिश्तेदार या दोस्त भी हो सकता है, हमें क्या लेना देना, ये सोचना बंद कीजिए। और ये सोचिए वो मेरा कुछ है और कुछ नहीं तो भारतीय है इसी के कारण वो मेरा ही है। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सब आपके प्रश्न उधर ही मिट जाएंगे। तो आप जरूर ये हॉबी में आइए, हैम बन जाइए। उसमें कुछ ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे इन्वेंशन आप कर सकते हैं। ये सब सोचिए और जरूर हैम बनिए और दूसरों को भी इसके लिए इंस्पायर कीजिए कि जितना, क्योंकि देखिए आजकल हम हर रोज सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग और इसी के कारण ये हो गया, ढकपुटी हो गई, फिर ये साइक्लोन आ गया, फिर ये अर्थक्वेक हो गया, या ज्यादा रेनफॉल होने के कारण वाटर लॉगिंग हो गया। तो ये सब जिधर भी होता है उधर हैम कम्युनिटी हमेशा मदद करती है। तो ये सब हम कर सकते हैं, हमें चैलेंज है ये सब करने का। तो ये ध्यान में रखिए और ये दिन ब दिन बढ़ने वाला है, ऐसा सोचिए कि ये दिन ब दिन बढ़ने वाला है। अवेयरनेस हम कितना भी लाएंगे फिर भी अवेयरनेस के सिवा हमें इसमें ज्यादा महत्व इसका देना है कि अगर ये अपने यहाँ ऐसा कुछ डिजास्टर आ गया तो वी आर सपोज टू बी रेडी। तो उसके लिए तैयार रहना जरूरी है और तैयार तब हो जाएंगे जब आप हैम बन जाएंगे। तो मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और मैं ये मधुबन रेडियो को स्पेशली धन्यवाद दे

0: को इन्फॉर्मेशन देने का और मुझे भी एक मौका मिल गया बात करने का आप सब से, तो थैंक यू सो मच मधुबन रेडियो, सब जो भी सुनते हैं सबको मेरा प्रणाम, और डेफिनेटली आगे भी अगर आप कभी मौका देंगे तो मैं मेरा अदर हॉबीज के बारे में भी जरूर आपको इंटरव्यू दूंगा। थैंक यू सो मच राजेश जी।
1: जी जी, थैंक यू दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली आपने इतनी सारी शिक्षाएं और इतने सारे इंस्पिरेशन हम सबके साथ शेयर किया है। कहाँ आप YouTube भी चलाते हैं, हेम भी आपने किया है, सिंगिंग भी, नाटक भी, तो बहुत सारी कलाएं आपके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: ओए रुको रुको रुको, हाँ जी थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। हर दिन की तरफ आज भी हम आपके पास पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जब नाम सुनते हैं कितना खुशबू कितना आनंद महसूस होता है, क्योंकि जिस गाँव में हम पले बड़े अपने जीवन को सुंदर सरस बने उस गाँव का बारे में जब जानकारियाँ मिलता है तो क्यों नहीं, सभी को खुशी होना चाहिए और हो रहा है भी। तो आज का कार्यक्रम को सुंदर भाव सजाने के लिए जिन्होंने उपस्थित है सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और स्वागत भी करते हैं। और उन सभी को स्वागत करने का पहले हमारे सभी श्रोता मित्र ग्रामवासी और अंचलवासियों को भी स्वागत करते हैं सुनने और सुनाने के लिए। तो चलिए पहला प्रस्तुत हम सुनेंगे क्यारा गांव के आवाज, जो अपना लोकगीत जिसको गरेसिया भाषा में सभी लोग जानते हैं। तो अपना भाषा अपना अंचल का जो लोकगीत होता है उसमें चार चांद लगा देते हैं हमारा सभी भजन मंडली और प्रत्याभान संगीत प्रेमी। तो चलिए उन सभी को पुनः स्वागत करते हैं, लीजिए उन सभी से प्रस्तुति।

0: Mueca, uy, churubá.
1: Mueca, mueca, uy, churubá.

0: क्या खूब क्या खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आज आपका पास हम रख रहे हैं और इससे हमारा गांव का अंचल का कला और संस्कृति अपना भाषा में चार चांद लगता है और हमें बहुत खुशी महसूस होता है। इस तरह बढ़ चढ़कर जब ग्रामवासी मिलकर अपना प्रस्तुतियां देते हैं, जिस प्रस्तुति में अपना गांव का रीति रिवाज, अपना संस्कृति का जो गुहे बातें हैं उसमें रहता है और हमारा बच्चों को, नई पीढ़ी को एक प्रेरणा का मार्ग दर्शाता है, जिसका चलते हमेशा इस तरह कार्यक्रम हम करते रहते हैं। जब रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को सुना तो सभियों का पास पहुंचाए, सभियों को नाम का साथ धन्यवाद, आभार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, मधुबन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे, ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर और परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुक झुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है, जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

0: नमस्कार और राम राम। अल्प विराम का बाद पुनः ग्रामवासियों से मिल रहे हैं। अच्छा प्रस्तुतियां लेकर जब आए हैं तो हम चाहे सभी को सुनाएं, तो इसलिए मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में आप सबका पास सुना रहे हैं। तो आप भी इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और अपना गांव और अपना अंचल को इस तरह कार्यक्रम से सुंदर रूप में सजा कर एक सुदृढ़ समृद्ध बनाइए, जिसका चलते हमें एक भाईचारा प्रदान होगा और हम खुशी महसूस करें और अपना गांव हरा भरा हरियाली में भरपूर कर देंगे। इन शुभ भावना के साथ उन सभी को स्वागत करते हैं अगला प्रस्तुति सुनाने के लिए। तो सुनाइए।
1: Yeah.

0: Fire, fire.
1: Yeah.
2: Yeah.

0: क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर, तालियों का साथ, नाम का साथ, सभी को धन्यवाद, आभार इस तरह पुनित काम करने के लिए, अच्छा कार्यक्रम देने के लिए। और उस जब गांव और अंचल में हमारा बहनें, माताएं और भाइयों इस तरह प्रस्तुतियां देते हैं तो हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों को खुशी करा देते हैं, क्योंकि अपना अंचल का जो लोक गीत है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और खासकर हमारा नई पीढ़ी को एक उमंग उत्साह भर देता है और अपना भाषा और अपना संस्कृति को उजागर करने के लिए सभी तत्पर रहते हैं और एक प्रेरणा देते हैं। इसके लिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद, आभार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
1: माननीय प्रधानमंत्री।

श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं। जब गांव और अंचल में इस तरह प्रस्तुतियां देखने को सुनने को और अनुभव करने को मिलता है तो सोचे सभी का पास ये चीज होना चाहिए और अपना अंचल अपना गांव में अपना भाषा को चार चांद लगाना चाहिए। और इसमें जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं भाग लेते हैं तो हमारा गाँव एक आदर्श गोकुल गाँव का भाईचारा बनने में देर नहीं लगेगा। जिस तरह आज बारी बारी लोकगीत का जो प्रस्तुतियां आपके पास रख रहे हैं तो चले और कुछ प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगा। तो सभी को स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हुए इस तरह कार्यक्रम में आगे आने के लिए तो लीजिए उन सबका प्रस्तुति।
1: Oh, man, we're going to go. What?

Yeah.

Oh,

Yeah.

Get

Yeah.

0: Dragon Lord.
1: Thank you.

0: Nigeria, Vimo, Oferio.
1: Sorry, I'm late.

জিরা বিমনে বনে জিরা।

好。

बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरह कार्यक्रम में आप लोग तो चार चांद लगा दिया, अपना गांव अपना अंचल को खुशहाल करा दिया, और जिसमें हम सब आनंद विभोर होकर सामूहिक रूप में आनंद लिए हैं, ये कम बात नहीं। आप लोग का जो इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और सामूहिक रूप में अपना बात को अपना भाषा को सबका पास रखे हैं, इसीलिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद आभार। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। आप सुन रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, क्यारा का आवाज़।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सही में अपना गांव अपना अंचल में इस तरह प्रतिभाएं जब रहता है और उन सभी को जब मंच मिलता है वो मंच का माध्यम से अपना प्रतिभा को निखारते हैं, चार चांद लगाते हैं और मजबूत करते हैं और एक शक्तिशाली बनाते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। जिस तरह आपको बारी बारी सुनने को मिल रहा है अपना लोकगीत लोक संस्कृति अपना लोक भाषा में संगीत को, तो चलिए और कुछ संगीत को लेकर उपस्थित है, ये अंतिम प्रस्तुति होगा। तो सभी को पुनः स्वागत करते हैं नाम का साथ इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए। तो सुनाइए

好。

बहुत खूब सुंदर प्रस्तुतियां के लिए आप सभी को पुनः आभार प्रकट करते हैं और नमन करते हैं इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए, और अच्छा अच्छा प्रस्तुतियां दी हैं हमारे श्रोता मित्र ग्रामवासियों को। तो आज अपना लोकगीत लोक संस्कृति को सुनाएं, ये कम बात नहीं है। जब इस तरह झिझक दूर कर रेडियो में अपना प्रस्तुतियां देते हैं तो हमारा रेडियो प्रोग्राम एक प्रेरणादायक बन जाता है और हम सब इसको सुनने के लिए आतुर होकर रहते हैं, वेट करते हैं कब इस तरह प्रोग्राम मिलेगा जिस तरह आज आप लोग ने दिए हैं। ये आपका गांव का और आपने के लिए एक खुशी का बात है। तो चलिए सभी को नाम का साथ पुनः धन्यवाद देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: हम
1: मेरा नाम इंदु है, मैं ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरे और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। अब जिंदगी से प्यार ना हो तो भाई जिंदगी जीने का आनंद कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा। और ना जाने जिंदगी के ऊपर कितने गाने सुने हैं, कितने गाने बने हैं, लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं। और बड़ा मजा आता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए जिंदगी को तो नहीं लेकिन खुद को जानने की कोशिश करते हैं लव यू जिंदगी में। और आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, हमारे साथ वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको खुद से मिलाएंगे। आज हमारे साथ हैं कल्पना जी जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत लंबा अनुभव है उनका यूथ के साथ, बच्चों के साथ, बहुत लोगों को उन्होंने मदद की है जिंदगी से प्यार करने में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आरुषि जी।
2: नमस्कार। नमस्कार आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार आपके साथ जुड़कर।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों की आवाज सुनकर। और ये जानकर और खुशी हो रही है कि बड़ा ही टॉपिक इंटरेस्टिंग है आज का, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिव और फॉरगेट की बात करता है। खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना। कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों को माफ करना फिर भी आसान होता है, पर खुद को माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों को माफ करना भी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो ही जाता है वैसे। लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरी है माफ करना? और माफ करना कैसे होता है, मतलब कह दिया माफ कर दिया तो क्या सच में माफ कर दिया, या वो अंदर वो रह जाता है कुछ बाकी? तो जानेंगे ये सब। कल्पना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको कितना रेलिवेंट लगता है ये टॉपिक?
2: ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हमेशा से मेरा ये अभ्यास रहा है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पाती थी बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन जब मुझे थोड़ा समझ आई और मुझसे ऐसी कोई गलती हुई जिसके लिए मैं चाहती थी कि मुझे कोई माफ करे, और जब उनकी तरफ से मुझे माफी नहीं मिली, तो उस समय जो मुझे तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने ये सोचा कि आज से आगे से चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे सबको माफ करने की आदत डालनी है। और जिस दिन से मैंने ये ठान लिया, मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत बहुत सुंदर एक एहसास उत्पन्न हुआ, जिसको हम सुकून कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन कह सकते हैं, हल्कापन कह सकते हैं। वो एहसास मेरे में जागा, और जब मैंने माफ करना शुरू किया तब मैंने देखा कि मेरे पांव जमीन पर नहीं, मैं कहीं दूसरी दुनिया में, मतलब मैं इतना हल्का महसूस कर रही थी अपने आप में। उस दिन मैंने जाना कि माफ करना किसी और के लिए नहीं होता है, ये तो खुद को आजाद करने का, नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से ये आजाद करने का एक तरीका है। हम जितनी देर तक अलग अलग प्रकार से मिले हुए दर्द को पकड़ के रखते हैं, उतनी ही गहराई से वो दर्द हमें पकड़ के रखता है, और उसके कारण जो लाइटनेस है, इजीनेस है, हल्कापन है, क्रिएटिविटी है इवन, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है। सो माफ करना मेरी जिंदगी का बहुत अच्छी शिक्षा मेरे लिए मिली, जो कि मैंने अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको धारण कर लिया।
0: मतलब माफ करने से हम लाइट हो जाते हैं और हमारी क्रिएटिविटी पे भी असर पड़ता है, बहुत चीजों पे असर पड़ता है आपने बताया। श्री जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, इतना रेलिवेंट है आपके लिए टॉपिक, क्या आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है माफ करने से जुड़ा हुआ?
1: मैं शुरुआत ही एक शेर से करना चाहूंगा। रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे मगर वजह बताया कर, नाराज होना गलत नहीं तो खता बताया कर।
0: क्या बात।
1: कहने का भाव ये है कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम कभी किसी से माफी चाहते हैं, या कभी कभार हमें खुद ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे माफ करे या मैं किसी को माफ करूं, मगर बिना ये जाने कि वजह क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अगर हम किसी से खफा भी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उसके भी पीछे कोई वजह है। और अक्सर ये बात कही जाती है कि हम उन्हीं लोगों से नाराज होते हैं, उन्हीं लोगों से खफा होते जो अपने होते हैं। वरना सड़क चलते कोई टक्कर लग गई, किसी का हाथ लग गया, तो हम कहते हैं चलो जाने दो यार, गाँव कौन ये सब कुछ करेगा। मगर अपने ही लोगों से अगर कभी कभी कभार दुख होता है तो ऐसी सूरतों में हमें मुश्किलात ज्यादा लगने लगती हैं, पेन या हर्ट ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए जानना जरूरी है।
0: कहते हैं बहुत से लोग जहाँ प्यार होता है वही नाराजगी होती है, वही गुस्सा होता है, या वही उनसे ही मुश्किल होता है लेकिन माफ करना उन्हीं को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार होता है।
1: जी, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम वजह जाने, और पहली वजह ही ये है कि हम उनसे नाराज इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमने ये उम्मीद नहीं की थी, हमने ये सोचा था कि वो हमारे अपने हैं और उनसे हर्ट या उनसे किसी प्रकार की तकलीफ या उनसे इस प्रकार का व्यवहार मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक ऐसे क्वार्टर से जब मुझे वो पेन मिला या मुझे वो वैसा व्यवहार मिला तो हम नाराज हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे। और कभी कभार हमसे जब गलतियां होती हैं तो हमें भी लगता है कि हमें माफी मांगनी चाहिए, मगर वो नाराज इतने होते हैं तो लगता है कि माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे, कि माफी मांगेंगे तो ऐसा लगता है माफी मिलेगी नहीं, हमें और चार बातें खरी खरी सुनने को मिलेंगी, इसलिए भी हम संकोच करने लगते हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के पास ऐसी घटनाएं हैं, जीवन के ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर या हमने गलती की है या किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से या तो हम माफी के तलबगार हैं या हम खुद माफी मांगने के इंतजार में हैं, हम उस सही मौके की खोज में हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं समझना, कि हर इंसान गलतियां करता है, हर एक को माफी मांगने की और माफ करने की जरूरत है, और ये कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है।
0: लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि माफ खुद को करना ज्यादा आसान है या दूसरों को करना।
2: एक किस्सा याद आता है, एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और अपनी कहानी उसने सुनाई। उसने कहा मैं जब 2 साल का था, मेरा भाई 4 साल का था, तब हमारी मम्मी बिना किसी वजह के, बिना कुछ बताए हमें छोड़कर चली गई। सो वो अपनी कहानी बता रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं अब इस बच्चे को क्या जवाब दूं और कैसे इसका दर्द को समझूं। सो हम दोनों ने एक कोशिश की कि चलो हम ये पॉजिटिव सोचते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी मम्मी आपके घर आ जाएगी। सो हम दोनों ने ये मिलके सोचा और वो पॉजिटिव एनर्जी का असर देखिए कि उनकी मम्मी 6 महीने के भीतर घर आ गई। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बट उसको पता नहीं चल रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, उनको क्या बोले। वो माफ करने के लिए तैयार नहीं था मन से, उसके मन में बहुत सारी शिकायतें थी कि आप हमें क्यों छोड़ के गए, 2 साल से लेकर 15 साल तक का मेरा जीवन मैंने कैसे बिताया मुझे पता नहीं। और वो माफ नहीं कर पा रहा था, परंतु जब उसने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तब हमने कहा कि नहीं, अब सोचते हैं कि वो 2 साल से 15 साल का समय आया ही नहीं, और अभी अभी मतलब कि पुरानी सारी बातें भूल कर माफ करके दोनों एक दूसरे से गले लग जाएं और एक सेकंड में भूल जाएं। जब उसने ऐसा किया तब उसे महसूस हुआ कि माफ करना और भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। सो इस घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से कुछ न कुछ सीखते हैं और अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी माता पिता की गलती हो सकती है, कभी बच्चों की गलती हो सकती है, और दोनों जब एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ उम्र भर के लिए रहने के आदि हो जाते हैं। वो जो प्यार है, अपनापन है, सुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, वो हर रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। इसलिए वक्त रहते माफ करना और भूल जाने की आदत जल्दी हमें सीख लेनी चाहिए।
0: ये बहुत बहुत टफ सिचुएशन है, बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसमें वो बच्चे ने माफ कर दिया, मगर हम तो छोटी छोटी बात में भी कई बार माफ नहीं कर पाते और वेट करते कोई माफी मांगे तो मैं माफ करूं। बिना माफी मांगे माफ करने का भी मन नहीं करता कि भाई अपनी गलती रियलाइज तो करो, कम से कम बोलो तो सॉरी आके, फिर तो चलो मैं माफ कर दूं। पर सामने वाला भी बोल नहीं रहा होता, हम भी माफ कर नहीं रहे होते, तो दूसरों को माफ करने के लिए अपॉलॉजी इम्पोर्टेंट है बहुत, या फिर बिना उसके भी माफ किया जा सकता है?
1: मैं समझता हूँ बहुत बार ये चीज भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई सामने वाला माफी मांगे तब मैं माफी दूंगा, और इसके इंतजार में हम बहुत सारी गलत फहमियां पाल लेते हैं। हम इंतजार में रहते हैं कि मौका आने दो, उसके इंतजार में होते हैं। जैसे अभी कल्पना जी वो कहानी सुना रहे थे, बिल्कुल ये बात भी है कि हम सामने वाले को रियलाइज कराना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। और कभी कभार गलतियां, मुझे याद आता है मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना था दादी जानकी जी से, उन्होंने ये कहा था कि गलती, भूल, गुनाह, खता, ये कितने सारे अलग अलग लफ्ज हैं, और इसके एवजे में जो चीजें माफी देने वाली चीजें हैं उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, मर्सी। अगर आप इन शब्दों को देखते ही चले जाएंगे फॉरगिवनेस के लिए जो शब्द बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि कितनी गहरी बातें हैं ये। खैर, मैं उस गहराई में न जाते हुए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मोटी भूलों को हम भी भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, शायद हम उसे दिल पे भी नहीं रखते। उससे भी थोड़ी बड़ी अगर गलतियां होती हैं, भूल नहीं है, कोई गलती हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि चलो गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, ये भी कह देते हैं। फिर कभी कभार इसके बाद जो आप अभी बात कर रहे हैं कि हम इस उम्मीद में है कि वो हमसे माफी मांगे तब माफी दी जाएगी, और ये अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो छोटे बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जितने छोटे होंगे बच्चे उतना उनकी गलतियों को और ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब बच्चे गिर भी जाते हैं या कहीं उनको भी चोट लगती है तो उनको ये बताया जाता है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हालांकि उस बच्चे की गलती की वजह से कोई चीज टूटी हो सकती है या उसे चोट लगी हो सकती है। तो ये चीजें करते हैं, हम सबको माफ करना सिखाया गया, हम सीखते आए हैं, मगर जैसे जैसे हम बढ़ती उम्र के साथ ये एक उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं कि हम अपने लोगों से, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारे अपने स्वजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने परिवार के नजदीकी लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि तुमसे तो ये गलती अपेक्षित नहीं थी, तो इसलिए हम उन्हें उस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उनको उस गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि देखो भाई तुमसे गलती हुई है, और जब वो माफी मांगे तब हम माफी देना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज को पाल के रखते हैं और वो भी एक बोझ की तरह बन जाता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले ये कल्टिवेट करना, ये एक अभ्यास डाल लेना चाहिए कि कोई माफी मांगे या ना मांगे, मैं माफ करने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर मुझे समझ में आया है कि गलती हुई है तो उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि एक बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये, डू नॉट आस्क हु मेड द मिस्टेक, आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग। ये मत पूछो कि ये गलती किसने की, ये पूछो कि क्या गलती हुई है, ताकि उसे सुधारा जा सके। अगर हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि इसने गलती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए या इसे माफी मांगने की जरूरत है, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें बहुत वक्त जाया हो जाता है। और इसीलिए ये बात शायरों ने बहुत खूबसूरती से कही है। मुजफ्फर रजमी का यह शेर बहुत ही मशहूर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अक्सर यही चीज होती है कि वो लम्हे होते हैं जहां पर गलतियां होती हैं, वो खता एक लम्हे भर की होती है, कोई चूक हो जाती, कोई भूल हो जाती है, ना चाहते हुए भी कभी कभार चाह के, और बहुत बार ना चाहते हुए भी वो गलतियां हो जाती हैं। अगर आप उस घड़ी उसको माफ नहीं करते, तुरंत तुरंत माफ नहीं करते, तो फिर वो जो लम्हों की खता है उसकी सजा सदियां पाती हैं, और लंबे समय तक वो फॉरगिव न करने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सफर करते हुए आए हैं, उनको मुश्किलों का सामना करते आना पड़ा है, किसी और की गलती के लिए आज की पीढ़ियां तक उसकी भरपाई कर रही होती हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जैसे गलती हुई तब माफ करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को माफ करने की जरूरत है, इसलिए ताकि मेरे ऊपर वो बोझ ना हो, इसलिए पे करना आवश्यक है।
0: कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे माफ करना जरूरी है ये हम समझ गए, कोई हमसे माफी मांगे या ना मांगे, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं अपने लिए जरूरी है, मगर अब करूं कैसे? क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हुआ है, किसी ने गलती करी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये वो करेंगे, उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, बहुत विश्वास किया था, अब वो विश्वास भी डोल रहा है और बहुत सारी यादें भी है पुरानी की, लग रहा है अरे ऐसा बोला, वो भी बार बार चल रहा है मन में, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो माफ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तो क्या हुँ?
2: जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ, जब भी मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मैं खुद के पास लौट आती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब कोई व्यक्ति खता करता है, गलती करता है और माफी भी नहीं मांगता, तब ऐसे लगता है कि शायद इनको रियलाइज नहीं हुआ है, या इनका मुख सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं है, या इनका माइंड वो सॉरी शब्द कह नहीं पाता है। इसमें कई सारी भी चीजें बैकग्राउंड में काम करती है, ईगो रहता है, बॉडी कॉन्शियस है, मतलब अपने बारे में वो आदत ही नहीं है माफी मांगने की। पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में ऐसा कई बार होता है, तब मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले तो मैं माफी मांगना शुरू कर देती हूँ, मतलब उनसे नहीं जिनसे गलती हुई है, परंतु मैंने ये देखा है कि जब आप सॉरी

0: या फिर लेट आने पर सॉरी कहे तो वो कह नहीं पाए थे, क्योंकि उनको वो गलती या वो कुछ गलत है ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो जब मैंने अपनी ये छोटी सी भूल नहीं कहेंगे, गलती नहीं कहेंगे, लेकिन एक लेट आने की बात को सॉरी कहा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अरे उनको तो कितनी बार कहना चाहिए था। देन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं कई बार लेट आया, लेकिन आपने बहुत पेशेंटली उस चीज को हैंडल किया। सो ये एक छोटी सी बात है। सो हम कुछ करके सिखाते हैं तो वो सामने वाले को इजी लगता है कि अगर वो सॉरी कह सकते तो हम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सॉरी कहने के लिए पहला कदम हमें उठाना चाहिए।
1: थी आपने जैसे अपनी बात करी आपने कि मैं कैसे करती हूँ, या एक ये तरीका आपने डेवलप किया जो हम लव यू जिंदगी, जो हमारा टाइटल है प्रोग्राम का, अगर हम जिंदगी से थोड़ा सा प्यार और बढ़ाना चाहें, और उसमें जरूरी है कि बोझ को कम किया जाए, वरना बोझ के साथ प्यार करना जरा मुश्किल होता है, तो हम क्या तरीका डेवलप करें और आज क्या शुरुआत करें, या कोई ऐसी चीजें हैं जो नो लिख के रख ले अपने पास या याद कर ले कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अब कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे।
0: बिल्कुल। सो हम अपने आप को सिखा सकते हैं माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये मेरी ताकत है। अगर मैं किसी को माफ कर पाता हूं और कह पाता हूं कि मैंने गलती की और मुझे माफ कीजिए, तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण मेरे दिल पर जो बोझ हमेशा के लिए बना रहेगा, अगर कोई व्यक्ति रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को, तो उसको बोझ महसूस होगा। एंड एक छोटे से सॉरी कहने से, तो आज से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी मिलकर कि ऐसा नहीं कि हर बार सॉरी सॉरी ही कहे, कुछ और तरीके भी होते हैं सॉरी कहने के, या सामने वाले को बताने के कि मैंने फील किया, मैंने रियलाइज किया। सो कई बार लोग बार बार सॉरी सॉरी सॉरी कहते हैं, तो वो भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। तो क्या तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को ये रियलाइज भी करवाए कि हमने सॉरी फील किया है, तो जाकर उनसे बात करना, नॉर्मल वे में बात करना, उनके साथ मुस्कुराना, उनके किसी काम में उनको मदद करना, उनका रिस्पेक्ट रखना। सॉरी कहने के अलावा भी हम उनके पास जाकर उनके दिल की बात सुनने का प्रयास कर सकते हैं, और हल्के से कभी कह सकते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता चला, रियलाइज हुआ। तो एक नहीं कई अनेक तरीके हैं कि हम अपने महसूस कराएं सामने वाले को कि हमने सॉरी फील किया है।
1: जेन्युइनली फील करें और फिर वो महसूस करवाएं। ओके ग्रेट। श्री जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अगर माफ करना हो किसी को, मान लीजिए कैसे, क्या थॉट्स मैं क्रिएट करूं या क्या मैं सोचूं जो मैं माफ कर पाऊं।
2: जब माफी की बात कही जाती है तो ये समझना जरूरी है कि माफ करने के तरीके, जैसे कल्पना जी कह रहे थे, बहुत सारे हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं, और मुझे जैसे कल्पना जी कह रही थी, मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आए जो घड़ी घड़ी सॉरी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि हर चीज के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, और कभी कभार उनका सॉरी कहने का अंदाज इतना कैजुअल हो जाता है कि उनकी सॉरी का कोई मतलब नहीं हो। सॉरी लग गया तो क्या हुआ, वो मतलब बिल्कुल है, हमने सॉरी तो कह दिया, ऐसा वो बात होता है। वो चीज एक हार्टफेल्ट चीज नहीं लगती, एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं है उसमें, वो चीज समझ में आता है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर माफी देने या माफी मांगने के तरीके में जो दिल की गहराई है वो बहुत जरूरी है, ये समझ में आता है कि जब तक मैं उस चीज को महसूस करते हुए नहीं कह रहा हूँ तो शायद सामने वाले तक वो चीज टच भी नहीं होती, वो उनके दिल तक भी जाती नहीं है। इसलिए माफी, आजकल हम ये कहते हैं कि हम देखते हैं हवाई जहाज में, अगर आप यात्रा करते होंगे तो वहां पर गगन सखिया होते हैं या फ्लाइट का क्रू होता है, और वो लोग आप अंदर जाते ही आपको मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं। कई सारे होटल्स पे भी लोग स्माइल करते हुए आपको वेलकम करते हैं रिसेप्शन पर, और आपको लगता है कि आह कितना अच्छे लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतने सारे लोग, 200 पैसेंजर अंदर चढ़े हवाई जहाज में और 200 के लिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि मुस्कुराहट एक्चुअल मुस्कुराहट नहीं है, ये प्लास्टिक स्माइल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उनको प्रोफेशन में जरूरी है करने के लिए इसलिए वो कर रहे हैं, मगर अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, वो एक रूखा स्माइल होता है। तो ऐसे ही सॉरी कहने के लिए भी, ओ सॉरी ये कर देना सही नहीं है, एक्चुअल में जब वो चीज अंदर से महसूस

0: करते हुए, सॉरी मेरे से गलती हुई है, अगर वो विचार मन के अंदर आते हैं तब जो शब्द मुंह से निकलते हैं तब वो भावनाएं सामने तक पहुंचती है और सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ इनको इस बात का एहसास है कि उनसे कोई गलती हुई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मन में वो अपोलॉजी उत्पन्न होना पहले आवश्यक है, इससे पहले कि मैं शब्दों में सॉरी कहने को एक आदत मात्र बना लूं, मन के अंदर से वो चीज निकलना बहुत आवश्यक है। और एज अ कल्चर अगर आप देखेंगे तो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में हमारे पास क्षमा प्रार्थनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति रात को सोने से पहले एक कल्चर रहा है कि लोग सोने से पहले क्षमा मांगते हैं। ये कहते हैं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे महादेव शंभु। ये प्रार्थना है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, सोचकर या न सोचकर या जाने अनजाने की भी गलतियां हुई हो तो उन सभी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उस घड़ी गलती हुई और उसी घड़ी मुझे रियलाइजेशन हो जाए और मैं माफी मांगू। कभी कभार उस घड़ी रियलाइजेशन नहीं होता, देर से होता है, पर तब तक वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आगे चला गया है। तो उस समय पर भी माफी मांगना, उस व्यक्ति के इन एब्सेंशिया आप माफी मांग रहे हैं कि वो व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके मन के अंदर वो क्षमा प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप मन से उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई भगवान, उनको मैंने जाने अनजाने तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो ये जो मन से उठने वाली बात है वो बहुत आवश्यक है। शब्दों में सिर्फ कह देने से शायद वो काम नहीं होगी। और माफी मांगने के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, एक पुराना जमाना तो नहीं कहूंगा, मगर लोग बहुत थॉटफुली अपोलॉजी के लेटर्स लिखा करते थे,
1: राइट।
0: लोग सॉरी के कार्ड्स भेजते थे कि जब उनसे गलतियां होती थी तो सॉरी के लिए भी ग्रीटिंग कार्ड होता था। आप सोचिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड आज लोग हैरान होंगे ये सोच। और ये जो शेर और शायरियां मैंने कुछ एक के सामने प्रस्तुत किया, ऐसी कितनी चीजें हैं जो कवियों ने लिखी है और उनकी जुबान से हम अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करते हैं।
1: और सच में माफी मांगना जब दिल से होता है तो वो बात पहुंचती भी है। वो कैजुअली सॉरी बोल दिया और फिर हमने सोचा अरे हो गया सॉरी। अब बहुत सारी और भी बातें हैं, दूसरों को माफ करने के बारे में तो हमने बात करी है, खुद को माफ करने के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। अभी फिलहाल जैसा आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया, दूसरों को माफ करना और माफी मांगना दोनों का तरीका, क्या हम कुछ 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं जो अभी तक हमारे जीवन में न जाने कितने किस्से हुए होंगे, हमारे अंतर्मन में, हमारे सबकॉन्शियस में फिट होंगे, वो हमें आज भी कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो गलती याद आती है, वो व्यक्ति से मिलने से पहले ही कई बार उससे मिलना होता है तब भी याद आता है वो पहले वाला इंसिडेंट, उसको लेट गो कर सके, अपनी स्लेट को क्लीन कर सके, क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन हम कर सकते हैं कि वो भार को, जो बोझ लिए हम चल रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर सके आज?
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है उस भार को उतारना, खत्म करना। कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा सा अपने भीतर की ओर चले जाए, बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को बटोर कर अपने भीतर की दुनिया में। एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल शांति है, सुकून का एहसास है, उस जगह पर जाएं और कुछ बातों को अपने आप को याद दिलाएं। क्षमा और छोड़ना, क्षमा करना और भूल जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ये मेरी ताकत है। रिपीट करें इस बात को अपने मन में और उस शक्ति को महसूस करें, याद दिलाएं अपने आप को, मैं अपने दिल से सारी कड़वाहट को रिहा कर रही हूं, आजाद कर रही हूं, मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में सुकून और शांति की अधिकारी हूं। दोहराए अपने मन में, मैं दूसरों को माफ करती हूं क्योंकि मैं सुकून और शांति की अधिकारी हूं। गहरी लंबी सांस लेते हुए महसूस करें अपने भीतर के भावों को, दिल में जो सुकून का एहसास हो रहा है क्योंकि मैंने बोझ को रिहा कर दिया, मैं आजाद हूं। याद दिलाए अपने आप को, मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं और उससे मुक्त हो रही। अतीत में मेरे से या किसी और से कोई खता हुई, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ती हूं, खुद को आजाद करती हूं। और लास्ट, मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। मेरे दिल में अब सिर्फ हल्कापन और सुकून है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत ही सुंदर, बहुत पीसफुल महसूस था हुई ये करते वक्त। और मुझे लगता है ये हम रोज करेंगे तो हमारे जो बोझ हैं, जो हम दूसरों को माफ नहीं कर पाए हैं, खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर बहुत बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि ये तो हम समझ गए हैं कि माफ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है दूसरों को माफ कर देना, तभी हम जिंदगी बेहतर जी पाएंगे। तो चलिए इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये इजाजत लेना नहीं है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव नोट पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं ताकि आपकी आपकी जिंदगी से और बेहतर मुलाकात हो पाए और प्यार थोड़ा बढ़ जाए और आप दिल से कह पाए लव यू जिंदगी। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया इजाजत लेने का। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और थोड़ा सा और जिंदगी से प्यार करना सिखाने के लिए।
2: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू
1: दोस्तों, लेते हैं इजाजत, मुलाकात होगी लव जिंदगी के अगले एपिसोड में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: ने भारत को मान दिया, जननी माँ को अभिमान दिया, राजे राजवारों से मिलकर पूरे भारत को बनाया अनुपम, जिसने खंडित भारत भूमि का नक्शा नया सवारा था। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सच्चा सरदार हमारा था, सच्चा सरदार हमारा था। दोस्तों, इतिहास किताबों में तारीखें लिखता है, लेकिन राष्ट्र उन्हें याद रखता है जो दृढ़ इरादों को अपना ढाल बना लेते हैं। आज हम उस व्यक्ति की कथा सुनेंगे जिन्होंने बोला कम, अडिग रहे, झुके नहीं और ना ही देश को झुकने दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला बच्चा बना देश का सरदार और किया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के सपने को साकार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो चलिए सुनते हैं आज गीत बन्नों को कहां लेकर गई है। अरे, ये तो कोई गांव लग रहा है। यहाँ कई किसान इकट्ठा हैं और किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे युवा वल्लभ भाई पटेल भी उनके बीच उपस्थित हैं। लगता है जैसे वकालत कर अभी अभी वापस आए हों। चलिए सुनते हैं गीत और बन्नो वहाँ खड़े होकर क्या बात कर रही हैं।
1: गीत, सब लोग गांधी जी की बात करते हैं, पर ये सरदार पटेल कौन थे? आप मुझे यहाँ लेकर तो आई हो सरदार जी की कहानी सुनाने और दिखाने, मगर वो थे कौन? क्यों उन्हें सरदार कहा जाता था? वो तो पगड़ी भी नहीं पहनते थे।
2: बन्नो, अगर गांधी जी भारत की आत्मा थे तो सरदार जी थे लौह पुरुष।
1: गीत, क्या सरदार जी बचपन से ही इतने सख्त थे? देखो ना, कितने खामोश से दिख रहे हैं, चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी नहीं।
2: नहीं बन्नो, वो सख्त नहीं थे, वो मजबूत थे, अपनी बात कहने का साहस रखते थे। बचपन से ही ये गुण उनमें कूट कूट कर भरा था। जैसे जैसे बड़े हुए, वो एक स्वाभिमानी और निडर नेता के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: नाडियाद की धरती पर एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे वल्लभ भाई। पिता किसान और माँ गृहिणी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरेंगे, जो अपने नेतृत्व कौशल से न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले वल्लभ भाई पटेल ने एक कामयाब वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी वकालत अच्छी चल रही थी जब वो गांधी जी के संपर्क में आए। तत्पश्चात बापू के चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने पटेल के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी।
1: गीत, ये बताइए, खेड़ा जिले के इस गांव में किसानों का आंदोलन क्यों चल रहा है और पटेल जी यहाँ क्या कर रहे हैं?
2: थोड़ा धीरज धरो, बताती हूँ। ये साल 1918 की बात है। पटेल खेड़ा जिले में प्लेग बीमारी और अकाल को लेकर राहत कार्य चला रहे थे। तभी खबर मिलती है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किसानों की कर छूट की याचिका को ठुकरा दिया है। गांधी जी चंपारण में व्यस्त थे तो उन्होंने वल्लभ भाई को खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। पटेल ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।
3: अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ चुप रहना किसी अपराध से कम नहीं है। कानून का काम है सही गलत का फैसला करना, पर देश के लिए भी हमारा कुछ फर्ज है। हमें अपनी एकता कायम रखनी है और अहिंसक तरीके से अपनी मांग रखनी है।
0: वल्लभ भाई के इस उद्बोधन के बाद खेड़ा जिले के गांव में जमा किसानों की भीड़ में कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई। किसान उलझन में थे कि क्या करें जिससे उनकी समस्या का निदान हो।
4: वल्लभ भाई तुम्हें सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेज जो लगान बढ़ा रहे हैं उसे कितना उचित कहेंगे आप? खेती आपड़ी, फसल आपड़ी, और फायदा वो ले जाए।
0: तब पटेल उत्तर देते हैं,
3: डरे नहीं, अहिंसा की शक्ति पर विश्वास रखे। एकजुट रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
2: बन्नो, यही वो पल था जब वल्लभ भाई पटेल केवल एक वकील नहीं रहे बल्कि किसानों की आवाज बन गए।
0: गीत और बन्नो की बातें चल ही रही थी तभी अचानक दूर से अंग्रेजों के दो सिपाही भीड़ की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। वो एक एक कर आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेते जा रहे थे, लेकिन पटेल को हाथ नहीं लगा सके, उन्हें चेतावनी ही दे पाए। आगे सुनेंगे कि कैसे यही वल्लभ भाई पटेल बने किसानों के सरदार और राष्ट्र की रीढ़। ये था सरदार, मिट्टी से बना लौह संकल्प, भारत माता के लिए उनका प्रेम।
5: मिस्टर पटेल, ओबे द क्राउन, ये हुकूमत है।
3: हुकूमत डर से चलती है और देश विश्वास से। हम डरने वाले नहीं।
0: खेड़ा आंदोलन के बीच जब पटेल गांधी जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो वो अपने चरखे पर काम कर रहे थे। उन्होंने पटेल जी से पूरी घटना सुनी, फिर बड़े ही धैर्य से बोले,
6: वल्लभ भाई, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है जो सत्य की मशाल को थामे रहें, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। वल्लभ भाई, सत्य और अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि इससे साहस बढ़ता है।
3: बापू, मैं लड़ना जानता हूं पर देश के लिए खुद को पीछे रखना भी सीख लूंगा। अगर यही साहस देश को आजाद कर सकता है तो मैं कांग्रेस के साथ हूं बापू।
6: वल्लभ भाई, खेड़ा के किसान टूट चुके हैं, अकाल है, फसल नहीं, और फिर भी लगान की मांग।
3: बापू, अगर किसान झुकते हैं तो अन्याय जीत जाएगा, और अगर हम साथ खड़े रहे तो इतिहास बदलेगा।
0: वल्लभ भाई की बातें सुनकर बन्नो ने गीत से पूछा,
1: दीदी, ये वही खेड़ा सत्याग्रह है?
2: हाँ बन्नो, खेड़ा सत्याग्रह केवल आंदोलन नहीं था, ये पहली बार था जब किसानों ने डर के सामने सिर नहीं झुकाया।
0: गांधी जी से भेंट करने के बाद पटेल पहुंचे किसानों के पास ताकि उनकी मनस्थिति को समझ सके, उनके मन से अंग्रेजों का डर मिटा सके।
7: वल्लभ भाई, घर में अनाज नहीं है, अने सरकार लगान मांग रही है।
3: लगान हम नहीं देंगे, जेले भर जाएंगी पर आत्मसम्मान नहीं टूटेगा।
8: नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
0: वल्लभ भाई झुके नहीं, ना लालच से ना लाठी से। उन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और एक वर्ष के लिए कर वसूली को निलंबित कर दिया गया। यह वल्लभ भाई की पहली जीत थी। इस घटना के बाद वो ना सिर्फ गांधी जी के और समीप आए बल्कि उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। वो एक नायक बनकर उभरे। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का विचार समाहित था और रणनीति थी पटेल की। यही कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार पीछे हटना पड़ा।
1: दीदी, तभी गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को इतना मानते थे?
2: हाँ बन्नो, गांधी जी कहते थे, जहां मुझे कठोर निर्णय लेना होता है वहां मैं वल्लभ भाई को देखता हूँ।
0: वल्लभ भाई पटेल वैसे तो साल 1917 से किसानों से जुड़े मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत थे। खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात वो बापू द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और यहीं से वो स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग बन गए। ऐसे रमे कि सर्वस्व त्याग, खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन को भावनात्मक अपील गांधी जी ने की, पर उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरदार जी ने संभाली। इस आंदोलन के दौरान लोग सरकारी स्थानों, चीजों और नौकरियों का भी त्याग कर रहे थे, मगर कुछ लोग इतने बड़े फैसले को लेने से घबरा रहे थे।
9: सरदार, सरकारी स्कूल छोड़ने को लोग तैयार है, पर डरते हैं, रोजगार का होगा क्या?
10: डर स्वाभाविक है, इसीलिए असहयोग अराजकता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विद्यालय बनेंगे, स्वदेशी उद्योग खड़े होंगे, आज की कुर्बानी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेगी।
2: बन्नो, सरदार का नेतृत्व भाषणों में नहीं, योजना में बोलता था।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: आगे सुनो।
0: आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी के सचिव सरदार पटेल के पास एक समस्या लेकर आते हैं।
11: सरदार, हजारों लोग गिरफ्तारी को तैयार हैं, लेकिन सूची, व्यवस्था, जिम्मेदारी?
10: हर गिरफ्तारी दर्ज होगी, परिवारों की मदद होगी, आंदोलन भावुक हो सकता है पर अराजक नहीं।
0: असहयोग आंदोलन में जहां एक ओर त्याग था, वहीं दूसरी ओर सरदार पटेल की लोहे जैसी व्यवस्था थी। यही कारण था कि जब आंदोलन रुका तो वो टूटा नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हाथों में थी।
1: दीदी, तो सरदार जी सिर्फ लड़ते नहीं थे, सबको संभालते भी थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास को संभालते हैं। सरदार वही करते थे।
0: इसके बाद पूरे आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल लोगों की हिम्मत बने, उनके अंदर जोश भरते रहे।
10: अगर जेल जाना पड़े तो याद रखना, हर कैद आजादी की नींव है।
1: दीदी, क्या आजादी ऐसे ही आएगी?
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग अपने सुख को कुर्बान करके देश का भविष्य बनाते हैं।
0: असहयोग आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 3 महीने की सजा हुई और साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल की उन दीवारों के भीतर वल्लभ भाई पटेल केवल कैदी नहीं थे, वो सोच रहे थे कि आंदोलन के बाद देश को किस तरह संभालना होगा।
1: दीदी, अगर सब जेल में होंगे तो देश कैसे चलेगा?
2: यही तो सरदार जी की सोच थी बन्नो। देश केवल जोश से नहीं चलता, व्यवस्था से चलता है।
0: कैद के उन दिनों में सरदार का मन भविष्य की योजनाएं गढ़ रहा था। अनुशासन, नियम, जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होगी, इनको लेकर ही सारे विचार चल रहे थे। वो जानते थे कि आज अगर संगठन टूटा तो कल राष्ट्र टूट जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगे,
10: क्रांति अगर बेकाबू हो जाए तो उसका लाभ शत्रु उठाता है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे की दिशा तय करेगी।
1: दीदी, तो सरदार जी हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा एवं सत्याग्रह पर पूर्ण विश्वास रखते थे।
2: हाँ बन्नो, कुछ लोग तलवार उठाते हैं और कुछ मयान बनाते हैं। सरदार मयान थे, जो तलवार को सही समय पर चलने देते थे।
8: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: समय बीता और देखते देखते साल 1928 के 4 फरवरी का दिन आया। वल्लभ भाई पटेल को एक नई जिम्मेदारी मिली, उन्हें बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करना था, जो बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध संघर्षरत थे। सर्वप्रथम सरकार को पत्र लिखा गया, लेकिन कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने पर पटेल ने किसानों को संगठित किया तथा उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से एक दैनिक पत्रिका निकाली गई। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। किसानों का आंदोलन चल रहा था और वो कड़ी धूप में अपनी मांग पर डटे हुए थे।
4: हमें भूखे मरी रहा है सरदार, अने ये जालिम कहते हैं लगान दो के पची जमीन छोड़ दो।
10: जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों की है, कोई अंग्रेज तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल नहीं कर सकता। यह हमारा अंतिम संघर्ष है, हम लगान नहीं देंगे, एक पैसा नहीं।
5: डिसोबीडियंस, सेडिशियस बिहेवियर, तुम सबको जेल भेजा जाएगा।
10: जेल हमारी आजादी की पहली सीढ़ी होगी, डरना मत। जब किसान खड़ा होता है तो कोई हुकूमत उसे झुका नहीं सकती।
8: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
12: सरदार पटेल
8: जिंदाबाद,
12: सरदार पटेल
8: जिंदाबाद,
12: सरदार पटेल
8: जिंदाबाद।
0: बारदोली आंदोलन की एक और विशेषता रही कि इसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदोली के लोग पटेल के नेतृत्व से बेहद प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध घोषित किया गया। सरकार को लगान घटाना पड़ा। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने सफलता पर कहा, बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है।
8: सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार सरदार मातरम,
12: वंदे
8: मातरम,
12: वंदे
8: मातरम।
0: साल 1931 में जब गांधी जी डांडी मार्च पर निकले तो सरदार पटेल को राजगांव में गिरफ्तार कर लिया गया। वो महीनों जेल में रहे, पर उनके साहस के किस्से हर गली हर गांव में गूंजते रहे। वो आंदोलन के सेनापति थे और राष्ट्र के शिल्पकार भी। उनकी और बापू की गिरफ्तारी के बाद देश में नमक सत्याग्रह और तेज हो गया। जब दोनों रिहा हुए तो देश एक नई दहलीज पर खड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल भावनाओं से नहीं, व्यवस्थित होकर अनुशासन से आगे बढ़ना चाहता था। इसी मोड़ पर कराची के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। अधिवेशन से ही गांधी इरविन समझौते का ऐलान किया गया। न्यूनतम मजदूरी, अस्पृश्यता एवं दास प्रथा के उन्मूलन के साथ एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की वकालत की गई। सरदार का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि कांग्रेस हर मुश्किल दौर से निकलती गई। बारदोली सत्याग्रह से लेकर आजादी के बाद राज्यों के एकीकरण तक उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उनकी सूझबूझ और संगठनात्मक क्षमता ने ही स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस दिशा दी। कोई भी समस्या हो, पार्टी के कार्यकर्ता उनके ही पास जाते थे।
11: सरदार साहब, संगठन बिखरा हुआ है, कार्यकर्ता जोश में हैं, पर दिशा साफ नहीं।
10: तो पार्टी को जोड़ेंगे, चुनाव, चंदा, अनुशासन भी लाएंगे। कांग्रेस केवल आंदोलन नहीं, एक मजबूत संस्था बनेगी। कांग्रेस को अब नारे नहीं, संगठित ढांचे की आवश्यकता है।
0: यह सुनकर एक दूसरे कार्यकर्ता ने कहा,
13: लेकिन सरदार, इतने बड़े जन आंदोलन को काबू में कैसे लाएंगे?
8: वंदे,
14: वंदे मातरम,
8: वंदे
14: मातरम।
0: सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना कांग्रेस में केवल पद परिवर्तन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। पटेल ने पार्टी को एक कुशल राजनीतिक मशीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों को कांग्रेस की मुख्य नीति बनाया, यूं कहें कि पार्टी को सत्ता के लिए तैयार किया।
1: दीदी, लोग उन्हें आयरन मैन क्यों कहने लगे?
2: क्योंकि बन्नो, वो भावनाओं में नहीं बहते थे, परिस्थितियों को संभालते थे। उनका दिल नरम था पर निर्णय लोहे जैसे।
0: एक ओर वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस संगठन और किसानों को उनका अधिकार दिलाने में जुटे हुए थे, तभी लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। ये साल 1932 का समय था। देश में दोबारा से संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी एवं पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को यरवदा जेल में डाला गया। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, उनकी परछाई नहीं। यानी दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद था, लेकिन जेल में दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच स्नेह एवं विश्वास का एक नया संबंध कायम हुआ। खेड़ा हो, बारदोली, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब में एक बात समान रही, वो था सरदार पटेल का अनुशासन। उन्होंने नारा जितना ऊंचा दिया, जिम्मेदारी उतनी ही गहराई से निभाई। जब कोई आंदोलन जनजीवन को हर क्षण उद्वेलित करने लगे, तो उसे नेतृत्व नहीं विश्वास चाहिए होता है। गांधी जी के उस विश्वास का नाम था वल्लभ भाई पटेल। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था,
6: एक देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
2: बन्नो, बापू के इन शब्दों ने भारत की जनता पर जादू सा असर डाला। वे नए जोश, साहस, संकल्प, नई आस्था, निश्चय एवं विश्वास के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े।
1: अच्छा दीदी,
0: भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के समय सरदार पटेल ने भी अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओजस्वी भाषण दिया था।
15: ब्रिटिश हुकूमत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बंदी बना ले तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को खुद को कार्यकर्ता समझना होगा, उसी प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, प्राण की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करना होगा, तभी स्वाधीनता स्वयं हमारा दरवाजा खटखटाने लगेगी।
0: भारत छोड़ो आंदोलन मूल रूप से एक जन आंदोलन था, जिसमें देश के हर जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई, अपने कॉलेज छोड़ दिए, जेल का रास्ता अपनाने लगे। सरदार पटेल ने अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर देश भर की यात्रा की और आंदोलन के प्रति नागरिकों में नया जोश भरा। आगे के भाग में हम सुनेंगे कि कैसे सरदार ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक बना दिया और कहलाए लौह पुरुष। आप सुन रहे थे एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कहानी और दिलचस्प मोड पर आने वाली है।
16: वक्त

मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर खर्राटे आते हो तो बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप खर्राटों पर कंट्रोल कर सकते हैं। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, अगर आप कोई सिखाने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं सिखाने के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिखाएंगे। क्या सिखाने वाली हूँ वो अभी नहीं बताऊंगी, आप सुनिएगा कार्यक्रम, आशियाना जान जाएंगे। पर हाँ, हिंट दे देती हूँ, चटपटी रेसिपी है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसको आप अधिक से अधिक दो बार और कम से कम एक बार बोल के सुनाएंगे। तो ये सब कुछ सुनेंगे आज के कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। राजा शिवी की धर्मपरायणता, उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक में भी पहुंच गई थी। इंद्र और अग्निदेव शिवी की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिवी के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और इंद्रदेव बाज। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत पर दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अभी आपका शरणागत हूँ, मेरी कृपया रक्षा करें। शिवी ने कबूतर को निश्चिंत रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया, तभी वहां पर एक बाज आ पहुंचा और शिवी से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, ये कबूतर मेरा आहार है, मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था, मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं, आप मुझे मेरा आहार वापस कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, ये तुम्हारा आहार रहा होगा किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ, विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने की व्यवस्था दी है, अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा। जो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर से देवों की कृपा समाप्त हो जाती है, उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है, आप ये पाप न करें। राजा शिवी ने कहा, तुम्हारी बातें सत्य है किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है, इसके बदले मैं तुम्हें अन्य मांस का प्रबंध करा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय है, मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ, इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज की तर्कपूर्ण बातों से राजा शिवी निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं किंतु प्रजा कल्याण में प्रयोग का अधिकार है, कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही रास्ता बताने का अनुरोध किया। बाज ने कहा, आप राजा है, मैं प्रजा, प्रजा का संतोषजनक पारितोषक जरूर दीजिएगा। शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है, मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट करके दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू, एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा शिवी ने अपनी जंगा से काट कर मांस का एक बड़ा टुकड़ा रखा, लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। शिवी अपने शरीर से मांस काट कर रखते गए लेकिन पलड़ा नहीं हिला। अंत में खून से लथपथ राजा शिवी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्र ने राजा शिवी का शरीर पहले जैसा कर दिया। इंद्र ने कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभय दान के बदले में आपने अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी कीर्ति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक ये पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर है। अग्नि ने भर दिया, मेरी प्रचंडता न आपको विचलित करेगी और न आपका अहित करेगी। देवता शिवी को वरदान देकर के स्वर्गलोक चले गए। अपने वचन पर अड़िग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशाना और आज बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो सिर्फ सोने वाले को ही नहीं बल्कि उसके आसपास सोने वाले को भी परेशान कर देता है। तो किसके लिए? खर्राटे। खर्राटे सिर्फ स्वयं को ही परेशान नहीं करते, आसपास में सोने वाले को भी परेशान कर देते हैं। तो आइए, क्यों आते हैं खर्राटे ये भी जानेंगे और इसके उपाय भी आपको बताएंगे। जब हम सोते हैं तो गले और जीभ की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, ठीक है। यदि श्वास का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाए तो हवा के आने जाने से कंपन पैदा होता है और खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। खर्राटों के मुख्य कारण है ज्यादा वजन माने मोटापा, नाक बंद रहना, एलर्जी या साइनस की समस्या, पीठ के बल सोने की आदत, धूम्रपान या शराब का सेवन, पर्याप्त नींद नहीं लेना, बढ़ती उम्र के कारण गले के मांसपेशियों का ढीलापन। तो अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। आप क्या करेंगे, करवट लेकर के सोइएगा। निवारण आपको बता रही हूँ, करवट लेकर के सोइएगा। पीठ के बल सोने से खर्राटे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा निवारण है वजन को नियंत्रित रखिए। थोड़ा वजन कम करने से भी काफी लाभ मिल सकता है। तीसरा उपाय भी बहुत ही सुंदर है, सोने से पहले भाप लीजिए। यदि नाक बंद रहती है तो भाप लेने से श्वास का मार्ग है खुलता है। फिर बहुत ही सुंदर उपाय है, गुनगुना पानी पीजिएगा। रात में सोने से पहले गुनगुना पानी गले को आराम देता है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। सोने से पहले हल्दी वाला दूध लीजिए, ये गले की सूजन कम करता है। और बहुत ही सुंदर उपाय और भी, पर्याप्त नींद लीजिए। थकान और नींद की कमी भी खर्राटों को बढ़ा सकती है। लास्ट उपाय है, सिर थोड़ा ऊंचा रखकर सोइए। तकिया थोड़ा ऊंचा रखिए, इससे सांस लेने का रास्ता खुला रहता है। यदि खर्राट

बच्चों के साथ सांस रुक रुक करके आती हो, दिन भर बहुत नींद आती हो, सुबह सिर दर्द रहता हो या अचानक घुटन महसूस होती हो, तो ये स्लीप एपनिया नामक समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिए। बाकी तो यही कहना चाहूँगी, अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मन, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही है। इसलिए खर्राटों को केवल मजाक न समझे, बल्कि इसके कारणों को पहचाने और समय रहते उपाय अपनाए। इसी शुभकामना के साथ आइए फिर से सुना देते हैं आपको आज का प्यारा सा टंग ट्विस्टर गीत। तो बाद में सुनाएंगे आज का टंग ट्विस्टर, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और फिर से दोबारा भी सुनना चाहते हैं तो आप फोन कॉल्स करके बता सकते हैं, तो हम दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार आपको बोल के सुना सकते हैं। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम लेने वाले ने आमों का भंडार लगाए। ये आपको दो बार, अधिक से अधिक दो बार बोल के सुनाना है, कम से कम एक बार बोल के तो सुनाना ही है, ठीक है। और अब फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आज का खुशनुमा जीवन का रख चुकी हूँ आपके समक्ष। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही की यही रह जाएगी मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान। तो बहुत ही सुंदर विषय है, देखते हैं कौन जुड़े है। हेलो
1: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सुरेश भाई?
1: बहुत बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: जी।
1: और टम टिस्टर भी आपने सब पूछ लिया है, तो पहले तो मैं आपको टम टिस्टर सुना दूँ, बाद में मैं विषय पे आता हूँ।
0: ठीक है।
1: आम वाले ने एक बात दीदी बोल दीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर लो।
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं सुना देती हूँ। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
1: आपने जो एक शब्द बोला, आम लेने आई या लेके आई?
0: लेने आई, लेकर के नहीं, वो खरीदने आई है ना, तो लेने आई।
1: लेने आई।
0: हाँ जी,
1: चलो अच्छा है, मेरा थोड़ा सा गलती होती है इसलिए मैंने।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ, चलो अच्छा मैं बता दूँ। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेके आई, लेने आई।
0: जी।
1: आम आशा आई तो आम वाले ने आमों की मौका भंडार लगाई, आम वाले
0: शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्दों का ध्यान दीजिएगा
1: जी।
0: हाँ जी बोलिए।
1: आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आम लेने तो आशा आम आशा आई तो आम लेने ने आमों की आमों का भंडार लगा। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया दीदी।
0: जी जी, फिर भी अच्छी कोशिश की, क्या बात है। आशा तालियां नहीं बज रही तो हम हाथ से ही बजा देते हैं।
1: जी, थोड़ा शब्द में मेरा उल्टा उठा गया, वो क्या था इसलिए।
0: जी जी, होता है, कभी ऐसा हो जाता है।
1: और जो आपने विषय बताया तो विषय बता दीजिए।
0: हाँ जी, विषय फिर से दोहरा देते हैं। विषय है बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यही की यही रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान।
1: वो तो दीदी बिल्कुल सही है। देखो, हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी का साथ ऐसी प्रेम भाव से रहते हैं, और तो ही तो दीदी हम लोग याद करते हैं कि जी सब कुछ तो यही रह जाना है, धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला सभी यहाँ रह जाना है, लेकिन हमने किसी के साथ बिताया अच्छा वक्त, प्रेम भाव और हमारी अच्छाई, वही तो दीदी साथ आती है। लोग हम जाने के बाद लोग याद करते हैं, कैसे याद करते हैं कि हम अच्छे थे, अच्छा काम किया था, एक दूसरे के साथ खुश मिजाज से हमने बात की थी, और खुशी से हमने एक दूसरे को खुशियाँ बांटी थी, वही तो हम याद करते हैं ना हमको
0: जी।
1: वरना तो कोई याद ही नहीं करते। देखो, कई लोग ऐसे जाते हैं तो कोई कहते हैं कि चलो उसका जाने से तो अच्छा हुआ, वो किसी के साथ बोलता भी नहीं था, वो सुनता, वो अच्छी तरह से खुश भी नहीं रहता था, किसी के साथ अच्छा उसने बर्ताव नहीं किया है, तो इससे कौन याद करेगा दीदी
0: जी।
1: मैं बताऊं तो थोड़े दिनों की पहले की जो बात है दीदी, एक भाई हमारे हो गया था, सभी लोग के मुंह पे एक ही जवाब था, चलो गया तो अच्छा हुआ, किसी के साथ उसने अच्छा वर्तन नहीं किया, स्वभाव अच्छा नहीं था, किसी के वो बोलते थे कुछ दुकान से सामान लेने जाते थे तो ऐसे चिड़चिड़ाते बोलते थे, तो इसको कौन याद करेगा दीदी। तो अच्छा स्वभाव हमारा, अच्छा एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे का सब अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये तो हम लोग याद करते हैं हमको
0: जी,
1: ऐसे तो कोई याद नहीं करते है, तो बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी एक दूसरे जब तक हम है तब तक एक दूसरे के अच्छी तरह से बात करें, खुशियाँ मनाए, एक दूसरे की हेल्प करे
0: जी,
1: बस सब कुछ तो यही रह जाना है, बाकी
0: बिल्कुल
1: तो अच्छे है तो याद करेंगे वरना नहीं करेंगे दीदी। नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई छोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुनाया है, कोशिश अच्छी की है आपने, शब्दों का तो थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टर में शब्दों का ही खेल है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इसलिए देखते हैं कौन और भी बेस्ट सुनाते हैं। वैसे बहुत अच्छा सुनाया है आपने, बहुत बहुत आभार, और आप भी जुड़िएगा आज का टंग ट्विस्टर। देखें आप ऐसे बस सोचिए कि अरे कहीं शब्द स्लिप हो जाएंगे तो हंसेंगे, यहाँ कोई हंसने वाले नहीं है, यहाँ सब सीखने वाले हैं, ठीक है, और मोटिवेट करने वाले हैं कि क्या बोला है आपने, अच्छा ही बोले। देखिए कोशिश सभी को करनी चाहिए, ठीक है। हेलो
2: हेलो उषा बेन जी।
0: हाँ जी नमस्ते कंचन भाई, कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार,
0: सुप्रभात।
2: बस ये दुकान पे है सुरेश चालू की है जो कपड़े एक एक हाथ से बना रहे हैं, और रेडियो भी सुन रहे हैं। अभी अभी सुरेश भाई ने जो बात बताई इस टाइम से भी सुनाया
0: जी।
2: मेरे क्या है कि भाई स्टंप सिस्टम तो मैंने पढ़ा है वीडियो में, इसमें भी
0: जी,
2: लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, फिर बाद में सुनाऊंगा,
0: ठीक है।
2: और आज का
0: विषय है बांट दो प्यार, बांट दो अपनापन, बांट दो मुस्कान, यही है जीवन का सबसे सुंदर वरदान। धन दौलत तो यहीं की यहीं रह जाएगी एक दिन, पर बांटा हुआ स्नेह बन जाता है पहचान।
2: हाँ सही बात है बहन जी, जो कई लोग देखो अभी एक भाई गुजर गया, अभी हमारे यहाँ स्मशान में हम गए थे
0: जी,
2: तो सभी बोलते थे कि भाई कुल मिला के ये जो करता था वो तो करता था ठीक है, लेकिन बोलता अच्छा था, अच्छा बात करता था, हंस के बोलता था
0: जी,
2: ये था तो सभी बात करते थे कि क्या लेने लेके जाना, बचपन में भी अभी ही बात थी
0: जी,
2: सबका हो गया है, हमारे पड़ोसी ही था, तो ये साथ में आना आने वाला है
0: जी।
2: देखो मुस्कान देखा है तो पशु को कोई हंसते हुए देखा है, गाय सब हमारे है पशु
0: जी जी जी बिल्कुल, इंसान तो के चेहरे पर ही मुस्कान होती है,
2: मुस्कान नहीं है, एक मनुष्य को भी भगवान ने दिया है मुस्कान, बोलना ये आदत का
0: जी,
2: ये सब मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि से इसको उपयोग करना है, लेकिन कई लोग तो क्या है कि भाई कोई बोल जाते हैं ठीक है, अरे ठीक है तो बैठे हैं, वरना ठीक नहीं होते तो कटिया में नहीं होते, ऐसा जवाब देते हैं
0: जी
2: तो ये ठीक है स्वभाव है अपना अपना, लेकिन बाद में कोई फिर खटिया में होता है तो फिर कोई बुलाने के लिए भी नहीं जाता है
0: जी
2: तो स्वभाव कुछ मिला के अच्छा रखना
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
2: याद करें लोग
0: जी
2: नहीं अच्छा
0: जी। तो चलिए कंचन भाई बहुत बहुत आभार, बहुत ही आपने विषय को अच्छी तरह स्पष्ट किया है, टंग ट्विस्टर सुनाने की फिर से जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है।
2: थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।
0: हाँ जी हाँ जी, अभ्यास करके फिर जुड़िएगा, ठीक है। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है, आपने कहा है कि एक व्यक्ति है जो गुजर गया है, अभी कल ही अंतिम संस्कार था, तो अच्छे लोग होते तो उनकी तारीफ ही करते, और जैसे सुरेश भाई बता रहे थे कि बंदा ठीक नहीं था तो लोग बातें तो हर एक की होती है ना, तो कह रहे थे कि अच्छा रहा, धरती का भार थोड़ा कम हुआ, अब क्या कहेंगे, बोलिए। एक नहीं अनेक लोग बात करते हैं, सब हमारा स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं होता है। हम देने की भावना नहीं रखते हैं, सबसे लेने की और छीनने की भावना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पता चलता ही है, सभी इंसानी है ना, समझ ही जाते हैं, और फिर अंदर ही अंदर लगता है कि कैसा बंदा है, कैसा व्यवहार करता है। लेने की भावना, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो सिर्फ लेना जाना है, उन्होंने देना नहीं सीखा। लेकिन लेने से आपको, आप महसूस करिए, खुद ही महसूस करिए, हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा और लेते समय हमारी आंखें नीचे झुक जाएगी शर्म के मारे, है ना। और छीन के लेना वो बात अलग है, छीन के लेने वाला तो वो इंसान है ही नहीं, लेकिन यहाँ मैं इंसान की बात कर रही हूँ कि लेने की जिनकी भावना है उनका हाथ तो नीचे रहेगा ना, हमेशा मांगने की मुद्रा में, आंखें झुकी हुई और चेहरे पर स्माइल नहीं रहेगी क्योंकि वो मांग रहा है। लेकिन देने वाले का देखिए आप, आंखें ऊपर की तरफ, आंखें भले वो देने वाले की तरफ कर रखा है, ठीक है, नीचे, लेकिन हाथ ऊपर की तरफ और चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि और वो है असली मुस्कुराहट, क्योंकि वो असली खुशी मिल रही है। इसलिए कभी अगर किसी ने कुछ दिया नहीं है तो दे करके देखो, फिर असली खुशी आती कि नहीं आती। आप रोज की खुशी देखो और देने के बाद की खुशी देखो, आपको खुद को अंतर नजर आएगा कि सही मायने में खुशियाँ आज मिली है। तो देने की भावना हमारी होनी चाहिए। चलिए इस विषय पर और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए और अपने विचार व्यक्त करिए। आज का टंग ट्विस्टर भी बड़ा सुंदर है, उसको भी कोशिश करिए सुनाने की। मैं दोहरा रही हूँ, आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा

0: ये तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। ये आज का टंग ट्विस्टर है। अधिक से अधिक दो बार बोल के सुनाना है, कम से कम एक बार। और यही पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है। नदियां अपना जल बांटती है, वृक्ष अपनी छांव, फूल बांटते हैं खुशबू, यही प्रकृति का स्वभाव। इंसान भी यदि प्रेम और सम्मान बांटना सीख जाए तो हर घर बन जाए खुशियों का गांव। बहुत ही सुंदर विषय है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जिसको भी मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देख कर गए, अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, तो हम आपको स्पेस दे करके सुनाएंगे ताकि आप लिख सको, ठीक है। बाकी कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि टंग ट्विस्टर ऐसी चीज है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जो जुबान के एक्सरसाइज करवाता है। बॉडी के एक्सरसाइज तो हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन फर्राटेदार बोलने के लिए जुबान की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए टंग ट्विस्टर सुनाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा, नहीं तो वॉइस मैसेज तो आप भेज ही सकते हैं, वो भेज दीजिएगा। विषय बहुत ही सुंदर है, देना सीखिए। लेना लेना लेना लेना क्यों बोझा चढ़ाना, कितना लेंगे? कहते ना, लेने वालों का कभी न पेट भरता है ना मन भरता है, लेते ही जाता है, लेते ही जाता है, चाहिए चाहे नहीं चाहिए, ऐसा है। और देने वाले भी है, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। देने वाले हमेशा उनका मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है कि चलो कुछ नेक कार्य किया है। लेने वाले का मन हमेशा भारी रहेगा, अरे मैंने उससे लिया, उससे कर्जा चढ़ा दिया, उससे देखो मांगना पड़ा मुझे, देखो मुझे आज उनके सामने हाथ फैलाना पड़ा। किसी के भी लिए, चाहे जरूरी नहीं कि हम पैसा ही मांग रहे हैं, हम खाने का मांग रहे, चाहे कुछ भी, घर परिवार में रहते हैं, कभी शक्कर कम हो गई पड़ोसी के या जाते लेने, तो भी कैसे हम एकदम आवाज को नीचे रख करके बोलेंगे, अच्छा आज हमारी शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी सी शक्कर देंगे क्या, है क्या आपके पास ज्यादा, कितना मतलब एक मांगने से पहले कितने संकल्प चलेंगे, और अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब नहीं है, मार्केट में जा नहीं सकते, वो बात अलग है, ठीक है कि ये एक हमारा व्यवहार है, हम पड़ोसी से ले रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन देखिए किसी किसी के चेहरे ऐसे फुले होते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो इनके ऊपर ही है, सारी दुनिया का बोझ इनके ऊपर ही है, कभी हंसते ही नहीं है। और कभी कभी वो हंसते तो बड़े अच्छे लगते हैं कि अरे चलो आज तो फलाना बंदा हंसा। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलना हुआ, तो देखा कि एक बच्चे के पापा मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे थे, तो वो बच्चा खुश हो गया, अरे दीदी देखो देखो आज मेरे पापा हंसे। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई, हंसना इंसान का स्वाभाविक नेचर है और हंसना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं दीदी, मेरे पापा कभी हंसते ही नहीं है, बहुत कम हंसते, लेकिन आज हंसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो नन्हे मुन्ने बच्चों को भी कैसा अच्छा लगता है, तो सोचिए मुस्कान चेहरे पर होगी तो ये भी हम किसी को जैसे कि खुशियां दे रहे हैं, है ना। तो बच्चों को अच्छा लगता है तो फिर बड़ों को क्यों नहीं लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा मुस्कुराता चेहरा, ठीक है। और ठीक है, धन दौलत की बात अलग है कि भाई कोई धन दौलत का दान करते हैं, अपना अपना सामर्थ्य, लेकिन भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो फलाना व्यक्ति बांट रहा है तो मैं उससे लेने जाऊं, मैं पहुंच जाऊं, या क्या करूं मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो मैं भी बांटता, तो ये भावना अच्छी है बांटने की, चाहे बांट नहीं पा रहे परिस्थिति वश, लेकिन भावना तो श्रेष्ठ है ना कि मेरे पास होता तो मैं भी बांटता। तो कोई बात नहीं, धन दौलत नहीं है तो खुशियां बांटिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, छोटे मोटे कामों की मदद कर दीजिए। मुझे यहाँ पर एक दृष्टांत याद आ रहा जो आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार ट्रेन में एक बहुत बड़ा व्यापारी बैठा हुआ था और एक व्यक्ति आया, वो अपनी चीज़ों को पानी की बोतल लेकर के आया था, पानी की बोतल सभी को दे रहा था, लेकिन लेने वाले कोई नहीं थे, वो मतलब बेचना चाहता था, उसको बहुत ही आवश्यकता थी, तो वो सेठ जी के पीछे पड़ गया, सेठ जी ले लो ना, लंबी सफ़र है आपकी, एक बोतल ले लो ना। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा, सुने का अनसुना कर दिया, फिर बार बार कह रहा था तो बोला कि अच्छा ले तो लूंगा, लेकिन खाली पानी की बोतल लेने से काम नहीं चलेगा। तो बोले कि और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसी दयनीय स्थिति, चेहरे पर तो झुर्रिया तो नहीं है, लेकिन ऐसा चेहरा लटकाए रख रखा है कि जैसे झुर्रिया हो, पड़ी हुई हो, उदास चेहरा। तो बोले कि भाई पानी की बोतल तो मैं लूंगा और डबल दाम दूंगा, लेकिन एक चीज और मुझे चाहिए। बोले अच्छा, एक और चीज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं पानी के अलावा, देखिए आप मेरे पास है ही नहीं। बोले कि नहीं है, तुम्हारे पास ही है और वो मुझे चाहिए। वो आश्चर्य में पड़ गए कि अच्छा मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी आपको क्या दिख रहा है मेरे अंदर, मैं तो देखे पानी की बोतल के अलावा मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। बोले कि है, उदास चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, पहले मुस्कुराहट के साथ आओ तो फिर मैं पानी की बोतल खरीदूंगा। फिर वो समझा, फिर उसको समझाया कि इस तरह उदास चेहरे से कोई नहीं खरीदेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, एनर्जी के साथ बात करो, देखो तुम्हारी बोतलें फटाफट बिक जाएगी। और सचमुच वो सेठ जी को एक बोतल दे करके गया, आगे गया, सारी बोतलें उसकी बिक गई। वापिस आया तो सेठ जी के पैर छुए। सेठ जी ने कहा क्या हुआ, पैर क्यों छू रहे हो? अरे सेठ जी आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, मैं तो हंसता हुआ गया तो सभी ने बोतल खरीद ली और मेरे पास एक भी बोतल नहीं रही, बल्कि और ज्यादा होती तो भी बिक जाती। तो कहने का भाव यही है कि कुछ नहीं दे सकते तो चेहरा तो खुशनुमा रख सकते हैं ना, इसमें तो हमारा कुछ लुटने वाला नहीं है, है ना। खुशनुमा चेहरा भी लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि वाह भाई आज तो किसी से पल्ला पड़ा है, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ बात की, मन बड़ा खुश हो गया। और एक उदासीन व्यक्ति को देख करके कहेंगे कि ये तो पता नहीं किसका मुंह देखा है ना। तो फिर ये बांटिए, बाकी देने की भावना रखिए। कोई भी आप जरूरी नहीं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये भी देखा था कि एक जैसे मजदूरी करते हैं माता पिता, उनके बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे, तो बच्चा खाना खा रहा था कि कुत्ते का पिल्ला है जो उसके पास आ गया, रोटी पकड़ा रखी थी, रोटी खा रहा था बस वो ऐसे ही हाथ से ही, और कुत्ते का पिल्ला आ गया। अब कुत्ते के पिल्ले की भी इच्छा थी खाने की, या उसको ऐसा लगा, उसने क्या किया, अपनी रोटी, एक रोटी वो फोल्ड करके खा रहा था। बचपन को याद कर लीजिए जब हम भी खाते थे, है ना, फोल्ड करके, तो फोल्ड करके खा रहा था, तो उसको आधी तोड़ी, आधी पिल्ले को दे दी, आधी खुद खा गया। देखिए ऐसी गरीबी में भी बच्चों का स्वभाव देखिए, उसको देख करके काफी कुछ सीखने को मिला कि देखो इस बच्चे के देने की भावना कितनी अच्छी है, उस पिल्ले को आधी रोटी दे दी, आधी खुद खा ली। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, लेकिन देना जरूर सीखिएगा, ठीक है। देने से कभी भी कम नहीं होता, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और लोगों से उधार ले ले करके कर्ज के बोझ तले दबेंगे तभी दिवाला पड़ेगा। बाकी देने वाले कभी नहीं हारे और वो कभी उनके ऊपर बोझा नहीं चढ़ता है, देने वाला हमेशा आगे ही जाता है। तो चलिए इस विषय को यही समाप्त करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। ये आज का टंग ट्विस्टर है और हमारे एक बहन ने वॉइस मैसेज के साथ टंग ट्विस्टर भेजा है, तो उनकी आवाज में आपको टंग ट्विस्टर सुना देते हैं।
1: जय श्री कृष्णा, सुप्रभात, ओम शांति। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वालों ने आमों का भंडार लगाई। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई। आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके लिए। ये दीपा सोमानी कपासन से आपने वो इस मैसेज भेजा है, बहुत बहुत आभार और थैंक यू दीपा जी। और अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज मैं आपको सेव पूरी सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। चटपटी चीज का नाम लिया था कि चटपटी चीज सिखाऊंगी, तो चटपटी में सेव पूरी बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी है, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मुंबई की रेसिपी है। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह प्रख्यात हो जाते हैं। कोई भी एक जगह की चीज है वो सब तरफ फैल जाती है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, बाहर के बहुत सारे राजस्थान में काम करते हैं, तो इसे एक दूसरे की चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। वहाँ के काम करने वाले यहाँ आकर ठेले खोलेंगे, कैंटीन खोलेंगे, यहाँ के लोग बाहर जा कर के, ठीक है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ सेव पूरी में। आप क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको पूरियाँ बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। आप आटा लीजिए, पूरी बनाने के लिए आटा लेना है। आटे को छान लीजिए। देखिए सामग्री और रेसिपी साथ ही साथ सिखाऊंगी। तो आटा लिया, आटे में आप अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा नमक, और अब आप अच्छा सा मोवन डालिए तेल का, और फिर अच्छी तरह मिक्स करके फिर पानी से टाइट गूंदिए। टाइट गूंद लिया, अब इसको एक तरफ रख दीजिए गीले स्वच्छ कपड़े से प्लेट करके। अब इधर आप मसाले की तैयार कर लीजिए। तीखी चटनी बनानी है आपको तो हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, ये आपको तीखी चटनी बनाने के लिए ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आप तीखी चटनी बना करके पीस लीजिए। साथ ही साथ मैं सिखाई देती हूँ ना, ताकि आप आराम से बना सको। तो धनिया ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, हरी मिर्च लीजिए, अदरक लीजिए, फिर तो चाहे तो आप दो तीन काली मिर्च, दो तीन लौंग भी आप डाल सकते हैं, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। और इसमें थोड़े से आप जो दाल आती है ना, चने की दाल, वो खाने वाली नहीं, जो हम भूंगड़े की जो दाल होती है, जो इडली में डालते हैं, इडली की चटनी में, वो वाली थोड़े से वो भी दाल डाल दीजिए। और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें ले लीजिए और क्रश करके रख लीजिए। नमक तो आपको डालना ही है स्वाद के अनुसार। तो ये बन गई तीखी चटनी। अब आप इमली की चटनी भी बनाइए साथ ही साथ। तो इमली की चटनी आपको सिखाया, फिर भी आपको सिखा देती हूँ। इमली और खजूर लीजिएगा, और इमली को पहले ही भिगो दीजिए कम से कम 2 घंटा, और साफ करके, ठीक है। खजूर और इमली को बीज बीज निकाल करके एकदम साफ करके भिगोना है। भिगोने के बाद अब आप मिक्सर में क्रश कर लीजिए, भले हैंड मिक्सी से आप क्रश कर लीजिए, ठीक है। और इसमें गुड़ डाल दीजिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, और अच्छी तरह हिला कर रख दीजिए। तो ये बन गई इमली की चटनी। छोक इसका नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो तीखी चटनी तैयार है, इमली की चटनी तैयार है। अब आप आलू बॉइल करिए। आलू बॉइल करके उसको भी थोड़ा सा मैश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आलू बॉईल कर दिया। अब आप बारीक सेव तैयार रखिएगा। और अब आप क्या करेंगे, इधर जो हमने आटा गूंद करके गीले कपड़े में पलेट के रख रखा है, तो उसको एक बार फिर से अच्छी तरह व्यवस्थित गूंद लीजिए। फिर आप इसका लुआ बनाइए बड़ा सा, और भले थाली लीजिए, भले कचरोट लीजिए, कचरोट जिसको परात कहते हैं, पीछे की साइड में आप पलेथन लगा करके अच्छी तरह इसको बेल लीजिए बड़े सा। रोटी तो छोटी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी आपको बेलना है, पर पतली, ठीक है, बहुत पतली भी नहीं लेकिन मोटी भी नहीं, रोटी की तरह, रोटी से थोड़ी पतली आप बेल लीजिए। बेलने के बाद अब आप एक छोटे, भले कटोरी हो, किनोर वाली चाहिए, भले ग्लास हो, जो भी है, उससे आप गोल गोल राउंड में काट दीजिए। तो आपके एक साथ में कितनी पूरियाँ तैयार हो जाएगी। एक एक छोटी छोटी पूरी बेलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इकट्ठी बेल देंगे ना तो बहुत सारी पूरियाँ एक साथ में निकल जाएगी। तो फिर काट करके बस आप निकाल दीजिए उन पूरियों को, और दूसरा जो आटा बचा है उसका वापस लुआ बना दीजिए, दूसरे आटे में मिला करके इसी तरह वापस रोटी बेल करके काट लीजिए और इनको तेल में तल लीजिए। तलना है आपको हल्के हल्के ब्राउन बादामी कलर की हो जाए दोनों तरफ से, ऐसा कलर आ जाए फिर आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये पूरियां भी तैयार हो चुकी है। अब पूरी के ऊपर आप सबसे पहले आलू का मसाला रखिए, मतलब आलू जो बॉईल किया है उसको मैश करिए। उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दूसरी चीज़ों में डाल रखा है, तो बस खाली उसको मैश कर दीजिए और मैश किया हुआ आलू रखिए पूड़ी पर। और अब आप इसके ऊपर

डाल दीजिए तीखी चटनी, फिर डालिए इमली की चटनी, फिर आप डालिएगा, आपको बारीक काट के रखना है टमाटर, टमाटर डालिएगा, ठीक है, और फिर दही डालिएगा थोड़ा। अब आप बारीक सेब डालिएगा और पहले धनिया डाल दीजिए, धनिया पत्ती अच्छी तरह धुलाई करके साफ करके काट के धनिया एक तरफ रखिए, धनिया डालिए, और अब आप डालिएगा लास्ट में बारीक सेब और फिर पिरसिएगा। जिनको भी सर्व कर रहे हो सर्व करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और वयस्क भी आराम से खा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी, अगर दांत नहीं है तो वो पूरी खा नहीं पाएंगे, और दांत है तब तो वो भी आनंद ले सकते हैं। आजकल तो वैसे ही दांत नहीं होते तो नकली दांत बिठा देते हैं ताकि हर एक चीज खा सके, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुविधा साइंस ने निकाली है नकली दांत बिठाने की, तो उसके द्वारा आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह सेव पूरी तैयार हो चुकी है, जिसकी विधि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूरी के आटे के लिए मैंने कहा, देखिए वैसे तो मैदे की पूरी बनाई जाती है, लेकिन अनावश्यक मैदा क्यों खाना है, जहाँ भाई मैदे के बिना वो चीज़ बन ही नहीं सकती वहाँ पर आप मैदा यूज करिए, जहाँ मैदे के अलावा भी ऑप्शन है तो फिर मैदा आप इग्नोर करिएगा, मैदा कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जैसे कचौरी है समोसा है, अब वो मैदे के बिना नहीं बनेंगे तो वो बात अलग है, आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन सेव पूरी में ऐसा कुछ नहीं है, मैदा नहीं होगा तो भी चलेगा। आटा लीजिए, आटे को छानिए, फिर आटे में नमक और हल्का सा अजवाइन डालिए और मौन डालिए तेल का, और आवश्यकता के अनुसार पानी डालकर टाइट इसको गूंद लीजिए, ठीक है। फिर आप इसको तो ढक के रख दीजिए गीले कपड़े से, और मसालों में आप तीखी चटनी बना दीजिए, तीखी चटनी में पुदीना, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डाल करके क्रश कर लीजिए मिक्सर में, तो ये बन गया तीखी चटनी बन गई। इमली की चटनी बनानी है, इमली खजूर को साफ करके इसके बीज निकाल करके धुलाई करके भिगो के रख दीजिए, घंटा दो घंटा भिगने के बाद आप भले मिक्सर में क्रश करिए भले हैंड मिक्सी चला लीजिए, और एक रस हो जाए छान लीजिए, जूस की जाली से इसको छान लीजिए, छानने के बाद इसमें हल्का सा नमक मिला दीजिए और गुड़ मिला दीजिए, ठीक है। गुड़ जरूरत है तो, क्योंकि खजूर डाली हुई है तो आवश्यकता हो तो ही आप गुड़ डालिएगा। तो ये बन गई इमली की चटनी। फिर आप आलू बॉयल करिए, बॉयल करने के बाद इसको मैश कर दीजिए छिलके निकाल करके, ठीक है। दही तैयार रखिएगा, बारीक सेव आपको तैयार रखनी है, और टमाटर बारीक कटे हुए, ठीक है। अब आप लीजिए ये आटा हमने गूंद रखा है, उसका लुआ तोड़िए, लुआ तोड़ करके आप बड़ी सी रोटी बेलिएगा, बहुत बड़ी रोटी बेलनी है, ठीक है, कम से कम 7-8-10 पूरियां इसमें से निकल जाए, काट सको इतना बड़ा आप बेलिए, और पतली पतली बेलने के बाद फिर आप कोई भी किनोर वाली कटोरी है, ग्लास है या अन्य कोई साधन है आपके पास, उससे काट लीजिए। काटने के बाद याद रखिएगा सभी पूरियों पर चाकू से पतले पतले चीरा करना है, ताकि वो पूरियां फूले नहीं। हम क्या है कि सेव पूरी बना रहे हैं ना, तो पूरी फूली हुई नहीं चाहिए, इसलिए बारीक बारीक चाकू के किनोर से थोड़ा सा खड्डे कर देना है, ताकि तलते समय वो फूले नहीं। और फिर जब ये पूरियाँ निकालो तो आटा को तो जो साइड में से कटिंग होते ना, उसको आप वापस लुआ बना करके बेल दो और इसी तरह पूरियाँ बना दो, और इनको तल लो, तल करके बादामी कलर की दोनों तरफ से हो जाए सुनहरी सुनहरी निकाल दीजिए। और अब आप पूरी पर मैश किया हुआ आलू रखिए, और आलू के ऊपर तीखी चटनी डालिए, इमली की चटनी डालिए, अब आप टमाटर बारीक कटा हुआ डालिए, अब आप दही डालिए और धनिया डालिए, फिर आप डालिए सेव, बारीक सेव, और बस आप सर्व कर सकते हैं। हाँ, खाते समय आपको तैयार करके रखनी है प्लेट, क्योंकि अगर पहले रख देंगे तो पूरी नरम पड़ जाएगी, नरम पड़ जाएगी तो खाने का सारा ही
मजा किरकिरा हो जाएगा। तो इस तरह ये सेव पूरी तैयार हो चुकी है। पहले हम अपने इष्ट देव को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद ही फिर हर कोई आनंद ले सकता है सेव पूरी का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, लेकिन उसके पहले अलका जी काबरा चित्तौड़गढ़ कप्पासन से, आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुना, मतलब भेजा है, तो सुन लीजिए उनका भी।
5: आम वाले में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देख कर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुनकर आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाया। आम वाले ने आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई आम देख कर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुनकर आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई।
4: बहुत सुंदर, तो ढेर सारी तालियां। तो प्यारे श्रोता बंधु, अब आप सभी से अनुमति चाहेंगे। आज के कार्यक्रम था, आपने सुनाई है, काफी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, खराटे आते हैं तो क्या करना चाहिए आप सभी ने जाना है, तो आप जरूर जो भी नुस्खा अच्छा लगा हो उसको आजमाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और रेसिपी में जो आपको सेव पूरी बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, फिर कौन जुड़े हैं उनका भी नाम बताऊंगी। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों का भंडार लगाई। आम वाले आंगन में आमों की अमराई आई, अमराई में आम देखकर अमन ने आमों की कीमत बताई, आमों की कीमत सुन आशा आम लेने आई, आशा आई तो आम वाले ने आमों की भंडार लगाई। तो आप मैं खुद के लिए भी ताले। फिर जुड़े हैं टंग ट्विस्टर में सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया है, मतलब बहुत अच्छी कोशिश की है आपने। फिर कंचन भाई जुड़े लेकिन उन्होंने टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, और दीपा सोमानी अलका जी आप जुड़े हैं, आपने भी टंग ट्विस्टर अच्छा सुनाया है। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, तो आप दोनों के लिए ढेर सारी। आज का मीठा मोती भी सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है, अगर आप विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण काम कीजिए, बस स्वयं को परिवर्तित कर लीजिए तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, कल क्या है, कल शनिवार है, शनिवार को क्या रहता है अंताक्षरी कार्यक्रम। और

कल भी देखिए पुरुषोत्तम महीना के लास्ट दिन चल रहे हैं। कल एकादशी थी, आज 12 है, कल 13 है, वो 2-3 दिन में ये अदक मास है वो खत्म हो जाएगा। तो कल भी भजन की थीम ही रहेगी, आध्यात्मिक गीतों की थीम, ठीक है। इसमें शब्द देंगे आपको, फिर शब्द से आपको सुनाना है, ठीक है। कुछ हट करके खेलेंगे, इसलिए कल जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और अभी हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे, तो मिलेंगे कल तक। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: न पायो।
1: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम लेकर के हम आप सभी के बीच में आते हैं। कुछ ऐसी बातों को हम सुनते जो हम जानते भी हैं, लेकिन करना और जो लोग करते हैं उनको जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वाह क्या जिया है इन्होंने अपने जीवन को। दोस्तों, परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन किस ओर जा रहा है और उस परिवर्तन से क्या हमारा सम्मान बढ़ रहा है समाज में, अपने व्यक्तिगत परिवार में और जीवन में, और उस परिवर्तन का एक जरिया हमें भी पता चले तो क्यों ना हम भी फॉलो करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही अनोखी बातों को लेकर के हमारे मेहमान हमारे बीच में आए हैं। हमारे साथ है श्री राम त्यागी जी। आप ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले दो दशकों से। दोस्तों, श्री राम जी राजस्थान से हैं और पिछले दो दशकों से जो माउंट आबू या शांतिवन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आध्यात्मिकता से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके जीवन की ये यात्रा कैसे रही है, आइए जानते हैं। श्री राम जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद
2: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन, आप राजस्थान से हैं और ये राजे रजवाड़ों की इस शहर में रहते हुए आपका बचपन कैसा बीता, लौकिक परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और वहाँ से आपको इस आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक संपर्क या रुचि कैसे बढ़ी वो बताइए।
3: थैंक यू, फिर से आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
2: जी।
3: मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा, और किसान जो परिवार होता है वो किसान है मेरे पिताजी, और हम लोगों में जो हमारी एक जाति है त्यागी, उसमें सब जमींदार लोग होते हैं। जमींदार माना उनके पास जमीन बहुत होती है, और जमीन के ऊपर इन लोगों को बड़ा ये रहता है कि हमारे पास तो जमीन है, और जमीन के होते हुए भी अगर हमारे देखा जाए तो मेरे से भी बड़े जो मेरे भाई थे ताऊ के लड़के, उनको एक नौकरी का ऑफर आया, वो भी उन्होंने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे यहाँ तो खुद लोग नौकरी करने आएंगे, हम किसकी नौकरी करेंगे, ऐसा नशा रहता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, हम उसमें पले हैं वातावरण में, तो काफी स्वाभिमानी वातावरण रहता है, वो परिवार काफी अच्छा, सब लोग गाँव के हम लोग हैं तो मिलनसार होते हैं गाँव में, कोई किसी भेदभाव ज्यादा द्वेष नहीं होता है, मिलजुल के रहते हैं। किसान फैमिली में पढ़े लिखे तो ज़्यादा पढ़ाई में इतना ये नहीं होता है, सब खेती में लग जाते हैं, फिर भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाने का बहुत हमको प्रयत्न किया जिसके कारण हम बीए तक पढ़ाई किया। पढ़ाई के बीच बीच में हम जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, खेल में जाना है, स्कूल में ये वो सब चलता था। हमको आठवीं क्लास तक तो सब नॉर्मल जीवन, क्योंकि हम सोचते थे कि हम शहर में जाएंगे। जब हमारा एक गाँव में एक स्कूल था और वो स्कूल था आठवीं तक, ये नाइन्थ हो जाएगा तो हम शहर में जाएंगे, बड़ी एक इच्छा थी शहर में जाने की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम नाइन्थ में आने वाले थे वही स्कूल हमारा
2: अपग्रेड हो गया,
3: अपग्रेड हो गया, हमने कहा अभी भी नहीं जा पाएंगे।
2: अच्छा।
3: तो नाइन्थ टेंथ पढ़ा,
2: ये कौन सी गांव की बात है,
3: ये हमारा गांव पड़ता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनिया के पास, एक चैना का पूरा गाँव है।
2: अच्छा।
3: वहाँ दहरी स्कूल था हमारा और वो स्कूल में ही हम शुरू से पढ़े
2: जी,
3: तो वो अपग्रेड हो गया। फिर हमने सोचा चलो कोई बात, दसवीं तक पढ़ के इलेवेंथ में तो हमको जाना ही है शहर के अंदर, टाउन में जाएंगे। तो जैसे ही हम टेंथ में आए तो वो इलेवेंथ का उसमें क्लास शुरू हो गया, फिर से अपग्रेड हो गया, माना ट्वेल्थ तक वो पहुंच गया
2: जी।
3: हमारा ये इच्छा पूरा ही नहीं हो पा रहा था, हमने कहा बारहवीं तक पढ़ने के बाद तो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हमने हमारा इच्छा था कि हमको शहर में पढ़ने जाना है, कॉलेज करना है। उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज किया
2: तो कॉलेज पढ़ने कहाँ गए,
3: कॉलेज हम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा
2: जी,
3: जो मेन डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें हम कॉलेज करने गए जो गवर्नमेंट कॉलेज था, काफ़ी बड़ा कॉलेज था, और कॉलेज में भी हमारा ऐसा ही डिसिप्लिन रहता था स्कूल जैसा, वहाँ के जो कुलपति थे वो काफ़ी अच्छे थे, डिसिप्लिन करते थे, तो हमको ज़्यादा ये अंतर लगानी कॉलेज और उसमें स्कूल में, क्योंकि धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उससे विलेजेस बहुत जुड़े हुए हैं। वहाँ कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ शहरी वातावरण हो, लेकिन हाँ वहाँ गांव जैसा वातावरण अच्छा है, मतलब शांति है, कोई ज़्यादा क्राइम नहीं है। हालांकि वो चंबल घाटी के उसमें आता है।
2: अच्छा।
3: हाँ, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा, वहाँ हाँ काफी डाकू लोगों का होता है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता है। वो तो बाहर से किडनैप करके लाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे, फिर पुलिस उनसे कुछ रास्ता अपना मुठभेड़ करती रहती है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए। तो हमारा जीवन है ना, हमने कहा जब हम संगति में पढ़े ना 12th क्लास के बाद, जैसे बाहर आए ना हम, थोड़ा बीच बीच में हमारा कंपनी ऐसी मिली, दोस्तों की मिल जाती है शहर में आए तो, थोड़ा तम्बाकू खाना, पहले सुपारी खाया फिर गुटखा खाया, फिल्म देखना, हम फिल्म 10th क्लास तक तो हमने हॉल थिएटर नहीं देखा था कि थिएटर क्या चीज होती है। 8th क्लास तक हमने टीवी हमारे गाँव में टीवी नहीं होता था
2: जी।
3: हमारा टीवी हमारे आया, उसमें हमने महाभारत देखना शुरू किया
2: जी।
3: महाभारत से हमने टीवी शुरू किया है, पहले रामायण तक हमारे गांव में टीवी नहीं था।
2: अच्छा।
3: एक ही टीवी हुआ करता था, उसमें सब लोग गांव से काम छोड़ करके वहां बैठ करके एक घंटा वो महाभारत देखते थे
2: जी। तो जब आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए थे धौलपुर में, तो फिर आप हर दिन अप एंड डाउन करते थे या धौलपुर में रहते थे?
3: अप एंड डाउन करते थे, हमारे घर से 17 किलोमीटर है कॉलेज।
2: अच्छा,
3: तो हम साइकिल से जाते थे
2: जी।
3: 17 किलोमीटर, मतलब 17 किलोमीटर जाना 17 किलोमीटर आना। मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल, एटलेस साइकिल चलती थी, बहुत अच्छी साइकिल, तो उससे जाते थे हम, वो अप डाउन करते थे
2: जी।
3: और वहीं रहते रहते हमने फिर उसके साथ कंप्यूटर भी सीखा। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे दोस्तों की कंपनी में हमने थोड़ा गुटखा खाना, तम्बाकू खाना वो आदत हो गया, चुपके चुपके खाते थे, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद जब हम स्कूल छोड़ा उस समय के बाद, तो हमको एक था कि हमें कुछ करना है अपना, घर वाले भी बोलते कुछ करते नहीं हो, हर चीज सीखी हमने। मैंने लाइट का काम भी सीखा, प्लम्बरिंग का काम सीखा, सारा काम सीखा। बाद में मैंने ड्राइविंग सीखा, मैंने ड्राइविंग ट्रक से सीखना शुरू किया।
2: अच्छा।
3: हाँ, जब हम ट्रक में गए ना, तो वहां पे हमको ना एक अलग आदत हो गई, जो हमें ट्रक सिखाने वाला था वो दारू पीता था। उसके साथ उसने बोला कि आप घी की रोटी खाओगे या, मैंने देखते हैं, उसने बोला गाड़ी में हम घी का डब्बा रखें या दारू की बोतल। मैंने घी तो बहुत खाया, दारू पी लेते हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, क्योंकि वो एक होता था कि क्या होता है इसमें,
2: एक क्यूरियोसिटी थी।
3: क्यूरियोसिटी थी वो। तो 6 महीना हमने ट्रक सीखा। 6 महीने के बाद कुछ घर में ऐसा हादसा हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं वो छोड़ के घर पे आया। मेरे भाई गवर्नमेंट जो रोडवेज होता है यूपी में, उसमें चालक थे
2: जी,
3: ड्राइवर। उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं आया घर पे, तो वो आदत मेरे को बनी हुई थी, तो कभी कभी मैं वो पीता था और ट्रक सीख लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से उनको एडमिट करा के आ रहा था, तो वही जिस गाड़ी पे सीखा था वो आगरा से मुझे गाड़ी धौलपुर के लिए मिली, वही मिल गया। मैंने किराया लगेगा नहीं, अपना ही उस्ताद है, मैं बैठ गया उसमें। बैठने के बाद हमने पी लिया दारू, फिर हम चलाने लगे गाड़ी, तो एक रास्ते में सामने से एक फौजी की गाड़ी आ रही थी और इधर से मेरी गाड़ी, और हमारी गाड़ी का थोड़ा सा स्क्रैच हुआ साइड से, और हम रुक करके वहीं पे उनको उतर गए फौजियों के सामने। लेकिन फौजी ने ऐसा समझा कि उसका गलती है, वो रुका नहीं। हम तो फौजी की गाड़ी समझ गए भाई, इनके इनको छोड़ के भागना नहीं है, वो चले गए। तो हमने चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ
2: जी,
3: ऐसा हमको आदत हो गया तो पीते रहे। इसके बाद क्या हुआ, मेरे घर में ना इसी बीच में एक कोई बाहर से आगरा साइड से मेरे रिश्तेदार आए मेरी माँ के पास
2: जी,
3: और उनको कुछ किताबें देके गए
2: जी।
3: मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, घर ग्रस्त में रहते, तो गांव में पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे इतना, लड़कों के ऊपर ही ध्यान होता था। तो माताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, एकदम अंगूठा टाइप।
2: आपकी भी कोई भाई बहने हैं?
3: मेरे दो भाई, एक छोटा एक बड़ा
2: जी,
3: एक मेरे से बड़ी बहन है।
2: ओके, उनको पढ़ाया?
3: वो भाई सब लोग पढ़े, लेकिन बहन भी नहीं।
2: अच्छा, आपकी बहन सगी बहन
3: भी नहीं पढ़ी? मेरी जो ओन सिस्टर है उसको भी नहीं पढ़ाई कराया
2: जी।
3: हाँ, माना लड़कियों को पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं था
2: जी।
3: तो बहन की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। मेरा तो पहले शुरू से विचार नहीं था, शादी करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। होता ना कि जैसे कि हम बड़े होकर शादी का मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ये चाहे मैं संस्था से जुड़ा हुआ कि नहीं, बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना है और कुछ अलग से करना है। शादी तो सभी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग से करना है। और मुझे एक बात याद रहती थी कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि अगर हर घर से एक युवा मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ रामराज स्थापन कर सकूं।
2: जी।
3: तो वो बात मेरे को हमेशा आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि देश के काम में आए या समाज के काम में आए, किसी की सेवा कर सकूं, शुरू से था। और एक बात और बताऊं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे राजस्थान के अंदर ही रहना है।
2: अच्छा।
3: सबसे बड़ी बात ये थी, मेरे मन में पता नहीं क्या था, क्यों ऐसा था कि मुझे जॉब भी करनी है तो राजस्थान में करनी है, रहना है तो राजस्थान, किसी भी कोने में राजस्थान के में रहना है। मुझे अपने स्टेट को छोड़ के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं मैं, ऐसे स्टेट में नहीं, या तो फिर मुझे राजस्थान में रहना है, ऐसा मेरा वो था। तो कोई जॉब ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि मौका ही नहीं मिला वो चीज के लिए, जरूरत नहीं पड़ी।
2: जी, आपकी माता जी की कोई दोस्त आए, उन्होंने किताब दिया,
3: फिर माता जी ने बोला मेरे को कि बेटा ये है ना, ये किताब है और ये आपको मुझे रोज पढ़ के सुनानी है।
2: जी,
3: हम लोग रोज सुनते ना,
2: मुरली पढ़ते हैं। जी,
3: वो बोलते हैं। तो वो पहले होती थी तीन पन्ने की होती, लिथो की टाइप किया होता था।
2: ओके।
3: आजकल कंप्यूटर है, वो लिथो की होती, तीन पेज बड़े बड़े होते, उसमें दो मुरलियां होती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ जी, और अलग अलग डेट होती थी। तो मैं रोज माता जी को सुनाता था और 8-10 माताएं गांव की सुनती थी, बस इतना काम था मेरा। अपना गुटखा भी खाना है और बस वो करना है, मुझे कोई लेना नहीं, मेरा वो जॉब था मेरा, ऐसा मिलो माता जी को खुश करने का।
2: जी।
3: अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मेरा उस दिन रोटी नहीं मिलेगी मेरे को।
2: अच्छा।
3: मेरी माता जी तुम कुछ भी काम नहीं करेगा ना, खेत में करना, कोई भी काम नहीं करना, लेकिन तुमको मुझे मुरली सुनानी है।
2: अच्छा,
3: ठीक है, यही काम है। तो बड़ा अपना खुश था।
2: तो घर में जब पता चला कि आप तंबाकू गुटखा ये सब कर रहे हैं, कभी ने आपको रोक टोक नहीं किया?
3: मैं एक्चुअली हम चोरी से खाते थे।
2: अच्छा।
3: एक दिन हम रात को सोए हुए थे, तो गांव में जैसे बाहर सोते हैं ना आंगन में,
2: जी,
3: तो हमने ना उसको जैसे वो थूक देते ना, तो वहाँ लाल लाल हो गया था।
2: जी।
3: तब मेरे पिताजी को पता चला, फिर उन्होंने हमारे पर थोड़ा कंट्रोल किया, तो हम फिर बाहर खाते थे, घर में नहीं खाते थे।
2: अच्छा।
3: हाँ, हालांकि उनको पता हल्का सा रहता, लेकिन उनके सामने हम नहीं खाते थे।
2: जी।
3: तो जब हम ट्रक पे आए तब हमने दारू पीना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा किया। और दारू पीने का ऐसा नहीं हम सारा जिंदगी पिए, 1.5 साल के बाद जब हम हमारे घर में ये माता जी ने जो सुनाया मेरे को, तो मैं रोज सुनता था उसको। लेकिन एक मेरी माँ की एक और मेरे ऊपर एक अटैकिंग रहता था, उसको अटैक ही बोलता हूँ मैं, सवेरे 3:30 को आपको उठना है।
2: अच्छा।
3: माता नहीं, माता जी को बोला दिस इज नॉट माई जॉब, मैं माता जी ये मेरा नहीं है।
2: जी।
3: आपको मैं मुरली सुनाता हूँ ये काफी नहीं है कि नहीं नहीं बेटा सुन लो, मेरे की मैं नहीं उठ सकता। मेरी माताजी मेरे लिए बढ़िया चाय बना के लाती थी।
2: अच्छा।
3: कि चाय बना के, तो चाय पी उतनी देर तो आदमी जगेगा ना। चाय पीने के बाद 10 मिनट में जगता था, 10 मिनट में मेरी माताजी एक कमेंट्री करती थी मेरे सामने।
2: अच्छा।
3: बोलूं आपके सामने?
2: जी, हाँ। जी।
3: तो वो कमेंट्री होती थी कि मैं आत्मा हूँ। मैं तो सोचता नहीं आत्मा क्या होती है।
2: जी।
3: सोचा आत्मा पेट में होती है, कहाँ होती है, मैंने आत्मा बताओ कहाँ होती है। तो माता जी बोलते ये दोनों भ्रकुटियों के बीच जो आत्मा है ना, बोलो मैं आत्मा फील करो ये, और ये आपके ऑर्गन्स हैं, वो आत्मा के साधन है। जब माता जी के मुंह से मैं सुना ऑर्गन्स, बाप रे इतनी पढ़ी लिखी है मेरी माता जी, ऑर्गन्स इंग्लिश में बात कर रही है, ऑर्गन्स तो मेरे को भी समझ नहीं। माता जी ऑर्गन्स क्या होता है? ऑर्गन्स होता है बेटा ये शरीर, इसके ये हिस्से शरीर के। मैं तो एक सेकंड के सन्न रह गया।
2: अच्छा।
3: मैं माता जी आपने सीखा कहाँ से? मुरली में तो रोज आता है, जबकि मैं रोज सुना रहा हूँ उसको, मेरे को नॉट आउट नहीं हुआ वो, लेकिन माता जी ने कहा ये तो अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे को हल्का सा माता जी के ऊपर सम्मान बढ़ने लगा।
2: अच्छा।
3: कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है तो कुछ तो बात है।
2: जी।
3: मैंने उनको बोला कि वो कॉमेंट्री 7 मिनट की पूरी हो जाती थी, और उसके बाद कॉमेंट्री करते करते मैं भले चाय पी सो जाता था।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: लेकिन उठते जरूर
3: उठते 3:30 को मेरे को आप बताओ 84 से लेकर के, और मैंने शायद ही कभी 3:30 मिस किया होगा।
2: अच्छा।
3: शायद ही, या कहीं बाहर गए हैं माता जी के घेरे से बाहर हैं उनके एरिया से, तो बाकी हमने कहा ठीक है पढ़ाई लिखाई करके आराम से सोया करेंगे, अभी तो माता जी सोने नहीं देती है। तो हम ऐसे उस नशे में थे कि हम तो आराम से पढ़ाई लिखाई पूरा करके, उसके बाद जब मैं सुनाने लगा वो चीजें, इसी बीच में मैं जब ट्रक से आया तो वो आदत थी, तो मैं चुपके से वो पीने लगा। जब दारू पीता था मैं, तो मेरे मन में एक का आता था कि अगर मैं ऐसे पीता रहूं तो मेरा होगा क्या, मेरा थोड़ा बहुत जमीन है ये बिक जाएगा, मेरे हिस्से में जो जमीन आएगी मैं वो तो बेच दूंगा उतना ही, उसके बाद क्या होगा, ये उसके पीने के बाद वो संकल्प आ जाए।
2: अच्छा।
3: हाँ, फिर जो माता जी को मैं सत्संग की वो किताब सुनाता था, तब मुझे लगता था कि इसमें एक चीज आती थी उसके अंदर, कि कई बच्चे है ना, ये उसमें भाषा होती थी ये।
2: जी।
3: हाँ, जैसे भगवान की भाषा आजकल हम जो सुनते हैं, पहले तो ये चीज का हमको ज्ञान नहीं था।
2: जी।
3: तो उसमें आती थी कि कई बच्चे हैं ज्ञान सुनते सुनाते हैं और विकर्म भी करते रहते।
2: जी।
3: तो मैं उस लाइन को जल्दी पढ़ देता, क्योंकि ये समझाना नहीं माता, यू नहीं आज ही पीछे पड़ जाएगी।
2: अच्छा।
3: तो वो, ये क्या हुआ सिस्टर, ये 3 दिन लगातार आया मुरली में
2: जी,
3: जो हम पढ़ाते थे उसमें। मैंने माता जी को बोला, माता जी आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, रोज एक ही कॉपी उठा के ले आते हो, ये क्या है, इस मेरे को समझ ये कौन सा आपका कागज है, वो एक ही कागज, एक जैसा ही कागज क्यों रहता है, सब में वो मीठे मीठे होता है सब में। नहीं नहीं बेटा, इनमें सब में तारीख अलग होती है। वो मैंने कभी नोट नहीं किया, लेकिन माता जी को वो सब चीज पता है कि नहीं बेटा इसमें तारीख अलग, तुम लाओ उठा करके। बोले हुआ क्या? नहीं, मैंने कहा आप 3 उठा के लाओ, तो एक में दो लाई, एक अलग से लाई, तो तारीख अलग, आगे पीछे का जो भी होता है वो अलग। उसमें मैंने ध्यान से देखा वो लाइन 3 एक ही थी। बोला हुआ क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे छोड़ के उस चीज पे मेरे अपने आप अटेंशन चला गया कि मैं इसको सुना रहा हूँ और इसमें ये लाइन लिखी है कि कई बच्चे कर्म भी करते रहते हैं और ज्ञान सुनते सुनाते रहते हैं। उस लाइन ने मेरे को
2: अटेंशन
3: अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उस लाइन को मैं और भी लाइन मुरली में उसको ध्यान से सुनता था क्या, फिर मेरे धीरे धीरे जीवन में एक नरमपन आया। जैसे वो जो था एक कड़कपन था कि नहीं मुझे ज्ञान सुना, वो माता जी को सुनाया, मैं अपने नशे में रहा। फिर मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, मेरे विकर्म क्या है
2: जी,
3: मैं क्या विकर्म करता हूँ। तो विकर्म तो मेरा एक ही था
2: जी,
3: गुटखा तंबाकू खाना और कभी कभी उधार पीना। गांव के जीवन इतना बढ़िया होता है कि वहाँ किसी से ना दे हुए से ना किसी को मार काट है। सबसे बढ़िया मेरे गांव की एक आज भी एक आपको बता दूं क्या है, मेरे गांव में आपको एक अंडे का छिलका भी नहीं मिलेगा।
2: अच्छा।
3: मीठ तो अलग चीज है, मेरे गांव में कोई बकरी या मुर्गी नहीं मिलेगी आपको।
2: अच्छा।
3: आज भी मेरा गांव ऐसा है,
2: पूरा वेजिटेरियन
3: फुल्ली वेजिटेरियन।
2: बहुत सुंदर।
3: हमारे गांव में कोई ही आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल की जनरेशन जैसे ड्रिंकिंग करना वो अलग बात है, लेकिन आपको मीट अंडा और ये चीज कभी नहीं मिलेगी हमारे गांव में। और वहाँ की एक और वहाँ एक भय बैठा हुआ है कि अगर आपने अपने घर में मीट लाया तो आपकी कुलदेवी रूठ जाएगी।
2: अच्छा।
3: तो कोई लाता नहीं है और ना कोई खाते भी नहीं है।
2: अच्छा अच्छा।
3: कोई भी नहीं खाते हैं हम 84 से मेरे घर में प्याज का छिलका भी नहीं आया है।
2: अच्छा।
3: जब से मेरी माताजी ने सुनना शुरू किया, माताजी ने मेरे घर में किसान मतलब पिताजी किसान से प्याज की खेती करते थे, माताजी ने बोला खेत से बेच देना, घर में एक
2: उसका नहीं आना चाहिए,
3: आना नहीं चाहिए, एक भी पीस नहीं आना चाहिए। मेरे पिताजी ने उसको बंद कर दिया। आप सोचो 84 से अभी तक कोई मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती है। तो अपने आप जीवन तो ऐसा था, लेकिन हम बाहर जाके ये सब चीज किए। लेकिन जब मैंने वो सुना, मैं अपनी लाइन पे आता हूँ
2: जी,
3: जब मैंने वो सुना तब मुझे लगा कि ये तो मुझे अभी छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़ने की अभी छोड़ू कैसे? कुछ दिन छोड़ दिया, फिर आया तो माता जी ने बोला, दीदी आई थी हमारी जो क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जी की जो बहनें होती हैं बड़ी बहनें, तो हमारा आगरा से आई थी, उससे जुड़े हुए थे वो लोग, मुझे पता नहीं था।
2: अच्छा।
3: तो लेकिन जब मैं पहली बार देखा सफेद साड़ी वाली जो दीदियां होती हैं, वो काफी मेरे को एकदम जैसे देवी जैसे होता है, मैंने कहा ये तो इतने चमक रहे हैं ये लोग, तो हम तो कैसे, मैं तो पास में। बोला दीदी आओ आओ आओ। माता जी को मैंने पहले बोला कि मेरा किसी से शिकायत मत करना, नहीं मुरली नहीं सुनाऊंगा आपको। माँ तो माँ होती है ना
2: जी।
3: तो माँ ने बोला कि नहीं सुनाएंगे, नहीं बोलेंगे। दीदी को बोल दिया। तो उन दीदियों को बोला तो दीदियां कुछ नहीं बोली मेरे को, रक्षाबंधन था तो राखी बांध के जा रहे थे मेरे को, तो बोला कि भाई सबने दिया है, श्री राम तुमने कुछ नहीं दिया मेरे को।
2: अच्छा।
3: दीदी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आएगा भी कहाँ से, सब तो खर्चा कर देते हो ना। जब दीदी ने बोला कि खर्चा कर दो, इनको कैसे पता मैं क्या खर्चा करता हूं, मुझे डाउट होने लगा। मैंने माताजी की तरफ ऐसे देखा, माताजी पीछे छुप के दीदी के।
2: अच्छा।
3: तो उसके बाद दीदी ने बोला कि आप दोगे? मैंने कहा दीदी बोलो कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जो ड्रिंकिंग करते हो ना वो छोड़ दो। हम तो ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं कर सकते
2: जी।
3: मैंने कहा जी बोल। मेरी दीदी बॉम्बे की, और बॉम्बे में वो ऐसे उसमें समाज से थी कि वहां इस चीज को जानते थे, वो शौक हो गई कि जो कि 10th 12th का बच्चा है ये, और अभी इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, और ये ऐसे कैसे कर सकता है। और सिस्टर सबसे बड़ी बात, हम 3 टाइम ड्रिंक करते थे।
2: अच्छा।
3: सुबह उठना, दोपहर हो, ये हम पूरा केस खरीद के लाते थे।
2: अच्छा।
3: हाँ, उसका एक एक नहीं कभी खरीद, और जाके अपने वहां खेती में गाड़ देते थे, उसी में से खेत में पी के घर जाते थे, और बाहर से सेंट वेंट लगा के ताकि किसको बदबू ना आए। ऐसे कारनामे करते थे हम
2: जी।
3: ठीक है। तो दीदी ने जब बोला ना मेरे को, तो मैंने दीदी मैं आपको सोच के बताऊंगा कि ठीक है तेरे को टाइम देते हैं। मैं 3 दिन के बाद मैं गया एक दोस्तों के साथ, मैंने सुबह से पीना शुरू किया और शाम तक मैंने 11 बियर पी लिया, 11
2: जी,
3: पेट भर गया मेरा, खाना पीना कुछ नहीं किया। आकर के मैंने माताजी को बोल दिया शाम को, माताजी आज से मैंने छोड़ दिया। माताजी ने बोला कि शाबाश। पिताजी बोला हाँ तुमने शाबाश दे दिया तो क्या छोड़ देगा? मेरा बेटा छोड़ देगा। बोला कि वो पता है भगवान की वाणी सुनता है,
2: अच्छा,
3: और सुनाता है, भगवान इसको ताकत देगा, बाबा इसको शक्ति देगा। ऐसे बाबा शब्द नहीं, बाबा क्या है? बाबा माना भगवान, शिव, जिसको तुम रोज मुरली सुनता है ना, वो शिव बाबा है और कोई नहीं है।
2: अच्छा,
3: तो और उसकी मेरे मन में उसकी प्रति भावना बढ़ गई
2: जी।
3: उस दिन से मैंने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया, मतलब दारू उसी दिन बंद,
2: बस वही आखिरी दिन थी।
3: वो आखिरी दिन, सबसे बड़ी बात मुझे विश्वास क्यों होने लगा ये ब्रह्म कुमारी की तरफ, बाबा की तरफ, कि उस दिन मुझे एक अलग शक्ति मिली कि मैंने छोड़ दिया और माताजी ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल छोड़ देगा आज से।
2: एक
3: वो तो चाहे वरदान समझ लो, चाहे ईश्वरीय शक्ति समझ लो, उस दिन से मेरी इच्छा भी नहीं हुई। होते ना कि कोई अल्टरनेट चीजें देखता है लोग, ये गुटका का भी बताता हूँ आपको कैसे हुआ। ये तो पहला बड़ा टॉपिक तो पहले छोड़ दिया, एक दिन अब गुटका की बताओ कैसे छोड़ा मैंने। वो मेरा एक भाई था बीके, वो आज वही धौलपुर में आज भी वो गीता पार्सल सेंटर चलाता है, वो ब्रह्मा कुमारी, उसकी दो बहनें सरेंडर हैं
2: जी,
3: धौलपुर में है
2: जी
3: दोनों
2: जी।
3: तो वो भाई मेरे को एक दिन ले गया कि चलो आप तो अभी ज्ञान में, आपको तो ज्ञान है ना, तो चलो कहीं जाके ज्ञान सुना के आते हैं, प्रचार करके आते हैं
2: जी,
3: ओम शांति का
2: जी।
3: मैंने कहा चलो, हम गए तो उन्होंने सारा करा दिया और मुझे बोला कि आप ये एक लक्ष्मी नारायण का चित्र हुआ करता है हमारे इसमें
2: जी,
3: वो चित्र को उन्होंने टांग दिया, बोला इस पे सुनाना है आपको
2: जी।
3: तो मैंने उसको भाई को बोला
2: जी
3: कि भाई मेरे को तो आदत नहीं, आप सुनाओ। तो वहां लिखा था एक धर्म एक भाषा, राजनीतिक एवं धार्मिक सत्ता एक के आत्मे, ऐसी ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया होगी। अच्छा। सुना के मैं बैठ गया।
2: अच्छा।
3: वो लोग बोले कि बड़ा पूरा हो गया इसका जल्दी 1.5 मिनट में। तो उन्होंने बोला कि ये अभी नए नए बाबा के बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं है। वो भाई हमको ले जा रहा था भरतपुर
2: जी।
3: भरतपुर में एक आश्रम है, वहां उसकी लौकिक बहन रहती थी। तो रास्ते में सिस्टर वो हमको एक वो मिला आरटीओ चेकिंग, बस में जा रहे थे, गाड़ी उसने रोक दिया
2: जी।
3: टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको एक उसका
2: जी।
3: गुटके का
2: जी।
3: तो वहां रुके तो मेरे को तो वही आ गया टाइम खाने का, ऐसे तलब लग रही है खा लूं करके। तो वो भाई को बिठा करके मैं बस में पानी पी के आता हूँ, बस रुकी है। उन्होंने बोला भाई आधे घंटे तक बस नहीं जाएगी यहाँ से
2: जी।
3: हम गए, एक छोटा सा बच्चा दुकान पे बैठा, उससे मैंने एक वो लिया पुड़िया उसका गुटके का, और ये उतार के बेच दिया वो भाई ने, वो मैंने जेब में रख लिया।
2: अच्छा।
3: देखो आपको बिल्कुल सही सही बात बता रहा हूँ,
2: कुछ
3: छुपाने वाला नहीं है
2: जी,
3: कि जीवन में कैसे परिवर्तन आया मेरे में
2: जी।
3: तो वो गुटका में खा करके बस में ऐसे चढ़ाई था, तो वो मेरे भाई थे ना बड़े, वो इस बारे में लोगों को समझा रहे थे कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति आजाद नहीं है। वो बोला क्यों? क्योंकि 3 इंची की सिगरेट के पीछे 6 फुट का आदमी गुलाम है, 1 रुपए की पुड़िया के बिना आदमी रह नहीं सकता है, तंबाकू के बिना, तो कैसे आजाद बोलेंगे? ये 1 रुपए की पुड़िया वाला शब्द मैं सीढ़ी पे चढ़ा मैंने सुन लिया
2: जी।
3: मैंने कहा अगर मैं अंदर गया
2: जी
3: तो लोग मेरे मुंह में देखेंगे या खुशबू आएगी और मैं भी ये इस वेश में हूँ
2: जी,
3: तो बोलेंगे ये दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, इसका ही भाई खा रहा है
2: जी।
3: सिस्टर मैं सीधा पीछे अपना पैर किया और गया, मैंने पानी से मुंह साफ किया जाकर के नल पे
2: जी।
3: और वो दिन
2: जी,
3: आज का दिन
2: जी,
3: मैंने उसके अल्टरनेट में सौंफ भी नहीं खाया,
2: ओके,
3: सुपारी भी नहीं खाया
2: जी।
3: वो मेरा वहां क्लोज हो गया
2: जी।
3: सब लोग वंडर कर रहे हैं ऐसे कैसे आप छोड़ सकते
2: हैं जी।
3: फिर हमको भी नशा आने लगा, ये ईश्वरीय शक्ति है
2: जी,
3: ये भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता
2: जी।
3: तो मैं जहां तक अपनी जर्नी को देखा कि जब से मेरे को माताजी ने पकड़ा, इसमें ये ज्ञान सुनाना शुरू किया है, ये तो मेरे अंदर परिवर्तन अपने आप आता गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी।
2: फिर आप समर्पित होने का डिसीजन कैसे लिया, और वो भी मधुबन में हेडक्वार्टर में?
3: समर्पित कैसा था कि कुछ समय के बाद मैंने ना अपना बोर्डिंग स्कूल चलाया।
2: अच्छा।
3: खुद का मेरा स्कूल था
2: जी,
3: और वो 8वीं तक मैंने स्कूल चलाया 6 साल
2: जी।
3: पहले 3 साल किसी और के स्कूल में काम किया था, नशा करते करते ही काम किया था। जब ये हो गया तो जब नशा छोड़ा था, मैंने अपना स्कूल चलाया, और वो स्कूल मैंने खोल दिया था 98 में। 98 में मैंने स्कूल खोला, तो वो स्कूल मैंने चलाया, और मैं यहाँ पे सेवा में आता रहता था माउंट आबू में। तो यहाँ सेवा में तो काफी यहाँ के जो भाई थे मेरे, जो फ्रेंड बने, वो काफी मेरे को मोटिवेट करते थे, और मोटिवेट माना मुझे मतलब प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे कि ये जीवन कैसा है, तो अच्छा लगता। मैं यहाँ पे पूरा जो वेकेशन होता था, छुट्टियां होती, पूरा यहीं करता था, सेवाएं करता था। तो किसी किसी डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जब स्कूल खोला तो मैं यहाँ आने वाला था, तो मेरे एक भतीजा था, मतलब उसने बोला कि अंकल ऐसा करो, हमने नया स्कूल खोला है, वो चलाने का, उन्होंने कैसे मेरे को बोला कि हमने नया स्कूल खोला है, उसमें सिर्फ आपका हमने नाम डाला है, आप एडमिनिस्ट्रेटर उसके वो व्यवस्थापक हो, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा।
2: अच्छा।
3: हाँ, बस ज्यादा नहीं, आप 3 महीना रह जाओ, जो स्कूल है ना खुल जाए फिर आप चले जाना, क्योंकि आपका नाम डाला है। और उन्होंने क्या चालाकी किया कि इनको शिव का नाम बहुत प्यारा होता है।
2: अच्छा।
3: तो उन्होंने शिव बाल विद्या मंदिर लिख दिया उसका नाम।
2: अच्छा।
3: हाँ, और ऊपर ओम शांति पूरा सिग्नल।
2: अच्छा।
3: तो वो पूरा उन्होंने, इनकी भावना ऐसे बढ़े, ऐसा उन्होंने स्कूल खोला।
2: अच्छा।
3: और सारा मेरा उसमें सिग्नेचर चलेगा। वो स्कूल हमने चलाया 8वीं क्लास है, आपको बताएं 2004 तक चलाया था हमने स्कूल।
2: अच्छा।
3: तो जब स्कूल हम चला रहे थे उस समय काफी अच्छे, मतलब मेरे में 400 बच्चे आ गए थे 8वीं तक के स्कूल में। और मैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो बोला आप कभी भी माउंट आबू जाओ, कभी, मेरे को पूरा फ्री छोड़ा उन लोगों ने, स्कूल आपके नाम से चलेगा लेकिन चलाएंगे हम, क्योंकि मान्यता मेरे नाम से मिलेगी नहीं, मैंने तो अपना बीए किया है, उन लोगों को उसके लिए तो बीएड और क्या क्या चाहिए होता है स्कूल के लिए, तो मान्यता वो लोग लेके रखे थे, लेकिन व्यवस्था के रूप में मेरा नाम रखा था।
2: अच्छा।
3: हाँ। और उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से एक निमंत्रण आया, मेरा अट्रैक्शन तो था ही यहाँ का
2: मधुबन का।
3: हाँ। तो यहाँ से एक भाई ने मेरे को बोला, आप शायद जानते होंगे, एक गिरीश भाई है हमारे डायमंड हाउस में, उन्होंने बोला कि भाई आपकी बहुत जरूरत है भगवान के घर में, और भगवान को आपकी जरूरत है, अगर आप आओगे तो अच्छा है, नहीं तो सोच लो आप अपनी तकदीर को खुद लकीर लगा रहे हो। हम आपका इंतजार 97 से कर रहे हैं, आज 2004 हो गया, आओ तो आ जाओ आप। वो शब्द थोड़ा मेरे को टच कर गया। शनिवार का दिन था, स्कूल में हम बाल सभा करवा रहे थे, और फोन, पहले वो फोन गांव में होते थे वायरलेस वाले, गांव में एक ही फोन होता था।
2: अच्छा।
3: वो लोग बुलाने के लिए आए कि साहब आपका माउंट आबू से फोन आया है।
2: अच्छा।
3: वो लोग तो उनके लिए तो माउंट आबू बहुत दूर की चीज थी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। माउंट आबू से फोन आया आपका, अभी मैंने जब बात किया तो इन्होंने बोला कि आपको आना ही है, और ये आपके लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपके चक्कर में हमने किसी को यहाँ और रखा नहीं है, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत बाइंड अप किया, शनिवार का दिन था और 29 तारीख थी, मैं वहां से गया सेंटर पे, बोला, और सेंटर पे भी एक पेपर आ गया मेरे सामने।
2: अच्छा।
3: हमारी दीदियां पहले बोलती आप मधुबन में रह जाओ, वहां समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ आप ब्रह्मा कुमारी जी में, और उसके बाद बोले कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है।
2: अच्छा।
3: मैंने कि क्यों नहीं जाना है, कि अभी यहाँ से एक बहन जा रही है, वो आश्रम आपको संभालना है।
2: अच्छा।
3: मैंने कि ओके, मैंने कि मैं तो ऐसे नहीं है, मेरे को अभी जाना है। मैं थोड़ा सा मन खराब हो गया तो मैं बैठ गया वहाँ पे मेडिटेशन रूम में, तो मेडिटेशन करने लगा मैं, तो दीदी ने तुरंत, दीदी का मतलब वहाँ की जो इंचार्ज थी उनका, कि आप तैयारी करो, आप वो जो जाने वाले थे वो नहीं जा रहे हैं, आपको ही जाना है।
2: अच्छा।
3: 1 अगस्त को मैं यहाँ पहली बार आया 2004 में, और यहाँ पहुंचा, और तब फिर यहाँ से मेरी जीवन यात्रा ये शुरू हुई।
2: जी। सो जब से आप 2004 फर्स्ट अगस्त से मधुबन में रहना शुरू किया, और आज दिन तक आपका लगभग 2 दशक पूरा हो चुके हैं, तो इस यात्रा में आपने क्या सीखा मुख्य रीति से, संक्षिप्त में?
3: हाँ, मुख्य रीति से ये सीखा मैंने कि जीवन में संयम और धैर्य,
2: जी,
3: क्रोध पर काबू, और अच्छे गुणों की धारणा, मतलब जीवन को यहाँ रहते हुए भी अगर यहाँ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ एक एनवायरमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में अपने जीवन से दूसरों के जीवन को परिवर्तन करने की हमने कला सीखी, कि मेरे अंदर पहले क्रोध बहुत था, तुरंत मैं हाइपर होता था, लेकिन मेडिटेशन करते करते, मेडिटेशन के अंदर वो ताकत है कि असंभव को आप संभव कर सकते हैं, जो इवन कई लोग इसको जड़ से खत्म कर चुके हैं, तो ऐसा यहाँ आकर के हमको,
2: जिसके आप एक उदाहरण है,
3: मैं कोशिश आज भी कर रहा हूँ।
2: बहुत सारी चीजों
3: हाँ,
2: में
3: बहुत सारी चीजों को हमने पूरा ये किया है,
2: जड़ से खत्म किया है,
3: जो कि कोई भी आपको गलत धारणा है, आपके चंचलता है, वो सब मेरे अंदर बहुत चंचलता थी, लेकिन मेडिटेशन से वो स्थिरता आई है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें मन को लगा सकते हैं, और जितना समय तक चाहें हम लगा सकते हैं।
2: बहुत खूब, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही श्रीराम भाई आपका। परिवर्तन मतलब एक सुंदरता, परिवर्तन मतलब जीवन का एक आदर्श, परिवर्तन मतलब जीवन में इतना संयम लेके आए, आने वाली पीढ़ी आपकी जीवन से सीखे कि जीना है तो कैसे ऐसे जीना है। थैंक यू सो मच आज आप आए हमारे श्रोताओं के बीच में, और आध्यात्मिकता से, योगी जीवन से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन आता है, और एक आम जिंदगी जीते हुए भी एक योगी की तरह कैसे जीना है आप अपने जीवन से हमारे श्रोताओं को दर्शाया है। शुक्रिया आपको।
3: थैंक
2: यू सो मच। दोस्तों इसे कहते हैं जीना, इसे का नाम है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
4: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
4: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
5: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है,
5: सोनोग्राफी। मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
5: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
5: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
6: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम एक घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू, ओम शांति।
0: जी तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है, तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है इसके बारे में बताएं।
1: फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं
0: जी,
1: और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना
0: जी।
1: क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को जैसा समय डिमांड कर रहा है हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है
0: जी। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है?
1: जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है।
0: ओके,
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए?
1: जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में AC है और 24 hours AC ऑन होता है, मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे जो अकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 hours AC वाला कमरा मिलेगा। तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घणा कभी जौ चना और कभी वो भी मना। मीन मैं तैयार हूँ
0: जी,
1: मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन होत न एक समान।
0: जी,
1: जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसे भी बातें मेरे लाइफ में आ रही हैं, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
0: खुश रहना।
1: जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है, तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए, हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या। हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रतिपल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी बिल्कुल। और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है?
1: फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है
0: जी।
1: और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भी पांच उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें, मैं पंक्चुअल हूँ दैट्स फाइन, दूसरा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन, मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता, दैट्स ओके।
0: जी जी, कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हाँ हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं
0: जी।
1: हम इरिटेट हो के सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे?
0: नहीं,
1: वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ, उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रादर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ
0: जी।
1: किसी आपकी जो स्पीड है ना थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे वन वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं, पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई, एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो। उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है तो आपको भी अच्छा होगा। आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो, आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी चीज की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो दो घंटे में करे तो वाह, ढाई घंटे लग जाए तो भी वाह, तीन घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है, हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
0: जी बिल्कुल, लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है। तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफेक्ट में ना आए।
1: जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है।
0: ओके।
1: उनकी दो अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वॉज सो गुड, कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वॉज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली डील कर सकते हो और आप करते भी आए हो, लेकिन पता नहीं उस दिन आपको क्या हो गया, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसकी वजह अगर ऐसे कर लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम उनको प्रेज कर रहे हैं, जब हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद हम जब उन्हें दो ऐसी और नई बातें बताते हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो स्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है।
0: जी।
1: तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई कभी भी आपको अगर अप्रिशिएट करना है, द अप्रिशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक, आप पब्लिक में अप्रिशिएट करिए कि फला ने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं। तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले दो तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं और फिर हम उन्हें प्यार से बोले कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है। तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है,
0: जी,
1: उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना मानना सहज हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब फ्लेक्सिबल बने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए?
1: बिल्कुल, कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भाई मेहनत का फल कभी बेकार
0: नहीं
1: जाता है, मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भी मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है, हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक बार एक राजा थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे, तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे। फिर उनको लगा कि भाई ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कल की क्या गारंटी है, सभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा, और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं
0: जी।
1: जब आपको ऐसे हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या, तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या, तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ मंत्र लिखा हुआ है जो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा, तो उस पे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा उनकी आंखों में चमक आ गई
0: जी,
1: उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया, उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी
0: बीत जाएगा,
1: ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया
0: जी।
1: तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है, और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीजें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती है
0: जी। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर?
1: मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे, लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए
0: जी।
1: तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं
0: जी,
1: ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं उनके साथ अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे
0: जी,
1: हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक
0: नहीं है जी।
1: तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है, एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर काम आती है जब हम अपने कम्फर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं
0: जी। कंफर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सोमान दो ताकि आप बन गए होकर के अफर्मेशंस दो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब हम एक विजन बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विजन में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में?
0: लेकिन कई बार लगते हैं ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से।
1: नहीं, पर झूठ उम्मीद है।
0: ओके।
1: उम्मीद है। ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि भी अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए
0: जी
1: लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये झूठ तो नहीं है ना
0: जी, मनोबल है और होप
1: yes,
0: है
1: जी। ये सत्य हो सकता है। तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो भी क्या दिक्कत है
0: जी।
1: तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है

0: मींगे वो मुझे दिख रहा है
1: जी,
0: मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ONGC में तो ऐसा है, NTPC में तो
1: ऐसा है,
0: ऐसा चल रहा है, ONGC फार बेटर है। लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं NTPC छोड़ के ONGC में जाऊंगी तो ONGC में मुझे लगेगा NTPC में तो वो अच्छा था
1: जी,
0: फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे याद आने लगती है जो शायद से ONGC में मिसिंग है। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावे होते हैं। तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उसे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है। लेकिन जो हमें मिला है यदि हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें तो हमें इन चीजों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं थोड़े गुसैल हैं या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है। हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी
1: बढ़ गई, बढ़ रही है,
0: बढ़ रही है और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है।
1: अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में।
0: हाँ जी
1: जी, जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल, तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने आप?
0: हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है
1: जी,
0: तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो
1: जी,
0: उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें
1: जी,
0: ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी
1: जी।
0: तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने
1: लगेंगे,
0: शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ
1: जी।
0: एक बार एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफी सारे उनके इनमेट्स रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा, तो अब इनको विचार चलने लगा। ऑफ कोर्स जो आते हैं वही फिर वहां के सब बातों की देखरेख करते हैं, तो फिर तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इनमेट्स हैं आपके बीच में एक देवदूत है
1: जी,
0: आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है, इतनी मेहनत से वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश
1: जी
0: ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रहे, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी, तो लोगों को लगा 3 टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है जो
1: रोजाना
0: चलता ही रहता है। और इस व्यक्ति को देखो, आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है
1: जी।
0: तो इसको भी तो परिस्थितियां आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता, शायद यही देवदूत है
1: जी।
0: तो हर व्यक्ति की नजर दूसरे के लिए क्या बन गई,
1: देवदूत है,
0: देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी
1: शुरू हो गया
0: जी। तो इसलिए हम हर व्यक्ति के

0: एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नजरिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए
1: दुनिया अच्छी है।
0: तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को। और जैसे दीदी ने कहा कि आपको अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9414-1415 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज। इंडोस्कोपी 2,500 रूपए, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज 9,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन 14,900 रूपए से शुरू, दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन 17,900 रूपए से शुरू, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी 29,000 रूपए से शुरू। सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है। इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के हैं।
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: तो ये क्या बात हुई भाई है? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। तो दीदी, हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है, और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है, और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं।
1: विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता ये एक जायज सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है
0: जी,
1: या मैं चाहती हूँ ये चीज़ करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज़ नहीं करी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात, हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया
0: जी
1: कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में दो बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो
0: जी,
1: तो क्या करा जाए।
0: कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए।
1: बीच वाला रास्ता मतलब तीन पे रखे पंखे को
0: जी
1: या वो भी हो सकता है
0: जी।
1: तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर लीजिए,
0: फिर ओढ़ लीजिए।
1: पर जिसे जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए
0: जी।
1: तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है। ये जो सोच है ना कि नहीं, मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: तो जैसी हमारी सोच होती है ना, फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही
0: जी,
1: अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े रूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद ही करना पड़ेगा, एसी तो बंद ही करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है
0: जी।
1: लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है। और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जीवन के लंबे सफर में हम सर्वाइव कर सकते हैं
0: जी।
1: और अगर हमारे में वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं हमें भी जड़ से उखड़ने वाली नौबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है
0: जी,
1: झुक

0: फेस्टिव बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है?
1: वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है।
0: जी
1: तो राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है।
0: जी
1: आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए, तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे, तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी।
0: जी
1: तो राजयोग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है। और विज्ञान का एक सिद्धांत है
0: जी
1: कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है।
0: जी
1: तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है, या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियां, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं,
0: जी
1: कुछ नहीं बदला है, हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, अपग्रेड करो आता रहता है। एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी है, अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे।
0: जी
1: तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी
0: अपग्रेड करना पड़ेगा,
1: अपग्रेड करने की जरूरत होती है। और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है, और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्जन अपने आप को बना लेते हैं।
0: बना लेते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं, तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोष देते हैं और वो हमें दोष देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी, मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ करके फ्लेक्सिबल होकर के उसके आनंद ले सकते हैं?
1: बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा।
0: ओके।
1: क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया, मान लीजिए
0: जी,
1: इट्स नो वे इन माय हैंड,
0: जी
1: ये मेरे हाथ में है ही नहीं,
0: जी
1: हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई जरूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जहां पर कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है, वहां पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट।
0: जी
1: क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसे मैं चेंज कर सकती हूँ?
0: नहीं,
1: मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा?
0: एक्सेप्टेंस।
1: अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है, आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन, मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है
0: जी,
1: कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माई टाइम विथ माई फैमिली मेंबर्स, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन, अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूं।
0: जी
1: तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता, तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते,
0: हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
1: तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से, उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है?

0: सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए?
1: वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने मना कर दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा।
0: जी,
1: माना ये एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहाँ पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार
0: नहीं कर पाएगा,
1: झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ
0: जी,
1: उसकी आदतें
0: बिगड़ जाएंगी,
1: बिगड़ रही है, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना
0: चाहिए,
1: जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा अगर वो सही नहीं है। तो कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता
0: जी,
1: हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी
0: जी,
1: परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए
0: जी,
1: ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजीली हैंडल कर सके।
0: अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है
0: जी,
1: और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है, तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार विचार हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं
0: जी,
1: तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना
0: जी
1: अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें
0: जी,
1: जब तक अति जरूरी
0: नहीं
1: ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग
0: ना करें।
1: हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीजें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है
0: जी।
1: तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वाह, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है
0: जी।
1: तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा एक मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए तो जरूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए।
1: जरूर, इट विल बी माय प्लेजर।
0: थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 9414151415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।

0: श्रीमती नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आज हम लोग विशेष पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बातें करेंगे। और आशा करता हूँ हर बार हम लोग जब फाइनेंस की बात करते हैं, एक लंबा चैप्टर चल रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर एक जो एक्सपीरियंसेस है हम लोग कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर, और बड़ी अच्छी बातें हो रही है कि कैसे हम लोग साउंड फाइनेंशियल हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, इन बातों को गहराई से बारीकी से जान रहे हैं। और पिछली बार हमने थोड़ा सा फाइनेंस और स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है उसको भी हमने टच करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखा जाए तो पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उसको मान के चलना भी नहीं है, क्योंकि हमारी इमोशंस भी है, हमारे लाइफ भी है, हमारे रिलेशनशिप भी है, उन सारी चीजों को पैसे से तोला नहीं जाता। और कुछ सोसाइटी भी है हमारी जहाँ पर बहुत लोग गरीब हैं, और कुछ ऐसा सोसाइटी है जहाँ कम लोग हैं लेकिन बहुत अमीर हैं, तो वो इनबैलेंस भी क्यों है, तो वो भी हम लोग अगर थोड़ा सोचें तो मुझे लगता है कि काफी चीजें हमको निकल के आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को कभी पढ़ाया ही नहीं जाता तो वो चीजें जो है एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है एजुकेशन में ये चीजें आनी चाहिए, उसके बारे में पैसे को यूज कैसे करना, पैसा क्या है, ये सब बातें जो है हम लोग को एजुकेशन में कभी भी सिखाया नहीं जाता। हम लोग को बोलते हैं कि बस डिग्री ले लो और पैसा कमाओ, या डिग्री ले लो नौकरी करो, डिग्री ले लो एंटरप्रेन्योर बनो, तो ये चीजें समझ में आती है, लेकिन फाइनेंस आने के बाद उसे कैसे हम लोग ग्रो करें और उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना, और वो मानवता के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए यूज कैसे हो, है ना। इट इज नॉट दैट कि आपने कमाया और जमा कर दिया बैंक में तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। और हमारे आज के खास मेहमान भानु जी हैं। भानु जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में इन चंद तालियों के साथ। और आप लाइफ कोच भी हैं, एडवाइजर भी हैं, और काफी कंपनीज में जो है आप मैनेजमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में लोगों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनर भी हैं। और इसके साथ में आज हमारे एक खास मेहमान शोभित नारायण अग्रवाल जी भी है। आप भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, एडवाइजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोभित जी आपका भी आज के इस प्रोग्राम में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शिवा भाई हमारे साथ रेगुलर, सभी को जोड़ने का और फाइनेंस को कैसे हम लोग मजबूत बना सकते हैं, हर व्यक्ति फाइनेंस को अच्छी तरह से समझे, मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझे, इसके पीछे वो हमेशा रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के विषय में आज जो विषय लेंगे वो चीजें भी बड़ी अच्छी रहेगी, और फाइनेंस को लेकर वो भी टॉपिक है तो आज हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप जरूर नोट करके रखें, ध्यान दें कि कैसे उन चीजों को आप प्रॉपरली समझ पाए। शिवा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति। रमेश भाई जी बहुत बहुत आपकी शुक्रिया है कि हमें ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिए जहां हम सब एक साथ जुड़ सकते, भिन्न भिन्न जगह में रहते हुए भी फिजिकली। भानु भाई जी बेंगलोर में है, शोभित भाई लखनऊ में है, और आप मधुबन में है, अबू में, और मैं अहमदाबाद में हूँ। तो एक बहुत सुनहरा एक पल है जहां हम एक अच्छे टॉपिक के, जब हम बात कर रहे थे भानु भाई जी से, भानु भाई जी टीसीएस जैसे अपनी कंपनी में काफी यंगस्टर्स को मैंने देखा हुआ है, नासिक में भी काफी यंगस्टर्स की करियर को उन्होंने बनाया है, और काफी यंगस्टर को उन्होंने मेंटरिंग और गाइड किया है कि वो अपना कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो करियर है वो शुरू कर सके। और उसके साथ साथ शोभित भाई हमारे एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, वो नरसिम्हन जी मुंबई से पढ़े हुए हैं, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप का काफी गहरी माना जो नॉलेज है और साथ साथ अनुभव भी है, और यंग होने के कारण, यूथ होने के कारण उन्होंने भी ये कभी आपने किसी के अंडर में जॉब करे और कोई नौकरी करे उन्होंने कभी सोचा नहीं, शुरू से ही वो अपनी जो बिजनेस है उस पे उन्होंने डटे रहे और अच्छे रीति उसको चला रहे। तो आज की जो टॉपिक है, जो आज की जो मेन टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बनना एक सबको एक इच्छा है और हर एक को एक सपना रहता है, लेकिन उसके अंदर जो माइंड सेट चाहिए, जो मनोभाव और मनोस्तर चाहिए, जो साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, उसके ऊपर में काफी हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला, हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, मैं भानु भाई जी से उनकी बहुमूल्य जो हमारी गाइडेंस ये चाहेंगे हम, कि आज के यूथ के पास, आज एन एंटरप्रेन्योर, उसके पास क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, वो किस किस फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप को यूज कर सकता है। हम देखते हैं फूड से लेके जैसे ओला उबर तक, ई कॉमर्स तक, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म इमर्ज हो रहे हैं कोविड के दौरान, सैनिटाइजर और बहुत सारे, जो हमने देखा कि कोविड का एक नया एंटरप्रेन्योरशिप का एक मौका मिला। तो भानु भाई जी, आप थोड़ा सा इन ओवरऑल गाइडेंस और थोड़ा सा आपके अनुभव से बोलिए कि किस फील्ड में आज यूथ के लिए मौका है और कहां वो अपने आप को पिच इन कर सकता है।
2: हेलो, पीछे कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़े पटाखे भी जल रहे हैं, दिस इज जस्ट टाइमिंग। सो आपने एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपने पूछा अभी, कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की चॉइस कैसे बनाए। तो मेरा ये बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंसर है देश देशपांडे, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला हमेशा, कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक है जो अगर अपने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, नॉइस करते हैं। एक होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉब्लम है ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। और तीसरे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जो वो प्रॉब्लम को हेड ऑन लेते हैं, उसको चैलेंज करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें वो लेते हैं। तो ये जो तीन अप्रोचेस हैं, अभी हमें जो मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर की कम्युनिटी जितनी बड़ी है वो कंट्रीज सक्सेसफुल होते हैं, जितना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंकरेज करें। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप को एंकरेज करना है तो पहले मोर फंडामेंटली हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की माइंडसेट को हमें एंकरेज करना है, क्योंकि एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने की माइंड आनी चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास तो भंडार है प्रॉब्लम्स की, और इस हर एक प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप करने की। अभी इसमें हमें कमर्शियल, हमारे सारे जो प्रोडक्ट अभी हम डिलीवर करते हैं, शॉप में जाते हैं, डिलीवरी जो है वो सब सर्विस मॉडल में परिवर्तन हो गए। अभी 10 मिनट में आपको ग्रोसरी मिलेंगे, 15 मिनट में आपको मेडिसिन मिलेंगे। ये सब जो है नए नए प्रोडक्ट्स को सर्विसेस में कन्वर्ट करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स आपको आ गए। ये एक डेवलपिंग कंट्री में जो मिडिल क्लास है उसके एस्पिरेशन के लिए ये सब जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे तो बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे जो सोशल चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल हम फूड ग्रेन्स को हम कैसे जो नीडी लोग हैं वहां तक पहुंचाएं, हमारे जो हेल्थ केयर है वो कैसे पहुंचाएं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब एरियाज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेसेस जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हर सेक्टर में गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब जो है मिलके ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो जो यूथ है उनके लिए तो देर इज ए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी राइट फ्रॉम कॉलेज। उनको ऐसे ओरिएंटेशन है, उनके कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जो उनको डेफिनेटली गाइड करके ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करेंगे और उनको वो प्रॉब्लम्स को लेने में बहुत मदद कर सकते हैं। और हम जो काम करते हैं इंक्यूबेशन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे यंग इनोवेटर्स अपने आइडियाज के साथ आते हैं और हम उनको पूरा कंपनी बनाने तक पूरा हम सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे जो मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी एक गोल्डन एज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें साइंस भी है, इसमें स्किल भी है, इसमें आर्ट भी है, ये सब सीखना है खुद को डेवलपमेंट करने की, खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप एक साल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने में आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस एक साल में आपको मिल जाएगा। तो आपका और वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनने के लिए, आपको सीखने के लिए, जल्दी सीखने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अपने आपको आगे बढ़ाएं।
1: भाई जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी के समय की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक सर्विस में बदल चुका है। कि पहले तो हम टूथपेस्ट 5 रुपया में खरीदने जाते थे, या मेडिसिन जाके लेके आते थे, या कोई टेस्टिंग हो, मेडिकल टेस्ट वगैरह हम करते थे, लेकिन आज हमारे घर तक आके कोई टेस्ट करके जाता है ब्लड यूरिन एंड मेडिसिन सो भी, वो भी 30% 20% डिस्काउंट्स में घर तक पहुंचा दिया जाता है। और सच में एक मेडिसिन पाने के लिए पहले कितना ढूंढना पड़ता था कि एक जगह दूसरी जगह, और गांव में तो मेडिसिन पहुंच भी नहीं पाता था। तो आपने जैसे बोला कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो गुजरात गवर्नमेंट में भी उन्होंने एक शुरू किया एक प्रोजेक्ट जिसमें अगर आपके पास कुछ नया आइडिया है, आइडिया है बाकी कुछ भी नहीं, नया आइडिया है, आप गाली गवर्नमेंट को आप देंगे, गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करे तो 2 लाख रुपया स्ट्रेट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से गुजरात गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास जाने से पहले थोड़ा सा आज एन यंग एंटरप्रेनर मैं थोड़ा सा सुबीत भाई जी को ये पूछूंगा कि सुबीत भाई आप एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड के भी है और आपने एक इतनी बड़ी कॉलेज से, आपने नरसिम्हा जी से पढ़े मुंबई से, जब आपके दोस्त सारे प्लेसमेंट और नौकरी और बहुत सारे जॉब के लिए जा रहे थे, तब आपके अंदर में ऐसे कौन सी थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ जो आपने सोचा कि नहीं मैं अपना ही बिजनेस शुरू करूं, और इसमें कौन सी चीज आप अपने में और दूसरे में फर्क देख रहे जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बना पाया और जिसको दूसरों को एंटरप्रेन्योर बनाने में एक रुकावट डालता है, और थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को क्या प्रमोट कर रहा है, उस चीजों को थोड़ा सा हमें डिटेल बोलेंगे।
3: बिल्कुल, आपने सवाल 3-4 सवाल आपने पूछे एक सवाल में। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि व्हाट वाज माय माइंडसेट, तो मेरा माइंडसेट ये था कि आफ्टर माय मास्टर्स देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी इन टर्म्स ऑफ फैमिली करियर मनी द प्लेस दैट आई वांट टू सेटल इन सो फ्रेंड्स यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था it was family. So family and then it was career. It was not career first or then family. So in terms of priority, I knew that I had to come to Lucknow. Second was career. So ab Lucknow mein aakar I belong to like a business background family and I'm the 7th generation in this business. लेकिन मैंने एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने शुरू किया एंड उसको शुरू करने के लिए जो माइंडसेट मेरा ये था वो था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी। सो वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ज्वेलर्स एंड तो वो एक जो चाह थी मेरे अंदर कि मैं कुछ अलग करूँ और सोशल सर्विस और एजुकेशन, ये दो फील्ड्स मुझे बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के फील्ड में सोशल सर्विस भी स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ। तो मैंने उस फील्ड में जाकर और थोड़ी शिक्षा दीक्षा मैंने प्राप्त करी और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं कहूँगा बस 1 लाख रुपए से मैंने शुरू कर दिया था ये काम, ऑफिस स्पेस थोड़ा सेटअप करके। एंड इनिशियली मैंने जब ये शुरू किया था तब तो कुछ भी मैंने खर्च नहीं किया था। इट स्टार्टेड थ्रू इनविटेशंस, कॉर्पोरेट्स मुझे बुलाते थे और अलग अलग संस्थाएं बुलाती थी, और वहां से मैंने इस बात को रियलाइज करा कि ये जो फील्ड है मेरे लिए मेंटल हेल्थ का, ट्रेनिंग का, मेरे लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग इट एंड आई ऑल्सो हैड अ केपेबिलिटी इन इट, तो ये दोनों ही बातें थी उसमें, मतलब इंटरेस्ट भी था और एप्टीट्यूड भी था और पोटेंशियल भी दिख रहा था क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। एंड इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस। फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज को स्केल अप। अब दूसरी बात कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, तो यूपी गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट करती है और साथ ही साथ कई अलग अलग ऐसे एसोसिएशन हैं, जैसे कि CII में यंग इंडियंस है जो कि स्टार्टअप्स को वो लोग इनकरेज करते हैं, और इसके अलावा फिकी फ्लो जो कि विमेन्स विंग एक चलता है लखनऊ में, वो भी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी प्रमोट करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी, और जैसे भानु भाई ने एग्रीकल्चर की बात करी, तो ऐसे लोग जो इस फील्ड में मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर मेडिसिन इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो जो साइंटिफिक रिसर्च बॉडीज हैं जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के वहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके साथ बहुत ढेर सारे प्लान्स आइडियाज होते हैं, वो ऐसे लोगों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और यंग थिंकर्स, यंग स्टार्टअप, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को वो पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब चीजों के साथ भी वो सपोर्ट करके लो बजट में गवर्नमेंट असिस्ट करके उनको बढ़ावा देती है। तो ऐसा है
1: जी भाई जी। मैं आपको एक बात पूछूंगा, क्योंकि हम जैसे एक मिडिल क्लास और ट्रेडिशनल फैमिली, जबकि हमारे फादर भी जॉब में थे और मेरे काफी फ्रेंड है जो भी जॉब के फैमिली, उनकी बैकग्राउंड जॉब का है और दे गोट इन टू, उन्होंने इंजीनियरिंग किया और उन्होंने काफी एमबीए डिग्रीज भी लिए और इतने हाई क्वालिफिकेशन बावजूद देन ऑल्सो वो कभी भी सोचे नहीं कि हम अपना कुछ बिजनेस शुरू करें। और उनकी फैमिलीज का भी रेजिस्टेंस तो रहता ही है बाय नेचुरल, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज और रिस्क अवर्जन एक रहता ही है। तो ये जो माइंडसेट है कि आपको जो दिख रहा है कि अभी के समय में आपके भी सारे दोस्त इंजीनियर्स काफी हैं और इंजीनियरिंग के दौरान कई लोग यूएस चले गए होंगे, कई लोग अच्छे अच्छे आईटी कंपनीज में होंगे, बट क्या चीज है जो एंटरप्रेन्योर बना देता है, क्या चीज है लोगों को जिंदगी भर नौकरी में ही अटका देता है, आप उस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और उस बैरियर को तोड़ने का कोई एक ठोस, एक अच्छा एक कोई एक टिप्स देंगे जिससे लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे बट थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी ले और थोड़ा सा अपना करियर, क्योंकि इकोनॉमी की जो सेफ्टी है उसको भी थोड़ा इंश्योर करे। बानु भाई।
2: हाँ, तो ये जो है उसको बोलते हैं होली ग्रेल। एक एंटरप्रेन्योर को कैसे स्पॉट करें, एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये जो है देयर इज नो वन सिंगल आंसर। इसका ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड आंसर है, बट एक हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के एप्लीकेंट्स होते हैं नॉर्मली टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, माना छोटे शहरों से आते हैं, और हमने एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए हैं जो मैं समझता हूँ कि इट इज गुड फॉर अस टू एनकरेज इन जनरल। फर्स्ट है कि अपने फैमिली में अपने फर्स्ट जनरेशन के ग्रेजुएट्स होते हुए भी प्रॉब्लम को करीब से देखना, माना फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, उनके फैमिली में वो शायद पहले ग्रेजुएट हुए होंगे बट उन्होंने अपने फैमिली में फार्मर की एग्रीकल्चर की इश्यूज को देखा उन्होंने बहुत पास से, और उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम्स को देखा जहाँ पे फार्मर सुसाइड्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को उन्होंने पास में देखा, तो उन्होंने जैसे इंजीनियरिंग में थे उसी टाइम में उन्होंने अपना मन बना लिया था कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी आफ्टर 4 इयर्स वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को उसको सॉल्व करते हैं, वो ऑनियंस की सेक्टर में काम करते हैं, गोदाम नाम है उसका स्टार्टअप का। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ये आप जो प्रॉब्लम है उसके करीब रहना मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो करीब से प्रॉब्लम को समझना फर्स्ट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है। आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि रिस्क लेना और रिस्क के साथ बैकअप भी लेना, थोड़ा कॉशियसली होना। एंटरप्रेन्योरशिप में बोला जाता है कि आपके पास अगर पैराशूट है तो आप कूदेंगे नहीं, अगर आपके पास कोई बैकअप है, आपके पास कोई ऐसा, अगर आपने बोला कि मैं फुल हार्टेड इसके अंदर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे अभी फैमिली में है रिस्क है, तो बोलते हैं कि उसमें आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। आपके पास जब कोई और सपोर्ट नहीं होगा तभी आप अपना पूरा मन लगा के आप ट्राई करेंगे हर ऑप्शन को, तभी आपका सक्सेस मिलेगा। लेकिन इसमें हमें एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से ज्यादा से लोग आते हैं, तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर फैमिली में पैसे की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है, तो आप इसमें जल्दी से मत कूदो, आप 3-4 इयर्स आप कॉर्पोरेट नौकरी करो, पैसे सेव करो, उसके बाद में आप ट्राई करो। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ऐसा है कि आपको आइडियाज के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे, आपको आइडियाज के लिए ग्रांट्स मिलते हैं। दूसरे बाहर के कंट्रीज में आपको आइडियाज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है ना, तो इंडिया में ग्रांट्स मिलेंगे आपको, बहुत धीरे धीरे आपका ग्रोथ पाथ होगा। तो इसीलिए आप यू कांट टेक अ बिग बेट, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपका फर्स्ट 2-3 इयर्स का जो जर्नी होगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे रिस्क को समझ के जो अंदर आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा एंटरप्रेन्योर के लिए। ये अपने इकोसिस्टम को एक और मेंटर को साथ काम करने का भी एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दूसरे जब अगर एडवाइस देंगे तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसके अनुसार अपने लाइफ को चेंज करना, अपने लाइफ के चॉइसेस को चेंज करना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीसरा होता है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में जो है ना उनका आउटलुक अलग होता है, कि थियोरेटिकल नहीं होता है, उनका एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन होता है। अगर वो एजुकेशन करते हैं वो शायद ब्राइट स्टूडेंट ना भी हो, उनको 50-60% मार्क्स भी मिले होंगे, लेकिन एक या दो सब्जेक्ट में जो भी उनको अच्छा लगता है ना, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन ओरिएंटेशन दिया होगा अपने लाइफ में, कि इसको थियरी मगअप नहीं करना है मुझे, लेकिन ये सब्जेक्ट को समझना है मुझे। इसको कैसे काम में ला सकते हैं, ऐसे समझना। ऐसे लोग जो है मैं समझता हूँ ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए।
1: भानु भाई जी, एक बात आप बोलते बोलते बहुत अच्छे बात बताए कि सुनने की क्षमता, पर जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप में आता है वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, ज्यादातर हमारा नॉन बिजनेस बैकग्राउंड का मैं देखता हूँ, बहुत इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि वो सुनता नहीं है, और ना सुनने के कारण वो कई फेल्यूर को फेस करता है, और वो फेल्यूर से फिर वो जख्म और वो सदमे से निकल पाना और फिर से खड़े होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं फिर थोड़ा सोबित भाई जी से पूछूंगा, टॉकिंग बिट पर्सनल, कि अग्रवाल फैमिलीज में मैं देखता हूँ, अगर मैंने बचपन में हमारे गांव में देखा कि उनके बहुत बड़े दुकान था और उनके जो बच्चे थे वो स्कूल भी कॉलेज भी जाते थे, पर वो दुकान में वो काम करते थे, वो कायदा छोटे छोटे काम करते थे, वो सामान को रखना फिर सामान बेचना, तो छोटे छोटे जैसे मम्मी पापा से उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती थी, पर उनकी अंदर की जो ईगो भी कई बार सामान उठाना पकाना वो सब भी काम करते, और वो जो हिसाब करते करते बाय द टाइम मैं देखा कि जब वो ग्रोनअप हो गए 18 ईयर हो गया तो दे बिकम द ओनर ऑफ द सप एंड ऑलमोस्ट दे एक्ट एज ए ओनर एंड देयर फादर आर बिहाइंड जस्ट दे आर लुकिंग आफ्टर हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मैं ये जो सीखने की कला है अपनी फैमिली बिजनेस से और बड़ों से और ये बिजनेस बैकग्राउंड के जो फैमिलीज में ये चलता आ रहा है, वो चीज अगर नॉर्मल अगर कोई यूथ कोई बड़े ऐसे व्यक्ति या बिजनेसमैन या कोई एजुकेटेड जो इस पे काम कर रहा है उससे अगर वो थोड़ा सा अपनी मेंटरिंग या थोड़ा सा कोचिंग अगर ले ले और सुनते रहे और सुन के अगर काम करने की क्षमता रखे पेशेंस रखे तो मेरे ख्याल से सक्सेस रेट काफी बढ़ जाएगा। तो सुभित भाई इसके ऊपर आप थोड़े से शॉर्ट में हमें थोड़ा ग्लिम्स देंगे कि ये चीज कैसा होता है और कहाँ हम अपनी फेलियर को, क्योंकि मैंने काफी देखा है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस बैकग्राउंड की फैमिली के होते उनकी बिजनेस फेलियर की रेट काफी कम होता है जबकि नॉर्मल बैकग्राउंड उनकी फेलियर की रेट ज्यादा होता है। सुभित,
3: जैसे कि भानु भाई ने कहा था कि एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना होता है, थोड़ा सा आपके पास प्रबंध होना चाहिए फूड क्लोथिंग शेल्टर का बिफोर यू टेक यू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी बात, अग्रवाल फैमिलीज में ऐसा होता है जैसा शिवा भाई आपने कहा कि बच्चे शुरुआत से ही अपने बिजनेस में जाना शुरू कर देते हैं, मैंने भी ऐसा किया था, और मैं समझता हूँ कि केवल अग्रवाल फैमिलीज में नहीं बल्कि सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, एज अ करियर काउंसलर माई ऑब्जर्वेशन इज दैट children follow the footsteps of the father, majority of the cases. कम ऐसे cases मैंने देखे हैं जहाँ पर वो तब होता है जब कोई option नहीं, chance नहीं है. If the father is not in a good financial position, तब अलग बात है. नहीं तो normally, if the father has been in a good financial position, irrespective of business or service, बच्चे उसको follow करने की कोशिश करते हैं. तीसरी बात ये है कि आपने जो कहा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस तो इसमें ये आता है कि यू नीड टू होल्ड ऑन आफ्टर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. यू कांट एक्सपेक्ट द रिटर्न्स ओवरनाइट और यू नो आफ्टर 3 months. यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. मे बी यू विल हैव टू वेट फॉर 1 year, 2 years टू ब्रेक इवन एंड देन यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द कॉम्पिटिशन इन माइंड. हियर आई वॉन्ट टू मैंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट द way service class people when they come together they talk about you know the hierarchy position in an organization or how to get work done effectively. Similarly, when businessmen of various fields they come together, and it is also observed that you know there's a lobby of businessmen who come together and they make friendships, there's a lobby of servicemen who come together and make friendships, and they have their own inner circle conversations and discussions of how they can scale up the business. What is the economy doing? What is the local region doing? Where can the products be sourced from? How are you doing? How are you saving your taxes and so on? So that is another very healthy way to keep the spirit up and going, because you need to have like birds of a feather flock together. Ek bahut achhi kahawat hai angrezi mein. To wo ek आपको धीरे धीरे उस तरह से आप एक सर्कल बन जाता है उसमें आप डेवलप करके फिर ग्रो करते हैं. बट यू नीड टू होल्ड ऑन एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर मोटिव्स. ऐसा नहीं होता होना चाहिए अरे क्योंकि ना जॉब करने में आपको इतना पैसा नहीं मिलता है इसलिए मैं बिजनेस कर लेता.
1: सुभित भाई, आप एक बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि आपको जैसे जैसे आप बिजनेस में ऊपर जाते हो तो आपका एक सर्कल बनता है, और जब सर्कल आपस में मिलते हैं और सर्कल आपस में बात करते हैं तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और वो सर्कल, हेल्दी सर्कल मेंटेन करना, जैसे जॉब वालों की अपनी हायरार्की के हिसाब से डीजीएम, एजीएम, जीएम, वो अपनी सीट पे अपनी बातें करते हैं, ऐसे बिजनेस में भी अपने डेवलप के हिसाब से उनकी HNI, अल्ट्रा HNI, बाकी हर लेवल का, तो उससे फिर उनकी जो सोर्सिंग नेटवर्क और काफी वो चीजें आसान हो जाते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम इंडिविजुअली रह के हर चीज सीख के अगर करना चाहे तो मुश्किल है, थोड़ा सा हमें सोशलाइजेशन जो थोड़ा उसके लिए भी टाइम देना पड़े, और सबके साथ मिलके कोई सोशल इवेंट हो, एक्टिविटी हो, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करे तो उससे भी हमारा काफी पहचान और हमारा एक लर्निंग हो जाता है क्रॉस। भानु भाई जी, इसमें एक बात है कि सुमित भाई ने तो अच्छी बात बताया कि पैसे हो, बिजनेस फैमिली के हो तो लर्निंग चाहिए अपनी फादर पेरेंट्स के जो भी बिजनेस, उसे सुन के और सबर रख के चलना चाहिए। बट जैसे मैं सपोज बिजनेस फैमिली का नहीं हूँ, बट मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट, फिनांस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैंने किसी का नहीं सुना और आई जम्प इन टू बिजनेस, एंड बिजनेस में सपोज मैं ह्यूज लॉस कर लेता हूँ पहला अटेम्प्ट में, बिकॉज आई डो नॉट हैव दैट पेशेंस, आई डो नॉट हैव दैट लिसनिंग कैपेसिटी। और कहीं ना कहीं वो झटका मिलता ही है, अगर आपको आपके पास पेशेंस नहीं हो, लिसनिंग कैपेसिटी नहीं हो, आपको झटके सुनने पड़ते हैं। भगवान जैसे कोई थप्पड़ मारता ही है कि आप दूसरे के सुनो, आप थोड़ा झुको, आप थोड़ा सा सबर रखो। सो इन दैट केस अगर फेलियर हो जाए, ड्रास्टिक फेलियर हो, तो आप अपने आप को कैसे वहां से निकल के आएंगे उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, और आपने ऐसे केसेस कैसे हैंडल किया है या देखा है उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्स दें।
2: मैं एक छोटा सा डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग चीजें हैं। अगर आप एक चीज कहीं से लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल होलसेल से लेके रिटेल में बेचना, फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है, इसमें आपका शायद कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होगा, शायद आप बस ऐसे लेके आपने बेच दिया, तो ये बिजनेस है। इसमें क्या होता है नॉर्मली कि बहुत प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है, आपने लाइक होलसेल टू रिटेल इज अ बिजनेस मॉडल, होलसेल में खरीदो रिटेल में बेच दो, इट्स अ प्रूवन बिजनेस मॉडल। या आपने काम को दूसरों के साथ, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग का आपने बिजनेस बना लिया, तो इसमें आप 10 लड़कों को अपने पास रखो और जहां भी पेंटिंग का रिक्वायरमेंट आता है आप उनसे करा लो, तो ये मैन पावर की बिजनेस है, इसमें ये भी एक प्रूवन बिजनेस मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप में अलग होता है, जिसमें दिस विल रिक्वायर ए डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम। उसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन को डिलीवर करने का और उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है, और उसमें बिजनेस मॉडल भी शायद कुछ इनोवेशन हो। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों में डिस्टिंक्शन भी है और इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने रिस्क की बात बताई, फेलियर की बात बताई, ये दोनों में इक्वली हो सकते हैं। बिजनेस में क्योंकि बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा प्रूवन है, शायद उसमें कम रिस्क हो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में भी ज्यादा से ज्यादा रिस्क हो सकता है। अभी मैं समझता हूँ कि दोनों एक्चुअली हमें एक करियर पाथ की बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हमें सोचना है कि ये दोनों जो अप्रोचेस हैं, बिजनेसमैन बनना या एंटरप्रेन्योर बनना, मैं समझता हूँ कि माइंडसेट की बात है। अभी एक बड़े से बड़े कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा ग्रुप में हूँ, या कोई और बड़ा कंपनी आईटी कंपनी लीजिए, उसमें अगर टीम मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं कोई भी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि वो सेल्फ स्टार्टर हो, खुद अपने आप कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आप स्टार्ट हो जाए और वो रास्ता ढूंढे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किन के साथ हमें मिलके काम करना है, किन के पास राइट स्किल होगा जहां पे जाके हमें काम कराना है। ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये जो है इन डिमांड है अभी मार्केट में। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक माइंडसेट के रूप में देखें तो मैं समझता हूँ कि फेल्यूर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, देन वी लर्न मच मोर। आपके पास जो स्किल्स आपने एक्वायर किए, हमेशा हमें ये रखना है कि हमने क्या स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी और ने एंटरप्रेन्योर बना तो हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तब हमें स्किल्स नहीं आएंगे। अगर हमें खुद कुछ आइडिया है, कुछ प्रॉब्लम है, हमें कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सीखने को मिलता है, और वो जो हम सीखते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होंगे। अगर हम फेलियर फेस करते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि हमें एक स्टेप बैक लेना है, हमें फिर से जाके वही को ट्राई बार बार ट्राई नहीं करना है, वी हैव टू टेक ए स्टेप बैक, हमें रीअसेस करना है, हमें मेंटर्स के साथ, कोचेस के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि हमारा अप्रोच ये था, हमें किसी और के साथ, कोई और एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है तो उनके साथ हमें शेयर करना है, इससे ज्यादा से ज्यादा हमें सीख मिलती है। अगर हम उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए अभी हम रेडी नहीं है, तो ये जो स्किल्स हमने एक्वायर किए हैं उनको हमें अच्छी तरह से से कम्युनिकेट करके एक ट्रेडिशनल जॉब लेना बेटर होगा, क्योंकि आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, दिस बिकम्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इवन इन अ कन्वेंशनल जॉब। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है, मैंने जैसे पहले बोला, एक साल में वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है, बिकॉज इतना काम करना पड़ता है और इतने रिस्क और प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है, तो दे डेफिनेटली लर्न अ लॉट। तो ऐसे एक्सपीरियंस वालों को कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो उस पे अगर 2-3 साल काम करेंगे, लेकिन अपना एम फिर से रखे कि मुझे भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उस एक्सपीरियंस को और ये ब्रेक को दोनों मिला के मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट उनका डेफिनेटली और सक्सेसफुल होगा। ऐसे थोड़ा मैच्योर अप्रोच लेके उनको फेलियर्स को भी एक स्टेपिंग स्टोन लेना, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर इज डेफिनेटली अ स्टेपिंग स्टोन। आजकल सिलिकॉन वैली में बोलता है कि आपके अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे, इन्वेस्टमेंट राउंड करेंगे, तो वो इन्वेस्टर जो है पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कोई फेल्यूर्स है पहले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, क्योंकि फेल्यूर का इतना इंपॉर्टेंस है। तो हमें भी फेल्यूर को सेलिब्रेट करना है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में। 95% ऑफ स्टार्टअप्स विल फेल, स्टार्ट करेंगे तो फेल होंगे, लेकिन वो फेल में से हमें कुछ सीखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमारा अटेम्प्ट है वो और रिफाइंड हो।
1: भानुभाई जी, ये आपने बहुत अच्छे बात बताया कि अगर शुरुआत में अगर फेल्यूर भी हो, पर लेकिन वो एंटरप्रेन्योर्स कुछ उसने जो मेहनत किया है और जो रिगरस उसने हार्डवर्क किया है, उसकी जो एक्सपीरियंस एक साल का है वो 3 साल के बराबर होते हैं, और उसको लेके वो जॉब अप्लाई करने के लिए वो साइनेस या उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस शुरू किया था डूब गया, फिर नौकरी के लिए चला गया, अभी नौकरी करेगा फिर पता नहीं नौकरी कर पाएगा। सो देयर आर लॉट मेनी क्रिटिसिज्म, लॉट मेनी सोशल रेजिस्टेंस मे बी देयर।
2: शुभित भाई,
3: हां, कैन यू हियर मी?
2: या, आई कैन हियर यू।
3: शिभा भाई इज फ्रीज्ड।
2: आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, यू हैड समथिंग टू से, या ऑन दिस टॉपिक, इट विल बी रिलेवेंट।
3: राइट। सो आई वांटेड टू ऐड ऑन, मैं ये कहना चाहता था कि जो एक्सपीरियंस की बात करी कि एक एंटरप्रेन्योर साल भर में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले लेता है, क्योंकि उसको फाइनेंसेस डिसाइड करने होते हैं, उसको स्टाफ रिक्रूट करना होता है, उसको मार्केटिंग भी करनी होती है, उसको ट्रेंड्स को समझना होता है। अभी देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है पोस्ट कोविड, प्री कोविड व्हाट वाज द वे, पोस्ट कोविड एवरीथिंग इज गॉन ऑनलाइन। फिर इसके अलावा आपको ऑपरेशंस भी देखने होते हैं, लॉजिस्टिक्स, ऑफिस मैनेजमेंट देखना होता है, वर्किंग कैपिटल आपको मैनेज करना होता है, फिर सप्लायर्स वेंडर्स को देखना होता है, और आपके जो क्लाइंट्स होने वाले पोटेंशियल, आपका जो ज्योग्राफिक रीजन होता है जहां काम करना होता है। सो ये सब कुछ पैरेलल चलता रहता है, एंड यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो यू ऑल्सो नीड टू हैव द राइट पीपल एट द राइट प्लेस। So how do you find the right people? And then when it comes to the groundwork, wherein being the leader of an organization, there is also a very basic understanding that the temperaments matter a lot and the kind of product that you are into. So likely you will having that kind of a human resource also working in your own organization. So ye sab cheeze bhi hoti hai, with time you learn and you understand, because for anything to be successful, your human resource should stay with you. They should not leave you. Otherwise, you'll have to retrain them, and then the focus is shifted. And the focus should be on the client, on selling your product, and it should be in an automated mode gradually. So all of this takes time and effort, and I think in the whole process there is a lot of learning happening. At the same time, it makes you mature about life. Haan, aur ek baat aur bahut important, hold on, kya karna hota hai, whatever is your work timing, for example 9 to 6, aapne apna shop ka time banaya, aapne apna entrepreneurship ka time banaya hai, you have to be there. You cannot say आज customer नहीं आया है, आज काम नहीं है, तो चलो हम work from home कर लेंगे। जैसे in service, office बंद है तो हम work from home कर लेंगे, 2 दिन की leave ले ली, आज मन है छुट्टी का तो फिर हमने medical leave लगा दिया, things like that. So in entrepreneurship this does not happen. So you have to be very determined, and there are no holidays over here, because you are the one, you can make less money also, you can make more money also within the same month. So it is totally up to you how you are working towards. towards it. What do you have to say, Bhanu bhai?
2: Correct. और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई reporting boss ना हो, उस time पे आप कैसे behave करते हो, that becomes the biggest test of your character. कोई boss है जो हर दिन हर micromanage करता रहेगा, then if you work nicely, there is nothing much, no speciality. But वो जो discipline आता है, जो self directed discipline है, I think that is a big test and that is also a big resource. So I think that is why entrepreneurship should be looked at as a mindset. Then we will be able to take that mindset. In fact, I hope all the big companies, employees also get a training in entrepreneurship mindset, because then I think we will be able to see different kind of working. Hamara jo employees hain, regular kaam karne wale employees, unko bhi agar entrepreneurship skills mil jaye, to wo bhi apne companies mein better output produce kar sakte.
0: Bilkul, bilkul. Ek sawal aaya hai, ye Subhash ji likhte hain, ek baat samne aayi hai. Mindset, mind health, isko kaise hum log samjhe?
2: और मेरा एक हाँ, और शायद शोभित भाई का भी कुछ इनपुट होगा इसमें. मैंने एक स्पेशली हम एक इंक्यूबेटर है, फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है हम, तो हमारे पास जो है बहुत सारे एंटरप्रेनर्स आते हैं. मैं पर्सनली एटलीस्ट 500 एप्लीकेशंस देखता हूँ हर साल एंटरप्रेनर्स के साथ, एंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हर एक थीम से, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यू नो, सिटीजन सर्विसेज, पुलिस, क्राइम, सब एरिया से स्टार्टअप्स के आइडियाज आते. सो इतने सारे आइडियाज होने के बावजूद क्या है कि, और उसके लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है. मैं समझता हूँ कि आज जो नीड है, इमीडिएट नीड है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंक्यूबेटर है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए माइंडसेट और जो मेंटल हेल्थ की सपोर्ट चाहिए, मैं समझता हूँ इसकी सबसे जरूरत है. क्योंकि ये जैसे अभी शोभित भाई ने लिस्ट बताया कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, तो दिस इज ऑलमोस्ट ए सुपरमैन जैसा बनता है वो एक एंटरप्रेन्योर. हर दिन जो है 10-15 चीजें होती हैं जो गिरने वाले होते हैं, और उन सबको संभाल के चलना पड़ता है. नेक्स्ट डे फिर से 9 बजे ऑफिस को आना है. इट इज नॉट ईजी. ऐसे लाइफ को कंटिन्यूअसली इतने साल करते करते उनके वो स्ट्रेस जो है एक्युमुलेट होता रहता है. तो हर दिन जो है उनके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए मैं समझता हूँ कि वी हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप, और हमारा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एंटरप्रेन्योर्स लैंडस्केप में मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए. इनके मेंटल हेल्थ के लिए तीन मैं समझता हूँ एरियाज जो है सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने के. एक है कि रेजिलियंस. रेजिलियंस माना एक बार फेलियर हो गया तो नेक्स्ट डे वो रिबाउंड कैसे करेंगे, उसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे बिल्डअप करें, वैल्यूज कैसे बिल्डअप करें, और उनको शायद ब्रह्मकुमार इसमें समझाते हैं ड्रामा, उसके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उनके लिए हम क्रिएट करें ताकि उस फेलियर को भी हम रेगुलर समझ. सेकंड होता है, मैं समझता हूं कि दूसरे लोगों से गुण सीखना. जितना जल्दी वो गुण ग्राहक बनते हैं उतना जल्दी एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने की इंपॉर्टेंट स्किल होती है. और तीसरा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूं, कि उनको एक फोरसाइट बैलेंस रखना है, माने 2-3 साल आगे के लिए भी सोचना है और प्रेजेंट मोमेंट में उनको रहना है. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है कि उनको लॉन्ग डिस्टेंस व्यू भी होना है और इमीडिएट आज के करंट व्यू भी रखना है. ये तीन में एरियाज में समझता हूं कि अगर उनको स्किल्स को हम डेवलप करें तो आप एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करेंगे, उनको मेंटल हेल्थ के सपोर्ट कर सकते हैं. ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने तीन एरियाज को आइडेंटिफाई.
3: तो आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ अ बिजनेसमैन हु इज सक्सेसफुल अक्रॉस द कंट्री नाउ, एंड उन्होंने मतलब करोड़ों रुपए से उन्होंने मतलब एक रिस्क लेना और एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाना. वो लोग डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाते हैं जो कि पहले इंपोर्ट होता था, लेकिन अब वो मेड इन इंडिया काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड उसको करते हैं. तो जब हस्बैंड ने ये डिसीजन लिया था कि हम अपने काम को स्केल अप करेंगे, उसको हम नेशनल लेवल पे ले जाएंगे. सो एक होता है स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल. उसके लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यू विल आल्सो हैव टू ट्रैवल. ऐसे काम के लिए तो आपको अलग अलग देशों में भी जाना होगा, वियतनाम, चाइना, जर्मनी, अलग अलग देशों में भी जाना होगा. तो वो सब भी किया और वाइफ के साथ बात किया कि वॉट इफ अगर अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तो मेरा साथ दोगी मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि क्योंकि इवेंचुअली आप सब पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, घर के लिए, घर में सब बना रहे. तो वाइफ ने सपोर्ट किया, वाइफ ने कहा बिल्कुल आप करिए और आप जहां रखेंगे वहां रहेंगे और आपके मन के अंदर ये जज्बा है, आप ऐसा करना चाहते हैं और आप सक्सेसफुल होंगे, और नहीं भी हुआ तो हम साथ में हैं, दो रोटी दाल सब्जी तो हम खाएंगे खाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी. तो ये जो एक बात होती है कि एक होता बिना फैमिली को बताए आपने हस्बैंड ने कुछ लोन ले लिया और कुछ काम कर लिया, एक हुए फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर तब आपने कुछ इस तरह का बड़ा कदम उठाया, तो बहुत अंतर हो जाता है मेंटल हेल्थ।
1: रमेश भाई, एक बात बहुत बार बार आता है कि फेलियर के बाद तो इजी है कि फेलियर को लोग समझते भी है और उसको फिर कोई लोग निकल भी आते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते, मेहनत भी करते, लोगों का सुनते हैं, कई भगवान की भी थोड़ा सा मूर्ति और उनकी भी थोड़ा सा निश्चय भी रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है भानु भाई जी और रमेश भाई जी, जो आप बहुत अनुभवी है, कि जब इंसान बहुत सक्सेस पाता है, जब बहुत उसको माना कंटिन्यूस सक्सेस मिल रहा है और एक के बाद एक सक्सेस मिलते जाता है, तो इंसान कई बार समझ नहीं पाता है और उसकी ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड रियलिटी से वो छूट जाता है, बोलते हैं ना धरती से वो डिटैच हो जाता है। तो फिर उस समय हमने कई फेलियर्स देखे, तो उस केस में अपने आप को कैसे एक संभाले, नहीं तो गिरने की चांस काफी बढ़ जाता है। चाहे हमने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी देखा, सिनेमास की भी पर्सनालिटीज देखे, ऐसे बिजनेस की भी लाखों ऐसे केसेस है जो कंटिन्यूस सक्सेस के बाद देन वो सीरीज ऑफ फेलियर उनकी लाइफ शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट में कैसे मैनेज किया जाए।
0: जी शिवा भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मुझे लगता है कि ये सवाल जो है सबके मन में आता भी होगा। और देखा गया है कि जब बहुत सक्सेस होने के बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति एकदम से फिर गायब हो जाता है, इंडस्ट्री में उनका चेहरा नहीं दिखता। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री में सब कुछ ऐसा नुकसान होने के बावजूद भी वो वापस स्टार्टअप करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर से सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो जो लोग लगे रहते हैं, जो लोग फील्ड को नहीं छोड़, चाहे नुकसान हो गया कुछ भी हो, लेकिन वो ग्राउंड रूट में रहते हैं और उनको पता है कि काम मुझे करना ही, तो वो फिर उसमें भी देह अभिमान छोड़कर वो छोटे से पर्दे पे भी आ जाते हैं और वहां से उन लोग शुरू करते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको वापस वो सारी चीजें वापस वो कैप्चर कर लेते हैं और फिर से आ जाते हैं। तो बहुत लोग हैं एक बार वहां से हटने के बाद, नुकसान होने के बाद वो फिर से क्या कहते हैं, वापस आने में उनको जो है या वापस उनको खड़ा होने में दिक्कतें तब होती हैं जब वो अपॉर्चुनिटीज को लेने के बजाय मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं कि ये छोटा काम कैसे करूं, वो चीज उनके अंदर आ जाता है, तो वो फेलियर ज्यादा होते हैं और उनको लंबा खींचना पड़ता है। लेकिन जो आदमी सोचता है कि हाँ नुकसान हो गया, चलिए यहाँ जो कुछ मिल रहा है वहां से शुरू करते हैं, तो वो छोटे से शुरू करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे वापस, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है तो नेचुरली वो वापस ऊपर उठ जाते। तो ये चीजें हमने देखी है। शिवा भाई का शायद नेटवर्क ठीक नहीं है, बानो भाई मुझे लगता है कि आप और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें फिर पूरा।
2: हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो दो प्रॉब्लम्स है, एक है बहुत जल्दी सक्सेस को पाना और दूसरा है सक्सेस को पाने के बाद जल्दी गिर जाना और जल्दी उसको लॉस एक्सपीरियंस करना। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सक्सेस में हाई हैंडेड बन सकते हैं, हैवी हैंडेड बन सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाए रखना और अपने पुराने रिलेशनशिप्स को उसी ग्राउंडेड रीति से हम कैसे संभालें, ये सब जो है सक्सेस मैनेजमेंट का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं समझता हूँ कि दोनों में, सक्सेस में और फेल्यूर में, दोनों में अगर हमें समान रहना है तो एक बात होती है इम्पैक्ट फोकस। हम इस बिजनेस में क्यों आए, ये हमें थोड़ा इसको फ्रेम करके रखना है हमारे घर में कि हमने इस एरिया में हमने क्यों एंट्री किया पहले। अगर हमें सक्सेस मिलता है तो ए इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव, बैंक बैलेंस नहीं, हमने जो इम्पैक्ट लाना चाहा हमने कम्युनिटी में, वो हमने अचीव किया कि नहीं। अगर वो अचीव कर रहे हैं तो उसका गोल कैसे बढ़ाएं, अगर उसमें हमें सक्सेस है तो नेक्स्ट हमें बेंचमार्क को हमें ज्यादा बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, ये जो है हमें हमेशा हमारे पैर को धरती पे रखेगा, नहीं तो हम इजीली हम जैसे बोलते हैं ना कैरिड अवे, हम ऐसे ही जाएंगे और हमारे बेसिक्स के साथ हमें कनेक्शन नहीं रहेगा। उससे ही जो है देहाभिमान में आपने बोला अहंकार आएगा, रिलेशनशिप्स में डैमेज होगा और बाकी सब जो है डाउनस्ट्रीम चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे फेल्यूर में भी हमें इम्पैक्ट को रखना है, हम हमेशा बोलते हैं कि तीन एलिमेंट होते हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्वर। फेल्यूर किसी भी कारण हो सकता है कि आपने गलत प्रॉब्लम चूज किया, दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम सही था लेकिन सॉल्यूशन गलत था, तीसरा हो सकता है प्रॉब्लम भी सही था सॉल्यूशन भी सही था लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर रेडी नहीं था। तो ये तीनों जो है हो सकते हैं सिचुएशन। हमें ये ह्यूमिलिटी चाहिए उस समय कि हमें एक बार स्टेप बैक करके देखना है कि हम फेल क्यों हुए, हमने शायद रॉन्ग प्रॉब्लम चूज किया होगा या हमारा सॉल्यूशन गलत हुआ होगा या मैं रेडी नहीं हूं अभी इसके लिए। तो ये तीनों एरियाज को हमें एसेस करना है और ये तीनों भी हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पे अभी हमारे 60-70% स्टार्टअप्स जो है फेल होते हैं, रॉन्ग प्रॉब्लम चूज करते हैं, है ना, तो ऐसे ही हो सकता है कि फेलियर के अलग अलग रीजन हो सकते, इसीलिए हमें इम्पैक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि किसी की जान को बचाना है इस सिचुएशन में, तो वो ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर उस इम्पैक्ट के ऊपर हमारा फोकस है, तो हम अलग अलग रीति से ट्राई करके फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्षमता रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस और फेलियर दोनों में जो है हमें अपने आप को मैनेज करने की टेक्निक्स को हमें लाना है।
1: मेरे ख्याल से की एक सीमा है। जी जी हाँ रमेश भाई आप कंक्लूड आप कीजिए, लेकिन इसमें एक बात मैं बोलते हुए आप करना कि अकेले में एंटरप्रेन्योर बन सकते हो वो इजी है, लेकिन एक टीम को लेके एंटरप्रेन्योर आप किस तरह से आप काम करते हो, आपका भी रेडियो मधुबन में बहुत सारे टीम है, तो टीम को लेके आप कैसे करते हो और हम सब भी कहाँ कहाँ बैठे हैं, सबको लेके आप कैसे चलते हो, जो सक्सेस का एक पैरामीटर है, उस बात को बोलते हुए आप कंक्लूड कर दो।
0: ओके शिवा भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए हर व्यक्ति अगर इंडिविजुअल करना है वो आसान है, खुद को समझो और खुद को आगे बढ़ाते जाओ और वो आसान है, लेकिन टीम के साथ अगर हमको सक्सेस अचीव करना है तो हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, उनका क्वालिटी, उनका विशेषता होता है, उन सभी चीजों को देखते हुए उनके साथ हमको जो है आगे बढ़ना है। अगर उनकी कमियों को देखेंगे तो वो आपके लिए बड़ी रुकावट वाली काम होगी, बहुत मुश्किल कर देगा आपको। टीम चलेगा, काम चलेगा, लेकिन आपका चेहरे पे स्माइल नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, काम करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अंदर से एक धुंध रहेगा। लेकिन हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उनके विशेषताओं को देखते हुए, उनके अपने रोल को देखते हुए अगर आप उनको समझेंगे तो उनके साथ आप ताल से ताल मिलाएंगे तो आप खुश रहेंगे। और आप अपने आप में देखिए कि मुझे जो जॉब दिया है, मुझे जो काम मिला है, मुझे जो सेगमेंट मिला है, उस सेगमेंट को मैं बहुत अच्छी तरह से करता जाऊं, मैं दूसरों को ना देखूं, तो वो चीजें जो है टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टीम में मूव ऑन करने के लिए आपकी खुशी भी इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, तो इस चीज को लेकर हम चल सकते हैं। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह से हमारी जीवन शैली होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बाद उसको लॉन्ग टाइम में रन करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या क्या बातें होती है, वो लेकर आज हमने डिस्कशन किया। शिवा भाई ने काफी अच्छे क्वेश्चन किए, भानु भाई ने भी अच्छा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारे सुमित भाई ने भी अपना बिजनेस का खुद का अनुभव, क्योंकि उनका बिजनेस फैमिली है तो नेचुरली पढ़ाई करते हुए भी वो बिजनेस में थोड़ा थोड़ा अपना जो है एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और जब जैसे ही पढ़ाई पूरा हो जाता है दे जंप इनटू द बिजनेस, तो वहां पर उनको क्योंकि पहले का अनुभव है और एक परंपरागत चीजें भी उनमें कुछ ब्लड में भी होता है, तो इसलिए वो आसानी से उन चीजों को करने में तैयार हो जाते हैं। और वही चीज दूसरे लोगों में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर अरे बाप रे इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आएगा, ये सोच सोच के दे टेक द डिसीजन, मेरे ख्याल से बहुत लंबा टाइम लगता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्लस माइनस है, लेकिन फिर भी हमें सीखने को मिलता है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना ही है तो पहले से माइंडसेट बनाएं, तो आपके पास बिजनेस नहीं, आपका पूरा परंपरा से नहीं है, लेकिन जो बिजनेस चल रहा है वहां पर एक पार्ट टाइम आप आधा घंटा एक घंटा काम करके उसको सीख सकते। इफ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस देन यू कैन लर्न एनीवेयर, कहीं से भी जाके आप, जैसे मैं स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते हुए केमिस्ट का, ऐसे किसी पिताजी ने बोला आप कुछ बिजनेस का सोचो, तो मैं केमिस्ट के पास फ्री में काम करता साल भर, लेकिन मुझे इतने मेडिसिन के नॉलेज आ गए, बड़ा अच्छा लगने लगा और लोगों का अप्रिशिएट मिला, अरे तू मेडिकल में है और तेरे को ये सब मालूम है दवाई का, और सामने से लोग मुझे बोलते थे ये मेडिकल में इसको तो दवा का सब पता है, तो उससे मेरे को ऐसा खुशी मिलती थी ना, एक वो चीजें एक अपने आप में एक जो है लोगों का अप्रिशिएशन मिलता है, तो आपको लगा। और मैंने अच्छा सक्सेसफुली मेडिकल स्टोर रन भी किया, इंडिविजुअली रन किया विदाउट मनी, हमने पार्टनरशिप में एक फाइनेंसर से जुड़ के 8 से 10 साल मैंने उसको अच्छी तरह से रन किया, फिर बाद में हमने गिव अप। तो कहने का भाव ये है कि आपका परंपरागत बिजनेस ना हो तो भी आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे भी करके उसको कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट, लेकिन वही थोड़ा सा मैनेज करना है हर चीज में। थैंक यू शिवा भाई, थैंक यू सोबित भाई, थैंक यू भानु भाई, जय हिंद जय भारत, ओम।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें,

ओम शांति। आज 13 जून 2026 और भारत भर में कई स्थानों पर बरसात का मौसम आरंभ हो गया है। बरसात आने से प्रकृति के अंदर जो ग्रीष्म की तपत होती है वो शीतल होने लगती है और चारों ओर शीतलता का वायुमंडल छा जाता है। तो आज बाबा कहते हैं, बाप ज्ञान सागर भी जब आते हैं तो मनुष्य आत्माओं पर ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे जो मनुष्य विकारों की तपत में परेशान है उनको आकर के शीतल कर देते हैं। ज्ञान की धारणा करते करते शीतलता आती है और ये सारी भारत भूमि ऐसी शीतल बन जाती है जो सतयुग त्रेता तक ये शीतलता चलती है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में कोई भी प्रकार के विकारों की आग से देवी देवताओं को कोई परेशानी नहीं। वहां सदैव बाहरी मौसम रहता है, हर प्रकार से प्रकृति के अंदर भी शीतलता आ जाती है। तो बाबा आकर के हम बच्चों के लिए ऐसी सुंदर दुनिया जहां सदैव बाहरी मौसम रहता है उसकी स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अब विशेष पुरुषार्थ करके आत्म अभिमानी बनना है ताकि देह अभिमान की तपत शांत और शीतल हो जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपत नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा पूछते हैं, रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए, परमात्मा को कहते आकर तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। प्रकृति में भी जब बहुत तपत होती है तो कई बेहोश भी हो जाते, कई मर पड़ते हैं। बाबा कहते इसी प्रकार इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है, इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। कितना सुंदर बाबा स्थूल प्रकृति और आत्मा की अविनाशी प्रकृति के लिए ज्ञान बरसात बरसाते हैं। एक ही बार आकर इतना शीतल बना देते हैं। बाबा एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है।
आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हैं। द्वापर कलयुग आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। यह उत्कंठा रहती है। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। सूर्य भी अपनी गर्मी से तपाता नहीं है। वह सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते भी है, मैं गुलाम तेरा, और बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। इतना निरहंकारी बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराए पति देश पति शरीर में मैं आता हूं। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। न ब्राह्मण दिखाए हैं न शिव बाबा को दिखाते। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहां गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताए नमः। शूद्र से देवता बनने के लिए ब्राह्मण तो चाहिए, बिना ब्राह्मण के तो कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण लोग भी गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहां गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्र में भी कितनी भूल कर दी है, विराट रूप के चित्र में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूं। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो।
भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा, ऐसा वर्षा मिलता है। पीढ़ी बाय पीढ़ी कोई दुख नहीं। भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसके भी बुद्धि में नहीं है। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, परमात्मा की महिमा गाई हुई है। एक ओंकार, निराकार, निरहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। परमात्मा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उन्हें कोई अहंकार नहीं है। यहां थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अब जानती है। आत्म अभिमानी बनना है तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से क्या हुआ? बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। बाबा कहते दुनिया में भी कोई अगर बड़ा इम्तिहान पास कर लिया तो कितनी खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से उच्च और कोई पढ़ाई है ही नहीं। या आध्यात्मिक पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब ये बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा आकर हमें सिखाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म

पालना करेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी, फिर जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, बस सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाएं कहां चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठने जाना है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो कलयुग अंत तक भी मुक्ति धाम में बैठी रहती है। ऐसे नहीं कहेंगे यहां आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छर सदृश हो गया, आया और ये गया, लास्ट एक आध जन्म लिया, आधा जन्म लिया और चला गया, तो फायदा क्या हुआ। मनुष्य की महिमा गाई जाती है, ये मंदिर किसके हैं, जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं, फिर और धर्म आते हैं। भारत में शिव बाबा के मंदिर और देवताओं के मंदिर बनने लगते हैं, फिर बाद में और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं ये तुम्हारी बुद्धि में है, कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं, ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा 100 परमात्मा, वास्तव में हम 100 का अर्थ यह है कि हम 100 आत्मा, 100 देव आत्मा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनकर के 100 देवता बनते हैं। वह फिर कह देते आत्मा 100 परमात्मा, परमात्मा 100 आत्मा। रात दिन का फर्क है, बाबा की समझानी और दुनिया की समझानी में रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, तुम अभी पांडव बने हो, कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है, वह कहते हैं आत्म ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है, घर में तो रहा जाता है, घर में कोई लीन थोड़ी होना है, घर में तो रहा जाता है, उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं, वहां भी निराकारी झाड़ है, हम परमधाम में भी निराकारी आत्माओं का झाड़ है, ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है,
इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का जार। दावा कहते इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। इतनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहां भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से, यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है, ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो बत्तियां हैं। बाबा कहे ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो बत्तियां हैं। कहते ना चांद देवता, सूर्य देवता या सितारे देवता, बाबा कहे ये तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसीलिए देवता कह देते हैं। ये हम सब आत्माओं की सर्विस में है, इसलिए उनको देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने, तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूं। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, आत्मा और शरीर दोनों सतयुग में सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे, कोई किसी का माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं, ये राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुखर्ता सुखकर्ता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूं। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। बाप को याद करने से देवता पद पाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से
स्वयं को बिजी रखने वाले माया जी।

तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती है। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हो बहु वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम।